नाम दान बख्शना शुभ भावनावा पूरिया करनिया ए नमाणिया दे मान।

0: आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस ॿुधी रहिया 9870 किलोहर्ट्ज़ ते। तंहिंखां सवाइ तव्हां आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल एप ऐं डीडी फ्री डिश ते ॿुधी सघंदा आहियो। प्रोग्राम शुरू थी चुको आहे, डिटेल्स कुझु हिन तरह। थोरी देर में तव्हां हमेशा भगत कलाम साहब जन जे मिठड़े आवाज़ में कलाम ॿुधंदा। तंहिंखां पोइ तबसरो पेश कंदा, पोइ कुझु कलाम ऐं गीत, ख़ासि ख़ासि ख़बरूं प्रोग्राम जे आख़िर में नशर कयूं वेंदियूं। इहे त असांजे प्रोग्राम जी डिटेल्स तव्हां आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस ॿुधी रहिया। हींअर अचो त भगत कलाम साहब खे ॿुधूं।
1: सभ का

भगत कराम साहब जनजे मिठड़े आवाज में कलाम दी रही आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस आहे हिर पेश आहे तफसरो कैप्टन समित मछार के पूरे आलम भर में हीरो करे मने पे जो हन फ्लाई दुबई जी फ्लाइट एफ सेट 1073 में हवा विच हवा में कॉकपिट हमले का बचाए वरतो सरस बहादुरी लाए पूरे दुनिया भर में शाबाश अची रही है भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इसराइल के प्रधानमंत्री श्री बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप और पूरे आलम भर में मानो सरस तारीफ कर रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी कैप्टन समित मछार आलम के

बदमद बहादुरी ॾेखारी आहे। हुन चयो त हुन पंहिंजी ज़िंदगी जी परवाह न कंदे कैप्टन मछार तमामु बहादुरी सां विढ़ियो ऐं 9/11 वांगुरु हमले खे थियण खां बचाए वरितो। श्री मोदी चयो त 140 करोड़ भारतवासी कैप्टन स्मिथ मछार खे सैल्यूट था कनि ऐं संदसि जल्द ठीक ठाक ऐं तंदुरुस्त थियण जी शुभकामना था ॾियनि। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी कैप्टन स्मिथ मछार सां जुमे ॾियारे वीडियो कॉल ज़रिए साणसि ॻाल्हि ॿोल कई। हुन पंहिंजी गुफ़्तगू जी शुरूआत संदसि सिहत जे बारे में सुवाल पुछी करे कई ऐं खेसि दिलासो ॾिनो त भारत देश संदसि बहितरी लाइ प्रार्थना करे रहियो आहे। प्रधानमंत्रीअ पायलट जी बहादुरीअ सब्र ऐं यकदम कार्रवाई करण लाइ संदसि साराह कई जो हुन महज़ कुझु सेकंडनि जे अंदर ई फैसलो खणी वरितो ऐं इन तरह सारी ज़िंदगी बचाए वरितियूं। हुन ॿुधायो जेतोणीकि पंहिंजी ज़िंदगी लाइ जदोजहद कंदे हिक तरफ़ संदसि मौत हुई पर हुन पंहिंजे ज़ख़्म जी परवाह न करे कैप्टन पंहिंजे मुसाफ़िरनि जी सलामती खे अवलियत ॾिनी बनस्बत पंहिंजी ज़िंदगी जे। इन तरह 140 भारतवासी खेसि इज़त था ॾियनि ऐं पूरो मुल्क फ़ख्र सां चई थो सघे की असीं भारतीय फ़क़ति ज़िंदगी कोन वठंदियूं पर असीं भारतीय माण्हुनि जी ज़िंदगी बचाईंदा पिण आहियूं। प्रधानमंत्री ते यादि करायो पायलट सां पंहिंजे ॻाल्हि ॿोल दौरान के पायलट जा कुटुंब जा मेंबर तंहिंमें भूपेंद्र भाई, गीता बहन संदसि भेण, सोनल बहन, हुन गीता बहन जी साराह कई जो अहिड़ा संस्कार पंहिंजे पुट में विधाइनि। प्रधानमंत्री ध्यान सां कैप्टन स्मिथ खे ॿुधो त हुन कीअं 17 साल संदसि उॾाम जो आज़मूदो रहे कैप्टन जो आज़मूदो रहियो आहे कि हवाई जहाज़ खे कीअं उॾाइणो आहे, हेठि कीअं लाहिणो आहे। हुन संदसि तकलीफ़ जा उहे पल जदोजहद जा पल ॿुधा त कीअं हुन कोशिश करे दर खोलियो ऐं मुहकम इरादो कि मुसाफ़िरनि खे मरण कोन ॾींदो जितां हू बुरी तरह सां ज़ख़्मी पिण थियल हो। प्रधानमंत्री कैप्टन जी साराह कई जो खेसि रूहानी ताक़त हनुमान चालीसा मिली जंहिं वक़्तु पंहिंजी ज़िंदगीअ लाइ जदोजहद लाइ विढ़ी रहियो हुन वक़्तु खेसि हनुमान चालीसा मां ज़िंदा रहण जी प्रेरणा मिली। हुन सां त कैप्टन ॻाइण वक़्तु जज़्बाती थी वियो जेको कि हिकु कुदरती रदमल पिण आहे पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी चयो कि संदसि बहादुर कारवायूं पूरे आलम भर खे संदसि ॻाल्हाइण लाइ उत्साहित कनि ऐं संदसि परिवार खेसि मुल्क जे शान ते आंदो आहे। प्रधानमंत्री रोशनी आंदो त पूरे मुल्क भर में ख़ासि प्रार्थनाऊं ऐं आरतूं थी रहियूं आहिनि त जीअं संदसि सिहत जल्द बि जल्द तंदुरुस्त थी वञे। हुन कैप्टन जे महकम इरादे खे साराहियो त कीअं न हुन हनुमान चालीसा रोज़ानो पढ़ंदो आहे। संदसि ॿिनि सालनि जो पुटु पिण साणसि गॾु भारतीय सकाफ़त खे संस्कृत खे ज़िंदा रखे वेठो आहे। हुन सऊदी सरकार जा पिण शुकराना मञिया जो हिकदमि कैप्टन खे सिहत सेवा मैसर कराई आहे ऐं खेसि कैप्टन मां इहो पिण ख़बर पई कि उते मकानी माण्हू पिण खेसि प्यार ॾेई रहिया आहिनि। हुन इहो पिण ध्यानु ॾिनो त कैप्टन जी कार्रवाई सां पूरे आलम भर में भारतीय पायलट्स जी डिग्निटी ऐं इज़त वधी वई आहे। अॼु गांधी जयंती आहे ऐं असां अहिंसा जी आ पुॼारी आहियूं ऐं पोइ ज़ाहिर करे ॾेखारियो त असीं अहिंसा ते ज़िंदा पिण रहंदा आहियूं। प्रधानमंत्री जे गुफ़्तगू में गुजराती ज़ाहिरी तंहिंमें हुन कैप्टन जे ॿारनि बाबति पुछियो त कैप्टन जे पायलट जे माउ पीउ ऐं ज़ाल बाबति पिण पुछियो। इज़राइल जे प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पिण फ्लाई दुबई जे फ्लाइट FZ-1073 जे कैप्टन स्मिथ मछार सां छंछर ॾियारे ॻाल्हियूं कयूं ऐं खेसि इज़राइल जो हीरो करे कोठियो। ॿार में पूरे आलम खे साराहियो त कीअं न इज़राइल न ईंदड़ जहाज खे हिक हमले खां 3 सेप्टेम्बर ते को पायलट जे हमले खां बचायो वियो। हिन वक़्तु कैप्टन मछार जेको 38 सालनि जो आहे पंहिंजी यूएई जे अस्पताल में इलाज हली रहियो आहे। तमामु घणो बुरी तरह सां ज़ख़्मी हुअण थी पियो आहे। फोन वार्ता दौरान नेतन्याहू पिण कैप्टन मछार खे ऐं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी खे नींड ॾिनी त इज़राइल जे आज़ादी जे ॾींहं जे जलसे में अची करे ॾींहं खे ॿारनि।

हीअ आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस आहे 9870 किलोहर्ट्ज़ ते। तंहिंखां अलावा तव्हां आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल एप ऐं डीडी फ्री डिश ते ॿुधी सघंदा आहियो।

आकाशवाणी की सिंधी सरसा यह पेश है खास खास खबरों। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी स्विस सिर के सदर गोए पैरवलन से नई दिल्ली में अज बाहमी गाल मामलों के वजीर डॉ एस जयशंकर मटजंदड़ आलमी हालत मंझ मिडल पावर से तावन ज नव वज खुली रहा अज ओटावा में भारत ए कैनेडा सीएपीए गालन जो पंजो राउंड कंदा स्टेट ऑफ फॉर्मस तेस तीन बंद रो जैसी अमेरिका सदन शर्त के पूर्ण तो करे समझाए मिसाइल की रेंज के बधायण बैडमिंटन में भारत वर्ल्ड जूनियर मिक्स टीम चैंपियनशिप जगह कैरियर में अज हल्दी तैमें मुकाबलो अल्जीरिया से कंदो।

आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस ॿुधी रहिया हीअ असांजे प्रोग्राम जो वक़्तु पूरो थी रहियो आहे वरी हुन सां मुलाक़ात थींदी सुभाणे सुबुह जो यानी की भारतीय वक़्त मुताबिक़ 6:30 वॻे ताईं ॾींदा इजाज़त सदाई करे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पामुला आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। राष्ट्रपति पामुला वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योग जगत के दिग्गजों सहित उच्च स्तरीय शिष्टमंडल के साथ आज सुबह 3 दिवसीय राजकीय दौरे पर भारत आ रहे हैं।

भारत की सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता खतरे में थी। नई दिल्ली में 62वें म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में विदेश मंत्री ने कहा कि जब दुनिया के अधिकांश देश पड़ोसी देश के सैन्य तानाशाह को समर्थन कर रहे थे, तब रूस ही ऐसा देश था जिसके साथ भारत के संबंध बहुत अच्छे थे। उन्होंने कहा कि भारत रूस संबंध कई मायनों में इसी विरासत से प्रभावित हैं। डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच सैन्य, परमाणु और अंतरिक्ष सहित व्यापार और निवेश के क्षेत्र में प्रगाढ़ संबंध हैं। भारत और कनाडा आज से ओटावा में प्रस्तावित व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर बातचीत का पांचवां दौर शुरू करेंगे। दोनों देश इस व्यापार समझौते को दिसंबर तक अंतिम रूप देना चाहते हैं। 5 दिन की वार्ता 9 अक्टूबर तक चलेगी। चौथे दौर की वार्ता 18 सितंबर को नई दिल्ली में हुई थी। इस वर्ष मार्च में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने इस समझौते को दिसंबर तक अंतिम रूप देने का लक्ष्य रखा था। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह आज नई दिल्ली में 17वीं पेंशन अदालत की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान 80 वर्ष से अधिक उम्र के यानी सुपर सीनियर पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों की 897 दीर्घकालिक शिकायतों का समाधान किया जाएगा। इस अवसर पर पारिवारिक पेंशनभोगियों से जुड़े मुद्दों पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों और उनके उत्तर वाली पुस्तिका का विमोचन भी किया जाएगा। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय युवा मंच माई भारत के माध्यम से कल देशभर में 150 से अधिक स्थानों पर नशा मुक्त युवा के लिए नशा मुक्त मार्च का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में 1 लाख से अधिक युवाओं और नागरिकों ने भाग लिया। विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत आरंभ इस पहल का उद्देश्य मादक पदार्थों के सेवन के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और स्वस्थ नशा मुक्त जीवन शैली को प्रोत्साहित करना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने एशियाई खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए भारतीय खिलाड़ियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। एशियाई खेल जापान के नागोया में संपन्न हो गए हैं। इस दौरान 2030 के एशियाई खेलों के मेजबान कतर को खेलों की मशाल और ध्वज सौंपे गए। भारत 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य सहित 85 पदक के साथ तालिका में चौथे स्थान पर रहा। कई भारतीय खिलाड़ियों ने नया इतिहास रचा। मौसम विभाग ने आज कर्नाटका, केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है। अगले 2 दिन मराठवाड़ा और विदर्भ के ज्यादातर हिस्सों और महाराष्ट्र तथा छत्तीसगढ़ के कुछ और हिस्सों से दक्षिण पश्चिम मॉनसून की वापसी के लिए हालात अनुकूल होने की संभावना है। उत्तराखंड, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल के गंगई क्षेत्र और लक्षद्वीप में आंधी तूफान के साथ बारिश और बिजली चमकने का अनुमान है। आज नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी मौसम के ऐसे ही रहने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में समय हुआ है सुबह की 7:10 और 15 सेकेंड। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम संगीतिका, जिसके अंतर्गत आज आप आनंद लेंगे सुकीर्ति सेन द्वारा गाए भजनों का।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम संगीतिका। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग। तो भरी गुड मॉर्निंग कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त निधि वर्मा, जो बात करूंगी आपसे कुछ मनोरंजन की और साथ में सुनवाऊंगी आपको अच्छे अच्छे गाने।

आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गीतों भरे गुड मॉर्निंग और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त निधि। तो दोस्तों एक बात बताइए, इस समय आप कहाँ हैं? जहां तक उम्मीद है कि कुछ लोग तो अभी बिस्तर में पड़े होंगे, कुछ लोग चाय की चुस्की ले रहे होंगे, कुछ लोग नाइट शिफ्ट करके अपने घर वापस लौट रहे होंगे और कुछ लोग अपने ऑफिस जा रहे होंगे, क्योंकि सबके डेली के अपने अपने काम हैं, कुछ लोगों की अपनी जिम्मेदारियां हैं और कुछ लोग अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए जाते हैं। तो मेरा एक सवाल था आप लोगों से, क्या इन सबके बीच आपको लगता है कि हम अपनी जिंदगी को कैसे जी रहे हैं? मतलब काम अपनी जगह है पर हमारी जिंदगी क्या है? काम के साथ साथ हम अपनी जिंदगी को जी पा रहे हैं या सिर्फ बस काम ही कर रहे हैं? तो आप लोग इस बारे में क्या सोच रहे हैं हमें जरूर बताइएगा। तो तब तक सुन लेते हैं एक और गीत और इसके बाद हम इस ही विषय पर थोड़ी बहुत और बातें करेंगे।

गाने से पहले मैंने आपसे एक बात पूछी थी कि क्या हम सब अपनी जिंदगी जी रहे हैं? हम सब जी तो रहे हैं, पर क्या सच में अपनी जिंदगी जी रहे हैं? हम कैलेंडर के पन्ने हर महीने बदलते हैं, हम ईएमआई भी भरते हैं, हम इंस्टाग्राम भी स्क्रॉल करते हैं रात दिन, पर क्या ये हमारी जिंदगी है? तो आज हम इसी टॉपिक पर बात कर रहे हैं। तो मैं अगर अपनी बात करूं तो मैंने अपनी जिंदगी में, आरजे की लाइफ में, 14 साल में मैंने एक चीज सीखी है कि जिंदगी जीने के लिए कोई किताब नहीं है, पर कुछ छोटे छोटे से नियम है जिनको अगर हम अपनी जिंदगी में अपनाएं तो अपनी जिंदगी को थोड़ा सा आसान बना सकते हैं। एक सबसे पहले होता है कि हमें तुलना बंद करना, मतलब कि हमारी जो जिंदगी है उसको ऊपर वाले को शुक्रिया करना और किसी दूसरे से अपनी तुलना बंद करना। क्योंकि जब हम कुछ अच्छा देखते हैं तो कभी कभी हमारे मन में आता है ये हमारे पास क्यों नहीं है, ऐसा हमारे पास भी होना चाहिए, हमारी सैलरी इतनी होनी चाहिए। तो बस वही होता है ना कि कभी कभी इन सब बातों को जब हम देखते हैं और ज्यादा सोचने लगते हैं अगर, तो वो हमारे ऊपर ही हावी हो जाती हैं। तो हमें ये सब नहीं करना है और रोज सुबह उठकर सिर्फ ऊपर वाले को थैंक यू बोलना है और ये बोलना है कि ऊपर वाले ने हमें अच्छी एक दिन दिया है, हमारे हमें चाय गर्म दी है, हमारे पास कोई है जो हमारी बातों को सुन सकता है, हमारी सांसें चल रही हैं। इतना सोचने के बाद आप सभी देखना कि हमें लगेगा कि हाँ सच में आज का दिन हमारे लिए बहुत अच्छा है। अब बात करते हैं दूसरे नियम की कि कल की फिक्र करना। तो कल की फिक्र नहीं करनी है, आज का जिक्र करना है। तो हमें कल के लिए रोना नहीं है, आने वाले कल के लिए डरना नहीं है। जो है जिंदगी जैसी चल रही है, जिंदगी कभी कल में नहीं होती है, वो हमेशा अभी है, इसी पल में है। इसलिए सबसे पहले हमें सिर्फ इतना ही सोचना है कि जो भी दिन है वो आज है, इसलिए आपको जो दिन मिला है उसको भरपूर जियो, खुशी से जियो और ऊपर वाले का शुक्रिया करो और जो आपके आसपास हैं उनको खुश रखो और उनके साथ खुश रखो।

आज हम कार्यक्रम में बात कर रहे हैं कि अपनी जिंदगी में हम ऐसे कैसे नियम अपनाएं जिससे कि हम अपनी जिंदगी को थोड़ा आसान बना सकते हैं। तो एक बात जरूर है कि सेल्फिश बनना गलत नहीं है, पर सेल्फ सेंटर्ड बनना गलत है। दिन में एक बार किसी एक अनजान को बिना मतलब के हेल्प करके देखो, किसी को लिफ्ट दे के देखो या किसी बुजुर्ग को सड़क पार करा कर देखो, जो सुकून मिलता है ना वो किसी कैफे की कॉफी में नहीं मिलेगा। इस बात पर एक शायरी याद आई है कि कुछ देर तो जी लेने दो, कुछ देर तो जी लेने दो इस शाम को ये जिंदगी, फिर कल तो आना ही है हिसाब लेने के लिए, है ना। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो अपने जिंदगी में आप लोग अपनाएं। और एक छोटी सी शॉर्ट सी स्टोरी हम आपको बताना चाहते हैं कि एक आदमी था, वो रोज भगवान से कहता था, भगवान मुझे खुशी दे दो, भगवान मुझे खुशी दे दो। भगवान रोज कहता, खुशी के पास नहीं तेरे पास है, बस उन्हें अलमारी में कहीं छुपा रखी है, उसको निकाल लो तो दोस्तों आपकी खुशी की चाबी किसी और की जेब में नहीं बल्कि आपकी ही जेब में है। तो अपना ध्यान रखें और हर पल को जीना सीखें।

तो दोस्तों, जिंदगी परफेक्ट नहीं होती, कभी भी नहीं होती। उसमें ट्रैफिक होगा, बिल होंगे, दिल टूटेगा, लोग छोड़कर जाएंगे, पर इसी टूटी फूटी इनपरफेक्ट जिंदगी में ही तो असली सुंदरता है। तो आज से एक वादा करो कि खुद से रोज हंसना है, खुल के रोज थोड़ा रो भी लेना है अगर मन करे तो, और रोज किसी एक पल को बिना फोटो खींचे सिर्फ आंखों से जी लेना है। तो मैं हूँ आपकी आरजे निधि और आपसे बहुत जल्दी मिलूंगी कल अपने प्रोग्राम में। इसके साथ ही इस गाने के साथ खत्म करती हूँ अपना प्रोग्राम गीतों भरी गुड मॉर्निंग को। तो एंजॉय कीजिए ये वाला गीत।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पहमला आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल आज असम के डिब्रूगढ़ से पहले अंतर्राष्ट्रीय मालवाहक पोत को रवाना करेंगे। मौसम विभाग ने आज कर्नाटका, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज वर्षा की चेतावनी जारी की। भारत और कनाडा प्रस्तावित व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर बातचीत का पांचवा दौर आज से ओटावा में शुरू करेंगे। फ्लाई दुबई फ्लाइट के ओमानी सह पायलट ने विमान अपहरण की साजिश नाकाम होने के बाद उसे सऊदी अरब के रेगिस्तान में गिराने की कोशिश की थी। और भारत ने जापान एशियाई खेलों में क्रिकेट, हॉकी और कबड्डी में स्वर्ण के साथ

0: इस वर्ष फरवरी में स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति ने नई दिल्ली में आयोजित एआई इंपैक्ट समिट में भाग लेने के लिए भारत का दौरा किया था। इस यात्रा का महत्व इस दृष्टि से और बढ़ जाता है कि वह इस महीने की 7 तारीख को दूसरे भारत ईएफटीए प्रॉस्पेरिटी समिट में भाग लेंगे। यह शिखर सम्मेलन भारत ईएफटीए व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के लागू होने की पहली वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है। ईएफटीए देशों में स्विट्जरलैंड भारत का सबसे बड़ा व्यापार और निवेश साझेदार है। भारत और स्विट्जरलैंड के बीच दीर्घकालिक मैत्रीपूर्ण संबंध है। राष्ट्रपति की इस यात्रा से द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे, साथ ही आपसी हित के नए क्षेत्रों में सहयोग को भी बढ़ावा मिलेगा। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति पहामला आज शाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर भी राष्ट्रपति पहामला से मुलाकात करेंगे। केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल आज असम के डिब्रूगढ़ से पहले अंतर्राष्ट्रीय मालवाहक पोत को रवाना करेंगे। इस अवसर पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व सरमा भी वर्चुअल माध्यम से शामिल होंगे।
2: आज इस मालवाहक यात्रा के शुभारंभ के साथ ही डिब्रूगढ़ एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग व्यापार केंद्र के रूप में अपनी स्वतंत्रता पूर्व विरासत को पुनर्स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाएगा। 8 दशकों से अधिक समय के बाद पहली बार असम से किसी विदेशी बंदरगाह के लिए सीधे एक अंतर्राष्ट्रीय माल खेप रवाना की जाएगी। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल आज सुबह 11 बजे इस कार्गो यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। पहली खेप में नामरूप स्थित असम पेट्रोकेमिकल लिमिटेड द्वारा उत्पादित 1080 टन मिथेनॉल भेजा जा रहा है। 2 नवीनीकृत मालवाहक पोत इस खेप को बांग्लादेश के ढाका स्थित पंगाव बंदरगाह तक पहुंचाएंगे। डिब्रूगढ़ से जादव गोगोई के साथ राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: मौसम विभाग ने आज कर्नाटका, केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है। अगले 2 दिन महाराष्ट्र के मराठवाड़ा और विदर्भ के ज्यादातर हिस्सों तथा छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों से दक्षिण पश्चिम मॉनसून की वापसी के लिए स्थितियां अनुकूल होने की संभावना है। उत्तराखंड, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल के गंगई क्षेत्र और लक्षद्वीप में आंधी तूफान के साथ बारिश और बिजली चमकने का अनुमान है। आज नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी मौसम के ऐसा ही रहने की उम्मीद है। उधर उत्तर प्रदेश में गोमती नदी का जलस्तर बढ़ने के बीच लखनऊ जिला प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य तेज कर दिए हैं। गोमती नदी के निचले इलाकों में लखनऊ शहर के कुछ हिस्सों में बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर जिलाधिकारी और संयुक्त पुलिस आयुक्त ने प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया। प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने के लिए तत्काल 10 नाव तैनात करने के निर्देश दिए गए हैं। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
3: दांत खाज खुजली में आराम, पानी रहे बेदाग, जालिम लोशन।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र, निरंतर प्रतिबद्धता और सुशासन से प्रेरित सरकार वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। हमारी विशेष श्रृंखला में आज बात एक जिला एक उत्पाद पहल की।
4: मिजोरम के अधिकारियों ने बताया है कि लुंगलेई जिले में केले की खेती करने वालों ने केंद्र की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के तहत केले से बने उत्पादों से लगभग 3,78,00,000 रुपए कमाए हैं। लुंगलेई के लिए केले को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट उत्पाद के तौर पर चुना गया है। राज्य सरकार इसकी खेती को बढ़ावा दे रही है और केले से चिप्स, जूस और खाने की दूसरी चीजें बनाने के लिए प्रोसेसिंग को भी बढ़ावा दे रही है। लुंगलेई की उपायुक्त नवनीत मान ने बताया कि केले की फसल को तब चुना गया जब जिला प्रशासन ने बागवानी विभाग के साथ मिलकर जिले की खेती की क्षमता का अध्ययन किया और पाया कि इस इलाके में केले की अच्छी पैदावार होती है।
5: हमारे जिले में केले की खेती की बहुत संभावना है। इसे और आगे बढ़ाने के लिए हमने ऐसे नए उद्यमियों और छोटे व्यवसायों को बढ़ावा देना शुरू किया है जो केले से बनी चीजों जैसे केले का जूस, चिप्स और केले के फूल में मूल्य संवर्धन का काम कर रहे हैं। हम उन्हें ट्रेनिंग, मार्केटिंग और पैकेजिंग में भी मदद दे रहे हैं।
4: उपायुक्त ने यह भी कहा कि प्रशासन किसानों को केले से बने उत्पाद बेचने में मदद करने के लिए बड़े

0: सरकारी कार्यक्रमों में स्टॉल भी लगाता है। फिलहाल उमरई जिले के लगभग 17 गांवों में केले की खेती हो रही है, जिसमें करीब 300 से 400 परिवार शामिल हैं। आइजोल से आइजक जोरमसांगा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं सिद्धार्थ सिंह।
1: भारत और कनाडा आज से ओटावा में प्रस्तावित व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA पर बातचीत का पांचवा दौर शुरू करेंगे। दोनों देश इस व्यापार समझौते को दिसंबर तक अंतिम रूप देना चाहते हैं। 5 दिन की वार्ता 9 अक्टूबर तक चलेगी। चौथे दौर की वार्ता 18 सितंबर को नई दिल्ली में हुई थी। इस वर्ष मार्च में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने इस समझौते को दिसंबर तक अंतिम रूप देने का लक्ष्य रखा था। इटली के अखबार कुरियेरे देला सेरा की रिपोर्ट के अनुसार फ्लाई दुबई विमान के ओमानी सह पायलट ने विमान के अपहरण की साजिश नाकाम होने के बाद उसे सऊदी अरब के रेगिस्तान में गिराने का प्रयास किया। रिपोर्ट में इजरायली खुफिया सूत्रों के हवाले से दावा किया गया कि अल हमामी की मूल साजिश कैप्टन स्मिथ मच्छर की हत्या कर विमान को इजरायल के तल अवीव ले जाकर वहां किसी गगनचुंबी इमारत से टकराने की थी। उसने ऑटो पायलट बंद कर विमान का नियंत्रण अपने हाथ में लिया। करीब 30 सेकंड में विमान 16,000 फीट नीचे आ गया और जमीन से टकराने की स्थिति में पहुंच गया। उसने विमान के नियंत्रण तंत्र को नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश की, लेकिन यात्रियों ने उसे काबू कर लिया। इजरायल ने इस घटना को आतंकवादी हमला बताया और इस बात की जांच कर रहा है कि ओमान के पायलट को तल अवीव जाने की अनुमति कैसे मिली, जबकि इजरायल और ओमान के बीच राजनयिक संबंध नहीं है और इजरायल की सुरक्षा नीति के तहत इस तरह की उड़ान की अनुमति नहीं है। समाचार कक्ष से मैं पूजा। एशियाई खेल जापान के नागोया में संपन्न हो गए हैं। इस दौरान 2030 के एशियाई खेलों के मेजबान कतर को खेलों की मशाल और ध्वज सौंपे गए। भारत 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य सहित 85 पदक के साथ तालिका में चौथे स्थान पर रहा।
2: एथलेटिक्स भारतीय अभियान का सबसे शानदार पहलू रहा। यहाँ भारतीय खिलाड़ियों ने सबसे अधिक 24 पदक जीते। मुक्केबाजी में भी भारत ने 3 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। भारतीय पुरुष और महिला क्रिकेट टीमों ने स्वर्ण पदक जीता। पुरुष और महिला कबड्डी में भी स्वर्ण पदक हासिल किए। भारतीय महिला हॉकी टीम ने 44 साल का इंतजार खत्म करते हुए एशियन गेम्स का खिताब अपने नाम किया। कुमकुम महोद एशियन गेम्स में व्यक्तिगत रिकर्व स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप स्पर्धा में प्रतियोगिता का पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता। सावन बरवाल ने मैराथन में 1982 के बाद भारत को पहला पदक दिलाया। सुचिका तरियाल ने मिक्स मार्शल आर्ट्स और जयमीना ने सॉफ्ट टेनिस में देश को पहली बार पदक दिलाया। मीराबाई चानू ने महिलाओं के 49 किलो भार वर्ग में रजत पदक जीता। समाचार कक्ष से शशांक कुमार।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने एशियाई खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए भारतीय खिलाड़ियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में दिव्यांगजनों, विशेष रूप से IED विस्फोटों से प्रभावित लोगों को कृत्रिम अंग और सहायक उपकरण उपलब्ध कराने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने विशेष प्रयास किए हैं।
3: बस्तर के नक्सल मुक्त होने के बाद इन विस्फोटों में अपने महत्वपूर्ण अंग गंवा चुके दिव्यांग लोगों को कृत्रिम अंग और सहायक उपकरण उपलब्ध कराने के लिए जगदलपुर में 5 से 7 अक्टूबर तक और दंतेवाड़ा में 15 से 17 अक्टूबर तक निशुल्क शिविर लगाए जा रहे हैं। दिव्यांग जनों के लिए शिविर स्थल पर आने जाने के लिए निशुल्क परिवहन के साथ भोजन की व्यवस्था भी की जा रही है। आकाशवाणी समाचार रायपुर।
1: कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह आज नई दिल्ली में 17वीं पेंशन अदालत की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान 80 वर्ष से अधिक उम्र के यानी सुपर सीनियर पेंशन भोगियों और पारिवारिक पेंशन भोगियों की 897 दीर्घकालिक शिकायतों का समाधान किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज रानी दुर्गावती की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि रानी दुर्गावती ने अपनी प्रजा के कल्याण और समृद्धि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। उन्होंने जनहित के कार्यों को भी बढ़ावा दिया। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय युवा मंच माय भारत के माध्यम से कल देशभर में 150 से अधिक स्थानों पर नशा मुक्त युवा के लिए नशा मुक्त मार्च का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में 1,00,000 से अधिक युवाओं और नागरिकों ने भाग लिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए एक्सपर्ट

0: IR News Hindi को फॉलो करें और हमारे WhatsApp चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़े।
1: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
2: धन्यवाद प्रियंका। भारत द्वारा रूस यूक्रेन युद्ध समाप्त करने को लेकर किए जा रहे प्रयासों के बारे में विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर के बयान को जनसत्ता सहित अधिकांश अखबारों ने प्रमुखता दी है। बकौल दैनिक जागरण, विदेश मंत्री ने कहा हाल में भारत सिर्फ पैरवी करने से परे जाकर थोड़ा और अधिक जुड़ा है। जीएसटी में गिरफ्तारी के अधिकार पर लगाम, नवभारत टाइम्स और राजस्थान पत्रिका ने बताया है कि जीएसटी परिषद की इस सप्ताह बैठक में कर अधिकारियों से गिरफ्तारी का अधिकार वापस लिया जा सकता है और किसी भी गिरफ्तारी के लिए अदालत की मंजूरी को अनिवार्य किया जा सकता है। भारत 20 और देशों में डिफेंस विंग स्थापित करेगा, बढ़ेगा रक्षा निर्यात। हिन्दुस्तान ने लिखा है इससे भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता समेत विभिन्न वैश्विक मंचों पर समर्थन जुटाने में मदद मिलेगी। कैप्टन स्मिथ दुनिया के हीरो, प्रधानमंत्री मोदी संग इसराइल आमंत्रित। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू की भारतीय पायलट स्मिथ से फोन पर की गई बात और सराहना को दैनिक जागरण ने प्रकाशित किया है। उधर दैनिक भास्कर ने कैप्टन स्मिथ पर हमला करने वाले को पायलट के बयान को दिया है। को पायलट ने कबूला, विमान क्रैश कराना चाहता था। जापान में संपन्न एशियाई खेलों में भारत के उत्कृष्ट प्रदर्शन पर अमर उजाला की सुर्खी है, भारत के 21 स्वर्ण पदकों में से 14 में रही बेटियों की भागीदारी, 24 साल बाद बेटों से आगे रही। दैनिक भास्कर की ये खबर ध्यान खींचती है, गुजरात के महसाणा जिले में पेंशन के पैसों से 75 वर्षीय दिनेश भाई और उनकी पत्नी देवेंद्रा बेन ने रेगिस्तान में तैयार किया जंगल। 5 बीघे में 5,000 से ज्यादा पेड़, हजारों परिंदों का घर बना।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति कामला आज ने दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता करेंगे।

पुडुचेरी में तेज बारिश की चेतावनी जारी की। भारत और कनाडा प्रस्तावित व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर बातचीत का पांचवा दौर आज से ओटावा में शुरू करेंगे। फ्लाई दुबई फ्लाइट के ओमानी सह पायलट ने विमान अपहरण की साजिश नाकाम होने के बाद उसे सऊदी अरब के रेगिस्तान में गिराने की कोशिश की थी।

0: कोशिश किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अवामी खिदमत के 25 साल मुकम्मल कर रहे हैं। जन सेवा से देश सेवा के मंत्र और पुख्ता अयन के साथ ये सफर आगे बढ़ा है और ये सिलसिला आज भी जारी है। सेवा और सुशासन के उनके नजरिए से रहनुमाई हासिल करते हुए सरकार 2047 तक विकसित भारत के मकसद को हासिल करने की समत लगातार काम कर रही है। जामे तरक्की और समाजी एतबार से बाख्तियार बनाए जाने से इस पुख्ता अजम के जरिए लोगों की जिंदगी बदल रही है। अपनी खसूसी सीरीज में आज हम अपने आइजोल के नामा निगार की एक रिपोर्ट लेकर आए हैं जो मरकज की एक जिला एक प्रोडक्ट ODOP पहल के बारे में है।
1: मिजोरम के लोंगलाई जिले में केले के काश्तकार मरकज की एक जिला एक प्रोडक्ट ODOP पहल के तहत केले से बनाई गई मसनूआत से तकरीबन 3,78,00,000 रूपये की आमदनी कर रहे हैं। ये जानकारी अफसरान ने दी है। केले को इस जिले की ODOP प्रोडक्ट के तौर पर चुना गया है। रियासती सरकार केले की काश्त को फरोग दे रही है जिसके लिए इसे चिप्स, रस और दीगर खुर्दनी अशिया जैसी मसनूआत में बदला जाता है। मुंबई की डिप्टी कमिश्नर नवनीत मान ने बताया कि केले की फसल को बागबानी के महकमे के साथ सलाह मशवरे के बाद चुना गया है क्योंकि ये इस इलाके में तेजी से उगता है। केले की काश्त फिलहाल लुंगलई जिले के तकरीबन 17 गांवों में की जा रही है जिसे 300 से 400 घर वाबस्ता हैं। आइजोल से इजाक जोरम संगा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कौनैन हैदर।
0: भारत और कनाडा आज से ओटावा में जामे इक्तसादी शराकत दारी के अपने मुजवजा माहदे सीपा के बारे में पांचवें दौर के मुजाकरात शुरू करेंगे क्योंकि दोनों मुल्कों का मकसद इस तजारती माहदे को 2026 के अवाखिर तक मुकम्मल कर लेना है। दोनों मुल्कों के आला मुजाकरातकारों की क्यादत में ये पांच रोजा मुजाकरात इस महीने की 9 तारीख तक जारी रहेंगे। गुज़श्ता दौर की बातचीत में नई दिल्ली में पिछले महीने 18 तारीख को मुकम्मल हुई थी जिसके तहत अफसरान एक कतई माहदे की जानिब तेज तर पेशरफ पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं। इस साल मार्च में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और कनाडा के उनके हम मनसब मार्क कार्नी ने तय किया था कि दोनों मुल्कों के दरमियान सीपा मुजाकरात साल के आखिर तक मुकम्मल कर लिए जाएं। इसके अलावा नई दिल्ली में अपनी मीटिंग के दौरान तवानाई और अमन मादनियात के शोबों में दोतरफा तालमेल में गहराई लाने से भी इत्तेफाक किया था। वजीर खारजा डॉ एस जयशंकर ने जोर देकर कहा है कि रूस ऐसा मुल्क है जिसने ऐसे कई मौकों पर भारत का साथ दिया है जब भारत की सिक्योरिटी और इलाकाई सालमियत को खतरा लायक था। नई दिल्ली में 62वें म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में इजहार ख्याल करते हुए वजीर खारजा ने जोर देकर कहा कि एक ऐसे वक्त कि जब दुनिया के बेशतर मुल्कों ने भारत के पड़ोस में फौजी सरकार की हिमायत करने को तरजीह दी, रूस ऐसा मुल्क है जिसके साथ भारत के ताल्लुक बहुत अच्छे रहे हैं। डॉ जयशंकर ने रूस और यूक्रेन की लड़ाई को अफसोसनाक करार देते हुए कहा कि भारत का मौकफ बहुत वाजे रहा है और वो इस टकराव के खात्मे का ख्वाहिशमंद है। डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत का ये मानना है कि इसके लिए मुजाकरात और सिफारतकारी की जरूरत है। इटली के एक अखबार कुरियर देला सेरा ने इसराइल की सुराग रसानी का हवाला देते हुए बताया है कि फ्लाई दुबई की परवाज के ओमानी साथी पायलट ने जहाज अगवा करने की कोशिश को नाकाम बनाए जाने के बाद सऊदी सेना में इस जहाज को तबाह करने की कोशिश की थी। रिपोर्ट में बताया गया है कि साथी पायलट हमाम अल हमामी ने भारतीय पायलट कैप्टन स्मिथ मच्छर पर हमला किया और तैयारे पर कंट्रोल हासिल करने की कोशिश की। इजामे को उसने इसराइल के तेल अबीब शहर में तैयारे को एक इमारत से टकराने का मंसूबा बनाया था। अखबार के मुताबिक हमामी ने महसूस किया कि उसका असल मंसूबा पूरा नहीं हो सकेगा लिहाजा उसने इस तैयारे को सेहरा में तबाह करने का फैसला किया। उसने ऑटो पायलट निजाम को बंद कर दिया और कंट्रोल स्टिक को दबा दिया। 30 सेकंड के अंदर अंदर यह तैयारा 16,000 फुट नीचे आ गया और जमीन की तरफ बढ़ने लगा। अल हमामी ने तैयारे के कंट्रोल निजाम को भी तबाह करने की कोशिश की जिसके बाद मुसाफिरों ने इसे दबोच लिया। एक मुसाफिर यानी हयून ने कंट्रोल स्टिक को पीछे की तरफ खींच लिया और तैयारे को तबाह होने से बचाने में मदद की। दो पायलट जो ड्यूटी पर नहीं थे उन्होंने बाद में तैयारे को कंट्रोल किया और इसे हिफाजत के साथ जमीन पर उतार दिया। कैप्टन स्मिथ मच्छर को अस्पताल ले जाया गया और हमामी को सऊदी हुकाम के हवाले कर दिया गया। इसराइल ने इस वाकये को एक दहशतगर्दाना हमला करार दिया है और वो इस बात की तहकीक कर रहा है कि किस तरह ओमान के इस पायलट को तेल अबीब जाने वाली परवाज के लिए मंजूरी दी गई। भारतीय मौसमियात महकमे ने आज कर्नाटक, केरला, माहे, तमिलनाडु और पुडुचेरी और कराईकल में तेज बारिश की पेशगोई की है। इधर अगले 2 दिन के दौरान मराठवाड़ा और विदर्भ के बेशतर हिस्सों और

0: और छत्तीसगढ़ के कुछ और हिस्सों से जून बगलवी मानसून के मजीद पीछे हटने का इम्कान है। मौसमियात महकमे ने उत्तराखंड, तेलंगाना, मगरबी बंगाल के जैली हिमालयी खत्ते और लक्षद्वीप में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी आज इसी तरह का मौसम का इम्कान है। जापान के आईची नगोया शहर में 2026 के एशियाई खेल कल इख्तिताम हो गए। भारत मजमूई तौर पर 85 तमगे जीतकर चौथे मुकाम पर रहा। इनमें सोने के 21, चांदी के 27 और कांसे के 37 तमगे शामिल हैं। भारत ने मर्दों और खवातीन की क्रिकेट, कबड्डी और हॉकी में शानदार जीत हासिल की। क्रिकेट में भारत ने फिर से दोनों टाइटल जीते। फाइनल में खवातीन टीम ने श्रीलंका को 147 रन से हराया, जबकि मर्दों की टीम ने पाकिस्तान को 19 रन से शिकस्त दी। कबड्डी में खवातीन की टीम ने ईरान को 34 के मुकाबले 37 पॉइंट से हराकर अपना टाइटल बरकरार रखा, जबकि मर्दों की टीम ने भी ईरान की 34 के मुकाबले 40 पॉइंट से शिकस्त दी। हॉकी में भारतीय खवातीन टीम ने फाइनल में चीन को 1-0 से हराया। इस तरह 44 साल बाद भारत ने एशियाई खेलों में खवातीन हॉकी में सोने का तमगा जीता। मर्दों की टीम ने मलेशिया को 1-5 गोल से हराकर फिर से टाइटल हासिल कर लिया। ये थी खबरें, अब अखबार के आईने के साथ हैं कुलैन।
1: शुक्रिया असलम। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के उर्दू अखबार की शेयर सुर्खियां एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। रोजनामा प्रताप ने वजारत खारजा की मुशावरती कमेटी के इनकाज से मुतालिक खबर को अपने पहले सफे की बड़ी खबर के तौर पर पेश किया है। अखबार ने वजीर खारजा एस जे शंकर के इस तबसरे को नुमाया किया है कि भारत बैरूनी दबाव के बावजूद रूस के साथ अपने ताल्लुकात बरकरार रखने के लिए पुरअज़्म है। बीजेपी की तरफ से राज्यसभा के लिए दो उम्मीदवारों का ऐलान किए जाने की खबर को रोजनामा इनकलाब ने अहमियत के साथ शाये किया है। गुज़श्ता हफ्ते घरेलू थोक अजनास के बाजारों में चीनी और चावल की कीमतों में कमी रिकॉर्ड की गई। इस खबर को रोजनामा इनकलाब और प्रताप समेत कई दीगर अखबारात ने अहमियत के साथ शाये किया है। जापान के आईची नागोया शहर में 20वें एशियाई खेलों के एक रंगारंग तकरीब के साथ अख्तिताम पजीर होने से मुतालिक खबरों को आज के अखबारात ने नुमाया तौर पर पेश किया है।
0: और आखिर में खास खास खबर एक बार फिर, वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में स्विट्जरलैंड के सर गाई परमरिन के साथ बातचीत करेंगे। मरकजी वजीर सर्बानंद सोनोवाल आज सुबह आसाम में डिब्रूगढ़ से पहले बैन अलावी माल बाजार बहरी जहाज को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। भारत और कनाडा आज ओटावा में जामी इकतसादी साझेदारी से मुतालिक मुजवजा समझौते के लिए 5वें दौर की बातचीत शुरू करेंगे। इत्तलात में कहा गया है कि फ्लाई दुबई परवास के ओमान से ताल्लुक रखने वाले मुआविन पायलट ने हवाई जहाज को अगवा करने की कोशिश नाकाम बनाए जाने के बाद इसे सऊदी अरब के रेगिस्तानी इलाके में गिराने की कोशिश की थी। भारतीय मौसमियात महकमे ने आज कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु और पुडुचेरी में तेज बारिश की पेशगोई की है। और जापान में 2026 के एशियाई खेलों में भारत ने क्रिकेट, हॉकी और कबड्डी में सोने के तमगों समेत मजमू तौर पर 85 तमगे हासिल किए। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं आइए अब सुनते हैं हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वरगंगा, जिसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे ममता त्रिपाठी द्वारा ध्रुपद गायन राग रहेगा कोमल ऋषभ आसावरी।

फिल्म जग्गा जासूस के लिए रवि बर्मन को श्रेष्ठ सिनेमेटोग्राफी का फिल्म फेयर पुरस्कार का नामांकन प्राप्त हुआ था। आइए सुनते हैं उस फिल्म का एक गीत।

0: अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम आज सवेरे, ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। मीडियम वेव्स 1071 किलो हर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और डीडीपी डिश पर हमारी नशा जारी है। सबके 9:50 हुआ चाहते हैं, अब खबरें नशे की जाएंगी।
1: ये आकाशवाणी है, अब आप मोहम्मद कौनैन हैदर से खबरें सुनिए। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में स्विट्जरलैंड के सदर गाय परमलिन के साथ बातचीत करेंगे। मरकजी वजीर सर्बानंद सोनोवाल आज सुबह आसाम में डिब्रूगढ़ से पहले बैन अल-अक़वामी मालबरदारी बहरी जहाज को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। भारत और कनाडा आज ओटावा में जामे इक्तिसादी साझेदारी से मुतालिक मुजवजा समझौते के लिए पांचवें दौर की बातचीत शुरू करेंगे। इत्तलात में कहा गया है कि फ्लाई दुबई परवाज के ओमान से ताल्लुक रखने वाले मुआविन पायलट ने हवाई जहाज को अगवा करने की कोशिश नाकाम होने के बाद इसे सऊदी अरब के रेगिस्तानी इलाके में गिराने की कोशिश की थी। भारतीय मौसमियात महकमे ने आज कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज बारिश होने की पेशगोई की है। और जापान में 2026 के एशियाई खेलों में भारत ने क्रिकेट, हॉकी और कबड्डी में सोने के तमगों समेत मजमूई तौर पर 85 तमगे जीते। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के सदर गाय परमलिन आज नई दिल्ली में दो तरफा मुजाकिरात करेंगे। सदर परमलिन भारत के 3 रोजा सरकारी दौरे पर रहेंगे। उनके हमरा सीनियर अफसरान और सरकर्दा ताजरों पर मुश्तमिल आला सतह का एक वफ्द भी है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी और सदर परमलिन मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा तआवुन में की गई पेशरफ्त का जायजा लेंगे, जिनमें तिजारत और सरमायाकारी, साइंस और टेक्नोलॉजी, इख्तिरा, नकलो हमल, सकाफत और अवाम से अवाम के दरमियान राबते भी शामिल हैं। दोनों रहनुमा कसीर मुल्की फोरमों में तआवुन समेत इलाकाई और आलमी हालात व वाकयात पर भी तबादले ख्याल करेंगे। स्विट्जरलैंड के सदर इससे पहले इस साल फरवरी में नई दिल्ली में AI के असरात से मुतालिक सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए भारत आए थे। उनका यह दौरा इसलिए अहमियत का हामिल है कि वह इस महीने की 7 तारीख को मुनाकिद होने वाली दूसरी इंडिया FTA खुशहाली सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। एफ्टा मुल्कों में स्विट्जरलैंड सरमायाकारी और तिजारत में भारत का सबसे बड़ा शराकत दार है। दोनों मुल्कों के तवील अरसे से दोस्ताना ताल्लुकात हैं। इस दौरे से दो तरफा ताल्लुकात में मजीद मजबूती आएगी, लगातार आला सतह के तबादलों में इजाफा होगा और बाहमी मफाद के नए शोबों में तआवुन में वसअत पैदा होगी। बंदरगाहों, जहाजरानी और आबी गुजरगाहों के मरकजी वजीर सर्बानंद सोनोवाल आज आसाम के शहर डिब्रूगढ़ से पहले बैन अल-अक़वामी माल बरदार जहाज को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। आसाम के वजीर आला हेमंत बिस्वा सरमा भी बोगीबील टर्मिनल पर मुनाकिद होने वाली इस तकरीब में वर्चुअल वसीले से शिरकत करेंगे। आज इस जहाज को झंडी दिखाकर रवाना किए जाने के साथ ही डिब्रूगढ़ की आजादी से पहले की विरासत बहाल हो जाएगी। डिब्रूगढ़ की यह विरासत अंदरून मुल्क इस आबी गुजरगाह के तिजारती मरकज के तौर पर है। मरकजी वजीर सर्बानंद सोनोवाल इस जहाज को आज सुबह 11 बजे झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। जहाज के इस पहले दौरे में 1,080 टन मेथनॉल पहुंचाया जाएगा। यह मेथनॉल नाम रूप में आसाम पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड ने तैयार किया है। दो माल बरदार जहाज जिनकी जदीदकारी की गई है, ये सामान बांग्लादेश के शहर ढाका में पनगांव बंदरगाह लेकर जाएंगे। मगरबी बंगाल सरकार फजाई कनेक्टिविटी को मुस्तहकम बनाने की समत बड़ा कदम उठाने वाली है। रियासत में 4 नए हवाई अड्डों की तामीर के लिए रियासती सरकार आज मरकज के साथ एक मुफाहमत नामे पर दस्तखत करेगी। इलाकाई कनेक्टिविटी की मरकज की स्कीम के तहत ये मुजवजा हवाई अड्डे परोलिया में, चर्रा पश्चिम मिदनीपुर में, कलाईकुंडा जनूबी दिनाजपुर में, बालूरघाट और अलीपुर द्वार में हसीमरा के मकाम पर तामीर किए जाएंगे। आज कोलकाता में रियासत के वजीर आला शुभेंदु अधिकारी, शहरी हवाबाजी के मरकजी वजीर राम मोहन नायडू और भारत की एयरपोर्ट अथॉरिटी के नुमाइंदों की मौजूदगी में سمجھوتے پر دستخط کیے جائیں گے. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. بھارت اور کینیڈا آج سے اوٹاوا میں جامع اقتصادی شراکت داری کے اپنے مجوزہ معاہدے سیپا کے بارے میں پانچویں دور کے مذاکرات شروع کریں گے، کیونکہ دونوں ملکوں کا مقصد اس تجارتی معاہدے کو 2026 کے اواخر تک مکمل کر لینا ہے. دونوں ملکوں کے اعلی مذاکرات کاروں کی قیادت میں یہ پانچ روزہ مذاکرات اس مہینے کی 9 تاریخ تک جاری رہیں گے. گزشتہ دور کی بات چیت نئی دلی میں پچھلے مہینے 18 تاریخ کو مکمل ہوئی تھی، جس کے تحت افسران ایک قطعی معاہدے کی جانب تیز تر پیش رفت پر توجہ مرکوز کر رہے ہیں. اس سال مارچ میں وزیر اعظم نریندر مودی اور کینیڈا کے ان کے ہم منصب مارک کارنی نے طے کیا تھا کہ دونوں ملکوں کے درمیان سیپا مذاکرات سال کے آخر تک مکمل کر لیے جائیں گے. اس کے علاوہ نئی دلی میں اپنی میٹنگ کے دوران توانائی اور اہم معدنیات کے شعبوں میں دو طرفہ تال میل میں گہرائی لانے سے اتفاق کیا تھا. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے زور دے کر کہا ہے کہ روس ایسا ملک ہے جس نے ایسے کئی موقعوں پر بھارت کا ساتھ دیا ہے جب بھارت کی سیکیورٹی اور علاقائی سالمیت کو خطرہ لاحق تھا. نئی دلی میں 62 میونخ سیکیورٹی کانفرنس میں اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر خارجہ نے زور دے کر کہا کہ ایسے وقت کے جب دنیا کے بیشتر ملکوں نے بھارت کے پڑوس میں فوجی سرکار کی حمایت کرنے کو ترجیح دی، روس ایسا ملک ہے جس کے ساتھ بھارت کے تعلقات بہت اچھے رہے ہیں. ڈاکٹر جے شنکر نے روس اور یوکرین کی لڑائی کو افسوسناک قرار دیتے ہوئے کہا کہ بھارت کا موقف بہت واضح رہا ہے اور وہ اس ٹکراؤ کے خاتمے کا خواہش مند ہے. ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ بھارت کا یہ ماننا ہے کہ اس کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری کی ضرورت ہے. اٹلی کے ایک اخبار کوریر ڈیلا سیراک نے اسرائیل کی سراغ رسانی کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا ہے کہ فلائی دبئی کی پرواز کے عمانی ساتھی پائلٹ نے جہاز اغوا کی کوشش کو ناکام بنائے جانے کے بعد سعودی صحرا میں اس جہاز کو تباہ کرنے کی کوشش کی تھی. رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ساتھی پائلٹ حمام الحمامی نے بھارتی پائلٹ کیپٹن اسمت مچھر پر حملہ کیا اور طیارے پر کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کی. الزام ہے کہ اس نے اسرائیل کے تل ابیب شہر میں طیارے کو ایک

0: इसे कम करना चाहता है। उसके अंदर इस एहसास का उभरना ही उसमें नया हौसला और नई रूह पैदा कर देता है, बल्कि कभी तो खुशगवार मंजर भी सामने आता है कि जिंदगी से नाउम्मीद होकर खुदकुशी का फैसला करने वाले लोगों की जब मोहब्बत भरी अयादत की जाती है तो वो मायूस लोग भी अपना फैसला बदलकर जिंदगी के साथ चलने को आमादा हो जाते हैं। लिहाजा हमें गौर करना चाहिए कि अगर अपने मसरूफ औकात में से कभी कभी कुछ वक्त बीमारों की अयादत के लिए भी निकालें, इससे अल्लाह ताला हमसे राजी होगा और अपनी नेमतों से नवाजेगा, और जिसको अल्लाह ताला की नेमतें हासिल हो जाएं तो उससे बड़ा खुश नसीब कौन हो सकता है। बीमार की अयादत का इससे भी मजीद अंदाजा लगाया जा सकता है कि पैगम्बर इस्लाम ने मरीजों की अयादत की सिर्फ तालीम ही नहीं दी बल्कि अमलन इसका इजहार भी फरमाया और खुद भी मरीजों की अयादत करके ये अमली दर्स दिया कि लोगों, मरीजों की अयादत करके उनकी दिलजोई करो और उन्हें नई जिंदगी से हमकिनार करो। आइए हम मरीजों के गमख्वार बने, उन्हें मसरतों से हमकिनार करें और उन्हें जीने का हौसला दें।
1: अभी आप सुन रहे थे अखवाल जर्रे पर मबनी शम फरोजा, ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। हमारी नशियात आप सुन रहे हैं मीडियम वेव 1071 किलो हर्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर। हुस्न गजल इस प्रोग्राम में आज समाप्त कीजिए अशोक वर्मा और फातिमा किरमानी की गई चंद गैर फिल्मी गजलें। प्रोग्राम का आगाज कर रहे हैं जिगर मुरादाबादी के इस कलाम के साथ।

हुस्न बदल प्रोग्राम में आज आप महजूज हो रहे हैं अशोक वर्मा और फातिमा किरमानी की गाई चंद गैर फिल्मी गजलों से। ये कलाम है मोमिन खां मोमिन का।

0: गर्मियों की वो गर्म तरीन दोपहर थी। हर चीज गोया आग उगल रही थी। दानियाल अहमद की पोस्टिंग अमृतसर में नई नई हुई थी, इसलिए कुछ खास काम न था। वो लंच के बाद अपने दफ्तर के बराबर वाले क्वार्टर में आराम की गरज से लेटा हुआ था कि अचानक कॉल बेल की आवाज सुनकर चौंक सा गया। इस वक्त कौन हो सकता है? फिर उसके दिमाग में आया कि हो सकता है कोई दफ्तर से आया हो किसी काम की गरज से। दानियाल ये सोचता हुआ उठा और बढ़कर दरवाजा खोल दिया। बाहर उसका चपरासी एक खातून को लिए हुए खड़ा था। दानियाल को देखते ही कहने लगा,
1: साहब
0: क्या बात है?
1: साहब ये खातून आपसे मिलने के लिए बजित थी। मैंने कहा भी कि साहब 4:30 बजे के बाद मिलेंगे, लेकिन इन्होंने जोर देकर कहा नहीं अभी मिलना है और ये आपको जानती भी है।
0: वाकिफ होने का लफ्ज सुनकर दानियाल ने वापस औरत की तरफ देखा। यकीनन ये वही औरत थी, लेकिन काफी तब्दीली आ गई थी उसमें। चेहरे पर नहायत संजीदगी, आंखों के गिर्द हल्के और दुबली पतली सी वो औरत जिसे पहली नजर में वो पहचान न सका था, वो रुशना ही थी। उसके मुंह से बेअख्तियार निकला,
2: अरे तुम यहां कैसे? साथ में और कौन कौन आया है?
0: इतने सारे

0: सवाल सुनकर जैसे वो बौखला सी गई। इससे कबल क्या जवाब देती, चपरासी बोल उठा,
1: साहब आप उन्हें जानते हैं, तो मैं जाऊं?
0: हाँ
1: तुम जाओ और कुशंभ भिजवा दो।
0: वो बिल्कुल खामोश थी। दानियाल ने उसे अंदर बुलाया। इस दौरान जैसे वो बोलने के लिए अल्फाज तलाश कर रही थी, दानियाल भी खामोश ही रहा और फ्रिज से ठंडे पानी की बोतल और ग्लास निकालकर उसे पानी दिया। उसने एक सांस में पूरा ग्लास खाली कर दिया। जब वो दूसरा ग्लास भर रही थी, दानियाल ने पूछा,
2: ये बताओ तुम यहां तक कैसे पहुंची?
3: मैं पाकिस्तान से लौट रही थी और ये महज एक इत्तेफाक है कि कस्टम के दफ्तर में मेरी निगाह तुम्हारे नाम की तख्ती पर पड़ी। पहले तो मुझे यकीन ही नहीं आया, लेकिन जब मैंने मालूमात की तो पता चला कि तुम्हारी पोस्टिंग आजकल कस्टम ऑफिसर के तौर पर यहाँ हुई है, तो मैंने सोचा तुमसे मिल लूं।
2: लेकिन ये बताओ कि तुम अकेले क्यों पाकिस्तान से लौट रही हो? तुम्हारे शौहर, घर वाले और सब लोग कहाँ हैं?
0: अभी दानियाल सवाल कर ही रहा था कि चपरासी नाश्ता ले आया।
2: लो नाश्ता कर लो।
0: वो शायद बहुत भूखी थी, तेजी से नाश्ता करने लगी। दानियाल ने रेडियो खोल लिया। अचानक गाने की आवाज कानों से टकराई।

0: वो नाश्ता कर चुकी तो दानियाल ने फिर वही सवाल दोहराए और वो एक लंबी सांस लेकर बोली,
1: दानियाल साहब, आपको तो मेरे बारे में सभी कुछ मालूम है। आज से 5 साल पहले मेरी शादी

0: मेरी खाला जात भाई से हो गई थी और मैं कराची शिफ्ट हो गई थी जहां मेरे शौहर का बहुत बड़ा बिजनेस था। उनके पास बहुत दौलत थी, नौकर चाकर थे, गाड़ियां थी और वो सब कुछ मेरे लिए भी था, लेकिन मुझे जो सुकून चाहिए था वो मुझे नहीं मिला। मेरे शौहर अक्सर बिजनेस के सिलसिले में बाहर रहते थे, उनके पास मेरे लिए जरा भी वक्त नहीं था। फिर मुझे पता चला कि वो मुझे पसंद नहीं करते, मैं सिर्फ उनकी उम्मी की पसंद थी।
1: अगर वो तुम्हें पसंद नहीं करते थे तो शादी के लिए राजी क्यों हुए?
0: वो अपनी अम्मी के बहुत फर्माबरदार थे, वो नहीं चाहते थे कि उनके इनकार से वालिदा का दिल दुखे।
1: लेकिन किसी और के दिल की उन्होंने परवाह नहीं की?
0: वो बिजनेस में है, उन्हें इससे क्या गरज।
1: फिर क्या हुआ?
0: फिर यू हुआ कि जब मैं उनसे अपने लिए वक्त निकालने को कहती तो वो यही कह देते कि देखो मेरे पास तुम्हारे लिए वक्त के अलावा सब कुछ है, मोहब्बत करने वाली माँ है, पैसा है, तुम्हें मेरी क्या जरूरत है। अब उन्हें कौन समझाता कि मेरी असल जरूरत तो वो खुद थे। फिर धीरे धीरे वक्त यूं ही गुजरता रहा और मैं आस का दिया जलाए वक्त की दहलीज पर यूं ही खड़ी रही। लेकिन शायद किस्मत मुझसे नाराज थी और ऊपर वाला भी खफा, इसलिए मेरे शौहर ने कभी सीधे मुंह से बात ही न की। मेरी खाला ये सब देखकर कुड़ती रहती और जब आदिल यानी मेरे शौहर से कुछ कहती या समझाना चाहती तो वो कोई ना कोई बहाना कर देते कि इन दिनों मसरूफियत कुछ ज्यादा है या आजकल तिजारत की परेशानियां हैं वगैरह वगैरह।
1: फिर अचानक वो बोलते बोलते रुक गई और कहीं ख्यालों में गुम हो गई, जैसे तमाम वाकयात को यकजा कर रही हो। दफ़तन कहीं दूर कोई नगमा फजा में उभरा

0: खो गई तुम रोशना। फिर क्या हुआ?
1: फिर क्या होना था, खाला जान इसी गम में अल्लाह को प्यारी हो गई और मैं तमाम दुख झेलने के लिए अकेली रह गई। मेरा दम उस बंगले में घुटने लगा। आखिर एक दिन मैंने आदिल से खुलकर बात करने का फैसला कर लिया।
0: फिर तुम्हारे शोहर ने क्या जवाब दिया?
1: आदिल शायद खुद भी मौके की तलाश में थे।

जवाब में उन्होंने वो सब कहा, वो अल्फाज जो एक औरत के गले का तौब बन जाते हैं। हसीन से हसीन औरत की जिंदगी अजीरन हो जाती है। उसने मेरी बातों के जवाब में मुझे तलाक देकर अपनी जिंदगी और अपने घर से बाहर निकाल दिया।

0: ये सब बताकर रोशना रोने लगी और उसकी हिचकियां बढ़ गईं। दानियाल ने उसे पानी लाकर दिया और निराशा देते हुए पूछा, फिर तुम हिंदुस्तान कैसे वापस आई?
1: मेरे पास जो कुछ पैसे जमा थे उनसे मैंने ट्रेन का टिकट खरीद लिया। मेरा पासपोर्ट भी वैलिड था। इस तरह मैं यहाँ पहुंच गई। ये मुल्क जो मेरा अपना है, जिसके जर्रे जर्रे ने मुझे मोहब्बत दी है।
0: वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम रहोगी कहाँ?
1: मेरी एक फुप्पी अलीगढ़ में रहती हैं। बेवा है, कोई औलाद भी नहीं है। उन्हीं के पास चली जाऊंगी, उनका सहारा मेरे लिए काफी होगा।
0: अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें वहां तक पहुंचा दूंगा। आज तो तुम यहीं रुको, कल मैं दफ्तर से छुट्टी लेकर तुम्हें साथ ले जाऊंगा। तुम बहुत थकी हुई हो, अब आराम करो, शाम को मुलाकात होगी।
1: ठीक है।
0: दानियाल रुशना को दूसरे कमरे में लिटाकर खुद अपने कमरे में आ गया। उसका जहन माजी के दरीचों से झांकने लगा। शाम धीरे धीरे आंगन में उतरने लगी और फिर रात के अंधेरे में कायनात को अपनी आगोश में ले लिया। अगले रोज दानियाल दफ्तर से छुट्टी लेकर रोशना के साथ अलीगढ़ के लिए रवाना हो जाता है। दानियाल के दिल में कुछ ढके छुपे जज्बे सर उभरने लगते हैं। काफी देर तक दोनों खामोश रहते हैं, फिर दानियाल रोशना से मुखातिब होता है। रोशना, जिंदगी बहुत सख्त और दुश्वार है, कैसे काटोगी ये पहाड़ से जिंदगी? और अभी तुम्हारी उम्र ये क्या है?
1: दानियाल साहब, मैं एक पढ़ी लिखी लड़की हूँ, थोड़ी बहुत कोशिश के बाद कहीं ना कहीं जॉब तो मिल ही जाएगी।
0: मैं एक बात कहूँ, अगर तुम इसे मेरी मतलब परस्ती पे तामीर ना करो।
1: नहीं नहीं, कहिए।
0: मैं तुम्हें अपनाना चाहता हूँ। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हारे सारे पिछले गम भुला सकूं और तुम्हें सारी दुनिया की खुशियां मैसर करा सकूं, अगर तुम हाँ कह दो तो।
1: दानियाल साहब, सोच लीजिए, मैं एक तलाकशुदा औरत हूं, कहीं ऐसा ना हो कल लोग आपसे तरह तरह की बातें करें।
0: मेरा कोई करीबी अजीज इस दुनिया में तो है नहीं, और अभी दुनिया की बात तो मुझे दुनिया से क्या लेना, मुझे सिर्फ तुम्हारी इजाजत चाहिए। रोशना होंठों पर मुस्कुराहट और आंखों में खुशी के आंसू लिए इकरार के लिए हाँ में गर्दन हिला देती है और दानियाल उसका हाथ अपने हाथ में ले लेता है। अब वो दोनों अमृतसर वापस जा रहे थे और फजाओं में नगमे की आवाज गूंज रही थी।

मोहब्बत उसे भी थी। इस उन्वान के तहत गीतों भरी कहानियां भी आप सुन रहे थे। तहरीर मोहतरमा जैनब उस्मानी की थी। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। हमारे नशात आप सुन रहे हैं मीडियम वेव 1071 किलो हर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर। मेरी पसंद प्रोग्राम के सभी सामेन को नईम का आदाब। प्रोग्राम की पहली पेशकश वीर दुर्गादास फिल्म का नगमा मुकेश और लता मंगेशकर का गाया हुआ।

0: थोड़ी थोड़ी गोरी है, थोड़ी थोड़ी काली है, छोरियां आज की है नखरे वाली है।
1: सुपरमैन फिल्म का दो गाना आप सुन रहे हैं, मोहम्मद रफी और गीता दत्त की आवाजों में। मौसीकी तरतीब दी है सरदार मलिक।
0: मुंह पे लगा है पाउडर, जुल्फे कटी कटाई, उस पे कई अदाएं, हाय रे हाय।

ओडिशा सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में, एस एन त्रिपाठी की मौसीकी में, सिंघल द्वीप की सुंदरी फिल्म का ये नाम।

जिस देश में गंगा बहती है फिल्म का ये नगमा सुन रहे थे मुकेश और लता मंगेशकर की आवाजों में। नगमा ने गाते शैलेंद्र मौसीकी शंकर जयकिशन की थी। और लीजिए सुनिए आशा भोसले की आवाज में चौधरी का चांद फिल्म का नगमा, रवि की मौसीकी में नगमा निगाह शकील, बताई उन्हें।

0: है शबनम आप ही ठंडी फिजाओं से। जा जा।
1: अरे जा जा, जा, जा।

قیامت کی نظر رکھتے ہیں لیکن تاڑنے والے جا ارے جا جا جا رے

0: اخمینی ساتھی میری پسند پروگرام اب ختم ہوتا ہے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے اور لیجیے آپ سنیے ریڈیو ڈاکٹر پروگرام کا گزشتہ شمارے کا یہ پروگرام.
1: آکاشوانی پرستت کرتا ہے وشیش فون ان کاریکرم ریڈیو ڈاکٹر.
2: नमस्कार, आज के इस रेडियो डॉक्टर कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत. मैं हूं शालिनी मित्तल और आज का कार्यक्रम किस विषय पर है जानना चाहते हैं ना आप? तो बिल्कुल, ये विषय और भी खास इसलिए क्योंकि आज एक खास दिवस है. आज है वर्ल्ड एनिमल डे. और वर्ल्ड एनिमल डे क्या होता है, क्यों मनाया जाता है और एनिमल्स क्यों हमारे लिए जरूरी है, सारी बातें कोशिश करेंगे अपने सभी श्रोताओं तक पहुंचाने के लिए. इतना बताना चाहूंगी कि वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे या विश्व पशु कल्याण दिवस हर साल 4 अक्टूबर को मनाया जाता है ताकि जानवरों के कल्याण के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके. इस दिन लोगों को जानवरों की सुरक्षा के लिए कदम उठाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके. इस दिन को विश्व पशु दिवस या विश्व पशु संरक्षण दिवस के रूप में जाना जाता है और इस दिन को पशु प्रेमी दिवस के रूप में भी कहा जाता है क्योंकि ये पशु अधिकारों को बढ़ावा देने वाले व्यक्तियों और संगठनों का समर्थन करके जानवरों के प्यार, देखभाल, स्नेह और सुरक्षा को प्रोत्साहित करता है. तो आज वर्ल्ड एनिमल डे पर हम जो काम इस कार्यक्रम के माध्यम से करना चाहते हैं वो ये करना चाहते हैं कि अपने श्रोताओं को जागरूक करें और बताएं कि जानवर भी उतना ही जीने का हक रखते हैं जितना हम लोग रखते हैं. द वर्ल्ड इज देयर होम टू, ये जो संसार है ये उनका भी घर है तो उनको भी जीने का उतना ही हक है. आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट हैं, रेडियो डॉक्टर बनकर हमारे साथ रहेंगे इस कार्यक्रम में. आपका तारुफ करा लूं, आज हमारे साथ हैं वेटनरी डॉक्टर डॉक्टर आरटी शर्मा. बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका आकाशवाणी के स्टूडियो में. और इस खास विषय पर हम चाहते हैं कि हमारे श्रोता भी पार्टिसिपेट करें और अगर वो कुछ बताना चाहते हैं जानवरों के साथ उनकी कोई ऐसी मेमोरी है या उन्होंने पाल रखा है या इससे रिलेटेड उनके जो विचार हैं, जो भी समस्या भी हो सकती है किसी की कुछ उससे रिलेटेड, वो सारी आज सॉल्व हो सकती है क्योंकि डॉक्टर साहब जानवरों को बहुत करीब से जानते हैं.
3: देखिए, आजकल की लाइफ में हम लोग इतना बिजी हो गए हैं, हम एक ऑफिस से अपने बेडरूम, बेडरूम से ऑफिस, इसमें हम सब भूल गए कि ये एनिमल भी एक इकोलॉजिकल सिस्टम के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना एक ह्यूमन बींग या प्लांट्स हैं. तो इनकी कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है एज ए कंपेनियन, बिकॉज बहुत हमारे एनिमल लवर्स हैं जो इस बात को अंडरस्टैंड करते हैं कि अगर एक एनिमल उनके घर में एज ए पेट रखा है, जैसे कोई डॉग या कैट या कोई स्क्विरल या कोई बर्ड और रैबिट जो कम्युनिकेट करते हैं, तो वो जो स्ट्रेस आपका ब्रेक करते हैं जब आप ऑफिस से आते हैं, बाहर से आते हैं, या वो लव जो विच यू लॉस्ट इन योर बिजी लाइफ, वो जो पार्ट लाइक प्ले करते हैं, मुझे लगता है वो आपको इतना डिस्ट्रेस करते हैं कि आप एकदम रिचार्ज हो जाते हो, जैसे आप अपने रात को फोन चार्ज करते हो. तो ऐसे मीन आप यू आर अगेन रेडी फॉर द वर्क एंड आप उतना पोटेंशियल ज्यादा दे पाते हो अगर इफ यू आर एनिमल लवर, इफ यू स्पेंड योर ऑफ टाइम विद योर पेट्स.

0: and communicate your stress and your happiness with your animals. ये एक बहुत बड़ा important part है, तो ecological system के लिए तो है ही है, लेकिन human की health और उसकी internal health के लिए बहुत ही important part है. कम से कम लोगों को एक message दिया जाए कि they are, don't forget them, they are the equally important part of this universe because this belongs to them also.
1: जी, बहुत अच्छी बात आपने बताई डॉक्टर साहब, और हमारे श्रोता आप समझ ही गए होंगे कि आज इस कार्यक्रम में यानी रेडियो डॉक्टर में हम आपसे क्यों बात करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत अच्छी और बहुत सही बात आपने बोली कि ह्यूमन हेल्थ इससे बहुत डायरेक्टली रिलेटेड है, क्योंकि एनिमल्स जब हमारे अराउंड रहते हैं, एक तो इकोलॉजी तो है ही, पर दूसरा डी स्ट्रेस, आपने कहा कि डी स्ट्रेस करने के लिए बहुत अच्छा एक माध्यम है, और कोशिश करनी चाहिए फोन और जब हम रील्स के माध्यम से अपने को कोशिश करते हैं वो डी स्ट्रेस नहीं होता, इनफैक्ट हमें और स्ट्रेसफुल बनाता है. तो स्ट्रेस हमें जो है बहुत सारी बीमारियों को आमंत्रण देता है, तो अगर हम डी स्ट्रेस रहेंगे तो एक अच्छा जरिया है, हम उनकी देखभाल भी करें और वो इंटर्न हमें प्यार तो देते ही हैं, साथ ही हमारी सारी चिंताओं को भी हर लेते हैं. हमारे श्रोता डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़े हैं, बताना चाहेंगे कि डॉक्टर आरती शर्मा हमारे साथ स्टूडियो में है और इस कार्यक्रम में रहेंगे. आप वेटनरी डॉक्टर हैं और बहुत सीनियर डॉक्टर हैं, इनको बहुत इस विषय में जानकारी है, तो जरूर आपकी जो भी समस्या है उसका जवाब डॉक्टर साहब दे पाएंगे. तो हम सुन लेते हैं कि समस्या. हेलो
2: हेलो
1: जी जी आप

0: हैं डॉक्टर डॉक्टर में। जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में।
1: हाँ जी डॉक्टर साहब नमस्कार।
2: नमस्कार जी,
1: मैं मिसेस बेदी बोल रही हूँ पंचकुला से।
2: हाँ जी बोलिए।
1: हाँ जी डॉक्टर साहब, पेट के लिए केयर भी बहुत जरूरी है, जैसे हम माँ अपने बच्चों की करती है, अगर पेट हमने रखा है तो हमें उसकी केयर अपने बच्चे की तरह ही करनी
2: चाहिए।
0: बिल्कुल सही बात।
1: और दूसरी बात यह है कि देखिए शहरों में तो हम डॉग रख लेते हैं कर लेते हैं, आप गांव में चाहिए, जब लड़की जैसे विदा होती है तो गाय के गले मिल मिल के रोती है कि मैं छोड़ के जा रही हूँ। पर शहरों में जो हमारे ये कूड़ा करकट जब गाय खाते मरती है तो बहुत दुख लगता है, पॉलिथिन खा रही है बेचारी, कुछ खा रही है। एक मेरे को लगता है कि कोई और एसोसिएशन ऐसी भी होनी चाहिए जो ये कूड़े की ओर से ध्यान करे, ध्यान कि पशु ना मरे हो।
2: उनके अंदर से जो कंसर्न बट ये है कि इंसान अब इतना सेल्फिश हो गया है कि उसको आसपास कुछ गंद दिखता नहीं है, एक्सेप्ट मेकिंग हिज ओन लाइफ कंफर्टेबल, तो इसलिए वो हमें थोड़ा सा अपने आप को सेंसिटाइज करना पड़ेगा, बिकॉज सराउंडिंग्स जो है वो हमें ही मेंटेन करनी है, गंद भी हम ही डालते हैं, कचरा भी हम ही डालते हैं। मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि वो
1: कुत्ते जो है बेचारे लवारिस जिनको कहते हैं, कई बार वो यहाँ मरे होते हैं हमारे आसपास, उनके जब होते हैं अंदर से कीड़े निकलते हैं, पॉलिथिन निकलते हैं, तो शांत वो जानवर है बेचारे जो हम देखते हैं पालते हैं सब कुछ करते हैं, हम लोग इंसानियत ही छोड़ते
0: हैं। सही बात कही है मिसेस बेदी आपने, और ये छोटा सा प्रयास है रेडियो डॉक्टर का इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोगों को ये संदेश पहुंचाएं कि हमारे स्वास्थ्य की आवश्यकता है, पर हमारे साथ जो पशु रहते हैं उनका स्वास्थ्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए।
1: देखिए शालिनी जी, हम कहते हैं ना दूध में कंटेमिनेशन आ गई है, क्यों आई है? क्योंकि हम लोग पॉलिथिन फेंकते हैं धड़ल्ले से, वो खाती है और दूध में जहर बन जाए।
0: बिल्कुल सही बात। जरूरत क्यों पड़ती है स्वच्छता पखवाड़ा मनाने की? इसीलिए क्योंकि हम जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, वी आर नॉट सेंसिटाइज्ड, हमें इस चीज के का एहसास होना चाहिए, ये एहसास नहीं, ये एक वे ऑफ लाइफ होना चाहिए। क्यों डॉक्टर साहब?
1: वे ऑफ लाइफ होना चाहिए कि अगर हम देखिए डॉक्टर साहब, अगर हम कोई चीज खाते हैं पॉइजन हो जाता है तो उसी तरह वो जो एनिमल है बोल नहीं सकता, तो क्या उसको हम पॉइजन देते
2: हैं? हम लोग सोचते हैं कि जब बच्चे को हम परवरिश करते हैं, जब आप स्कूल में होते हैं तो उनके लिए एक स्पेशल एक कोर्स भी होना चाहिए, हाउ टू बी ए गुड सिटीजन। आप हिस्ट्री और मैथ पढ़ा देने से उसका उतना कैलिबर नहीं बनता जितना एक सोशल एंगल में एक बच्चे की ग्रोथ होती है, तो ही शुड अंडरस्टैंड, शुड बी सेंसिटाइज टू द सराउंडिंग एरियाज। लाइक आप
1: हमारी बात तो कोई समझेगा नहीं, एक बार आप मैसेज स्प्रेड करेंगे तो शायद
2: बिल्कुल हम लोग यही कर रहे हैं, कोई नए नए कॉलेज में या स्कूल में जो ये सिलेबस बनाते हैं तो शायद एक सब्जेक्ट ऐसा रख लें हाउ टू बी ए गुड सिटीजन, तो हम लोग अगर बच्चों को ये सिखाना शुरू करें तो मुझे लगता है आने वाली नेक्स्ट जनरेशन विल बी मोर सेंसिटाइज देन द प्रेजेंट वन।
0: बिल्कुल सही बात है, पर डॉक्टर साहब एक ये बात भी सही है कि हम जैसा करते हैं हमारे बच्चे वो सीखते हैं, तो ये तो आने वाली जनरेशन में जो है, ये आपने बोला कि पढ़ के वो सीखे, पर हम जो ये कार्यक्रम सुन रहे हैं एडल्ट, वो अपने आप को बदल सकते हैं थोड़ा सा प्रयास।
2: मैं तो ये बोला, मेरी दादी को मैंने देखा है कि बहुत जब खाना बनाती थी सबसे पहले एक चपाती निकाल के रखती थी, वो बोल रही ये गाय को देनी है, एक चपाती वो चिड़िया के लिए बाहर रखती थी, तो वो एक बहुत अच्छा सोच था, वो कितना कंसर्न था फॉर द बर्ड एंड फॉर द एनिमल। अगर एक इंसान एक फैमिली ऐसा करे तो कितना अच्छा हम कर सकते हैं, पर वो आजकल की फास्ट लाइफ में और मोबाइल की लाइफ में ऐसी सब चीजें भूलते जा रहे हैं। आज तो खुद खाना भी आप लाइक ऑनलाइन ही मंगवाते हो तो घर में बनाते ही नहीं, तो दैट काइंड ऑफ कल्चर वी हैव टू चेंज एंड सेंसिटाइज आवर चिल्ड्रन।
0: वेरी राइटली सर। और डॉक्टर साहब कुछ मैसेजेस भी हमारे पास आ गए हैं, हमें सागर जी ने लिखकर भेजा है, विजयपुरा कर्नाटका से, 25 साल के हैं, उन्होंने लिखा है कि मेरे दो क्वेश्चन हैं कि अगर हमें कोई जानवर दिखता है स्ट्रीट पर जो कि इंजर्ड है तो हमें क्या करना चाहिए, और इस सिचुएशन को हम कैसे उसको बचा कैसे सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन एक इनका और है कि कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जो स्ट्रीट पे एनिमल्स होते हैं या पेट एनिमल्स भी होते हैं उनको कुछ बीमारी हो जाती है, उनसे वो स्प्रेड होती है, तो इसमें क्या हम कर सकते हैं? एंड ही इज थैंकिंग अस फॉर दिस अमेजिंग प्रोग्राम।
2: थैंक यू सर फॉर योर कंसर्न, बट बात यह है कि आपके एरिया में जिस एरिया में भी आप हो वहां म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के ऑफिस हैं जो आप ऑनलाइन उनके नंबर्स देख सकते हो, हर टाउन में हर सिटी में एनिमल वेलफेयर बोर्ड के लाइक स्मॉल ये एसोसिएशन होती हैं जो

0: गवर्नमेंट रन रहती हैं, जो एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ी होती हैं, उनके नंबर आप ऑनलाइन ढूंढ लीजिए, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के ढूंढ लीजिए। ऐसे बहुत से डॉक्टर्स हैं, बहुत से हॉस्पिटल हैं जो हमारे होमलेस एनिमल्स के लिए उनकी अलग से हेल्पलाइंस हैं, तो वो अगर आप लकी हैं उस एरिया में अगर ऐसा मिल जाता है तो आप सबसे पहले उनको कॉन्टेक्ट कर लीजिए। और अगर कोई एक्सीडेंटल एनिमल है सबसे पहले उसको सड़क से एक साइड में करने की कोशिश करें। अगर गाय है तो किसी की हेल्प ले लें, अगर डॉग है तो आप इमीडिएटली उसको ऐसे रॉ हैंड से नहीं पकड़ें बिकॉज ही इज ऑलरेडी इन द पेन। आप अगर वो एक्सीडेंटल एनिमल या डॉग को अपनी तरफ से हेल्प कर रहे हैं लेकिन वो ही कैन बाइट यू इन दैट कंडीशन, तो आप एक टॉवल या कोई चद्दर उसके ऊपर फेंक के उसको साइड में रख सकते हैं कि दूसरी गाड़ी उसको फर्दर इंजर नहीं करे। और वो सबसे पहला स्टेप है, कोई ब्लीडिंग हो रहा है तो आप उसको स्टॉप करने की कोशिश करें। आसपास के नियरेस्ट कोई वेटनेरियन है या एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है उनको फोन करें। बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन के पास आजकल एम्बुलेंसेज हैं, वो ऑनलाइन अवेलेबल रहती हैं, तो आप उनको कॉल करें। तो जो कंसर्न लाइक कंपैशनेट एनिमल ऑर्गेनाइजेशन होंगी, वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, वो आपको रिस्पॉन्स जरूर करेंगे। सेकेंडली बहुत सी ऐसी डिजीजे हैं, जेनेटिकल डिजीजेज, जो कि कम्युनिकेबल हैं फ्रॉम एनिमल टू ह्यूमन, जैसे लेप्टोस्पायरा है और रेबीज है, स्किन डिजीजेज हैं। तो ऐसे में अगर आपको कुछ ऐसा लगता है जैसे रेबीज, टू फ्रैंक, बहुत से लोग डॉग से इसलिए डरते हैं, उनको लगता है डॉग मीन रेबीज, ऐसा नहीं है। डॉग्स आर नॉट बॉर्न विद रेबीज, रेबीज एक अलग डिजीज है, जब वो वायरल इन्फेक्शन है जब किसी को होती है तो उसको उसके सलाइवा में वो वायरस शेड होने लगता है, वो भी 10th या 15th डे, तो तब वो किसी को बाइट करे तब रेबीज होती है। ऐसे नॉर्मल डॉग के लिए अगर उसको लिक जा कर ले या बाइट कर ले तो रेबीज नहीं होती। तो बहुत से लोग डॉग से इसलिए डरते हैं या हेट करते हैं। सबसे पहले तो ये एक कंसेप्ट अपने मन से निकाल दीजिए कि हर डॉग रेबीड होता है। और सेकेंडली, अगर रेबीड होगा तो वो अपनी कॉलोनी में नहीं रहेगा, वो चलता फिरता रहता है, इनकोऑर्डिनेशन होता है, जॉ उसका हैंग करने लगता है, स्लाइवेशन होती है। तो ऐसा डॉग अगर आपको नजर आए तो आप आसपास की ऑर्गेनाइजेशन जो एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन उनको फोन कर सकते हैं, किसी डॉक्टर की हेल्प ले सकते हैं, पर उसको मारे नहीं या भगाए नहीं, क्योंकि अगर वो उस टेरिटरी से निकल गया तो वो दूसरे डॉग्स को काटेगा, फिर ऐसे डिजीज कैन बी स्प्रेड इन दैट एरिया। एक वो आप कर सकते हैं। सेकेंडली, लेप्टोस्पायरा है, एक वायरल इन्फेक्शन है जो यूरिन से थ्रू होती है, तो ऐसा आप अपने RWA जो है उनको बता सकते हैं कि वो अपने जो मेंबर्स हैं, जो अपने रेजिडेंट्स हैं, उनको एक सर्कुलर भेजे लेप्टोस्पायरा कैसे स्प्रेड होती है। तो वो ये सब अवेयरनेस कैंपेन से ही होगा। और स्किन डिजीजेज हैं जैसे डेमोडिक है या स्केबीज है, जो ह्यूमन को हो जाती है अपने पेट से, बट वो आपका डॉक्टर ही बताएगा। अगर आपको लगता है आपके डॉग के या कैट है जो उसके बाल गिर रहे हैं या स्क्रैच कर रहा है, तो इमीडिएटली डॉक्टर को दिखा दे, तो वो एक बार डायग्नोस कर देंगे वेदर इट्स स्केबीज या डेमोडेक है या सिंपल एलर्जी है। अगर स्केबीज है तो देन यू हैव टू बी केयरफुल बिकॉज दिस इज कंटेजियस, बट अगर डॉग को आप ट्रीट कर देंगे तो एंड दिस इज क्योरेबल डिजीज। अगर आप अवेयर हैं इस बात के और अर्ली स्टेज में इसको डायग्नोस कर लेते हैं तो बहुत जल्दी ठीक हो जाती। तो ये 3-4 चीजें ऐसी हैं जो आप अगर आप नॉलेजेबल हैं तो आप अपने फ्रेंड्स में, अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें ऐसी चीजें स्प्रेड कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ एनी जोक्स। तो आई थिंक दैट बी वेरी गुड स्टेप फॉर यू कंट्री।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी डॉक्टर साहब आपके माध्यम से मिली हमारे श्रोताओं को। और जैसा आपने कहा, इस जानकारी को आप जितना स्प्रेड करना चाहें करिए, और ये कार्यक्रम जो है हमारा जन जन तक पहुंच रहा है, सिर्फ देश में नहीं विदेशों में भी इसको सुना जाता है और बहुत पॉपुलर है हमारा प्रोग्राम। तो यही गुजारिश रहेगी कि इस बात को जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं ध्यान से सुने और अपने जानने वालों तक पहुंचाएं। हमारे एक श्रोता और वेट कर रहे हैं फोन लाइन पर। हेलो जी, राम प्लीज जाने चलता है।
2: डॉक्टर नमस्कार।
0: नमस्कार सर।
2: डॉक्टर, जैसे कि हम लोग स्टेट डॉग को देखते हैं, स्टेट डॉग होते हैं तो उनके टिक्स काफी हम देखते हैं, हम उनकी हेल्प करने की कोशिश करते हैं पर लगता है डिस्कार ना ले। तो वैसे तो हमने दवाई तो ले रखी है, फिर भी हम उसको स्प्रे मारते हैं, फिर भी वो टिक्स उसके रह जाती है। तो हमें ये समझ नहीं आता डॉग काटे ना और हम उसकी हेल्प ही करते। दूसरा सवाल मेरा ये है कि मेरे पास दो डॉग हैं, एक के बाल है, एक के बिना ज्यादा बाल नहीं है। तो बाल वाला डॉग जो है हमारा कम खाता है, ड्राई ब्रीड है, और दूसरा डॉग आराम से खा लेता है। क्या गर्मी कारण वो ऐसा बिहेव करता है? और तीसरा एक सवाल मेरा बहुत ही पुराना है कि पहले भी मैंने कम से कम 20 साल पहले ये बात पूछी थी। एक डॉग था मेरे पास डॉगन है, तो वो क्या था, एक फिल्म का सॉन्ग जैसे ही चालू होता था उसके म्यूजिक की दो लाइनें आती थी, तो

0: gün olan soğuk kıyaslı ile gram kıyaslı ya gram kıyaslı kurt kıyaslı o kadar ne yapın üstüne daha sonra da panseter olaydı üstüne bak mesela bir hata da o kadar lakta da o üstü ye hemen samaj mi aydı bu kya üstü problem thi ya koi açı bat thi fır hemne apre friend ko bataya friend ne bhi kaha test kerte usko test kya fır hemne laga ki iske andar koi açı parishani hai ye samajta hai ye parishan hota hai to hemne wo kaha ya nahi bilkul kam kar diya bilkul sapoi ko bol diya aisa mat kare
1: चलिए डॉक्टर साहब बता रहे हैं आपको सारी बातें।
2: देखिए एक जो टिक्स का आपने बोला वो टिक्स आज हमारी ट्रॉपिकल कंडीशन ऐसी कंट्री में जब रेनी वेदर होता है ये डॉग इज अ होस्ट इन देयर लाइफ साइकिल तो वो इनके ऊपर ब्रीड करते हैं फिर गिर जाते हैं फिर वो दूसरे डॉग पे चले जाते हैं ऐसे स्प्रेड होते रहते हैं उस एरिया में तो आप बिकॉज दिस इज फॉर ए होमलेस डॉग तो मैं आपको एक मेडिसिन बताता हूँ न्यूमैक के नाम से एक टेबलेट आती है 10 mg की वो हफ्ते में एक बार दे दिया करें इनको
1: ये क्योंकि ये स्ट्रे डॉग की बात कर रहे हैं तो साथ इनको किस तरह से देंगे डर भी लगता है ना कि
2: खाना अगर आप देते हैं जो कोई एग बॉईल करके उसके मैश करके उसमें डाल दें किसी पनीर में डाल के दे सकते हैं किसी बिस्किट में डाल के दे सकते हैं 3 या 4 हफ्ते दें तो वो टिक्स नहीं आते तो कम से कम एक सीजन नहीं आते सर 5-6 महीने तक नहीं आते विंटर में टिक्स नहीं होते ये हाइबरनेशन में चले जाते हैं आपके एरिया में जहां ये रह रहे हैं वो दीवारों में पेड़ों में वो चले जाते हैं वो हाइबरनेशन में रहते हैं एक बार ब्लड सर्च करने के बाद दे कैन सर्वाइव फॉर 3-4 ईयर्स तो दोबारा जब होस्ट उनको मिलता है रेनी वेदर होता है उनका ब्रीडिंग टाइम आता है फिर वो हमारे पेट्स पे आ जाते हैं ब्रीड करते हैं तो ये ऐसे साइकिल चलता रहता है तो इसलिए अगर आप जैसे जून में या जुलाई से शुरू कर दें रेनी वेदर से पहले ही दे दें तो वो मेडिसिन इनके स्किन के ब्लड वेसल्स है उसमें रहती है जैसे ही टिक उसको ब्लड सक करते हैं दे डाई उनका नर्वस सिस्टम फेल हो जाता है वो गिर जाते हैं मर जाते हैं तो ये आप एक रेगुलर अगर आप करते रहे तो वो हम लोग रेडिकेट कर सकते हैं सेकेंडली आपके पास एक हेयरी डॉग है एक नॉन हेयरी है या लेस हेयरी है तो हेयर के थ्रू उनको कोई ठंड या गर्मी नहीं लगती है कि ये कंसेप्ट है बिकॉज दे डोंट हैव एनी स्वेट ग्लैंड्स इनको पसीना नहीं आता तो ये जो इंसुलेशन का काम करती है गर्मी में उनको ठंडा रखते हैं ठंडी में इनको गर्म रखते हैं तो अगर डॉग खाना नहीं खा रहा देयर मे बी सम अदर मेडिकल रीजन तो आप डॉक्टर को दिखा लें हो सकता है वो ब्लड टेस्ट करें कुछ लिवर प्रॉब्लम हो सकती है कोई किडनी की प्रॉब्लम हो सकती है बिकॉज आजकल हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है कि हमारे डॉग्स को भी कार्डियक प्रॉब्लम होती है किडनी प्रॉब्लम होती है लिवर प्रॉब्लम होती है तो एक ये चेक कर लें और हेयर के कारण उनका लॉस ऑफ एपेटाइट नहीं होता तीसरी आपकी बात आपने बोला एक सॉन्ग पर्टिकुलर सॉन्ग को डॉग उसके साथ गाना गाता है तो दैट मीन योर डॉग इज वेरी हैप्पी आपने कभी देखा होगा अगर रेलवे ट्रैक के पास आप रहते हैं या कोई डॉग है कभी उनके इंजन की वो हॉर्न बजाता है तो साथ साथ वो खुद ऐसे हल करने लगते हैं बिकॉज दे लाइक दैट साउंड इसलिए वो ऐसा करते हैं
1: तो बंद कर दिया
2: बट लेकिन आप योर डॉग वॉज इंजॉइंग दैट डॉग इसीलिए तो वो पास में आ रहा था वो आके गाना गाना चाहता है उसके साथ आप हस्की देखें वो तो गाना गाते हैं प्रॉपर आपने यूट्यूब में बहुत से ऐसे देखे होंगे जो म्यूजिक बजाते हैं वो साथ में गाते हैं तो दे आल्सो एंजॉय म्यूजिक म्यूजिक हैज नो लैंग्वेज तो वो इसलिए उसको बंद नहीं करना था आपने उसको और उसको एंजॉय करने देना
1: तो आप दोबारा शुरू कर लें क्योंकि आपको तो पता है कौन सा गीत एंजॉय करता है तो प्लीज उसको क्योंकि वो बोल नहीं पा रहे पर वो कन्वे
2: दे लाइक दैट पिच एक्चुअली उनको वो फ्लो अच्छा लगता है तो देन दे स्टार्ट
1: डूइंग दैट जी बिल्कुल डॉक्टर साहब हमें मैसेज के जरिए मनोहर लाल गांधी जी ने लिखा है चाणक्य चौक गाजियाबाद से कि हम सुबह उठते ही एक काम जरूर करते हैं और वो है चिड़िया और पक्षियों को दाना डालना चिड़िया खाती है वही हम खिलाते हैं हमारे यहाँ तरह तरह की चिड़िया आती भी हैं डॉक्टर साहब से हम ये पूछना चाहते हैं कि क्या क्या खाने की चीज है जो चिड़िया को पसंद है ताकि हम उसको एक वैरायटी दे सके नमस्कार भी कह रहे हैं डॉक्टर साहब आपको
2: तो बहुत अच्छा कर रहे हैं और हम लोग तो बोलते हैं कि एक पानी का बर्तन आप छत पे रखिए एक पानी का बर्तन आप अपने दरवाजे के बाहर रखिए ग्राउंड फ्लोर पे एंड डॉग्स के लिए और बर्ड्स के लिए बिकॉज यही कमी होती जा रही है जितने मेट्रोज हैं वहां नाली से पानी पीते हैं गंदा पानी पीते हैं वाटरबॉर्न इन्फेक्शन हो रही है तो अगर हर फैमिली एक पानी का बर्तन घर के ऊपर छत पे रखे तो बहुत से बर्ड्स दे कैन सर्वाइव क्योंकि उनको पानी नहीं स्पेशली इन द समर उसमें आप थोड़ा सा इलेक्ट्रोल डाल सकते हैं ए पिंच ऑफ इलेक्ट्रोल इन द वॉटर और आप सीड रख सकते हैं कंगनी है बाजरा है चपाती रख सकते हैं मीठा ज्यादा नहीं रखें और ये बर्ड्स बहुत अच्छे दे एंजॉय ऑल दिस थिंग और पानी में

0: डाल देने से जो पीक समर होता है उसमें उनको लाइक हाइड्रेशन रहती है। क्योंकि बहुत बार आपने देखा होगा कि वायर पे एनिमल बैठा है या पेड़ पे बैठा है वो सडनली दे शॉक से नीचे गिर जाते हैं। बहुत से ऐसे हमारे पास लोग लेके आते हैं, कोई पिजन है कोई पैरट है, तो उनको डिहाइड्रेशन हो रहा है और शॉक हो रहा है बिकॉज ऑफ हीट। तो अगर हम लोग ये सारा करें, इतना अर्बनाइजेशन हो गया है कि बर्ड हमारे कहाँ जाएंगे, एलिमिनेशन भी होता जा रहा है। आप तो ब्राउन कलर की स्पैरो होती है वो देखिए हमारे अभी सिटी में मिलती ही नहीं है, गांव में जाते हैं तो उनकी नेस्ट होता है वो कितना चिरपी होती है। दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, तो वो भी इकोलॉजिकली बैलेंस करती है। तो इसलिए मुझे लगता है अगर आप एग ये कर रहे हैं, अपने फ्रेंड्स को भी थोड़ा इनकरेज करिए और आपकी कॉलोनी ऐसा करने लग गई तो मुझे लगता है सारा सिटी भी ऐसा करने लगेगा। तो बहुत से बर्ड्स जो खत्म होते जा रहे हैं जिनकी स्पीसीज वो भी दोबारा रिवाइव होती जाएंगी।
1: जी जी, एक श्रोता अपनी समस्या के साथ है, कुछ कहना चाहते हैं। हेलो
2: जी नमस्कार।
1: जी नमस्कार जी,
2: मैं जयकिशन अग्रवाल साइकिल मार्केट चांदनी चौक से बात कर रहा हूँ।
1: जी जी
2: सर, आपको नमस्कार करता हूँ।
1: जी
2: मेरा प्रश्न ये है कि जो कुत्ता है डॉग है उसे बहुत अच्छी तरीके से जो बचपन से उसको ले आते हैं, खरीद के ले आते हैं, इंग्लिश ले आते हैं और अपने जो बच्चे गली में देते हैं उसको भी उठा उसको भी ले आते हैं, अच्छे सुंदर बच्चे होते हैं जो, तो डॉगी जो है वो नॉन वेज 90% होता है, नॉन वेज होता है। अब बच्चा क्या है उसको खिलाएगा, अपनी गोदी में रखेगा, उसमें उंगली डालेगा उसके मुंह में, उसको अपने हाथ से खिलाएगा, छोटा बच्चा 3-4 साल का है और खुद वो उंगली अपने मुंह में भी डाल लेता है, तो क्या उससे उस बच्चे को नुकसान हो सकता, नहीं हो सकता? नंबर एक। नंबर दूसरा, जो बच्चा है कुत्ता जो डॉगी है उसको निलाने के लिए कितने दिन में निलाना चाहिए और किस चीज से निलाना चाहिए जिससे उसके अंदर जर्म ना हो?
0: देखिए सर, मुझे लगता है आपने अभी नया नया जो आपके बच्चों ने नया पप अडॉप्ट किया है, और आपको ये बता दूं कि डॉग ऐसा नहीं है कि नॉन वेजिटेरियन ही होते हैं। आप जैसा उसको खिलाएंगे दे आर हैप्पी विद दैट। आप वेजिटेरियन खाना दे सकते हैं, नॉन वेज में सिर्फ मीट या चिकन या फिश मिलता है, लेकिन वेजिटेरियन डॉग के पास बहुत सी चॉइस है, वो पनीर भी खाता है, वेजिटेबल भी खाता है, राइस चपाती और बहुत सी चीजें उसके लिए है, तो वो आप उसको वेजिटेरियन भी बना सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। उसके मुंह में हाथ डाल देने से अगर अपने मुंह में डाल लेंगे तो ऐसा, वो डिफरेंट स्पीसीज है। अगर आपका डॉग वैक्सीनेटेड है और कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है तो कुछ नहीं होता, ये आप मिथ है। अब ऐसे डॉग से इंसान को कम्युनिकेबल डिजीजेज जो लिमिटेड है अगर उसको प्रिवेंट करेंगे तो आपके घर में जो पेट रह रहा है, जो आपके बच्चे उसके साथ ग्रो करेंगे, उनका जो बिहेवियर है आने वाले टाइम में 15 साल बाद यू विल फाइंड दे विल बी मोर कम्पैशनेट। जो आजकल की सोसाइटी बड़ी आइसोलेटेड और सेल्फिश होती जा रही है उनके लिए तो पप रखना, डॉग रखना बच्चों के साथ बहुत ही जरूरी है। जो आप अगर सोशली आप एक्सेप्टेबल हैं तो मुझे लगता है आपके फ्रेंड्स भी बहुत ज्यादा होंगे, आप खुश भी ज्यादा रहेंगे। आइसोलेटेड रहेंगे तो आप स्ट्रेस में रहेंगे, ज्यादा दवाइयां खाएंगे, लाइफ टाइम भी बहुत शॉर्ट रहेगा। तो इसलिए जो पप रख रहे हैं, जो बच्चे लेके आ रहे हैं, उनको आप एनकरेज करिए, उनके फ्रेंड्स को भी बोलिए आप डॉग जरूर लेके आए। बाकी अग्रेशन डॉग का है वो इंसान से ज्यादा तो अग्रेशन नहीं है उनका। कुछ डॉग जो मीडिया में बहुत ज्यादा हाइप बना दिया कि उसको काटा बच्चों को लेके आया, पर डॉग बिना मतलब कभी नहीं काटता, आप स्ट्रे डॉग देख लीजिए। कुछ कुछ डॉग्स ऐसे हैं जो अल्फा डॉग्स हैं जिनको हालांकि गवर्नमेंट ने स्टरलाइज किया है, बट वो हमारी वो इलिटरेसी है जो पढ़े लिखे लोग भी नहीं समझ पा रहे। जो डॉग है वो टेरिटोरियल होते हैं, तो उसको अगर हम लोग अग्रेसिव डॉग है उसको उस टेरिटरी से नहीं हटा सकते, लेकिन उसका फीडिंग जो एरिया है वो थोड़ा दूर कर दीजिए, अपने घर के पास नहीं करें, अपनी स्टेप्स पे आसपास नहीं करें, बिकॉज आप ही एनिमल लवर है ऐसा है जरूर, लेकिन बहुत से लोग एनिमल लवर नहीं है जब बट दे डोंट लाइक एनिमल्स, वो स्टेप्स से सीढ़ियों से चढ़ने में भी डरते हैं अगर डॉग आपका बाहर बैठा आप खाना देते हैं।
1: यहाँ पे ये भी बोलना चाहूंगी, आपने बहुत अच्छी बात बोली, उनकी एक डेजिग्नेटेड प्लेस होनी चाहिए।
0: एनिमल वेलफेयर बोर्ड का एक एरिया है कि वो आप एनिमल जो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है उनको उन्होंने नोटिस दिया है कि एक एरिया अपटेबल एरिया होना चाहिए, और बहुत सी आरडब्ल्यूए ने किया भी है एंड पीपल आर वेरी हैप्पी। वो सैनिटाइज होता है वहां पे, बहुत सी मेडिकल कंपनीज आती हैं जो उनको सैंपल्स भी देती है, वो बहुत ही ऑर्गेनाइज वो सेक्टर हो जाता है, और फिर वो डॉग अपनी जहां फीडिंग होती है वहां पे वो उतनी वो लाइक उसको गाइड नहीं उतना गार्ड नहीं करता। अगर आप स्टेप्स में अपने घर के दरवाजे के बाहर ही दे देंगे तो वो डॉग वहीं बैठा रहेगा, ही वेट फॉर द फूड एंड दूसरों को आना नहीं देगा।
1: और एक बात और, जैसे आपने बोला कि उसको अननेसेसरी अगर आप परेशान करते हैं डॉग तो करते हो तब वो काटता है।
0: बच्चे बहुत से उसको स्टिक मारते हैं, पत्थर मारते हैं, तो वो बच्चों को भी थोड़ा हमें समझाना पड़ेगा कि दे आर दिस अर्थ बिलोंग्स टू देम ऑल्सो, तो उनको भी रहने दे, उनको रादर पत्थर मारने से अच्छा उनको एक बिस्किट का पैकेट दे दीजिए, बोला हर डॉग को खिलाएं तो देखिए आपके बच्चे के पीछे 10 डॉग चलेंगे और उसका भी गार्ड करेंगे। तो वो सिर्फ हमें इंसान को समझना पड़ेगा एनिमल को, पर एनिमल बहुत समझता है इंसान को।
1: बिल्कुल सही बात। डॉक्टर से एक नहाने वाली बात भी थी जो बहुत सारे और श्रोता भी जानना चाहते होंगे कि इनको कैसे नहलाया जाए पेट्स।
0: इनको एक स्पेसिफिक पीएच बैलेंस शैम्पूज आते हैं जो आपके एक वेटनेरियन से मिल सकते हैं, इधर उधर से मत लें बिकॉज इतना क्वालिटी कंट्रोल नहीं है, तो इसलिए पेट शॉप से इधर से लेके आप करेंगे तो बहुत से शैम्पू एलर्जीज भी करते हैं, जो स्किन डिजीजेस भी हो सकती हैं, तो इसलिए अपने डॉक्टर से लें और पीएच बैलेंस शैम्पू लें। अगर उसको ड्राईनेस है तो वो डिफरेंट शैम्पू देंगे, टिक्स हैं तो डिफरेंट शैम्पू देंगे, ऐसे उसको 15-20 दिन में एक बार नहलाएं और जितना कम पॉसिबल हो उतना नहलाएं। बहुत से लोग बार बार नहलाते हैं, हर हफ्ते नहलाते हैं,
1: फ्रीक्वेंसी
0: वंस ए मंथ आई थिंक इज सफिशियंट। अगर ग्रूमिंग इज मोर इम्पोर्टेंट, उसको ब्रश करें, लाइक जस्ट स्पेंड 5 मिनट इन द मॉर्निंग ब्रश करेंगे तो आपका डॉग का रेपुटेशन भी आपके साथ ज्यादा अच्छा होगा, वो डिसाइल भी होगा आपको। विद ब्रश करते टाइम अगर टिक या कोई डिजीज स्किन डिजीज पता लगती है तो बहुत अर्ली स्टेज में आपको पता लग जाएगा। ब्रश करने से उनके स्किन का जो ब्लड वेसल्स है उसमें सर्कुलेशन बढ़ती है, स्किन ऑयल बढ़ता है, तो हेयर फॉलिकल रिवाइव हो जाते हैं, तो और ज्यादा उसका शाइन आने लगता है।
1: तो दिस इज लाइक फॉर ऑल पेट्स या पर्टिकुलरली डॉग्स के लिए आप बात कर रहे हैं?
0: जनरली पेट डॉग्स एंड कैट्स और इवन एंड रैबिट्स आल्सो एक्चुअली। होल्टिंग तो होता है, सब डॉग के बाल गिरते हैं, इट्स नॉट जैसे इंसान में गिरते हैं वैसा नहीं होता, ये शेड करते हैं जब वेदर चेंज होता है, उस टाइम पे दे नीड एक्स्ट्रा स्किन ऑयल्स और रेगुलर ब्रशिंग, लेस ब्रीदिंग, तो उससे और
1: जैसे कैट्स में डॉक्टर साहब वो सिर्फ ग्रूमिंग करती रहती है अपनी, तो इसी तरह से क्या फिर हमें लगता है कि नहलाने की जरूरत ही नहीं है? तो कहां तक सही?
0: जनरली कैट्स को ज्यादा बात देने की जरूरत नहीं होती अनलेस वो ऐसी जगह पे रह रही हैं जहां ओपन गार्डन में है, जहां एक्सपोजर होता है टू डर्ट एंड अदर इंसेक्ट्स एंड ऑल, अदरवाइज कैट्स दे आर वेरी क्लीन, वंस इन 3-4 मंथ्स इज ओके, वो ग्रूमिंग अपने आप करती रहती है। बस एक ही ध्यान रखें कैट ओनर्स के, जो वो अपने आप को क्लीन करती हैं तो वो बाल बहुत से वो सोलो भी कर लेती हैं, तो सोलो करने के बाद कुछ 3-4 महीने के बाद उनके स्टोमक में एक हेयर बॉल जैसा हो जाता है, ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर सकता है, तो इसलिए मेडिसिन आती हैं जो लुब्रिकेट करती है इंटेस्टाइन को, तो वो हफ्ते में एक बार उनको खिलाते रहा करे जो कि गट में उसके इंटेस्टाइन में ऑब्स्ट्रक्शन नहीं हो, और नहीं तो बाहर जो वाइल्ड है वो घास वास खाती हैं तो वॉमिट कर देते हैं, तो अपने आप रिग्रेजिटेट करके अपना हेयर बॉल निकाल देती हैं। पर हमारी डोमेस्टिकेटेड कैट्स वो बाहर नहीं जाती, घास का एक्सेस नहीं होता, तो इसलिए ये मेडिसिन देते रहें, लग्जेटिव देते रहें, तो ऑयल बेस्ड होते हैं, या वंस ए वीक एवरी संडे जस्ट गिव इट, तो देन दे लिव वेरी हेल्दी।
1: ओके, देखिए ये मैसेज हमारे पास आया है, हमारे एक श्रोता है राजकुमार गुप्ता जी, नोएडा में रहते हैं और लिख रहे हैं कि मैं कभी बाहर जाता हूं तो मैं अपने जो पेट्स हैं उनको छोड़ के ही नहीं जाना चाहता हूं, उनके बिना मैं रह नहीं पाता हूं, तो ये बताइए कि मैं उनको ट्रैवलिंग के लिए क्या करूं कि मैं साथ में ले जाऊं और क्या मैं प्रिकॉशंस उस समय रखूं?
0: बिल्कुल लेके जा सकते हैं सर, बिकॉज दे आर इक्वली हैप्पी विद यू, दे ऑल्सो लव ट्रैवलिंग एंड ऑल, तो अपने डॉक्टर से बात कर लें, वो उसके हिसाब से एक मेडिसिन आती हैं जो ट्रैवलिंग के लिए थोड़ा सा सेडेशन होती है, एंटी वॉमिटिंग होती है, क्योंकि किसी किसी एनिमल्स में मोशन सिकनेस होती है तो सलाइवेशन होती है, वॉमिट करते हैं जैसे इंसान भी कई बार बस में या गाड़ी में करते हैं, तो उसके लिए पहले से मेडिसिन दे देंगे तो दे विल बी मोर कम्फर्टेबल। आप बिल्कुल साथ में लेके जा सकते हैं, आपका भी सफर बहुत अच्छा रहेगा, दे विल इंजॉय योर कंपनी। आजकल बहुत से होटल्स हैं जो पेट फ्रेंडली हैं, रिजॉर्ट्स हैं जहां लेके जा सकते हो, बहुत होटल्स हैं, दे डू पेट एक्सरसाइज एंड ऑल, वो गेम्स भी रखते हैं, तो जस्ट टू मेक इट मोर इंटरेक्टिव, तो मेनी एनिमल लवर्स दे आर टेकिंग देयर पेट्स विद देम एंड दे आर वेरी हैप्पी। और
3: रेडियो डॉक्टर प्रोग्राम के गुज़श्ता शुमारे की रिकॉर्डिंग अभी आपने समाप्त की, ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है, मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DT फेडिश पर। दिन के 12 बजे हैं, अब खबरें नशे की जाएंगी।

ये आकाशवाणी है। अब आप मोहम्मद कौनैन हैदर से खबरें सुनिए। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में स्विट्जरलैंड के सदर गाय परमलिन से बातचीत की। अमरीका ने ईरान की तरफ से एक फजाई ठिकाने को मुबैना तौर पर निशाना बनाने की तहकीकात के दौरान बरतानवी ठिकाने से तवील दूरी तक मार करने वाले बमबारों को अपने ठिकानों पर मुंतकिल किया है। अमरीकी फौज ने बुहरे रोम में मुनशियात की स्मगलिंग करने वाली एक मुश्तबा कश्ती पर हमले किए हैं जिसमें 4 लोग मारे गए हैं। भारत और कनाडा आज ओटावा में जामे इक्तिसादी साझेदारी से मुतालिक मुजवजा समझौते के लिए 5वें दौर की बातचीत शुरू करेंगे। और जापान में 2026 के एशियाई खेलों में भारत ने क्रिकेट, हॉकी और कबड्डी में सोने के तमगों समेत मजमुई तौर पर 85 तमगे जीते। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कौमी राजधानी में स्विट्जरलैंड के सदर गाय परमलिन से दोतरफा बातचीत कर रहे हैं। दोनों रहनुमा मुख्तलिफ शोबों में दोतरफा तआवुन में की गई पेशरफ्त का जायजा लेंगे जिनमें तिजारत और सरमायाकारी, साइंस और टेक्नोलॉजी, इख्तरा, नकलो हमल, सकाफत और अवाम से अवाम के दरमियान राबते भी शामिल हैं। दोनों रहनुमा कसीर मुल्की फोरमों में तआवुन समेत इलाकाई और आलमी हालात वाकयात पर भी तबादला ख्याल करेंगे। सदर परमलिन आज शाम सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। स्विस सदर परमलिन भारत के 3 रोजा सरकारी दौरे पर आज सुबह नई दिल्ली पहुंचे थे। हवाई अड्डे पर उनका इस्तकबाल सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराओं के वजीर ममलकत अजय टमटा ने किया। उनके हमरा सीनियर अफसरान और सरकर्दा ताजिरों पर मुश्तमिल आला सतह का एक वफद है। वज़ारत ख़ारिजा ने बताया कि सदर परमलिन के इस दौरे से भारत और स्विट्जरलैंड के दरमियान दोतरफा शराकतदारी को मजीद इस्तेहकाम हासिल होगा। मेहमान शख्सियत को राष्ट्रपति भवन के अहाते में बाकायदा इस्तकबालिया दिया गया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने उनका खैर मकदम किया। उन्हें फौज की तीनों शाखों ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। जनाब परमलिन ने बाकायदा इस्तकबालिये के बाद नामानिगारों से बात करते हुए कहा कि यह दौरा एक बेहतरीन दौरा है कि दोनों ममालिक के इन ताल्लुकात की अहमियत पर तवज्जो मरकूज करें। अमरीका ने बरतानिया के आरएएफ फेयरफोर्ड फजाई अड्डे पर तैनात अपने तवील रेंज के तमाम बम्बार तैयारों को हटाकर अमरीका मुंतकिल कर दिया है। अमरीका ने बरतानिया के इस फौजी अड्डे को निशाना बनाने की मुबैना ईरानी साजिश के सिलसिले में जारी तहकीकात के दौरान नए खतरे के इम्कान के तहत यह कदम उठाया है। अमरीका की तरफ से इस खतरे की नौईयत के बारे में न तो कोई तफसील फराहम की गई और न ही इन तैयारों को हटाने का कोई जवाब फराहम किया गया। कुछ दिन पहले बरतानिया के हुक्काम ने मजकूरा फौजी अड्डे पर तैनात अमरीकी तैयारों को निशाना बनाने की एक मुबैना ईरानी साजिश के सिलसिले में कई अफराद को गिरफ्तार किया था जिसके बाद अमरीका ने इस फौजी अड्डे से अपने बम्बार तैयारों को हटाने का फैसला किया है। इस दौरान ईरान ने इस वाकये में खुद के मुलव्वस होने की बात मुस्तरद कर दी है और इन इल्जामात को बेबुनियाद करार दिया है। ईरान ने भी इन इल्जामात के बाद तेहरान में बरतानिया के सफीर को तलब किया। अमरीका ने कहा है कि उसने कैरेबियाई समंदर में मुनशियात की स्मगलिंग में मुलव्वस होने के शुबे में एक मुश्तबा कश्ती पर हमला किया जिसमें 4 अफराद

भारत और कनाडा आज से ओटावा में जामे इक्तिसादी शराकत दारी के अपने मुजवजा मुआहदे सेपा के बारे में पांचवें दौर के मुजाकिरात शुरू करेंगे, क्योंकि दोनों मुल्कों का मकसद इस तिजारती मुआहदे को 2026 के अवाखिर तक मुकम्मल कर लेना है। दोनों मुल्कों के आला मुजाकिरात कारों की क्यादत में ये पांच रोजा मुजाकिरात इस महीने की 9 तारीख तक जारी रहेंगे। गुज़श्ता दौर की बातचीत नई दिल्ली में पिछले महीने 18 तारीख को मुकम्मल हुई थी, जिसके तहत अफसरान एक कतई मुआहदे की जानिब तेज तर पेशरफ्त पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं। इस साल मार्च में वजीर आजम नरेन्द्र मोदी और कैनेडा के उनके हमनसब मार्क कार्नी ने तय किया था कि दोनों मुल्कों के दरमियान सेपा मुजाकिरात साल के आखिर तक मुकम्मल कर लिए जाएंगे। इसके अलावा नई दिल्ली में अपनी मीटिंग के दौरान तवानाई और अहम मादनियात के शोबों में दो तरफा तालमेल में गहराई लाने से इत्तफाक किया गया था। ब्राजील में फ्लावो बोल्सोनारो ने सदारती इंतखाबात के पहले मरहले में मौजूदा सदर लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा के खिलाफ जीत हासिल कर ली है, अगरचे वो मुकम्मल जीत के लिए जरूरी 50% का निशाना पार करने में नाकाम रहे, लिहाजा 25 अक्टूबर को अगले मरहले में इन उम्मीदवारों के दरमियान सख्त मुकाबला होगा। इस मरहले में 98.81% वोटों की गिनती की गई, जिनमें बोल्सोनारो को 47.24% जबकि लुला दा सिल्वा को 44.91% वोट मिले। ब्राजील के सदारती इंतखाबात के निजाम के तहत एक उम्मीदवार के लिए पहले राउंड में 50% से ज्यादा वोट हासिल करना जरूरी होता है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वजीर खारजा डॉ एस जय शंकर ने जोर देकर कहा है कि रूस ऐसा मुल्क है जिसने ऐसे कई मौकों पर भारत का साथ दिया है जब भारत की सिक्योरिटी और इलाकाई सालिमियत को खतरा लाहिक था। नई दिल्ली में 62वीं म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में इजहार ख्याल करते हुए वजीर खारजा ने जोर देकर कहा कि ऐसे वक्त कि जब दुनिया के बेशतर मुल्कों ने भारत के पड़ोस में फौजी सरकार की हिमायत करने को तरजीह दी, रूस ऐसा मुल्क है जिसके साथ भारत के ताल्लुकात बहुत अच्छे रहे हैं। डॉ जयशंकर ने रूस और यूक्रेन की लड़ाई को अफसोसनाक करार देते हुए कहा कि भारत का मौकफ बहुत वाज़े रहा है और वो इस टकराव के खात्मे का ख्वाहिशमंद है। डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत का यह मानना है कि इसके लिए मुजाकिरात और सिफारतकारी की जरूरत है। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने कहा है कि भारत अमरीका तिजारती समझौते से मुतालिक मुजाकिरात का सिलसिला जारी है। आज नई दिल्ली में म्यूनिख लीडरों की मीटिंग में इजहार ख्याल करते हुए मोहतरमा सीतारमन ने बताया कि दोनों मुल्क एक अहम मरहले पर पहुंच चुके हैं। उन्होंने कहा कि जेर गौर मुआहदा एक सख्त और मुजाकिरात के लिहाज से इंतहाई मुश्किल मुआहदा है। वजीर मौसूफ ने कहा कि तिजारती तवाजुन बड़ी हद तक भारत के हक में है। मोहतरमा सीतारमन ने कहा कि मुजाकिरात ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म रहे हैं कि जहां मुमालिक खामियों को उजागर कर सकते हैं। जापान के आईची नागोया शहर में 2026 के एशियाई खेल कल इख्तिताम पजीर हो गए। भारत मजमुई तौर पर 85 तमगे जीतकर चौथे मकाम पर रहा। इनमें सोने के 21, चांदी के 27 और कांसे के 37 तमगे शामिल हैं। भारत ने मर्दों और खवातीन की क्रिकेट, कबड्डी और हॉकी में शानदार जीत हासिल की। क्रिकेट में भारत ने फिर से दोनों टाइटल जीते। फाइनल में खवातीन टीम ने श्रीलंका को 147 रन से हराया, जबकि मर्दों की टीम ने पाकिस्तान को 19 रन से शिकस्त दी। कबड्डी में खवातीन की टीम ने ईरान को 34 के मुकाबले 37 पॉइंट से हराकर अपना टाइटल बरकरार रखा, जबकि मर्दों की टीम ने भी ईरान को 34 के मुकाबले 40 पॉइंट से शिकस्त दी। हॉकी में भारतीय खवातीन टीम ने फाइनल में चीन को 1-0 से हराया। इस तरह 44 साल बाद भारत ने एशियाई खेलों में खवातीन हॉकी में सोने का तमगा जीता। मर्दों की टीम ने मलेशिया को 1-5 से हराकर फिर से टाइटल हासिल किया। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेन्द्र मोदी ने नई दिल्ली में स्विट्जरलैंड के सदर गाई परमेलिन से बातचीत की। अमरीका ने ईरान की तरफ से एक फजाई ठिकाने को मुबैना तौर पर निशाना बनाने की तहकीकात के दौरान बरतानवी ठिकाने से तवील दूरी तक मार करने वाले बमबारों को अपने ठिकानों पर मुंतकिल किया है। अमरीकी फौज ने बुहरे रोम में मनुष्यात की स्मगलिंग करने वाली एक मुश्तबा कश्ती

0: पर हमले किए हैं जिसमें चार लोग मारे गए हैं। भारत और कनाडा आज ओटावा में जामे इक्तिसादी साझेदारी से मुतालिक मुजवजा समझौते के लिए पांचवें दौर की बातचीत शुरू करेंगे। और जापान में 2026 के एशियाई खेलों में भारत ने क्रिकेट, हॉकी और कबड्डी में सोने के तमगों समेत मजमुई तौर पर 85 तमगे जीते। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव 1071 किलो हर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से उर्दू सर्विस। मिले सुर मेरा तुम्हारा, इसमें सुनिए चंद फिल्मी दो गाने। प्रोग्राम की पहली पेशकश जमीर फिल्म का दो गाना कुमार सानू और अलका याग्निक का गाया हुआ। नगमा निगार समीर, मौसीकी आनंद मिलिंद की।

यह है इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश। फिर मिलेंगे फिल्म का नगमा सोनू निगम और श्रेया घोषाल का गाया हुआ, मौसीकी निखिल विनय की।

0: फिर मिलेंगे इस फिल्म के इस नगमे के साथ ही। मेरे सुर मेरा तुम्हारा प्रोग्राम अब खत्म होता है। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। दिन का एक बजा जाता है, अब आलमी खबरें नशर की जाएंगी।
1: ये आकाशवाणी है, शगुफ्ता यास्मीन से आलमी खबरें सुनिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में स्विट्जरलैंड के सदर गाई परमलिन से बातचीत की। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने भारतीय यूरोपीय यूनियन आजाद तिजारती माहदे की सताइश की और कहा कि ये तिजारती मुजाकरात से मुतालिक भारत के नुक्ते नजर को उजागर करता है। अमरीका ने ईरान की तरफ से एक फजाई ठिकाने को मुबैना तौर पर निशाना बनाने की तहकीकात के दौरान बरतानवी ठिकाने से तवील दूरी तक मार करने वाले बम्बार तैयारों को अपने ठिकानों पर मुंतकिल किया है। कैरेबियाई समंदर में मनुष्यात की स्मगलिंग करने वाली एक मुश्तबा कश्ती पर अमरीकी हमले में 4 लोग मारे गए हैं। और जापान में 2026 के एशियाई खेलों में भारत ने क्रिकेट, हॉकी और कबड्डी में सोने के तमगों समेत मजमुई तौर पर 85 तमगे जीते हैं। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कौमी राजधानी में स्विट्जरलैंड के सदर गाई परमलिन से दोतरफा बातचीत कर रहे हैं। दोनों रहनुमा मुख्तलिफ शोबों में दोतरफा तआवुन में की गई पेशरफ्त का जायजा लेंगे, जिनमें तिजारत और सरमायाकारी, साइंस और टेक्नोलॉजी, इख्तरा, नकलो हमल, सकाफत और अवाम से अवाम के दरमियान राब्ते भी शामिल हैं। दोनों रहनुमा कसीर मुल्की फोरमों में तआवुन समेत इलाकाई और आलमी हालात और वाकियात पर भी तबादला ख्याल करेंगे। सदर परमलिन आज शाम सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। स्विस सदर परमलिन भारत के 3 रोजा सरकारी दौरे पर आज सुबह नई दिल्ली पहुंचे थे। हवाई अड्डे पर उनका इस्तकबाल सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के वजीर ममलिकत अजय टमटा ने किया। उनके हमराह सीनियर अफसरान और सरकर्दा ताजिरों पर मुश्तमिल आला सतह का एक वफद है। वजारत खारजा ने बताया कि सदर परमलिन के इस दौरे से भारत और स्विट्जरलैंड के दरमियान दोतरफा शराकतदारी को मजीद इस्तेहकाम हासिल होगा। मेहमान शख्सियत को राष्ट्रपति भवन के अहाते में बाकायदा इस्तकबालिया दिया गया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने उनका खैर मकदम किया। उन्हें फौज की तीनों शाखों ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। जनाब परमलिन ने बाकायदा इस्तकबालिया के बाद नामनिगारों से बात करते हुए कहा कि यह दौरा दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात की अहमियत को उजागर करने का एक बेहतरीन मौका है। वजीर खारजा डॉ एस जयशंकर ने सदर परमलिन से मुलाकात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने भारत स्विट्जरलैंड साझेदारी को मजीद मजबूत बनाने के तहत सदर परमलिन की कोशिशों की सताइश की। मेहमान शख्सियत ने राजघाट पर महात्मा गांधी को गुलहाय अकीदत नजर किये। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने भारत और यूरोपीय यूनियन के दरमियान आजादाना तिजारत के माहदे की सताइश की है और कहा है कि ये तिजारती माहदों से मुतालिक मुजाकरात और उन्हें हतमी शक्ल देने के हवाले से भारत के तरीकेकार को उजागर करता है। नई दिल्ली में आज म्यूनिख लीडर्स मीटिंग से खिताब करते हुए मोहतरमा सीतारमन ने कहा कि इस माहदे को बजा तौर पर तमाम माहदों की असल करार दिया गया है। इस माहदे में तकरीबन 2 अरब अफराद की आबादी रखने वाली मईशतें शामिल हैं, जो मजमुई तौर पर दुनिया की तकरीबन 1/4 GDP की नुमाइंदगी करती हैं। वजीर खजाना ने कहा कि यह माहदा दोनों फरीकों को एक दूसरे के बाजारों तक मुकम्मल रसाई फराहम करता है और इस बात को भी यकीनी बनाता है कि मुसाबकती सलाहियत मुतासिर न हो। उन्होंने बताया कि इस माहदे के तहत 97% अशिया पर महसूलात कम कर दी गई हैं। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने कहा है कि भारत अमरीका तिजारती समझौते से मुतालिक मुजाकरात का सिलसिला जारी है। भारत और कनाडा आज से ओटावा में जामे इक्तसादी शराकतदारी के अपने मुजवजा माहदे सेपा के बारे में 5वें दौर के मुजाकरात शुरू करेंगे, क्योंकि दोनों मुल्कों का मकसद इस तिजारती माहदे को 2026 के अवाखिर तक मुकम्मल कर लेना है। दोनों मुल्कों के आला मुजाकरातकारों की कयादत में ये 5 रोजा मुजाकरात इस महीने की 9 तारीख तक जारी रहेंगे। गुज़श्ता दौर की बातचीत नई दिल्ली में पिछले महीने 18 तारीख को मुकम्मल हुई थी, जिसके तहत अफसरान एक कतई मुआहदे की जानिब तेज तर पेशरफ्त पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं।

0: अमरीका ने बरतानिया के इस फौजी अड्डे को निशाना बनाने की मुबैना ईरानी साजिश के सिलसिले में जारी तहकीकात के दौरान नए खतरे के इम्कान के तहत यह कदम उठाया है। अमरीका की तरफ से इस खतरे की नौयत के बारे में न तो कोई तफसील फराहम की गई और न ही इन तैयारों को हटाने का कोई जवाब फराहम किया गया। कुछ दिन पहले बरतानिया के हुक्काम ने मस्कूरा फौजी अड्डे पर तैनात अमरीकी तैयारों को निशाना बनाने की एक मुबैना ईरानी साजिश के सिलसिले में कई अफराद को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद अमरीका ने इस फौजी अड्डे से अपने बम्बार तैयारों को हटाने का फैसला किया। इस दौरान ईरान ने इस वाकये में खुद के मुलव्वस होने की बात मुस्तरद की है और इन इल्जामात को बेबुनियाद करार दिया है। ईरान ने भी इन इल्जामात के बाद तेहरान में बरतानिया के सफीर को तलब किया है। अमरीका ने कहा है कि उसने कैरेबियाई समंदर में मुनशियात की स्मगलिंग में मुलव्वस होने के शुबे में एक मुश्तबा कश्ती पर हमला किया, जिसमें 4 अफराद हलाक हो गए। यह हमला कल किया गया। ट्रंप इंतजामिया लातिनी अमरीका में मुबैना तौर पर मुनशियात की स्मगलिंग में मुलव्वस अफराद के खिलाफ अपनी मुहिम जारी रखे हुए है। अमरीका की जनूबी कमान के मुताबिक इस कश्ती को स्मगलिंग के मालूम रास्ते पर निशाना बनाया गया, ताहम फौज ने इस कश्ती पर मुनशियात की मौजूदगी का कोई सबूत फराहम नहीं किया। वजीर खारजा डॉ एस जयशंकर ने जोर देकर कहा है कि रूस ऐसा मुल्क है जिसने कई मौके पर भारत का साथ दिया है जब भारत की सिक्योरिटी और इलाकाई सालमियत को खतरा लाहक था। नई दिल्ली में 62वीं म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में इजहार ख्याल करते हुए वजीर खारजा ने जोर देकर कहा कि एक ऐसे वक्त में जबकि दुनिया के बेशतर मुल्कों ने भारत के पड़ोस में फौजी सरकार की हिमायत करने को तरजीह दी, रूस ऐसा मुल्क है जिसके साथ भारत के ताल्लुकात बहुत अच्छे रहे हैं। डॉ जयशंकर ने रूस और यूक्रेन की लड़ाई को अफसोसनाक करार देते हुए कहा कि भारत का मौकिफ बहुत वाजी रहा है और वो इस टकराव के खात्मे का ख्वाहिशमंद है। डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत का ये मानना है कि इसके लिए मुजाकरात और सिफारतकारी की जरूरत है। ब्राजील में फ्लाविओ बोल्सोनारो ने सदारती इंतखाबात के पहले मरहले में मौजूदा सदर लुइस अनासियो लुला दा सिल्वा के खिलाफ जीत हासिल कर ली है। अगरचे वो मुकम्मल जीत के लिए जरूरी 50% का निशाना पार करने में नाकाम रहे, लिहाजा 25 अक्टूबर को अगले मरहले में इन उम्मीदवारों के दरमियान सख्त मुकाबला होगा। इस मरहले में 98.81% वोटों की गिनती की गई, जिनमें बोल्सोनारो को 47.24% जबकि लुला दा सिल्वा को 44.91% वोट मिले। ब्राजील के सदारती इंतखाबात के निजाम के तहत एक उम्मीदवार के लिए पहले राउंड में 50% से ज्यादा वोट हासिल करना जरूरी होता है। जापान के आइची नगोया शहर में 2026 के एशियाई खेल कल इख्तिताम पजीर हो गए। भारत मजमूई तौर पर 85 तमगे जीतकर चौथे मकाम पर रहा। इनमें सोने के 21, चांदी के 27 और कांसे के 37 तमगे शामिल हैं। भारत ने मर्दों और खवातीन के क्रिकेट, कबड्डी और हॉकी में शानदार जीत हासिल की है। क्रिकेट में भारत ने फिर से दोनों टाइटल जीते। फाइनल में खवातीन टीम ने श्रीलंका को 147 रन से हराया, जबकि मर्दों की टीम ने पाकिस्तान को 19 रन से शिकस्त दी। कबड्डी में खवातीन की टीम ने ईरान को 34 के मुकाबले 37 प्वाइंट से हराकर अपना टाइटल बरकरार रखा, जबकि मर्दों की टीम ने भी ईरान को 34 के मुकाबले 40 प्वाइंट से शिकस्त दी। हॉकी में भारतीय खवातीन टीम ने फाइनल में चीन को 1-0 से हराया। इस तरह 44 साल बाद भारत ने एशियाई खेलों में खवातीन हॉकी में सोने का तमगा जीता। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर सुन लीजिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में स्विट्जरलैंड के सदर गाय परमलिन से बातचीत की है। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने भारतीय यूरोपीय यूनियन आजाद तजारती मुआहदे की सताइश की और कहा कि यह तजारती मुजाकरात से मुतालिक भारत के नुक्ता नजर को उजागर करता है। अमरीका ने ईरान की तरफ से एक फिजाई ठिकाने को मुबैना तौर पर निशाना बनाने की तहकीकात के दौरान बरतानवी ठिकाने से तवील दूरी तक मार करने वाले बम्बार तैयारों को अपने ठिकानों पर मुंतकिल किया है। और जापान में 2026 के एशियाई खेलों में भारत ने क्रिकेट, हॉकी और कबड्डी में सोने के तमगों समेत मजमूई तौर पर 85 तमगे जीते हैं। इसके साथ ही आलमी खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: 1071 किलो हर्ट्ज मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात।

0: संग संग तुम गुनगुनाओगे, हाँ तुम मुझे।
1: जब भी 1970 की बात चलेगी तो इस फिल्म का जिक्र जरूर होगा। इस फिल्म का निर्देशन किया था मशहूर निर्देशक शक्ति सामंत ने और मुख्य कलाकार के रूप में नजर आए थे शमी कपूर, आशा पारेख, हेलेन और प्रेम चोपड़ा। फिल्म के निर्माता अजीत चक्रवर्ती थे और संगीत दिया था प्रसिद्ध संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन ने। गीत के बोल जो आप इतने खूबसूरत से सुन रहे हैं, ये लिखे थे हसरत जयपुरी ने। इस फिल्म के चार प्रमुख कलाकार, जैसा कि हमने आपको बताया, शमी कपूर, आशा पारेख, हेलेन और प्रेम चोपड़ा। इससे पहले 1966 की लोकप्रिय हिट फिल्म तीसरी मंजिल में एक साथ नजर आ चुके थे। पगला कहीं का, इसमें दर्शकों को एक बार फिर से इस लोकप्रिय टीम को देखने का मौका मिला था। ये फिल्म जो है, इसकी कहानी का जो केंद्र है वो है सुजीत, जिसका किरदार निभाया शमी कपूर ने। आशा पारेख डॉक्टर शालिनी यानी कि शालू बनी थी। हेलेन ने जेनी का किरदार निभाया था और प्रेम चोपड़ा श्याम के किरदार में थे। तो बात करते हैं थोड़ी सी इस फिल्म की कहानी की, जिसका केंद्र था सुजीत, जिसका बचपन बहुत कठिन परिस्थितियों में बीतता है। बचपन की एक घटना उसके जीवन पर गहरा असर डालती है और आगे चलकर उसकी जिंदगी में कई उतार चढ़ाव आते हैं और वो समाज की नजर में एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखा जाने लगता है जो सामान्य जीवन से अलग है। फिर उसकी मुलाकात होती है श्याम से, जो उसे गाते हुए सुनता है और उसकी गायकी को पहचान कर उसे एक नाइट क्लब में गाने का मौका देता है। यही उसकी मुलाकात होती है जेनी से। प्यार, गलतफहमियां, परिस्थितियां और सुजीत की जिंदगी की पुरानी परेशानियां कहानी को आगे बढ़ाती हैं। फिर क्या होता है वो भी बताएंगे। उसके पहले ये गीत खूबसूरत सा रफी साहब की आवाज में।

0: जी हाँ, पगला कहीं का। कहानी थोड़ी बहुत आपको बता दी। बाद में कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है कि सुजीत को मानसिक अस्पताल जाना पड़ता है। वहीं उसकी जिंदगी में डॉक्टर शालिनी यानी शालू की महत्वपूर्ण भूमिका सामने आती है और यही वो जगह है जहां फिल्म सिर्फ प्रेम कहानी नहीं रह जाती बल्कि इंसान और समाज के नजरिए की कहानी भी बन जाती है। पगला कहीं का की सबसे बड़ी ताकत जानते हैं आप क्या है? इसका संगीत जो आप सुन रहे हैं, शंकर जयकिशन की धुनें और हसरत जयपुरी के गीतों ने फिल्म को यादगार बनाया। फिल्म में मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर, आशा भोसले और मन्ना डे जैसे दिग्गज गायकों की आवाज सुनाई दी। एक से एक बढ़कर गीत हैं और ये गीत फिल्म की अलग अलग भावनाओं को सामने लाते हैं। कहीं दर्द है, कहीं मस्ती है और कहीं जिंदगी के संवाद भी हैं। आपको जो हमने पहला गीत सुनवाया था वो गीत तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे, जानते हैं ये गीत शम्मी कपूर साहब को इतना पसंद था कि उनके जीवन के बाद के वर्षों में ये गीत उनके मोबाइल फोन की रिंगटोन तक बन गया था। तो चलिए आप सुनते हैं मन्ना डे की आवाज में एक खूबसूरत सा गीत, मेरी भैंस को डंडा क्यों मारा,
1: क्यों मारा, क्यों मारा।

प्रोग्राम एक ही फिल्म से, और आज हम आपके लिए चुनकर लाए हैं फिल्म 1970 की पगला कहीं का। और आज इस सफर में आपके साथ मैं हूं आपकी दोस्त एंड होस्ट अंजू पांडे। अब मैं आपको सुनवा रही हूं वो खूबसूरत सा गीत जो इस फिल्म की जान है, जिसे रफी साहब की आवाज में आप सुन चुके हैं और लता जी की आवाज में अब आपको सुनवाती हूं। आपके ढेर सारे संदेश भी मेरे पास पहुंच गए हैं, उनको भी मैं शामिल करूंगी। फिलहाल इस गीत को सुनिएगा और उसके बाद आपके संदेश हम शामिल करेंगे।

ही हमारे साथ हैं ऊपरकोट मोहल्ला चौखंडी बुलंदशहर से मोहम्मद अब्बासी निगत परवीन ने शहनवाज सरफराज फरदीन सोहान अरजान और परिवार के सभी सदस्य हैं। मुरादाबाद गांव दुलापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान सलमान इरफान इसरार नरगिस जी हमारे साथ हैं। गांव हांडी खेड़ा से जिला सिरसा से राधेश्याम और इंदिरा शर्मा जी हमारे साथ हैं और ये लिख रहे हैं कि एक ही फिल्म कार्यक्रम के बारे में मैं लाइव सुन रही हूँ, प्रोग्राम पसंद आ रहा है, शुक्रिया आपका। मुंडा टोला डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से डोमेंड और गंगेश्वरी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र चीपा कपिल ईशान और पूजा जी ढेर सारी जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हैं। गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा जी जसवीर जस्सी के साथ हैं। पिपरिया से कमलकांत गुप्ता दीपा रिमझिम गुप्ता जी हमारे साथ हैं। गांव फड़ा से जिला हिसार से राजकुमार डूडी जी का एक और संदेश पहुंच गया है हमारे पास। अगला संदेश जो हमारे पास है वो पहुंचा है मुकेश कासलेकर जी का जो कि तहसील वरोड जिला अमरावती महाराष्ट्र से हमारे साथ हैं और इन्होंने भी बहुत खूबसूरत सी जानकारी भेजी है। लिख रहे हैं कि बचपन में अपने पिता को मानसिक चिकित्सालय में देखने के बाद सुजीत के जीवन पर गहरा असर पड़ता है। ये कहानी इन्होंने और बहुत सारी जानकारी भी हमसे शेयर करी है, शुक्रिया आपका। गेवी राणा नेहरू बिहार दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं। फारूक अली खान हमारे साथ हैं। अगला संदेश हमारे पास अजीत भापसा जी का प्रमिला जी के साथ वीरन गांव गुजरात से आया हुआ है और ढेर सारी जानकारी फिल्म से जुड़ी हुई आपने भी हमसे शेयर करी है हमेशा की तरह। जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकेस्टो रोजी जी हमारे साथ हैं। गांव लोहागढ़ ठाकुरवाला से स्वर्ण सिंह गिल दलजीत राजदीप गुरनूल जी हमारे साथ हैं। बागपत उत्तर प्रदेश से संजय डिंगिया नमन अपार डिंगिया जी हमारे साथ हैं। पहाड़गंज मुल्तानी ढाना से अनिल मोहन उषा और टीलू नायक जी हमारे साथ हैं। भवरपुर बसना से राधेश्याम चंपा जगदीश देवानगंज जी हमें सुन रहे हैं। संदीप मक्कर जी ज्योति जी के साथ हमारे साथ जालंधर से जुड़े हुए हैं और रामशरण विश्वकर्मा साहिल जी ग्राम ममना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इसके बाद रोशन देवानगंज जी हमारे साथ कौशल और हेमलता जी के साथ बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से सुदर्शन मुखी अनिता मुखी सिमरन जी शांतिनगर सोनीपत से गांव नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू जामुन देवी जी हैं। नलवेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नवानकर जी हमारे साथ हैं। आप सभी का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारे सफर में आप हम सफर बने हैं और भी बहुत सारे संदेश हैं लेकिन कोशिश करेंगे कि आपको क्योंकि वक्त हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है और आपको हम निराश नहीं कर सकते हैं। सुरेंद्र खुराना जी न्यू मुल्तान नगर दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और रायगढ़ छत्तीसगढ़ से नरेश कुमार तिवारी जी हैं हमारे साथ। असलम खान जी हमारे साथ हैं। मसरूर हसन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। माफ कीजिएगा क्योंकि वक्त की कमी है और मैं आप सबको निराश नहीं करना चाहती इसलिए जल्दी जल्दी आपके संदेश ले रही हूं। बिलासपुर से मुकेश गोस्वामी मधु जी हमारे साथ हैं। मेहर अरोड़ा पदमपुर जिला श्रीगंगानगर से हमारे साथ हैं। बन बगेरा राजन गांव से योगेश आशा सरवा जी हमें सुन रहे हैं और अब जाते जाते इस फिल्म का एक खूबसूरत सा गीत आप सबके ये छोड़े जा रही हूँ। 2:30 पर प्रोग्राम रहेगा एक ही कलाकार तो आपको जाना कहीं नहीं है, बस थोड़ी देर में ही आपको वापस आना है क्योंकि आज के जो सितारे हैं वो बहुत खूबसूरत हैं और उनके ऊपर फिल्माए गीत भी लाजवाब हैं। फिलहाल इस प्रोग्राम से यानी एक ही फिल्म से अपनी दोस्त एंड होस्ट अंजू पांडे को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम एक ही फिल्म से, आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। 1:40 होने को है, कुछ ही देर में समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: नमस्कार।

0: Sir Williams with the midday news. The headlines. Prime Minister Narendra Modi holds bilateral talks with Swiss President Guy Parmelin in New Delhi, says India and Switzerland will work together to boost trade, investment and develop trusted supply chains for the world. India and Switzerland ink several agreements to promote cooperation in transportation technologies, mobility systems and infrastructure. Finance Minister Nirmala Sitharaman hails India-EU free trade deal, says it reflects India's approach to negotiating and finalizing trade agreements. Punjab and Haryana High Court orders CBI probe into ED allegations of corruption against Punjab Chief Minister's office. And IMD forecasts heavy rainfall over Karnataka, Kerala, Mahe, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal till tomorrow. India and Switzerland today inked several agreements in the field of promotion and collaboration on transportation technologies, mobility systems and infrastructure. A letter of intent was also signed between the Department of Science and Technology and the Swiss National Science Foundation. An implementation arrangement for cooperation in innovation, technology transfer and entrepreneurship between the Department of Science and Technology and the Zurich University of Applied Sciences was also signed. These agreements were signed after bilateral talks between Prime Minister Narendra Modi and Swiss President Guy Parmelin in New Delhi. In a joint press meet, Prime Minister Modi appreciated the Swiss President's commitment to India-Switzerland relations. He said India implemented the historic trade and economic partnership agreement with the European Free Trade Association, EFTA, countries last October. He said the agreement was India's first free trade agreement with the European Economic Bloc.
1: भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन यानी एफ्टा देशों के बीच एक ऐतिहासिक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। ये यूरोप के किसी भी इकोनॉमिक ब्लॉक के साथ भारत का पहला एफटीए है। यह इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, जॉब्स और साझा समृद्धि का एम्बिशियस ब्लूप्रिंट भी है। इससे हम अगले 15 वर्षों में भारत में 100 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट और 10 लाख डायरेक्ट जॉब के लक्ष्यों को साकार करेंगे।
0: Prime Minister Modi said India and Switzerland have taken several important decisions to enhance market access for Indian exports in Switzerland and further facilitate investment between the two countries. He said this will increase exports of Indian agricultural products, pharmaceuticals, textiles and engineering goods to Switzerland.
1: हमने भारत के एक्सपोर्ट्स का स्विट्जरलैंड में मार्केट एक्सेस बढ़ाने और दोनों देशों के बीच इन्वेस्टमेंट को और सुगम बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इससे भारत के एग्रीकल्चर, फार्मा, टेक्सटाइल और इंजीनियरिंग गुड्स की स्विट्जरलैंड में निर्यात बढ़ेगी और साथ साथ भारत के बायोटेक, लाइफ साइंसेज, बैंकिंग, इंश्योरेंस, फूड प्रोसेसिंग और सस्टेनेबिलिटी जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में हम नए स्विस इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करेंगे।
0: Mr. Modi said at the same time India will attract new Swiss investments in important sectors such as biotechnology, life sciences, banking, insurance, food processing and sustainability. The Prime Minister said through these initiatives, the two nations will work together to develop trusted supply chains and reliable solutions for the entire world.
1: हम स्विट्जरलैंड की इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज को भारत में बड़े लेवल पर निवेश करने और कैपेसिटी बिल्डिंग, डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग में भागीदारी के लिए आमंत्रित करते हैं। फ्रेंड्स, साइंस और टेक्नोलॉजी सहयोग भी हमारी साझेदारी का एक मजबूत स्तंभ है। मुझे बहुत खुशी है कि हम जल्द ही हेल्थ, क्लीन एनर्जी और स्पेस जैसे प्रायोरिटी एरियाज में नए ज्वाइंट रिसर्च प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने जा रहे हैं।
0: Swiss President Parmelin arrived in New Delhi this morning on a three-day state visit to India, accompanied by a high-level delegation comprising senior officials and business leaders. The visiting dignitary was accorded a ceremonial welcome at the forecourts of Rashtrapati Bhavan. Finance Minister Nirmala Sitharaman has said the U.S.-India trade deal negotiations are still ongoing and yet to be finalized.

0: कहा यह व्यापार समझौतों पर बातचीत और उन्हें अंतिम रूप देने के भारत के दृष्टिकोण को दर्शाता है। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने पंजाब के मुख्यमंत्री कार्यालय के खिलाफ भ्रष्टाचार के प्रवर्तन निदेशालय के आरोपों की सीबीआई जांच का आदेश दिया और मौसम विभाग ने कल तक कर्नाटका, केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी और कार्यकाल में मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी। अब समाचार विस्तार से। भारत और स्विट्जरलैंड ने आज परिवहन प्रौद्योगिकियों, गतिशीलता प्रणालियों और अवसंरचना के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। ये समझौते नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पामला के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बाद हुए। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत स्विट्जरलैंड संबंधों के प्रति राष्ट्रपति गी पामला की प्रतिबद्धता की सराहना की। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले अक्टूबर में यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के देशों के साथ ऐतिहासिक व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते को लागू किया।
1: भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन यानी एफ्टा देशों के बीच एक ऐतिहासिक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। ये यूरोप के किसी भी इकोनॉमिक ब्लॉक के साथ भारत का पहला एफटीए है। यह इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, जॉब्स और साझा समृद्धि का एम्बिशियस ब्लूप्रिंट भी है। इससे हम अगले 15 वर्षों में भारत में 100 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट और 10 लाख डायरेक्ट जॉब्स के लक्ष्यों को साकार करेंगे।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों ने स्विट्जरलैंड में भारतीय निर्यात के लिए बाजार पहुंच बढ़ाने और दोनों देशों के बीच निवेश को और सुगम बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इससे स्विट्जरलैंड को भारतीय कृषि उत्पादों, फार्मास्यूटिकल्स, वस्त्र और इंजीनियरिंग सामानों का निर्यात बढ़ेगा। श्री मोदी ने कहा कि भारत जैव प्रौद्योगिकी, जीवन विज्ञान, बैंकिंग, बीमा, खाद्य प्रसंस्करण और सतत विकास जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में स्विट्जरलैंड के निवेश को आकर्षित करेगा।
1: हम स्विट्जरलैंड की इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज को भारत में बड़े लेवल पर निवेश करने और कैपेसिटी बिल्डिंग, डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग में भागीदारी के लिए आमंत्रित करते हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी सहयोग भी हमारी साझेदारी का एक मजबूत स्तंभ है। मुझे बहुत खुशी है कि हम जल्द ही हेल्थ, क्लीन एनर्जी और स्पेस जैसे प्रायोरिटी एरियाज में नए ज्वाइंट रिसर्च प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश रक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी पर सहमत हुए।
1: आज हमने मिलिट्री एक्सचेंज और डिफेंस प्रोडक्शन में सहयोग की नई संभावनाओं की पहचान की। न्यूक्लियर एनर्जी में सहयोग को और प्रगाढ़ करने पर भी सहमति बनी। वाराणसी का रोपवे, नोएडा का जेवर एयरपोर्ट और पहाड़ी क्षेत्रों में रेलवे तथा टनलिंग प्रोजेक्ट हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर सहयोग के उज्जवल उदाहरण है। इस सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए ट्रांसपोर्ट, मोबिलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर एग्रीमेंट किया है।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश वैश्विक शांति के लिए मिलकर काम करते रहेंगे।
1: हम ग्लोबल पीस और स्टेबिलिटी के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। यूक्रेन हो या पश्चिम एशिया, भारत शांति की दिशा में किए जाने वाले हर सार्थक प्रयास का समर्थन करता रहा है। हम इस बात पर भी एकमत है कि बढ़ते हुए ग्लोबल चैलेंजेस के समाधान के लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस में रिफॉर्म अनिवार्य है।
0: इससे पहले राष्ट्रपति पामला ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने भारत यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के बीच व्यापार तथा आर्थिक भागीदारी समझौते सहित भारत स्विट्जरलैंड साझेदारी को और मजबूत करने के राष्ट्रपति पामला के विचारों की सराहना की। राष्ट्रपति पामला को राष्ट्रपति भवन में तीनों सेनाओं ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका स्वागत किया। उन्होंने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों की साझेदारी के महत्व को दर्शाने का अच्छा अवसर है।
2: ये यात्रा हमारी करीबी, व्यापक और लंबे समय से चली आ रही साझेदारी को आगे बढ़ाने, इसे और गहरा तथा मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मुझे इस बात की खुशी है कि हमें द्विपक्षीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने का अवसर मिल रहा है। हमें भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के बीच व्यापार तथा आर्थिक साझेदारी समझौते के लागू होने की पहली वर्षगांठ मनाने का अवसर मिलेगा।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। खबरों और अपडेट्स के

0: लिए कभी भी कहीं भी एक्सपर एट AIR न्यूज हिंदी और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत इस वर्ष दिसंबर तक तीन और देशों के साथ व्यापार समझौते करने की उम्मीद में है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि निवेशकों के लिए अधिक अनुकूल द्विपक्षीय निवेश संधियों का नया प्रारूप तैयार है और इसे जल्द ही मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलने की उम्मीद है। नई दिल्ली में म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में उन्होंने कहा कि नए प्रारूप में दोनों पक्षों के निवेशकों को अधिक मजबूत सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा है कि अमेरिका भारत व्यापार समझौते पर बातचीत अभी जारी है और इसे अंतिम रूप दिया जाना बाकी है। नई दिल्ली में म्यूनिख नेताओं की बैठक में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि दोनों पक्ष एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गए हैं जहां बातचीत में प्रगति नहीं हो रही है।
2: It's been a hard and very rigorously negotiated agreement.
3: ये एक कठिन और बातचीत के बाद तैयार किया गया समझौता है। बातचीत अभी भी जारी है। हालांकि हम ये मानना चाहेंगे कि दोनों पक्ष एक ऐसे स्तर तक पहुंच चुके हैं जहां इसके आगे किसी तरह की रियायत देना या लेना मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर अभी भी गुंजाइश बची है तो दोनों पक्ष आगे काम कर सकते हैं।
2: There are rooms to operate from, both sides would do it.
1: वित्त मंत्री ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते की सराहना करते हुए कहा है कि ये व्यापार समझौतों पर बातचीत और अंतिम रूप देने के प्रति भारत के दृष्टिकोण को दर्शाता है। उन्होंने इसे सभी समझौतों की जननी बताया।
3: मुझे लगता है कि ये समझौता बिल्कुल उपयुक्त है क्योंकि ये 2 अरब लोगों के बीच होने वाला समझौता है। इस समझौते के माध्यम से वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 1/4 हिस्सा कवर होता है। भारत ने इस समझौते के अंतर्गत अपनी कुल टैरिफ लाइनों में से 92.5% को खोल दिया है और मूल्य के आधार पर लगभग 97% को कवर किया है।
1: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल आज असम के डिब्रूगढ़ से पहले अंतर्राष्ट्रीय मालवाहक पोत को रवाना किया। इसमें असम पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड का मेथनॉल बांग्लादेश के ढाका में पंगाव बंदरगाह तक ले जाया जा रहा है। मालवाहक पोत ब्रह्मपुत्र नदी पर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 और भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग से होकर गुजरेगा। आजादी के बाद डिब्रूगढ़ से किसी विदेशी बंदरगाह के लिए पहली बार माल भेजा गया। आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू ने कहा है कि भारत ने दुनिया को दिखाया है कि पर्यावरण संरक्षण और आधुनिक विकास 2 अलग-अलग रास्ते नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। नई दिल्ली में आज विश्व पर्यावास दिवस समारोह में श्री साहू ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनने के संकल्प के साथ सरकार की प्राथमिकता शहरों और गांवों को हरित, स्वच्छ, सतत और रहने योग्य बनाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता तथा सुशासन से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लिए अनवरत कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। विशेष श्रृंखला में आज जानेंगे कि उत्तर प्रदेश का नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा देश के विकास को किस प्रकार आकार दे रहा है।
4: नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत की सबसे बड़ी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा परियोजनाओं में से एक है, जिसके पहले चरण को PPP मॉडल के तहत लगभग 11,200 करोड़ रुपए के कुल निवेश से विकसित किया गया है। 28 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि ये विकसित उत्तर प्रदेश और विकसित भारत अभियान का एक नया अध्याय है।
5: देश का सबसे बड़ा प्रदेश आज देश के सबसे अधिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाले राज्यों में से एक हो गया है। ये एयरपोर्ट पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों, छोटे और लघु उद्योगों, यहाँ के नौजवानों के लिए अनेक नए अवसर लेकर आने वाला।
4: नोएडा के निवासी मोहित कुमार ने कहा कि ये एयरपोर्ट पूरे क्षेत्र को नई पहचान देगा।
6: इससे रोजगार, व्यापार, उद्योग, पर्यटन और युवाओं के लिए नए अवसर बढ़ेंगे। आसपास के गांव और कस्बों में सड़क परिवहन, अन्य सुविधाओं के विकास को गति मिलेगी। यह एयरपोर्ट केवल एक हवाई अड्डा नहीं, बल्कि हमारे क्षेत्र के उज्ज्वल भविष्य की की नींव है।
4: पहले चरण में हवाई अड्डे की यात्री संचालन क्षमता 12 मिलियन यात्री प्रति वर्ष है, जिसे भविष्य में 70 मिलियन तक ले जाने की योजना है। यह हवाई अड्डा देश में एविएशन के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संपर्क को बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी।

0: समाचार लखनऊ।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: अपडेट रहे, आगे रहे, expert@AIRNewsHindi और इंस्टाग्राम पर AIRNews अलर्ट्स को फॉलो करें।
1: ये आकाशवाणी है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को निलंबित करने की मांग वाली याचिका पर अंतरिम आदेश जारी करने से इनकार कर दिया। ये याचिका निर्वाचन आयोग में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के दौरान एकतरफा फैसले लेने के आरोपों के संबंध में दायर की गई थी। न्यायालय की पीठ ने केंद्र सरकार, निर्वाचन आयोग और अन्य संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किए। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने पंजाब के मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़े कथित भ्रष्टाचार और तबादलों के मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI जांच का आदेश दिया है। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पर तैनात अधिकारियों के कथित भ्रष्टाचार और तबादलों के लिए रिश्वत देने के दावों के बाद न्यायालय ने यह निर्णय लिया है। पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा है कि न्यायालय के फैसले से यह साबित होता है कि राज्य सरकार जानबूझकर अपने लोगों को बचा रही थी। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने भी उच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया। भारतीय रिजर्व बैंक RBI की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिवसीय बैठक आज मुंबई में शुरू हुई। RBI के नीति समीक्षा की बैठक ऐसे समय में हो रही है जब पश्चिम एशिया में तनाव लगातार बढ़ रहा है और कच्चे तेल की ऊंची कीमतें तथा खाद्य मुद्रास्फीति तेजी से बढ़ रही है। समिति मुद्रास्फीति के दृष्टिकोण और मौजूदा आर्थिक परिस्थितियों का भी आकलन करेगी। घरेलू शेयर बाजार में सेंसेक्स 218 अंक बढ़कर 72,128 पर, जबकि निफ्टी 71 अंक की बढ़त के साथ 22,493 पर था। यमन के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार ने हूती नियंत्रित शेष क्षेत्रों को वापस लेने और पूरे देश में सत्ता बहाल करने के लिए सैन्य अभियान शुरू करने की घोषणा की है। एक रिपोर्ट।
3: राष्ट्रपति रशाद अल अलीमी ने कहा कि डी एस्केलेशन की सभी कोशिशें खत्म हो चुकी है। जमीनी स्तर पर यमनी फोर्सेस ने ताइस के कई मोर्चों पर भारी क्लैशेस की जानकारी दी है। उन्होंने हूती इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स को नाकाम करने और सैकड़ों हूती लड़ाकों के हताहत होने का दावा किया है। हालांकि हूतियों ने कुछ इलाकों में यमनी फोर्सेस की बढ़त के दावों को खारिज किया है। इस बीच सऊदी अरेबिया ने यमनी आर्म फोर्सेस को फुल ऑपरेशनल सपोर्ट देने का भरोसा दिया है और कहा है कि यह अभियान स्टेट अथॉरिटी बहाल होने तक जारी रहेगा। डेवलपमेंट से यमन कंफ्लिक्ट के और बढ़ने और लड़ाई के नए एक फेज में प्रवेश करने की आशंका बढ़ गई है। मनीष शिवा, आकाशवाणी दुबई।
1: मौसम विभाग ने कर्नाटका, केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी और कारेकाल में कल तक मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। उत्तराखंड, तेलंगाना, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और लक्षद्वीप में कल तक गरज के साथ बारिश और बिजली चमकने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पामलांग के साथ वार्ता की। श्री मोदी ने कहा दोनों देश व्यापार तथा निवेश को बढ़ावा देने और विश्व के लिए विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला विकसित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। भारत और स्विट्जरलैंड ने परिवहन प्रौद्योगिकियों, गतिशीलता प्रणाली और अवसंरचना में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए कई समझौते किए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते की सराहना की। कहा ये व्यापार समझौतों पर बातचीत और उन्हें अंतिम रूप देने के भारत के दृष्टिकोण को दर्शाता है। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने पंजाब के मुख्यमंत्री कार्यालय के खिलाफ भ्रष्टाचार के प्रवर्तन निदेशालय के आरोपों की CBI जांच का आदेश दिया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। वक्त हुआ है दोपहर के 2:30 और ये वक्त है आपके पसंदीदा प्रोग्राम जिसका रहता है आपको हर रोज इंतजार। नाम है एक ही कलाकार। एक ही कलाकार प्रोग्राम लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी दोस्त एंड होस्ट अंजू पांडे। आज हम सिनेमा की दुनिया के एक ऐसे चेहरे को आपके बीच लेकर आए हैं जिसकी मुस्कान, जिसकी अदाकारी आज भी सबके दिल में बसी हुई है। जी हाँ, सिनेमा की दुनिया में कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो पर्दे पर आते ही

अपना एक अलग पहचान बना लेते हैं। उनकी मुस्कान, उनकी सादगी और उनकी अदाकारी सब कुछ दर्शकों के दिल में अपनी जगह बना लेता है। तो आज की हमारी जो ये कलाकार हैं, जो सितारे हैं, ये भी एक ऐसी ही अभिनेत्री हैं जिन्होंने 70 के दशक के आखिरी वर्षों में हिंदी सिनेमा में कदम रखा और बहुत कम समय में बड़े सितारों के साथ अपनी पहचान बनाई। अब ये सितारा कौन है, वो तो आप गीत सुनकर पहचान ही जाएंगे। और जब आप पहचान लेते हैं, जान जाते हैं, तो आपको पता ही है क्या करना होता है। अपने जवाब हमें मेल के जरिए भेजना होता है। मेल आईडी है ipradiodelhi@gmail.com। तो फिलहाल आपको हम लता जी की आवाज में ये गीत सुनवा रहे हैं। पहचानिए कि आज हम कौन सा सितारा आपके लिए लेकर आए हैं।

के बाद तो आप समझ ही गए कि आज हम आपके लिए कौन सा सितारा लेकर आए हैं। जी हाँ, नाम है टीना मुनीम, बाद में यही नाम बना टीना अंबानी। तो आज इस सफर में हम उस दौर को जब टीना जी ने फिल्मों में अपना डेब्यू किया था और बड़े पर्दे की चमकती हुई नायिका बनी थी, उनकी बात करेंगे, उनके जीवन से जुड़ी हुई बात करेंगे और उन्हीं के ऊपर फिल्माए ढेर सारे खूबसूरत से गीत भी सुनेंगे। 11 फरवरी को यानी कि 1957 को मुंबई में जन्मी टीना मुनीम ने मनोरंजन की दुनिया में फिल्मों से पहले मॉडलिंग के रास्ते पर कदम रखा था। 1975 में उन्होंने फेमिना टीन प्रिंसेस इंडिया का खिताब जीता और इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सौंदर्य प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। और यही वो दौर था जब उनकी खूबसूरती और कैमरे के सामने सहज व्यक्तित्व ने लोगों का ध्यान

नकाशित करना शुरू किया और फिर उनकी मुलाकात हुई हिंदी सिनेमा के सदाबहार अभिनेता और निर्देशक देवानंद साहब से। देवानंद ने टीना में अपनी अगली नायिका को देखा और उन्हें अपनी अगली फिल्म देश परदेश में मौका दिया। साल था 1978, फिल्म थी देश परदेश। निर्देशक और अभिनेता थे देवानंद और टीना मुनीम ने इस फिल्म से हिंदी सिनेमा में अपना अभिनय शुरू किया। फिल्म में टीना ने गौरी का किरदार निभाया था और एक नए चेहरे के लिए ये किसी सपने के सच होना जैसा था और टीना ने इस मौके को पूरी तरह से भुनाया। तो अब फिलहाल हम आपको जो अगला गीत सुनवा रहे हैं वो हमने इनकी सुपर डुपर हिट फिल्म सौतन से लिया है। इंजॉय कीजिए इस खूबसूरत से गीत को।

सुपर डुपर हिट सॉन्ग फिल्म स्वतंत्र से आप सुन रहे थे। तो चलिए बात करते हैं आगे की। हमने आपको बताया कि टीना मुनीम ने किस तरीके से अपने अभिनय के सफर की शुरुआत की थी। देवानंद साहब ने उनको मौका दिया था, इसके बाद देवानंद साहब के साथ उनकी जोड़ी ने मनपसंद और लूटमार जैसी फिल्मों से भी दर्शकों का दिल जीता। लूटमार जो कि 1980 में आई थी और इसका निर्देशन भी देवानंद ने ही किया था। टीना मुनीम का जो फिल्मी सफर था वो ऐसे दौर में शुरू हुआ जब हिंदी फिल्मों में संगीत की लोकप्रियता अपने चरम पर थी। सिर्फ फिल्में सिर्फ कहानी और सितारों के कारण नहीं चलती थी बल्कि उनके गीत भी लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन जाते थे। टीना पर फिल्माए गए गीतों में रोमांस था, चंचलता और 80 के दशक की खास फिल्मी रंगत दिखाई देती है। उनकी जो फिल्में थी जिनमें देश परदेश, मनपसंद, लूटमार, कर्ज, 50-50, सौतन, पुकार, बड़े दिल वाले, युद्ध, आखिर क्यों, अधिकार, मुकद्दर का सिकंदर, इन फिल्मों में उन्होंने अलग अलग तरीके के किरदार निभाए और दर्शकों के दिल में अपनी एक खास जगह बनाई। साल 1980 में याद कीजिए, उस फिल्म का नाम था कर्ज। टीना मुनीम के करियर की सबसे चर्चित फिल्मों में गिनी जाती है और इस फिल्म में उनके साथ ही ऋषि कपूर। फिल्म की कहानी, संगीत और पुनर्जन्म की रहस्यमय कहानी ने दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। फिलहाल अगला जो गीत हमने लिया है वो दीदारे यार उनकी एक खूबसूरत सी फिल्म थी उससे लिया है। इस गीत को भी आप सुनेगा।

के करियर में एक और महत्वपूर्ण नाम रहा, वो थे राजेश खन्ना। दोनों ने साथ में कई फिल्मों में काम किया, जिसमें सौतन, आखिर क्यों, बेवफाई, अलग अलग और दूसरे प्रोजेक्शन भी शामिल रहते। चीना और राजेश खन्ना की जोड़ी 80 के दशक के जो दर्शक थे उनके बीच काफी चर्चित थी। राजेश खन्ना उस समय हिंदी सिनेमा के बेहद लोकप्रिय सितारों में से एक थे और उनके साथ काम करना किसी भी अभिनेत्री के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती थी। चीना ने उनके साथ रोमांटिक और पारिवारिक दोनों तरीके की भूमिकाएं निभाई। वहीं देवानंद साहब के साथ भी जो चीना का संबंध था वो केवल फिल्मों से ही नहीं था। देवानंद की फिल्म बुलेट के निर्माण के दौरान दोनों की मुलाकात हुई और बाद में देवानंद ने चीना को अपनी फिल्मों में नायिका के रूप में लिया, यानी कि पर्दे पर चीना की पहली बड़ी शुरुआत से पहले ही उनकी मुलाकात उस इंसान से हो चुकी थी जिसने आगे चलकर उन्हें हिंदी सिनेमा में लॉन्च किया था।

जी हाँ, टीना जी की यही अदायगी थी जो उनको इतने ज्यादा प्यार लोगों का दिलाया उन्होंने। उनकी जो सादगी थी, उनकी बहुत ज्यादा बनावटी अंदाज उनका नहीं था और एक सहज और सादगी भरे अंदाज में उन्होंने लोगों के बीच एक अलग ही आकर्षण पैदा किया था। उनका शांत चेहरा, कैमरे के सामने उनका एक आत्मविश्वास, ये सब उन्हें 70 के दशक के आखिरी और 80 के दशक की यादगार अभिनेत्रियों में जगह दिलवाने में कामयाब रहा। एक कलाकार का सफर हमेशा एक जैसा नहीं होता। टीना ने भी एक समय फिल्मों से दूरी बनाने का फैसला किया और उन्होंने अपनी शिक्षा जारी रखी। इंटीरियर डिजाइनर डिजाइन का अध्ययन किया और बाद के वर्षों में उन्होंने कला, संस्कृति, स्वास्थ्य और सामाजिक कार्यों से जुड़े क्षेत्रों में सक्रिय भूमिकाएं निभाई। उनका फिल्मी करियर 1978 से शुरू होकर लगभग एक दशक से अधिक समय तक दर्शक के सामने रहा। उनकी आखिरी फिल्म का नाम था जिगरवाला, जो कि 1991 में रिलीज हुई थी और 1991 के बाद उनका जीवन एक नए अध्याय में प्रवेश करता है। टीना मुनीम ने उद्योगपति अनिल अंबानी से विवाह किया और उसके बाद उनका सार्वजनिक जीवन फिल्मों से हटकर सामाजिक और परोपकारी गतिविधियों की ओर अधिक केंद्रित हुआ। आज उन्हें टीना अंबानी के नाम से जाना जाता है। कला, संस्कृति, वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण और स्वास्थ्य से जुड़े सामाजिक कार्यों में उनकी भूमिका का एक अलग ही योगदान है।

टाइगर छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन कौशला हेमलता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विराट केंट से दिग्दर्शन कविता गौर हमें सुन रहे हैं। सुरेंद्र खुराना जी न्यू मुल्तानगर दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं। अगला संदेश हमारे पास गुरमीत सिंह मीटा जो कि साउथ एक्सटेंशन से हैं, शालीमार बाग से अशोक कुमार सहगल जी का है। बिहारी कॉलोनी शादरा दिल्ली से तुलसी मस्किन बीना डब्बू चैतन्य चंडीगढ़ से राहुल खुराना रचिता केशु जी है। बटिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू टॉमस पिंकी लवली आरती जी हमें सुन रहे हैं। गोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा कपिल ईशान और पूजा जी हमारे साथ हैं। बाबू शिवा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं पश्चिम सिंहभूम चाईबास झारखंड से। पोचियाल कला दुर्ग से हमें संजय कुमार साहू और सुजाता जी सुन रहे हैं। अगला संदेश गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर सिंह राजस्वीर सीता गीता का है। और इसके बाद पंचकुला चंडीगढ़ से राहुल खुराना रचिता जी हमारे साथ हैं। अगला संदेश है जलालाबाद बेस्ट से सुरेश गंगरेजा पूनम जी का आया है। पिपरिया से कमलकांत दीपा रिमझिम गुप्ता जी हैं। पहाड़गंज मुल्तानी ढाना से निर्मोहन उषा मोहन चिल्लू नायक मधु नायक जी हमारे साथ हैं। हीरामणि वर्मा कतरेंगी भाटापारा से हैं। मेहर अरोड़ा ममता जी पदमपुरा जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से जुड़े हैं। ग्राम नागरकोला जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू जामुन देवी प्रेम पूजा दुष्यंत जी हमारे साथ हैं। फारूक अली खान जी हमारे साथ जुड़े हैं। अगला संदेश जो है ये दिल्ली बिहारी कॉलोनी से तुलसी मस्किन जी का द्वारा आया है। नलवेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नोहान का निर्मला जी और विशाल जी हमें सुन रहे हैं। ऊपरकोट मोहल्ला चौखंडी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी निगत परवीन श्रीनिवास पर सरफराज और परिवार के सभी सदस्य हैं। बागपत उत्तर प्रदेश से संजय बिंगिया नमन और अपार जी हमारे साथ हैं। गोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा कपिल पूजा जी हमारे साथ हैं। ये संदेश संदीप मक्कर जी का जालंधर से हमारे पास पहुंचा है। सुदर्शन मुखी अनीता सिमरन जी शांतिनगर सोनीपत से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जनकपुरी सहारनपुर से जॉन जी हमारे साथ हैं।

अजीत भापसा जी प्रमिला जी के साथ विरनगांव गुजरात से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पीछे संसद मार्ग से अनिल मोहन जी हमारे साथ हैं। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन लाल देवानगन कौशला जी के साथ हमें सुन रहे हैं। स्वर्ण सिंह गिल दलजी जी गांव लोहगढ़ ठाकुरवाला से हमारे साथ हैं। आप सभी का हम शुक्रिया अदा करते हैं।

जी हाँ, आज हमने याद किया उस अभिनेत्री को जिसने 70 और 80 के दशक के हिंदी सिनेमा में अपनी खूबसूरत मौजूदगी दर्ज कराई। एक ऐसा नाम जिसे याद करते ही आंखों के सामने आती है 70 के दशक की ताजगी, 80 के दशक की फिल्मी चमक और देव आनंद का अंदाज, ऋषि कपूर का रोमांस, राजेश खन्ना का स्टारडम और हिंदी सिनेमा के सुनहरे दौर की वो रंगीन दुनिया। सिनेमा की रील आगे बढ़ती है, किरदार बदलते हैं, लेकिन कुछ चेहरे हमेशा अपनी जगह बनाते हैं और चीना मुनीम जी उन्हीं चेहरों में से एक हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज का ये प्रोग्राम को जरूर पसंद आया होगा। आपको कहीं जाना नहीं है, 3 बजे मैं चीनी मेलोडीज लेकर आपके बीच होंगी, प्रीति त्यागी। फिलहाल इस प्रोग्राम यानी एक कलाकार से मुझे यानी अंजू पांडे को अनुमति दीजिए। परसों यानी 7 तारीख को एक बार फिर हमारी और आपकी मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे साथ यूं ही जुड़े रहिए। नमस्कार।

0: मीडियम वेव्स 1071 किलो हर्ट्स मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री देश पर आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात आप सुन रहे हैं। अब खबरें नशर की जाएंगी।
1: ये आकाशवाणी है, अब आप मुदम्मार से खबरें सुनिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में स्विट्जरलैंड के सदर के साथ दो तरफा बातचीत की। उन्होंने कहा कि भारत और स्विट्जरलैंड तिजारत सरमायाकारी को मिलकर फरोग देने और दुनिया के लिए काबिल एतमाद सप्लाई चेन कायम करने के लिए पुरअज़्म हैं। भारत और स्विट्जरलैंड ने मुख्तलिफ माहदों पर दस्तखत किए। वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमन ने भारत यूरोपीय यूनियन आज़ाद तजारती माहदे की सताइश की है। उन्होंने कहा कि इससे तजारती माहदों से मुतालिक बातचीत और उन्हें कतई शक्ल देने के भारतीय तरीकेकार की अक्कासी होती है। और यमन की हुकूमत ने हौसियों के कब्जे वाले इलाकों को दोबारा हासिल करने के लिए फौजी कार्रवाइयां शुरू की हैं। अब खबरें तफसील से। भारत और स्विट्जरलैंड ने आज टेक्नोलॉजी, मोबिलिटी सिस्टम और बुनियादी ढांचे को फरोग देने और इनमें इश्तराक के सिलसिले में मुख्तलिफ माहदों पर दस्तखत किए। स्विस नेशनल साइंस फाउंडेशन

0: फौजी कार्रवाइयां शुरू करने का ऐलान किया है। अदन में सवा न्यूज के मुताबिक सदारती कौंसिल के चेयरमैन और सदर रशाद अल अलीमी ने कहा कि हुकूमत तैयारी के मरहले से निकलकर अब आजाद कराने के मरहले में दाखिल हो गई है, क्योंकि कशीदगी में कमी लाने की तमाम तर कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं। उन्होंने मुसल्ला फौज, सिक्योरिटी फोर्सेज और दीगर फौजी दस्तों को कार्रवाइयां शुरू करने की हिदायत दी। खबर रसा एजेंसी के मुताबिक यमनी अफवाज ने पीर के रोज ताइज में कई महाजों पर हौसी बागियों की दरअंदाजी की कोशिशों और हमलों को नाकाम बना दिया। एजेंसी ने बताया कि मुतअद्दिद जिलों में शरीर झड़पें हुई, जिनमें सरकारी अफवाज, सिक्योरिटी फोर्सेज और आवामी मुजाहवती जंगजुओं ने हिस्सा लिया। लड़ाई में हौसी फोर्सेज के सैकड़ों अफराद हलाक के जख्मी हुए। यमनी फोर्सेज ने घात लगाकर किए जाने वाले हमलों, स्नाइपर राइफल और ड्रोन का भी इस्तेमाल किया। जापान में जारी 2026 एशियाई खेल कल खत्म हो गए। भारत मजमूई तौर पर 85 तमगे जीतकर चौथे मकाम पर रहा। इनमें सोने के 21, चांदी के 27 और कांसे के 37 तमगे शामिल हैं। भारत ने मर्दों और खवातीन की क्रिकेट, कबड्डी और हॉकी में शानदार जीत हासिल की। क्रिकेट में भारत ने फिर से दोनों टाइटल जीते। फाइनल में खवातीन टीम ने श्रीलंका को 147 रन से हराया, जबकि मर्दों की टीम ने पाकिस्तान को 19 रन से शिकस्त दी। कबड्डी में खवातीन टीम ने ईरान को 34 के मुकाबले 37 पॉइंट से हराकर अपना टाइटल बरकरार रखा, जबकि मर्दों की टीम ने भी ईरान को 34 के मुकाबले 40 पॉइंट से शिकस्त दी। हॉकी में भारतीय खवातीन टीम ने फाइनल में चीन को 1-0 से हराया। इसी तरह 44 साल बाद भारत ने एशियाई खेलों में खवातीन हॉकी में सोने का तमगा जीता। मर्दों की टीम ने मलेशिया को 1-5 से हराकर फिर से टाइटल हासिल किया। इधर तीरंदाजी में भारत ने सोने के 5 तमगों समेत 9 तमगे जीते, जबकि मुक्केबाजी में भारत को सोने के 3 और कांसे के भी 3 तमगे मिले। भारतीय पहलवानों ने मजमूई तौर पर 6 तमगे जीते। इनमें सोने, चांदी और कांसे के 2-2 तमगे शामिल हैं। मिस्र, सूडान, इरिटेरिया और सोमालिया ने रियासती खुदमुख्तारी बहर अहमर के बंदोबस्त, हुक्मरानी और आबी हकूक की अहमियत पर जोर दिया है। इन ममालिक के रहनुमाओं ने कल मिस्र के न्यू अलमीन में होने वाली 4 मुल्कों की मुशावरती सरबरा कॉन्फ्रेंस के बाद अल आलमीन मुश्तरका ऐलामिया जारी किया। रहनुमाओं ने किसी भी बहाने से खित्ते के मुल्कों के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने सूडान के इत्तेहाद, इख्तदार आला और इलाकाई सालमियत की हिमायत का इरादा किया और मुतवाजी हुकूमत या इदारों के क्याम के को खारिज किया। आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम महमूद ने नई दिल्ली में स्विट्जरलैंड के सदर के साथ 2 तरफा बातचीत की। उन्होंने कहा कि भारत और स्विट्जरलैंड तजारत सरमाकारी को मिलकर फरोग देने और दुनिया के लिए काबिल एतमाद सप्लाई चेन कायम करने के लिए पुरअज्म हैं। भारत और स्विट्जरलैंड ने मुख्तलिफ माहिदों पर दस्तखत किए। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने भारत यूरोपीय यूनियन आजाद तजारती माहिदे की सताइश की। उन्होंने कहा कि इससे तजारती माहिदों से मुतालिक बातचीत और इन्हें कतई शक्ल देने के भारत के तरीकेकार की अक्कासी होती है। और यमन की हुकूमत ने हौसियों के कब्जे वाले इलाकों को दोबारा हासिल करने के लिए फौजी कार्रवाइयां शुरू की हैं। इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर आकाशवाणी से आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस की नशरियात। पेशो खदमत है फिल्मी नगमों का प्रोग्राम मेरी पसंद।

कुमार सानू साथियों की आवाजों में ये नगमा बाजीगर फिल्म से आपने सुना। आज के प्रोग्राम की अगली और आखिरी पेशकश उदित नारायण की आवाज में, फिल्म का नाम है बेवफा।

0: बेवफा फिल्म का नगमा उदित नारायण की आवाज में आप सुन रहे थे। इसके साथ ही आज का मेरी पसंद प्रोग्राम अब खत्म हुआ। आकाशवाणी से जारी है उर्दू सर्विस की नशरियात। फ्रीक्वेंसी है मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज। इसके अलावा मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उर्दू सर्विस सुनी जा सकती है। अब पेश है प्रोग्राम कहकशां। आज के प्रोग्राम में आप सुनेंगे युवा फिल्म की कहानी और नगमे।
1: फिल्म युवा के प्रोड्यूसर हैं जी श्रीनिवास, डायरेक्टर मणि रत्नम, हीरो अजय देवगन, अभिषेक बच्चन, विवेक ओबराय, हीरोइने हैं रानी मुखर्जी, करीना कपूर और ईशा दयोल। युवा कहानी है तीन ऐसे नौजवानों की जिनका जिंदगी जीने का अंदाज एक दूसरे से जुड़ा है। इनमें से एक नौजवान है लल्लन अभिषेक बच्चन, जो हुंडा मवाले किस्म का है और अक्सर मारा पीटी के कारनामे करता रहता है। बेहद अक्कड़ मिजाज वाला लल्लन अपनी गैर कानूनी हरकतों की वजह से अक्सर जेल आता जाता रहता है। लल्लन की बीवी शशि यानी रानी मुखर्जी उससे बेहद प्यार करती है। दूसरा नौजवान है माइकल यानी अजय देवगन, जो मुल्क की बेहतरी के लिए कुछ अच्छे काम करना चाहता है। वो मुल्क में फैली बदगुनवानी को खत्म करना चाहता है। माइकल की महबूबा है लीला यानी ईशा देओल, जो माइकल को दिलो जान से चाहती है। माइकल भी लीला को दिल की गहराई से चाहता है। तीसरा नौजवान है अर्जुन यानी विवेक ओबेरॉय, जो अभी कॉलेज स्टूडेंट है। मस्त मौला किस्म के आशिक मिजाज अर्जुन की आंखों में लंदन और अमेरिका जाने के सपने बसे हैं। वो अपने इन सपनों का जिक्र अक्सर अपनी गर्लफ्रेंड मीरा यानी करीना कपूर से किया करता है। माइकल की महबूबा लीला अपने चाचा चाची के घर रहती है, मगर वो उनके बर्ताव से दुखी रहती है। उसका दुख देखते हुए माइकल उसे अपने साथ रहने की बात कहता है, मगर वो बगैर शादी के उसके साथ रहने से इनकार कर देती है। दूसरी तरफ मीरा के प्यार में डूबा अर्जुन भी उससे एक साथ रहने को कहता है, मगर मीरा उसे ये कहकर झिड़क देती है कि अभी जुमा जुमा चार दिन भी नहीं हुए उन्हें मिले हुए और वो अभी से एक साथ रहने की बात करने लगा। उधर गुंडागर्दी की वजह से जेल में बंद लल्लन को जब रिहा कर दिया जाता है तो वो अपनी बीवी शशि को लेने उसके घर जाता है, मगर लल्लन की उल्टी सीधी हरकतों की वजह से शशि का बाप उसे लल्लन के साथ भेजने से इनकार कर देता है। मगर लल्लन से बे इंतहा मोहब्बत करने वाली शशि का मन नहीं मानता, लिहाजा वो लल्लन के साथ चली जाती है। घर आने पर लल्लन नौकरी के लिए भाग दौड़ करता है। एक जगह जब उसे 2 करोड़ की मशीन की रखवाली के लिए महज 2000 रुपए महीना तनख्वाह देने की पेशकश की जाती है तो वो इतनी कम तनख्वाह लेने की बात पर मालिक से झगड़ा कर बैठता है और वहाँ काम करने से इनकार कर देता है। घर आने पर शशि उस पर नाराज होती है। उसकी नाराजगी तब और बढ़ जाती है जब लल्लन के हुंडे मवाली दोस्त उसे घर बुलाने आते हैं। शशि जब लल्लन को जाने से रोकती है तो गुस्से में उस पर हाथ उठा बैठता है, मगर जब उसे एक औरत बताती है कि शशि माँ बनने वाली है तो लल्लन को बहुत पछतावा होता है। वो शशि को प्यार करता है और शशि भी बहुत खुश होती है।

बाहर करने में बीत जाती है। शशि के लाख समझाने के बावजूद ललन अपनी उल्टी सीधी हरकतों से बाज नहीं आता। ललन की हरकतों से पहले ही परेशान शशि तब और दुखी हो जाती है जब उसे पता चलता है कि ललन ने एक होटल में कॉलेज के कुछ लड़कों से मारपीट की है। उसी होटल में एक मिनिस्टर भट्टाचार्य अपनी तकरीर देने आता है। ललन का बड़ा भाई गोपाल उस मिनिस्टर के लिए काम करता है। मिनिस्टर जब कॉलेज के लड़कों से मारापीटी करने की वजह से ललन को बुरा भला कहता है तो उससे आइंदा ऐसा न करने का वादा करता है, मगर वो ललन ही क्या जो सुधर जाए। शशि एक रोज फिर जब उसके हाथ में पिस्तौल देखती है तो ललन पर बहुत नाराज होती है, मगर ललन पर शशि की नाराजगी का कोई असर नहीं होता। ललन की उल्टी सीधी हरकतों की वजह से मिनिस्टर भट्टाचार्य उसे अपनी राह का रोड़ा समझने लगता है, लिहाजा वो ललन के भाई गोपाल से ललन को ही रास्ते से हटाने को कहता है। इस तरह से वो मिनिस्टर भाई को भाई का दुश्मन बना देता है। लिहाजा एक दिन ललन अपने ही भाई की गोली का निशाना बनते बनते रह जाता है। दूसरी तरफ मिनिस्टर भट्टाचार्य के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहता है। इस काम को अंजाम देने के लिए वो अपने दोस्तों की मदद लेता है। मिनिस्टर भट्टाचार्य को जब माइकल के चुनाव में लड़ने की बात पता चलती है तो उसे रोकने की पुरजोर कोशिश करता है, मगर माइकल उसके बहकावे में नहीं आता। वो कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो हर हाल में चुनाव लड़ेगा। उधर माइकल की महबूबा लीला भी इस मुहिम में माइकल का साथ देना चाहती है, लिहाजा अब वो बिना उससे शादी किए ही उसके घर रहने आ जाती है। अब माइकल का साथ पाकर बहुत खुश है।

Thank God.

होने के बावजूद माइकल को चुनाव लड़ने से नहीं रोक पाता तो वो लंदन से माइकल को खत्म करने को कहता है। डायन माइकल को 3 गोलियां मारता है, उन्हें खुशकिस्मती से वो बच जाता है। माइकल की नाजुक हालत देखकर अर्जुन उसे अस्पताल में भर्ती करा देता है। माइकल अस्पताल में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा था तो दूसरी तरफ अर्जुन महबूबा मीरा के प्यार में खोया हुआ था।

अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम कहकशां। मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस। आइए सुनिए अब कुछ फिल्मी नामें।

प्रेम प्रतिज्ञा फिल्म का नगमा आप सुन रहे थे। आवाजें थी बापी लाहिरी और आशा भोसले की। प्रोग्राम की अगली पेशकश आवारगी फिल्म से। आवाजें हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद अजीज की।

कुमार सानू और साधना सरगम की आवाजों में जुर्म फिल्म का नावा अभी आपने सुना। प्रोग्राम की अगली पेशकश उदित नारायण और साधना सरगम की आवाजों में है। फिल्म का नाम है मदहोशी।

शब्बीर कुमार के साथ ये थी लता मंगेशकर, फिल्म थी वो सात दिन। प्रोग्राम की अगली पेशकश अंदाज फिल्म से है, आवाजें कुमार सानू और अलका याग्निक की।

एसपी बाला सुब्रमण्यम और लता मंगेशकर की आवाजों में यह नगमा था मैंने प्यार किया फिल्म से। आज के प्रोग्राम की आखिरी पेशकश आप सबकी नजर है आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाजों में। फिल्म है दिल जला।

आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाजों में ये नगमा था दिल जला फिल्म से। इसके साथ ही फिल्मी नगमों का आज का ये प्रोग्राम अब खत्म हुआ। मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस। अब खबरें नश्र की जाएंगी। शगुफ्ता यास्मीन से खबरें सुनिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में स्विट्जरलैंड के सदर गी पामला के साथ दोतरफा बातचीत की। उन्होंने कहा कि भारत और स्विट्जरलैंड तिजारत और सरमायाकारी को मिलकर फरोग देने और दुनिया के लिए काबिल एतमाद सप्लाई चेन कायम करने के लिए पुरअज़्म है। भारत और स्विट्जरलैंड ने मुख्तलिफ माहदों पर दस्तखत किये। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने भारत यूरोपीय यूनियन आजाद तिजारती माहदे की सताइश की है। उन्होंने कहा कि इससे तिजारती माहदों से मुतालिक बातचीत और उन्हें कतई शक्ल देने के भारतीय तरीकेकार की अक्कासी होती है। और यमन की हुकूमत ने हौसियों के कब्जे वाले इलाकों को दोबारा हासिल करने के लिए फौजी कार्रवाइयां शुरू कर दी हैं। अब खबरें तफसील से। भारत और स्विट्जरलैंड ने आज टेक्नोलॉजी, मोबिलिटी सिस्टम और बुनियादी ढांचे को फरोग देने और इनमें इश्तराक के सिलसिले में मुख्तलिफ माहदों पर दस्तखत किये। स्विस नेशनल साइंस फाउंडेशन और साइंस और टेक्नोलॉजी के महकमे के दरमियान दिलचस्पी के एक खत पर भी दस्तखत किये गये। इन माहदों पर नई दिल्ली में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के सदर गी पामला के दरमियान दोतरफा बातचीत के बाद दस्तखत किये गये। एक मुश्तरका प्रेस मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भारत स्विट्जरलैंड ताल्लुकात के तई स्विट्जरलैंड के सदर गी पामला के अज़्म की सताइश की। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता अक्टूबर में यूरोपीय आजाद तिजारती अंजुमन के साथ तिजारत और इक्तिसादी शराकत दारी से मुतालिक माहदे का नफाज तारीखी रहा। वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि भारत और स्विट्जरलैंड ने भारतीय बरामदात के लिए बाजार तक रसाई को बढ़ाने और सरमायाकारी में मजीद सहूलत पैदा करने के लिए मुख्तलिफ अहम फैसले किए हैं। जनाब मोदी ने कहा कि इस वक्त भारत बायोटेक्नोलॉजी, बैंकिंग, इंश्योरेंस और खुराक को डब्बाबंद करने जैसे अहम शोबों में

स्विट्जरलैंड की जानिब से नई सरमायाकारी को राग़िब करेगा। वज़ीर ख़ारिजा डॉ एस जयशंकर ने आज सदर गी पामला से मुलाकात की। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर डॉ जयशंकर ने भारत ईएफटीए टीईपीए के वादे के सिलसिले में भारत स्विट्जरलैंड शराकतदारी को मुस्तहकम करने की खातिर सदर पामला की कोशिशों की सताइश की। इससे कबल स्विट्जरलैंड के सदर ने राजघाट पर महात्मा गांधी की समाधि पर गुलाय अकीदत नजर किए। सदर पामला आज शाम सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। सदर मुर्मू स्विट्जरलैंड के अपने हम मनसब के एजाज में एक सरकारी जियाफत की भी मेजबानी करेंगी। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने भारत और यूरोपीय यूनियन के दरमियान आजादाना तिजारत के माहदे की सताइश की है और कहा है कि ये तिजारती माहदों से मुतालिक मुजाकरात और उन्हें हतमी शक्ल देने के हवाले से भारत के तरीकेकार को उजागर करता है। नई दिल्ली में आज म्यूनिख लीडर्स मीटिंग से खिताब करते हुए मोहतरमा सीतारमन ने कहा कि इस माहदे को बजा तौर पर तमाम माहदों की असल करार दिया गया है। इस माहदे में तकरीबन 2 अरब अफराद की आबादी रखने वाली मईशतें शामिल हैं जो मजमुई तौर पर दुनिया की तकरीबन 1/4 जीडीपी की नुमाइंदगी करती हैं। वजीर खजाना ने कहा कि यह माहदा दोनों फरीकों को एक दूसरे के बाजारों तक मुकम्मल रसाई फराहम करता है और इस बात को भी यकीनी बनाता है कि मुसाबकती सलाहियत मुतासर न हो। उन्होंने बताया कि भारत ने इस माहदे के तहत 92.5% टैरिफ लाइन्स खोल दी हैं जो तिजारती मालियत के लिहाज से तकरीबन 97% तिजारत का अहाता करती हैं। इस मौके पर फ्रांस के यूरोप और उमूर खर्चा की वजारत में यूरोपीय उमूर के वजीर नुमाइंदा बिन्यामीन हद्दाद ने कहा कि भारत यूरोपीय आजाद तिजारती माहदा भारत और यूरोपीय यूनियन के दरमियान तिजारत को दोगुना करने का मौका है। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने कहा है कि भारत और अमरीका के दरमियान तिजारती माहदे के लिए मुजाकरात अभी जारी हैं और उन्हें हतमी शक्ल नहीं दी गई है। आज नई दिल्ली में म्यूनिख लीडरों की मीटिंग में सारे ख्याल करते हुए मोहतरमा सीतारमन ने बताया कि दोनों मुल्क एक अहम मरहले पर पहुंच चुके हैं। उन्होंने कहा कि जेर गौर माहदा एक सख्त और मुजाकरात के लिहाज से इंतहाई मुश्किल माहदा है। भारत और कनाडा आज से ओटावा में जामे इक्तिसादी शराकतदारी के अपने मुजवजा माहदे सीईपीए के बारे में 5वें दौर के मुजाकरात शुरू करेंगे क्योंकि दोनों मुल्कों का मकसद इस तिजारती माहदे को 2026 के अवाखिर तक मुकम्मल कर लेना है। दोनों मुल्कों के आला मुजाकरातकारों की क्यादत में ये 5 रोजा मुजाकरात इस महीने की 9 तारीख तक जारी रहेंगे। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। अमरीका ने बरतानिया के आरएएफ फोर्ड फौजी अड्डे पर तैनात अपने तवील रेंज के तमाम बम्बार तैयारों को हटाकर अमरीका मुंतकिल कर दिया है। अमरीका ने बरतानिया के इस फौजी अड्डे को निशाना बनाने की मुबैना ईरानी साजिश के सिलसिले में जारी तहकीकात के दौरान नए खतरे के इम्कान के तहत यह कदम उठाया है। अमरीका की तरफ से इस खतरे की नौयत के बारे में न तो कोई तफसील फराहम की गई है और न ही इन तैयारों को हटाने का कोई जवाब फराहम किया गया है। कुछ दिन पहले बरतानिया के हुक्काम ने मस्कूरा फौजी अड्डे पर तैनात अमरीकी तैयारों को निशाना बनाने की एक मुबैना ईरानी साजिश के सिलसिले में कई अफराद को गिरफ्तार किया था जिसके बाद अमरीका ने इस फौजी अड्डे से अपने बम्बार तैयारों को हटाने का फैसला किया। इस दौरान ईरान ने इस वाकये में खुद के मुलव्विस होने की बात मुस्तरद कर दी है और इन इल्जाम को बेबुनियाद करार दिया है। अमरीकी फौज ने कहा है कि उसने एक कश्ती पर हमला किया है जिसके बारे में यह शुबा था कि वो कैरेबियाई समंदर में मुनशियात की स्मगलिंग में मुलव्वस थी। इसमें 4 अफराद हलाक हो गए। लातिनी अमरीका में मुबैना तौर पर मुनशियात को गैरकानूनी तरीके से लाने ले जाने के खिलाफ ट्रंप इंतजामिया की जारी मुहिम के तहत कल यह हमला किया गया। अमरीकी जनूबी कमान के मुताबिक इस कश्ती को स्मगलिंग के रास्ते में निशाना बनाया गया। ताहम फौज ने इस बारे में शवाहिद फराहम नहीं किए हैं कि कश्ती मुनशियात ले जा रही थी। यमन की बैन अलावी तौर पर तस्लीम शुदा हुकूमत ने मुल्क में हौसी बागियों के जेर कब्जा इलाकों को दोबारा हासिल करने और पूरे मुल्क में अपने अख्तियार बहाल करने के लिए फौजी कार्रवाई शुरू करने का ऐलान किया है। अदन में सबा न्यूज के मुताबिक सदारती कौंसिल के चेयरमैन और सदर रशाद अल आलिमी ने कहा कि हुकूमत तैयारी और मुस्तैदी के मरहले से निकलकर अब आजाद कराने के मरहले में दाखिल हो गई है।
کیونکہ کشیدگی میں کمی لانے کی تمام کوششوں کے مواقع

0: ये आकाशवाणी विदेश प्रसारण सेवा दा सिराय की प्रोग्राम है। आप सबको सलाम नमस्ते करेंदा। अज असा हाजिर है आप सब दे नाल एक सिराय की लोक कहानी ते सिराय की काव्य पाठ दे नाल। सिराय की लोक कहानी पढ़सन वरिंदर पंजानी जी ते कहानी दा नाम है कंजूसा दा बादशाह। हुण दे बाद असा सुन सुन सिराय की काव्य पाठ अनुराग मेहता दे नाल। आओ हुण हाजिर है सिराय की लोक कहानी कंजूसा दा बादशाह।
1: नारायण दास एक सेठ आई एक नंबर दा कंजूस आई किसी होर उत्ते पैसा खर्च करना दूर ओ ते अपने उत्ते भी कोई पैसा खर्च नहीं करेंदा। एक बार नारायण दास बाजार विचों लंघदा पिया आई ते हुंदी नजर सड़क दे किनारे लगे हुए खजूर दे पेड़ा ते पई। खजूर दे पेड़ा उत्ते बहुत सारे पक्के हुए खजूर लगे हुए हैं। खजूरा को देख के हुंदे मुंह विच पानी आ गया। हुण सोचा कि अगर मैं खजूर तोड़ गिना तो मैं को बाजारों भी ना गिनने

सन ते मेरे पैसे भी बच गए सन। वो आस पास डिठा कि कोई है तो मुंडे कोलू खजूर तुड़वा गिनसा, लेकिन वल हूं सोचिया कि कितई वो पैसे ना मांगे ने, मेरा मऊ खर्चा थी वैसी। ये सोच के आप ही पेड़ ते चढ़न लग गया। इन्हें कोलो पहले वो कदे भी किसी पेड़ ते क्या वो उच्ची झा ते भी कहनी चढ़िया हाई। जिवे तिवे करके वो पेड़ ते चढ़न लग गया, होले होले करके वो पेड़ दे उत्ते चढ़ गया। वो खजूर दा पेड़ बहु उच्चा हाई। जेरे वेले खजूर तोड़न लगा ते उन्दा ध्यान तल्ले दी तरफ चला गया। हुण डिठा कि मैं तां बहु उत्ते आ गया हां। ए देख के वो बहु घबरा गया। हुंदे तां हथ पैर फुलन लग पए ते वो उकू चक्कर भी आ गए। उकू लगा कि जमीन ते जिवे पताल दे विच लगी गई है ते वो आसमान विच पेड़ दी पतली जी टेणी दे उत्ते बिना किसी सहारे दे लटका पिया है। पर फिर क्या हाई, उन्दी ते जान गले विच अटक गई। एक तां पेड़ दे उत्ते चढ़न विच भी वो बहु मेहनत लगी आई, इतनी मेहनत करके थक भी गया आई। हुण ते डर दे मारे वो बहु घबरावण लग पिया। हुण सोच गिरदा कि हुण मैं तां ना बचा, अगर मैं तल्ले ढह पिया ते पक्का ही मर वैसा। उकू भगवान जी याद आ गए। वो भगवान को याद करन लग पिया, भगवान मैं को बचा गिनो, मैं को बचा गिनो, मैं मरना नहीं चाहता। अगर तुसा मैं को बचा गिनसो तो मैं हजार पंडता को रोटी खवेसा। उन्हें वे मन्नत मान गिदी। थोड़ी देर तक हुंदी घबराहट दे मारे जान निकदी रही। फिर वो सोचिया कि होले होले उतरन की कोशिश करे ना, शायद बच वंजा। वो होले होले थले उतरदा गया। वो थले लावण लगा। जेरे वेले वो थले लै गया ते मन विच सोचण लगा कि हजार पंडतां को रोटी खवावण नाल क्या थी सी। अगर 500 पंडतां को रोटी खवासा तो भगवान ते तां वी खुश थी वैसी। फिर वो थोड़ा जा होर थले लै आया। फिर सोचण लगा कि हुण मैं 200 पंडतां को रोटी खवा देसा तो भगवान ते तां वी खुश थी वैसी। इतने सारे पंडतां को खवावण दा तां बहु मुश्किल काम है, मेहनत ते बहु सारा पैसा लग वैसी। पर होले होले अखा बंद करके हिम्मत करेंदा होया नारायण दास थले लै आया। उस तो पहले नारायण दास जिवें जिवें थले लांदा वेंदा हाई, वो पंडतां दी संख्या घट करेंदा रिया। जेरे वेले पेट को थले लै आया तो वो सोचण लगा, अगर मैं एक पंडत को पेट भर के अच्छी तरह वधिया वधिया खाना खवा देवां तो भगवान ते तां वी खुश थी सी। ते नारायण दास भगवान को धन्यवाद कर घर दे पासे वंजण लगा। ते रास्ते विच सोचेंदा रिया कि एक पंडत को रोटी खवावण दा कितनी खर्चा आवे सी। ए सोचेंदे होए दिमाग विच एक गल आई कि कोई इहो जिहा पंडत मिल वंजे जिहड़ा बहु घट खांदा होवे। पर इहो जिहा पंडत कित्थू मिल सी। ओ झा झा ते वंज के लोकां कोलों पुछण लगा, इवे जिहा कोई पंडत हे जिहड़ा घर घट खांदा होवे। आखिर विच लवेंदे लवेंदे उकू इक इहो जिहा पंडत मिल गया जिहड़ा बहु घट खांदा हाई। पंडत दा नां जमुना दास आई। नारायण दास ने उकू ही रोटी ते खवावण वाले अपने घर छड्ड दित्ता। जमुना दास वैसे तां बहु घट खांदा हाई, लेकिन ओ बहु चलाक हाई। उन्हें नारायण दास दी कंजूसी दे बारे विच सुन रखा हाई। ओ मन ही मन आखण लगा कि इस कंजूस को मैं सबक सिखेसा ते हिंदा बहु सारा खर्चा करवेसा। ओ सोचण लगा कि हिंदा ज्यादा खर्चा किवें करवावा ते हिंदी कंजूसी दा फायदा चावा। वल नारायण दास अपने घर बन के अपनी कुआर को आखण लगा कि मैं एक पंडित जांदा ना जमुना दास है, उहू कल रोटी वास्ते साड आया हां, तू कल सारी तैयारी कर गिनी। हुण अपनी कुआर को आखा भगवान को खुश करण वास्ते पंडित को रोटी खवानी पोसी, लेकिन तू ध्यान रखी ज्यादा खर्चा ना थीवे। उनकी कुआर ने आखा मैं ध्यान रखे सा ज्यादा खर्चा ना थीवे। अगली दीवार नारायण दास को कुछ जरूरी काम आ गया। उन्हें अपनी कुआर को आखा पंडित का स्वागत रोटी खवाण वास्ते घर रुकना चाहिदा हाई, लेकिन मैं को कुछ जरूरी काम पै गया है ते मैडा वजना जरूरी है, तू उस पंडित दे खवावण दा खास ध्यान रखी। नारायण दास इतना समझा के बाजार लगा गया। जेरे वेले वो बाजार वेंदा पिया आई, जमुना दास ने उकू वेंदे हुए देख गिदा ते वो सेठ दे घर लगा गया। उत्ता बन के सेठानी को राम राम करके आखण लगा कि मैं जमुना दास हां, मैं को सेठ जी ने रोटी खावण वास्ते सड्डा है। सेठानी ने आदर सत्कार नाल पंडित जी वास्ते आसन लगाया ते बावण वास्ते आखा। जमुना दास बोला मैं मंदिर दर्शन करन वेंदा पिया हम ते मैं सेठ जी को जल्दी जल्दी कितें ही वेंदे हुए डिठा ते मैं सोचा क्या पता तुहाकू कोई मदद या सलाह दी लोड़ होवे, ही वास्ते मैं आ गई हां। असल विच देखण आया है कि खावण दी तैयारी किवें चलदी पई है ते क्या क्या शय बनदी पई है। सेठानी जंदा ना कमला हाई उन्हें हाथ जोड़ के आख्या तुहाडे खावण दी तैयारी अच्छी थींदी पई है। जमुना दास ने आख्या कि तुसा ते इक पंडित वास्ते रोटी बनाउणी है, लेकिन तुसा थोड़ा ज्यादा खाना बनाउणा ते सब तो पहले गणेश जी ते देवता लोगां दे भोग लगदा है, तुसा त्रै चार मिठाइयां भी बना गिनणा। कमला को यह गल जच गई ते आखण लगी इवें थी सी। पंडित ए आग समझा के चला गया।

चंद्रयान मेरे भारत दा अभिमान। जित्था कोई मुल्क नहीं पहुंचया उथा वंजयान, जित्था कोई मुल्क नहीं पहुंचया उथा वंजयान। अज चंदा मामा दे घर दे असा थी गए हैं मेहमान, अचंदा मामा दे घर दे असा थी गए।

साकू सा पाला मुल्क न समझो असा चन तक पहुंचे हां। साकू सा पाला मुल्क न समझो असा चन तक पहुंचे हां। सब

छोटी सी गजल थोड़े सामने पेश करेंदा पे कि बेवकूफी विसाकु करनी है, रस्मुल्फत दी साकु करनी है, बेवकूफी भी साकु करनी है, रस्मुल्फत दी साकु करनी है। जद निशानी अखीर ले आई,

सा कुकर्णी है, ए चलाकीवी सा कुकर्णी है। ते शेर बतौर खास की भावे ओ मुसड़ाई बैठा है, भावे ओ मुसड़ाई बैठा है।

जन्म को सुफल करावो चा राम दा नाम अखावो चा माया मो सब छुट वैसी जेड़ा दिल तू ना घिनसी माया मो सब छुट वैसी जेड़ा दिल तू ना घिनसी हिकनर ना

सोचा मां प्यू दी तू सेवा कर कोड़ा ना कुछ बोलिया कर मां प्यू दी तू सेवा कर कोड़ा ना कुछ बोलिया कर धरती तरफ घुमना वो चा राम दा नाम अखावो चा राम दा नाम अखावो चा।

अपना हाथ मैं को थमा देसी, अपना हाथ मैं को थमा देसी, खिल खिल पोसी वल दवा देसी, मेरे लफस छिन घिन सी हो ठा तू, मेरे लफस छिन घिन

एक बड़ी गजल तुहाडे सामने पेश करन दिया पया कि इवें मकसद मेरा जवां थीगे, इवें मकसद मेरा जवां थीगे, जीवे एक बाल भी जवां थीगे, जीवे एक बाल।

हिजर पहला ना कटिया वेंदा ही, हिजर पहला ना कटिया वेंदा ही, हुआ किस्मत दा फैसला थी गे, हुआ किस्मत दा फैसला थी गे, इवे मकसद मेरा जवां थी गे, जीवे हिक बाल वी जवां थी गे, मुद्दता बाद तेरा फोन आया, मुद्दता बाद तेरा फोन आया,

मकसद मेरा जवान थी गे मेरी अखां दा कुछ भला थी गे। ते हुण मां दे नाम दी एक छोटी जी नज़्म तुहाडे सामने पेश करे ना पिया कि रब जे तले आना पावे, रब जे तले आना पावे ता बालां दी मां कु बनावे, रब जे तले आना पावे ता बालां दी मां कु बनावे। ते मां दी खासियत सुनो कि इवे मेडा हाल वंडावे मैकू हिक नाल लाके बावे, इवे मेडा हाल वंडावे मैकू हा नाल लाके बावे, राती राती ओना समे गोदी विच ओ चाके बावे, राती राती

0: ठुटके ओ मिठी चूरी खुट खवावे। अद्धी राती उठुटके ओ मिठी चूरी खुट खवावे। रब जे तले ना पावे ता बाला दी माकू बनावे। अथरू मेडे में पूंजे अथरू मेडे में पूंजे। दुख दा वेला कोल ना आवे। रब जे तले ना पावे ता बाला दी माकू बनावे। दवरी सोटा चाके बावे शैया चजदी रोज बनावे। शीरी हत्था दी मुके ना वेड़ा मेड़ा महक दरावे। वेड़ा मेड़ा महक दरावे। दवरी सोटा चाके बावे शैया चजदी रोज बनावे। शीरी हत्था दी ना मुके वेड़ा मेड़ा रोज महकावे। रब जे तले आना पावे ता बाला दी माकू बनावे। इने मेड़ा हाल वंडावे में कूहा नाला के बावे। दुनिया दे विच बस हिकमा ही असल फरिश्ता होंदी है। दुनिया दे विच बस हिकमा ही असल फरिश्ता होंदी है। माड़ा वक्त औलाद ते आवे मां वल मौत दे सामने बावे। माड़ा वक्त औलाद ते आवे मां वल मौत दे सामने बावे। रब जे तले आना पावे ता बाला दी मां को बनावे। इवे मेड़ा हाल बनावे मैं कुहा नल बाके बावे।
1: हेक भाई गजल तुहाड़े सामने पेश करेंदा पिया कि हेक दूजे विच रावण दी कोशिश चा कर। हेक दूजे विच रावण दी कोशिश चा कर। नगमा इश्क दगावण दी कोशिश चा कर। हेक दूजे विच रावण दी कोशिश चा कर। नगमा इश्क दगावण दी कोशिश चा कर। सुरमा पागिन अखां दी मुंडेरा ते दुख तेड़ा छुपावण दी कोशिश चा कर। सुरमा पागिन अखां दी मुंडेरा ते दुख तेड़ा छुपावण दी कोशिश चा कर। हिक दूजे विच रावण दी कोशिश चा कर। नगमा इश्क दगावण दी कोशिश चा कर। तू रोसे ते दुनिया वाले खिलसन सब। तू रोसे ते दुनिया वाले खिलसन सब। मिठड़ा नगमा गावण दी कोशिश चा कर। हिक दूजे विच रावण दी कोशिश चा कर। नगमा इश्क दगावण दी कोशिश चा कर। मिठी खुशियां मुकवे सन हिक जाड़े। मिठी खुशियां मुकवे सन हिक जाड़े। गम दा लूणा खावण दी कोशिश चा कर। गम दा लूणा खावण दी कोशिश चा कर। हिक दूजे विच रावण दी कोशिश ता कर। नगमा इश्क दगावण दी कोशिश चा कर। डाडी जल्दी ना करवे।

0: ॾाढी जल्दी ना कर वेसण वेसी ठंडा ठंडा खावण दी कोशिश चा कर ठंडा ठंडा खावण दी कोशिश चा कर नगमा इश्क दगावण दी कोशिश चा कर सुरमा पागिन अखां दी मुंडेरा ते दुख तेडा छुपावण दी कोशिश चा कर दिल विच कठा करदा रामी तो मतू दिल विच कठा करदा रामी तो मतू इने भाकू बालन दी कोशिश चा कर इने भाकू बालन दी कोशिश चा कर नगमा इश्क दगावण दी कोशिश चा कर तू रोसे ते दुनिया वाले खिलसन सब तू रोसे ते दुनिया वाले खिलसन सब मिठड़ा नगमा गावण दी कोशिश चा कर हिक दूजे विच रावण दी कोशिश चा कर नगमा इश्क दगावण दी कोशिश चा कर।
1: अनुराग मेहता दे ही काव्य पाठ दे नाल ही अज दा प्रोग्राम खत्म करन दा वेला थी गे जा सकदे हो वल मिलसुन इंजे ही कोई प्रोग्राम विच अज दे प्रोग्राम दे प्रस्तुत करता हन डॉक्टर सुरेश मीना।

हंसराज हंस पंजाब दे एक अजिहे अनमोल हीरे ने जिन्हां ने पिंड शाफलपुर दियां गलियां तो शुरुआत करके भारतीय संसद अते अंतरराष्ट्रीय मंचा तक दा सफर तय कीता। उन्हां दी सादगी सुप्यारा अंदाज अते संगीत प्रति समर्पण आउण वालियां पीढ़ियां लई हमेशा प्रेरणा स्रोत रहेगा। पंजाबी सभ्याचार अते सूफी संगीत नूं अमीर बनाउण विच उन्हां दा योगदान अभुल है। समें एक गुलूकार तहत उस्ताद हंस राज हंस बारे आज इना ही। इस नाल ही आज का यह प्रोग्राम इथे खत्म हुंदा है। नाल ही देश पंजाब दी मजलिस भी इथे खत्म हुंदी। दे दियो आशा नूं इजाजत, फिर मिलांगे।

0: ਮਾਹੀ ਲੰਮ ਤੇ ਸਲਮਾਨੀ ਤੇਰਾ ਰੁੰਦਰ ਜੁਮਾਹੀ ਲੰਮ ਤੇ ਸਲਮਾਨੀ
1: ਹਾਂਜੀ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ
2: ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ICAR ਸਿਫਟ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ 38ਵਾਂ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਸੀਗਾ।
1: ਅੱਛਾ ਜੀ,
2: ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਰੇਡੀਓ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ
1: ਜੀ,
2: ਉਹ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ।
1: ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸੁਣਾਓ ਜੀ।
3: ਸਾਡੀ ਪੈਗਰੋ ਕੰਪਨੀ 12 ਤੱਕ ਲਾਉਣ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਗਈ ਫਾਰਮਰ ਦੀ 4 ਰੁਪਏ ਕਿੰਨੇ ਸੀ ਜੀ, 12 ਤੱਕ ਨੂੰ ਬਾਈ ਕੀਤੀ ਆਮਦਨ ਟ੍ਰਿਪਲ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਫਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਆ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਐਸਪੀਓ ਆ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪਸ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੈਂਡ ਹੋਲਡਿੰਗ ਕਰਕੇ, ਉਂਗਲੀ ਫੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ, ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ, ਰਿਸਰਚ ਬਾਡੀਜ਼ ਤੋਂ, ਅਕੈਡਮੀਸ਼ੀਆ ਤੋਂ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ ਸਪੋਰਟ ਦਵਾਈਏ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰਾ ਲਾਸਟ ਵਰਕਿੰਗ ਡੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਨਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਸਵੇਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਖੁੜੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਯੋਗ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਏ ਸੋਰ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਬੁਲਾਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ। ਫਸਟ PTPCSS ਅਵਾਰਡ ਸ਼ੋ ਉੱਥੇ ਅਕਨੋਲਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ PTPC ਦੇ ਉੱਥੇ ਪੂਰੇ ਸਰਗਰਮ ਵਰਕਰ ਵੀ ਆਏ ਆ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਇੰਚਾਰਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ PTPC ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਟ੍ਰੇਡ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨਾ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 28 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਪੈਂਟਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਗਈ ਆ। ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਪਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਂਡ ਹੋਲਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਗਿਆਨ ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਆ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਆ, ਸਮਾਲ ਮੀਡੀਅਮ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਰਾਇਤ ਲੈਣੀ ਆ, ਜਾਂ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣੀ ਆ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ PTPC ਗ੍ਰੰਥ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੋ, ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਾਲੀ ਆਫਿਸ ਆ ਉੱਥੇ ਮਿਲੋ, ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲਓ, ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਆ, ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ PTPC ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਗਰੋ ਕਰਨ ਦੀਆਂ, ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਨਰ ਬਣਨ ਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਸੈਸ਼ਨ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ 2 ਵਜੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੋਲਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਐਗਰੀਬਿਜ਼ਨਸ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਗੁਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇਣਗੇ। 4 ਵਜੇ ਸਾਡਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿਸ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਆ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਾਡਲ ਲਾਇਆ ਕਿ 20 ਤੋਂ 25% ਏਰੀਆ ਅਸੀਂ ਪੈਡੀ ਵੀਟ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਤੋਂ ਬਗੈਰ। SMI ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਜੋੜਨਾ, 25,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਫੰਡ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਫੰਡ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਰੋਪ ਬਾਏ ਕਰਕੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਲਿਊ ਐਡ ਕਰਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਬ੍ਰਾਂਡ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਮੰਡੀ ਚ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਸਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। PTPC ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦਾ, ਨਿੱਕੀ ਖੇਤੀ ਦਾ, ਪੂਰੀ ਸਰਵ ਜੀ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਬੋਲਣ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਂਝ ਵਾਲਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ।
4: ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੋਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਫਰਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੋਤਨਮਾ ਹਰਬਲ। ਹਮ ਲੋਗ ਯਹਾਂ ਮੇਲੇ ਮੇ ਆਏ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣਾ, 38ਵਾਂ ਮੇਲਾ ਹੈ ਇਹ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ, ਔਰ ਹਮ ਬਣਾਤੇ ਹੈ ਕੋਸਮੈਟਿਕ ਹਰਬਲ ਕੇਅਰ, ਹੇਅਰ ਕੇਅਰ ਐਂਡ ਬਾਡੀ ਕੇਅਰ, ਔਰ ਹਮ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਵੈਲਨੈਸ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹਮਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਆ ਹੈ। ਹਮਾਰਾ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ, ਹਮਾਰਾ ਖੁਦ ਕਾ ਆਈਡੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਇੰਸਟਾ ਆਈਡੀ ਹੈ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਹੈ, ਔਰ ਹਮਾਰਾ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਹੈ, ਉਸ ਪੇ ਹਮ ਚਲਾਤੇ ਹੈ, ਤੋ ਆਨਲਾਈਨ ਹਮ ਸੇਲ ਕਰਤੇ ਹੈ। ਔਰ ਇਸਕਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸਕੋ ਵੀ ਹੇਅਰ ਫਾਲ ਹੈ ਤੋ ਵੋ 15 ਦਿਨ ਮੈਂ ਹਮਾਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰੋਕ ਦੇਤਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੜ ਸੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਤਾ ਹੈ। ਔਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਕਿਸੀ ਕੇ ਮੈਲਾਨਿਨ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜੋ ਹੋਤਾ ਹੈ ਵੋ ਕਮ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਤੋ ਉਸਕੇ ਲਿਏ ਹਮ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਵੀ ਖਾਣੇ ਕੇ ਲਿਏ ਦੇਤੇ ਹੈ, ਔਰ ਲਗਾਨੇ ਕੇ ਲਿਏ ਹਮਾਰਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ, ਤੇਲ ਹੈ, ਸ਼ੈਂਪੂ ਹੈ, ਸੀਰਮ ਹੈ, ਹੇਅਰ ਪੈਕ ਹੈ। ਤੋ ਇਸਸੇ ਕਿਆ ਹੈ, 3 ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਜੜ ਸੇ ਕਾਲੇ ਵਾਲ ਆਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਤੇ ਹੈ, ਇਹ ਹਮਾਰੇ ਖੁਦ ਕੇ ਕਸਟਮਰ ਕੀ ਫੀਡਬੈਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਕੁਛ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰੀਏ। ਆਪਕੇ ਘਰ ਮੇ ਚਨੇ ਤੋ ਆਪਕੋ ਮਿਲ ਜਾਤੇ ਹੈ, ਬੱਚੋਂ ਕੋ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਆਜਕਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹਾ ਹੈ, ਹਮਾਰੇ ਬੱਚੇ ਮੋਮੋਸ, ਫਾਸਟ ਫੂਡ, ਜੰਕ ਫੂਡ ਪੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਕੇਵਲ। ਤੋ ਹਮ महिलाओं को ये मैसेज देना चाहती हूँ मैं कि हम कुछ भी शुरू करें, छोटे से छोटा अपना काम जरूर डालें, कुछ ना कुछ चने ही पीस के दें, दालें रोटेट करके दें, तो उससे हमारे बच्चों को न्यूट्रिशन मिलेगा।
3: स्थापना दिवस के उत्ते सारा वधाई देना है, सरकार के नाल पार्टनरशिप कर रहे हैं। साडा पर्पस पार्टनरशिप करन दा किसानां दी इनकम किदां वधाई जावे उहदे उत्ते साडा ज्यादा जोर रहिंदा है। अज दी डेट दे विच असीं इह मान ना कह सकदे हां कि कोई भी फाइनेंशियल नीड, कोई ट्रांजैक्शन, कोई बिजनेस मॉडल जेड़ा बिजनेस नूं सपोर्ट करता है, असीं उस टेक्नोलॉजी दे विच पूरे इंडिया दे विच टॉप बैंक हैगे आ। 250 तो उपर ब्रांचां साडियां जिहड़ियां ने रूरल सैक्टर दे विच ने जां सैमी अर्बन सैक्टर दे विच ने। जे असीं अज दी डेट दे विच कहिंदे आ कि इंडिया दी इकोनमी 3 ट्रिलियन हो गई है, उहनूं 5 ट्रिलियन लैके जाणा है, सानू कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा। जो अपनी रीच है जिदा सारे सीनियर ने सीनियर डिग्नरी ने उन्होंने एड्रेस किया कि असी एग्रीकल्चर नूं सिर्फ जो अभी सीमित किया प्रोडक्शन लिए, उस प्रोडक्शन नूं असी एग्रीकल्चर अलाइड एक्टिविटी प्रोसैसिंग यूनिट एंड ग्लोबली किदां लैके जा सकते हैं, उहदे विच जिहड़ा वो हर तरह की ट्रांजैक्शन दे विच, हर तरह की फाइनेंशियल नीड दे विच तुहानू सारयां नू सपोर्ट करे।
5: डॉक्टर परविंदर शर्मा डायरेक्टर आईसीएस अटारी नू ते ओ बाइस्टर आन ते अपने विचार सांझे करन साडे नाल।
3: पंजाब भारत दे बहुत अहम योगदान रखदा हैगा, तो धान ते गेहूं फसल तक जिहड़ा आपां फूड सिक्योरिटी नू फाइन करदे हैगे, जिहड़ा दी गल करिए तां लगभग 40-45% ते धान के 25-30% का जो नेशनल पूल से कंट्रीब्यूशन है वो पंजाब का है। लेकिन अब सोचने का समय आ गया कि असि सही डायरेक्शन से बढ़ रहे हैं अगे, क्योंकि जब अपन आजादी मिली थी तो 1990-91 तक सानू अनाज की बहुत लोड़ थी, तो अपना जो ग्रोथ थी वो टेक्नोलॉजी लेड ग्रोथ थी वो आप अचीव किया। उसके बाद जो 1990-91 तो लेकर 2010-15 की गल की आप थोड़ा सा अपने आप को डाइवर्ट किया कि आप धान गेहूं या जो अनाज वाली फसल है वो तो वध के आप दूसरी फसलों भी खींचते करिए डाइवर्सीफिकेशन पासे गए। अब का जो समय है कि आप 2015-20 तो अब तक जो गल कर लगे है तो सस्टेनेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू तो कर लगे है कि आप अपने को अनाज तो बहुत हैगा, पौष्टिक अनाज हैगा कि नहीं हैगा, जो अनाज आप पैदा कर रहे हैं तो जो प्रकृति के संसाधन है वो बच रहे हैं या नहीं है, क्योंकि हवा पानी जिन्हें भी चीजें आगे आप उन्होंने भी थोड़ी जी चिंता कर लगे है। मेरा थानू अभी समय कह सकते रिक्वेस्ट कर सकते कि सानू आज के समय लोड़ है कि किस पास सोचिए, पर्टिकुलरली पंजाब च। मैं तुम्हें एक चीज कहना चाहूंगा कि जो पंजाब की गल करिए, आलू की प्रोडक्शन की गल करिए, तो आपको उसके पास ज्यादा सोचने की लोड़ नहीं हैगी है, क्योंकि पंजाब लगभग 60-65% पूरे भारत का जरा फीड है वो सप्लाई कर रहा है। अब की जी कृषि हैगी वो प्रोडक्शन ओरियंटेड ना होकर पर्टिकुलरली पंजाब के वेरवा रखिए, तो प्रॉफिट ओरियंटेड से जाने की लोड़ हैगी है। तो मेरा यही एक चीज कहना चाहूंगा कि पंजाब नो अपना एक अगर फीड हब के तौर पर अगे करिए, तो जो आप अज तक का प्रोफिट किया है उस प्रोफिट आप कि अगे बढ़ा सकते हैं, उस पास सोचने की लोड़ हैगी है। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन एक इंपोर्टेंट इशू हैगा, लेकिन उससे भी बहुत इंपोर्टेंट चीज हैगी कि पॉलिसी, पहले असी पॉलिसी की गल करिए, क्योंकि पॉलिसी मेकर अच्छे बैठे हुए हैं, नाबार्ड के साथ साथी आए गए, बैंक से भी है गए हैं। पहले असी करते थे थ्री पीस काम करते थे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की गल करते थे, आजकल आप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के नाल फार्मर जी प्रेजेंट कह सकते हैं, तो मोस्ट इंपोर्टेंटली जो पॉलिसी मेकर है। टेक्नोलॉजी च अजकल कोई घाट नहीं है, जितने भी संस्थान है बहुत टेक्नोलॉजी पहुंच रही है, फार्मर तक तो नहीं पहुंचे उस लेवल तक, लेकिन फार्मर तक पहुंचाने लिए जो सबसे बड़ा गैप है या ब्रिज की लोड है वो है पॉलिसी।
6: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गे पामला के बीच आज नई दिल्ली में बातचीत हुई। इसके बाद दोनों देशों ने 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इन समझौतों में प्रवासन, युवा पेशेवरों के आदान प्रदान, परिवहन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा नवाचार और उद्यमिता जैसे क्षेत्र शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत ईएफटीए व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते से दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
7: भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन यानी एफ्टा देशों के बीच एक ऐतिहासिक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। ये यूरोप के किसी भी इकोनॉमिक ब्लॉक के साथ भारत का पहला एफटीए है। यह इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, जॉब्स और साझा समृद्धि का एम्बिशियस ब्लूप्रिंट भी है। इससे हम अगले 15 वर्षों में भारत में 100 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट और 10 लाख डायरेक्ट जॉब के लक्ष्यों को साकार करेंगे।
6: राष्ट्रपति पामला ने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों की साझेदारी के महत्व को दर्शाने का अच्छा अवसर है। राष्ट्रपति पामला आज शाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। राष्ट्रपति मुर्मू उनके सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन भी करेंगी। भारत और स्विट्जरलैंड रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। इसमें रक्षा प्रशिक्षण और रक्षा उद्योग के बीच सहयोग शामिल है। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने आज नई दिल्ली में बताया कि स्विट्जरलैंड की कंपनियां मेक इन इंडिया के अंतर्गत भारत में रक्षा उपकरणों का संयुक्त उत्पादन और विकास करती है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के बीच संबंधों को और मजबूत करने की राष्ट्रपति पामला की भावना की सराहना की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते की सराहना की है। उन्होंने कहा कि ये व्यापार समझौतों को अंतिम रूप देने के लिए भारत के दृष्टिकोण को दर्शाते हैं। नई दिल्ली में आज म्यूनिख सम्मेलन में श्रीमती सीतारामन ने इसे सभी समझौतों की जननी बताया। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज नई दिल्ली में यूरोपीय संघ के पर्यटन आयुक्त से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों के बीच पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि निर्वाचन आयोग के फॉर्म 6 में किसी भी बदलाव को अदालत ने मंजूरी नहीं दी है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने इसकी पुष्टि की। शीर्ष न्यायालय ने बदलाव से जुड़े दस्तावेज मंगाए हैं ताकि पता चल सके कि ये बदलाव किसने किए। पश्चिम बंगाल में अगले 2 वर्ष में 4 नए हवाई अड्डों का विकास किया जाएगा। इस संबंध में केंद्र और राज्य सरकार के बीच आज कोलकाता में नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू और मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की उपस्थिति में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। 2026 का नोबेल पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में कार्ल डाइसेरोथ, पीटर हैगमैन और जॉर्ज नागेल को दिया गया। तीनों वैज्ञानिकों को ऑप्टोजेनेटिक्स के जुड़ी खोजों के लिए यह सम्मान मिला है। इस तकनीक से प्रकाश की मदद से मस्तिष्क की तंत्रिका कोशिकाओं को सक्रिय या बंद किया जा सकता है। इससे वैज्ञानिकों को याददाश्त, भावनाओं और व्यवहार को समझने में मदद मिलती है। स्कॉटहोम में करोलिंस्का इंस्टीट्यूट की नोबेल असेंबली ने आज इसकी घोषणा की। रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य पूरा करने के लिए सरकार रसायन और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र को प्राथमिकता दे रही है। नई दिल्ली में आज एडवांटेज भारत एक उभरता वैश्विक रसायन केंद्र विषय पर इंडिया गेम के 14वें संस्करण में सुश्री पटेल ने वैश्विक व्यापार और आपूर्ति श्रृंखलाओं में आ रही बाधाओं के बीच पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में देश की आत्मनिर्भरता का उल्लेख किया। मौसम विभाग ने कर्नाटका, केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिकाल में कल तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। उत्तराखंड, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और लक्षद्वीप में कल तक बारिश की संभावना है। वहीं आंध्र प्रदेश में अगले 2 दिनों के दौरान तेज हवाएं चलने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
8: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। 7:05 हो चुके हैं। अब सुनिए कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान भाई बहनों को
1: राम राम। जी साथियों, आशा है कि आपके खेत लहला रहे होंगे, आपकी बगिया महक रही होंगी और आउन में चिड़िया चहक रही होंगी।
0: जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत बात आपने कही और हम हमेशा यही चाहते हैं कि जो हमारे किसान भाई बहन हैं उनकी जो खेत हमेशा लहलाए और वो सुख समृद्धि से भरपूर हो। तो भाई हमारा ये जो कार्यक्रम है वीरेंद्र भाई, इसमें बहुत सारी जानकारी लेके आते हैं ताकि जो हमारे ग्रामीण भाई बहन है, जो हमारे किसान भाई बहन है, इसका पूरा फायदा ले सके।
1: जी
0: तो आज जो कार्यक्रम की हम शुरुआत करेंगे वो किसी जानकारी के साथ जरूर करेंगे।
1: जी बहुत जरूरी जानकारी है। और सरिता बहन, ये एल नीनो का जो वर्ष है इसमें बहुत सारी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं और पूरे विश्व को भी अभी तक का अगर पूरे वर्ष का लेखा जोखा देखें तो बहुत सारी जगह बहुत सारी आपदाएं आई हैं, उनमें बहुत नुकसान होता है, जनहानि होती है, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान सिर्फ किसानों का होता है, उनकी फसलें, उनका जो आवास और उनके उस पर बहुत सारा कुठाराघात होता है।
0: बहुत सही कहा आपने वीरेन भाई कि जो हमारे किसान भाई बहन है ना, खेत में फसल तैयार करते हैं और अपना ये जो काम है बहुत आसान नहीं है। किसान दिन रात मेहनत करता है, कभी तेज धूप में खेत तैयार करता है तो कभी बारिश में बुवाई करता है, कभी फसल में खाद और पानी देता है और कभी कीट पतंगों से फसल को बचाता है। लेकिन कभी सोचा है कि किसान की महीनों की मेहनत खेतों में लहलहा रही है और अचानक बाढ़ आया, सूखा आया, ओलावृष्टि हुई, चक्रवात हुआ, तूफान आया, भारी बारिश या कोई भी प्राकृतिक आपदा आ गई तो किसान के सामने कितनी बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है।
1: जी तो इसी मतलब दृश्य को सोचकर देखकर हमारे किसानों के वेलफेयर के लिए, उनकी सहायता के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है और इसके तहत आप अपनी फसलों का बहुत ही कम प्रीमियम पर बीमा करा सकते हैं। तो भाई पूरी भरपाई तो नहीं की जा सकती, वो तो किसान की मेहनत की भरपाई कौन करेगा, वो तो ये है कि भाई उनको थोड़ी सी आर्थिक मदद मिल जाएगी और उसके लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। इसमें

0: खराब हो गया तो नुकसान तो होना ही है। तो बीमा कराने से फायदा जो है वो ये होगा कि आप जो आने वाली संभावित जो खतरा है, जो जोखिम है, उससे आप बच जाते हैं। मान लीजिए कि आपने गेहूं, धान, कपास, दलहन या किसी अन्य अधिसूचित फसल की खेती की
1: जी।
0: और उस खेती में बीज, खाद, सिंचाई और मजदूरी पर आपने पैसा भी लगाया और अचानक प्राकृतिक आपदा आ गई और फसल को नुकसान हो गया, तो ऐसे समय में किसान को केवल फसल का नुकसान नहीं होता बल्कि उसके अगले सीजन की खेती, परिवार के खर्चे और पुरानी कृषि जो कर्ज है उसकी अदायगी पर भी असर पड़ जाता है।
1: बिल्कुल सही।
0: तो फसल बीमा एक ऐसी स्थिति है जिसमें आर्थिक सुरक्षा का एक माध्यम बन जाता है और हमारे किसान अगर ये बीमा योजना लेते हैं तो उनको काफी हद तक बहुत अच्छी मदद मिल जाती है।
1: जी सरिता बहन, आप जो बता रही हैं ना उससे मुझे यही पता चला कि किसान के लिए जोखिम हर वक्त रहता है। खेत बोने से पहले खेत बो दिया तब भी, फसल कट गई तब भी, तो इन सब जोखिमों को समुचित रूप से मतलब प्रबंध किया गया है कि भाई नॉमिनल जो प्रीमियम है वो दीजिए और कुछ ना कुछ तो आपके लिए किया ही जाएगा।
0: जी हाँ, और अगर आपने बीमा किया है तो बहुत ही अच्छी बात है और जिन्होंने नहीं किया है तो निकटतम किसी भी बैंक में जाकर आप इसकी जानकारी ले सकते हैं और आपकी अगर जो भी बीमित फसल है उसके अंतर्गत जो आपदा से नुकसान हुआ है उसका आपको मुआवजा मिलेगा और आपको सिर्फ यही है कि नुकसान की सूचना निर्धारित समय सीमा पर देना है और बैंक शाखा या कृषि विभाग या बीमा कंपनी जो भी अधिकृत माध्यम है उनसे आप संपर्क करें और फसल बीमा से संबंधित दस्तावेज और जानकारी जरूर सुरक्षित रखें। नुकसान की स्थिति में खेत और फसल से संबंधित जो आवश्यक जानकारी है वो भी आप उपलब्ध कराएं। बीमा कंपनी या संबंधित विभाग द्वारा जो बताई गई प्रक्रिया है ना उसका आप पूरा पालन करें और एक सबसे बड़ी जरूरी बात यह है कि नुकसान की सूचना आप देने में देरी ना करें, तुरंत आप जानकारी दें।
1: समयबद्ध तरीके से उसको आपको सूचित करना चाहिए उस संस्था को जहां से आपने बीमा कराया है। और किसानों को सरिता बहन कितना प्रीमियम देना पड़ता है बता देते हैं आपको। खरीफ फसल के लिए जो कि धान, मक्का आदि होती हैं, इसमें 2% का आपको प्रीमियम देना होता है। रबी फसलों के लिए जो कि गेहूं, सरसों, चना आदि होती हैं, इसमें अधिकतम 1.5% का आपको प्रीमियम देना पड़ता है। और जो बागवानी फसलें हैं या वाणिज्यिक फसलें हैं इनमें 5% प्रीमियम देना पड़ता है और बाकी का जो प्रीमियम होता है वो राज्य सरकारें और केंद्र सरकार वहन करती है।
0: बहुत अच्छी बात आपने बताई हमारे किसान भाइयों को। भाई मैं तो यही कहूंगी कि मौसम बदले, परिस्थिति बदले, लेकिन किसान की जो तैयारी है ना वो ना बदले
1: जी।
0: तो भाई आप मेहनत आपकी है, सुरक्षा की तैयारी आपकी होनी चाहिए और बेहतर भविष्य की जिम्मेदारी भी आपकी है। तो फसल बीमा के प्रति आप जरूर जागरूक बने, अपनी खेती और अपने परिवार के आर्थिक भविष्य को सुरक्षित बनाने की दिशा में आप जरूर अपना ये कदम बढ़ाएं।
1: जी, और सरिता बहन जो किसान होता है ना उसमें बल भी है, उसमें बुद्धि भी होती है, उसमें क्षमता भी होती है, उसमें धैर्य भी होता है। यही बता रहे हैं श्रीपाल फौजी।

0: जी हाँ साथियों, मान घटाना ठीक नहीं। श्रीपाल फौजी को सुन रहे थे आप। और हमारे किसान बहन भाइयों को हम हमेशा बताते हैं कि ये दुनिया आपकी है, आपसे है, और आप जैसा कर देंगे वैसा सबको मिलेगा। और जो फसलों की बात करें हम सरिता बहन, तो हमारे किसान बहन भाई है ना, अधिकतर जो परंपरागत कृषि प्रक्रियाएं हैं और फसलें हैं उन्हीं को बोते रहते हैं। उनको और भी बहुत सारी ऐसी फसलें हैं जो बोने से उनका जो लाभ है वो बढ़ सकता है, और वहीं जो उनकी जो भूमि है, कृषि है, खेत है, उनका स्वास्थ्य भी अच्छा बना रह सकता है।
1: तो भाई वीरेंद्र भाई, आज क्यों ना हम अपने भाइयों के साथ विविधीकरण, कृषि विविधि, फसल विविधीकरण के बारे में बात करें।
0: जी,
1: और ये जो विविधीकरण की बात हम कर रहे हैं, ये है कि केवल अगर हमारे किसान भाई एक ही फसल पर निर्भर रहते हैं और अलग तो उसके बजाय अगर वो अलग अलग मौसम, खेत और उपलब्ध जो संसाधन है उसके अनुसार विभिन्न फसलों को अपनाते हैं, तो इससे उनको फायदा भी होता है और फसल भी अच्छी होती है। यानी कि इसे ही हम विविधीकरण कहते हैं। अगर देखा जाए कि एक किसान जो है ना हर साल केवल धान की खेती करता है, तो कुछ क्षेत्र में धान के साथ कुछ टाइम के बाद कुछ क्षेत्र में धान के साथ वो दलहन, तिलहन, मक्का, मोटे अनाज, सब्जी या अन्य कुछ खास फसलें भी वो ले सकता है। तो इस तरह से क्या होता है ना फसल चक्र अपनाने से कि आपको बहुत सारी फायदे मिल जाते हैं। और कई बार देखा जाए गया है कि एक ही आप फसल अगर लगाते हैं तो जो मिट्टी की उर्वरता है ना उसमें कमी आ जाती है।
0: जी, तो आपको ये प्रयोग करने चाहिए, प्रयोगों से हमें बचना नहीं चाहिए। जबकि हमें पता है कि हम कभी कमजोर नहीं पड़ेंगे उसमें, हम कभी अनुत्तीर्ण नहीं होंगे। किसान जो भी करता है वो अच्छे से ठोक बजा के करता है उस कार्य को, तो इन सब चीजों को भी करें। मोटे अनाज आप उगाएं। अब जो अक्टूबर का महीना है ये आपके खेतों की तैयारी के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। रबी के जो फसलें हैं उनको बोने के लिए खेतों की तैयारी करनी पड़ती है। तो बहुत सारे जो जैसे खेल होते हैं ना, खेल की तैयारी हम खेल वाले दिन ही नहीं करते। खेल से पहले हम जितनी तैयारी, भाग दौड़ और वर्जिश कर लेंगे उतने ही फिर हमारे जीतने के जो चांस हैं वो बढ़ जाते हैं। तो ऐसे खेत है, खेत को पहले अच्छे से तैयार कर लो और फिर उसमें जब बीज बोया जाएगा तो वो फसल अच्छी होगी।
1: बिल्कुल आपने सही कहा कि अगर हम सही से पहले तैयारी अगर हम कर लेते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपकी जो खेती है वो अच्छी होगी और मौसम के अनुकूल आपका जो उत्पादन है ना वो बढ़ जाएगा। क्योंकि कई बार देखा गया है मौसम के अनुकूल अगर आप ध्यान नहीं दे रहे तो जो उत्पादन है वो घट भी जाता है।
0: जी।
1: और फसल विविधीकरण करने में एक जो महत्वपूर्ण लाभ है वो है कि प्राकृतिक संसाधनों का बेहतर उपयोग होता है। और कुछ फसलों को अधिक पानी की जरूरत तो होती है, लेकिन कुछ फसलें जो है ना अपेक्षा जो है कम पानी में भी आप उगा सकते हो। मान लीजिए कि कभी आपको पानी की कमी है तो आप इस तरह के फसल को लेकर उसका भी मुनाफा फायदा ले सकते हैं।
0: जी।
1: और कई क्षेत्र में ऐसा वीरेंद्र भाई देखा गया है कि पानी की जो उपलब्धता है वो सीमित है और वहाँ स्थानीय कृषि विशेषज्ञ भी सलाह देते हैं कि आप ऐसे फसलों को अपनाएं जहां उस क्षेत्र में उपलब्ध पानी के अनुसार अच्छी आपको मतलब उत्पादन दे सके।
0: जी, तो करनी का जो फल है वो तो हमें भोगना ही पड़ता है और उसका फल भी मिलता है, उसका हमें परिणाम भी मिलता है। तो शीशपाल सिंह भाटी यही बात बता रहे हैं कि करनी का फल पड़े भोगना।

0: साथियों, अभी आप सुन रहे थे शीशपाल सिंह भाटी को। और साथियों, हम जहां भी रहते हैं हमारे परिवेश में बहुत सारे ऐसे अवसर होते हैं कि हम उनको अपनाकर कुछ नए रास्ते निकाल सकते हैं।
1: भाई, आपको पता है गरीबों की गरीब गाय किसे कहते हैं?
0: जी हाँ, मेरे पास, मैं गरीब हूँ और मेरे पास एक गाय है।
1: हाँ, मतलब आपके पास कम पैसे हैं तो ऐसे में आप कहाँ से ला सकते हैं ऐसी गाय जो बहुत सस्ती हो?
0: जी वो तो आप ही बता
1: सकते हैं। ये तो मैं कहावत है, बताओ बताओ, कोशिश करो।
0: जी कोशिश कर ली मैंने, तो मेरी नजर तो गाय पे ही जा रही है।
1: अच्छा अच्छा, तो मैं बताओ भाई, आप बकरी पर भी ध्यान दे, वो भी एक छोटी गाय है जो आपको बहुत अच्छा मुनाफा दे सकती है।
0: सही सही कहा।
1: तो मैं आज बात करूंगी बकरी पालन के लिए कि भाई बकरी जो पालन है ना, कम लागत में आप शुरू कर सकते हैं, और जो हमारे ग्रामीण परिवार है ना, ये आय का एक बहुत अच्छा साधन भी बन सकता है।
0: जी जी सही था।
1: तो अगर आपके पास कम बजट है और आप अपनी आय बढ़ाना चाहते हैं तो आप बकरी पालन शुरू कर सकते हैं।
0: जी, लाइव स्टॉक में बहुत सारी अपूर्व संभावनाएं हैं। आप कम बकरियों से भी अपना छोटे से बाड़े में बकरियों का पालन शुरू कर सकते हैं। इसमें जो इसका दूध होता है ना सरिता बहन, वो भी बड़ा उपयोगी होता है, पौष्टिक होता है।
1: बिल्कुल।
0: और एक जगह मैंने देखा कि वो एक बच्चों का अस्पताल था, तो बकरी पालन करने वाले उसमें उन बकरियों का दूध सप्लाई करते हैं, तो उनसे भी उन्हें बहुत अच्छी आय होती है। तो ये भी देखो नजरिया है हमारा।
1: हाँ।
0: कि हम जहां चाह वहां राह ढूंढ सकते हैं।
1: तो बात अगर हम बकरी की कर रहे हैं ना, तो अगर आप बकरी लाए, आपने बहुत बोला कि छोटे से बाड़े में आप इनको रख सकते हैं, लेकिन हमें उनका ध्यान भी रखना है, क्योंकि जब आप बकरी के शेड, आप बकरी को वहां बांध रहे हैं तो साफ सुथरा हवादार भी रखिए, फर्श पर पानी जमा ना होने दे, बारिश के बाद बची हुई नमी को आप तुरंत साफ करें, और उनके खाने पीने का भी आप ध्यान रखें, हरा चारा सूखा चारा सब जरूरत के अनुसार आप दाना दें। और वैसे भी बकरी है, बहुत कम चारे में आप उसका गुजारा कर सकते हैं, मतलब वही मैं बता रही हूँ कि कम में आप अच्छा मुनाफा बकरी के माध्यम से ले सकते हैं।
0: जी, तो आप बकरी पालिए और हम आगे बढ़ते हैं, सुनवाते हैं आपको ब्रजेश की आवाज में ये एक प्रस्तुति।
1: उपदेश हम सुनते हैं ब्रजेश से।

साथियों, अभी आप सुन रहे थे ब्रजेश कौर। इसी के साथ आज का ये कृषि जगत कार्यक्रम यहीं पर समाप्त हो रहा है। सभी सुनने वाले हमारे किसान बहन भाई और श्रोताओं को

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत, आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। 7:35 होने को है। कुछ ही पलों में सुनिए गजल। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। आई श्रोताओं, सुनते हैं कार्यक्रम गजल। इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ पूजा भारती।

जी हाँ, तन्हाई, तन्हाई से ही हर किसी के दिल में वो उम्मीद आती है कि शायद कल का दिन तन्हा ना गुजरे। तन्हाई में किसी ने बहुत खूब कहा है, यूं तो हम भीड़ में चलते रहते हैं, लेकिन जीवन के हर एक मोड़ पर ये सफर तन्हा लगता है।

0: अभी आप सुन रहे थे गजल आकाशवाणी दिल्ली का, ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर 7:45 होने को है। अब सुनिए समाचार।
1: ये देख कैसे।
2: हैप्पी बर्थडे भाई।
1: हाँ मेरा फेवरेट कलर
2: हमेशा शॉपिंग।
1: आई नो माँ, बट खर्चा करने की भी यही उम्र है राइट।
3: सेविंग करने की भी यही उम्र है।
4: आई नो बा, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
1: आई नो ना।
4: आरबीआई कहता है
5: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
6: कम प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही आरबीआई, इससे बेहतर कुछ नहीं।
7: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस आरपीएलआई की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
8: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं जया भारती। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल में सखी वन स्टॉप सेंटर के कामकाज की समीक्षा की, हर महीने विस्तृत रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया। सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत दिल्ली जल बोर्ड के 50,000 से अधिक पेंशन भोगियों के लिए आज से कैशलेस मेडिकल सुविधा शुरू। दिल्ली में मतदाताओं के नामांकन के लिए मतदान केंद्रों पर विशेष कैंप जारी। डीटीसी बसों में महिलाओं के मुफ्त सफर के लिए अब तक 19,05,889 पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड जारी। और दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने पीजी संचालन से जुड़े मुद्दों पर संचालकों और प्रबंधकों से चर्चा की। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल स्थित सखी वन स्टॉप सेंटर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने केंद्र में उपलब्ध सुविधाओं, पीड़ित महिलाओं और बच्चियों को दी जा रही सेवाओं तथा शिकायतों के निस्तारण की पूरी व्यवस्था की समीक्षा की।
9: निरीक्षण के दौरान श्रीमती गुप्ता ने सेंटर पर आने वाले मामलों के रिकॉर्ड और उनके फॉलोअप की व्यवस्था की भी समीक्षा की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि अब से राजधानी के सभी सखी वन स्टॉप सेंटरों की विस्तृत रिपोर्ट प्रतिमाह मुख्यमंत्री कार्यालय को प्रस्तुत की जाए, जिसमें प्रत्येक मामले की पुलिस सूचना, FIR की स्थिति, आरोपी के विरुद्ध की गई कार्रवाई और पीड़िता को मिली वास्तविक सहायता का स्पष्ट विवरण देना अनिवार्य हो। श्रीमती गुप्ता ने पॉक्सो मामलों में गोपनीयता के साथ पुलिस कार्रवाई और कानूनी प्रक्रिया की समयबद्ध निगरानी सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। सौम्या की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
8: राष्ट्रीय महिला आयोग ने ऐप आधारित और डिजिटल परिवहन सेवाओं में महिलाओं की सुरक्षा के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। एक रिपोर्ट।
10: आयोग ने कहा है कि बड़ी संख्या में महिलाएं रोजाना ऐप आधारित कैब और अन्य परिवहन सेवाओं का इस्तेमाल करती हैं। आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों से इन दिशा निर्देशों को लागू करने के लिए आवश्यक कदम उठाने को कहा है। आयोग ने बताया कि दिशा निर्देश महिलाओं के अधिकारों और सम्मान की रक्षा को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं। इसमें 2013 की JS वर्मा समिति की रिपोर्ट को भी ध्यान में रखा गया है। आयोग ने राज्य सरकार, पुलिस और परिवहन सेवाओं से महिलाओं की सुरक्षा के लिए मिलकर काम करने की अपील की है। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
8: दिल्ली परिवहन निगम DTC बसों में महिलाओं के मुफ्त सफर के लिए अब तक 19,05,000

0: 889 पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड जारी किए जा चुके हैं। दिल्ली सरकार ने बताया कि इस कार्ड को प्राप्त करने में सुविधा प्रदान करने के लिए परिवहन विभाग ने राजधानी के सभी क्षेत्रों को कवर करने के लिए 38 डीटीसी पिंक पास वितरण केंद्रों का एक बड़ा नेटवर्क तैयार किया है। इसके साथ ही कार्ड बनवाने की प्रक्रिया को और अधिक आसान और सुलभ बनाने के लिए राजधानी के कई इलाकों में विशेष शिविर भी लगाए जा रहे हैं। दिल्ली के परिवहन मंत्री डॉ पंकज कुमार सिंह ने कहा है कि सभी पात्र महिलाओं को कार्ड बनाने और जारी करने की प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने आज युवा संवाद कार्यक्रम के अंतर्गत दिल्ली विश्वविद्यालय के कमला नेहरू कॉलेज की छात्राओं से संवाद किया। इस अवसर पर श्री गुप्ता ने कहा कि महिलाओं को लोकतंत्र में सक्रिय भागीदारी के लिए आगे आना चाहिए और विकसित भारत के निर्माण में सार्थक योगदान देना चाहिए। कार्यक्रम के अंतर्गत छात्राओं ने दिल्ली विधानसभा का भ्रमण कर लोकतांत्रिक संस्था के कामकाज को प्रत्यक्ष रूप से समझने तथा संविधान, विधायी प्रक्रियाओं और निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की भूमिका के बारे में जाना। दिल्ली सरकार ने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत दिल्ली जल बोर्ड के 50,000 से अधिक पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों के लिए कैशलेस मेडिकल सुविधा का शुभारंभ किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस सुविधा से बोर्ड को अपनी सेवाएं देने वाले सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके परिवारों को इलाज के दौरान होने वाली आर्थिक परेशानियों से बड़ी राहत मिलेगी।
1: दिल्ली सरकार ने बताया कि इस सुविधा से पहले किसी बीमारी या उपचार की आवश्यकता होने पर पेंशनरों को अस्पताल में इलाज का खर्च पहले अपनी जेब से वहन करना पड़ता था। इसके बाद प्रतिपूर्ति के लिए आवेदन करने और लंबी प्रक्रिया पूरी करने की आवश्यकता होती थी। इसी प्रक्रिया को और आसान करने की दिशा में यह कैशलेस चिकित्सा सुविधा शुरू की गई है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली जल बोर्ड के पेंशनरों और फैमिली पेंशनरों ने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा दिल्ली की सेवा में समर्पित किया है।
2: वो हजारों कर्मचारी अधिकारी जो दिल्ली जल बोर्ड में काम करते रहे और उनके जीवन के इस पड़ाव पे जब उन्हें सरकार की सहायता की जरूरत थी, उनके पास अभी तक कैशलेस मेडिकल फैसिलिटीज नहीं उपलब्ध थी। आज हमारी सरकार ने इसके लिए सभी पेंशनर्स के लिए कैशलेस मेडिकल फैसिलिटी जो उपलब्ध कराई है, ये बहुत बड़ी सहायता है।
1: ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी है कि जीवन के इस पड़ाव पर उन्हें बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं सहज और सम्मानजनक तरीके से उपलब्ध कराई जाएं। प्रादेशिक समाचार के लिए सौम्या शरण।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया है कि दिल्ली के सभी मतदान केंद्रों पर नए मतदाताओं के नामांकन के लिए फॉर्म 6 के जरिए विशेष कैंप लगाए जा रहे हैं। इसी क्रम में युवा मतदाताओं के नामांकन के लिए इस महीने की 7 और 8 तारीख को राष्ट्रीय राजधानी के सभी महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों और अन्य शिक्षण संस्थानों में विशेष शिविरों का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही राजधानी के सभी मतदान केंद्रों पर एक और विशेष शिविर 11 अक्टूबर को आयोजित किया जाएगा। उधर सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि निर्वाचन आयोग के फॉर्म 6 में किसी भी बदलाव को अदालत ने मंजूरी नहीं दी है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने इसकी पुष्टि की। न्यायालय ने बदलाव से जुड़े दस्तावेज मंगाए हैं ताकि पता चल सके कि ये बदलाव किसने किए हैं। मामला मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR से जुड़ा है। संचार मंत्रालय ने बताया है कि मई 2023 में शुरू हुए संचार साथी पोर्टल पर 30 करोड़ से अधिक बार विजिट किया गया है। मंत्रालय के दूरसंचार विभाग द्वारा बनाया गया ये पोर्टल उपयोगकर्ताओं को संदिग्ध कॉल या मैसेज रिपोर्ट करने की सुविधा देता है।
3: ये पोर्टल लोगों को ये जानने में भी मदद करता है कि उनके नाम पर कितने मोबाइल कनेक्शन मौजूद हैं। उपयोगकर्ता इस पोर्टल से खोए या चोरी हुए मोबाइल फोन ब्लॉक भी कर सकते हैं। मंत्रालय ने बताया कि खोए और चोरी हुए 14 लाख से अधिक मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। नागरिकों की ओर से अपने नाम पर मोबाइल कनेक्शन के बारे में जानने से जुड़ी 4 करोड़ से अधिक जानकारियां प्रदान की गई है। मंत्रालय ने कहा कि जो नागरिक धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ शिकायत करने के लिए संचार साथी का इस्तेमाल करते हैं, वे एक साइबर वॉरियर की तरह काम करते हैं। मंत्रालय ने कहा कि फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर से 5,000 करोड़ से अधिक की संभावित साइबर धोखाधड़ी को रोका गया है। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने आज पीजी मालिकों

0: संचालकों और प्रबंधकों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान पीजी संचालन से जुड़े व्यावहारिक पहलुओं, चुनौतियों और विद्यार्थियों की सुरक्षा तथा सुविधाओं से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। मीडिया से बातचीत में श्री सूद ने कहा कि इस बैठक से पहले उन्होंने पीजी आवासों में रहने वाले विद्यार्थियों से सीधा संवाद किया था। उन्होंने कहा कि आने वाले सप्ताहों में दिल्ली सरकार विद्यार्थियों आवासों के लिए अंतिम नियामक ढांचा और दिशा निर्देश लागू करेगी, जिससे देश के विभिन्न हिस्सों से आने वाले लाखों विद्यार्थियों के हितों और सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकेगा।
1: बैठक के बाद एक हाई पावर्ड कमेटी बनी है जिसको एक रेगुलेशन बनानी है। दिल्ली के लाखों बच्चों के लिए पढ़ते समय रहने के लिए पीजी भी एक बड़ा साधन है। वो सेफ हो, रेगुलेटेड हो, सुरक्षित हो और सही दाम पर बच्चों को मिले, और जो अप्रिय घटना पिछले दिनों घटी ऐसी घटनाएं ना घटे, इसके लिए सभी स्टेक होल्डर कंसल्टेशन चल रही है और उसी के तहत हमने आज पीजी के ओनर्स के साथ बातचीत की।
0: दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने आज दिल्ली सरकार के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ दिल्ली पुलिस, लोक निर्माण विभाग, नगर निगम और परिवहन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान उन्होंने परिसरों की सुरक्षा और विद्यार्थियों की सुरक्षा की व्यापक समीक्षा की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों की सुरक्षा सर्वोपरि है और इसमें किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जा सकता। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने आज दिल्ली विश्वविद्यालय के विभिन्न कॉलेजों के विद्यार्थियों के साथ संवाद कर राजधानी को प्रदूषण मुक्त बनाने के प्रयासों पर चर्चा की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिरसा ने कहा कि बैठक में वायु संकल्प, पराली और बायोमास जलाने की रोकथाम, ब्राउन पैच की पहचान तथा ग्रीन दिल्ली ऐप के प्रति जागरूकता बढ़ाने जैसे विषयों पर चर्चा की गई। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कल नई दिल्ली में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के दूसरे दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर मुरली मनोहर पाठक ने आकाशवाणी को बताया कि समारोह में 1300 से अधिक विद्यार्थियों के शामिल होने की उम्मीद है। दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही ने आज पूट गांव स्थित मैत्रीय मध्यान्ह भोजन रसोई यानी मिड डे मील किचन का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान महापौर ने भोजन बनाने के स्थल, कर्मचारियों द्वारा स्वच्छता मानकों का पालन करने की जांच की। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने एक अंतर्राज्यीय मादक पदार्थ तस्करी मामले का पर्दाफाश करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से लगभग 7 किलोग्राम से अधिक मादक पदार्थ जब्त किया, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 50 करोड़ रुपए बताई जा रही है। दिल्ली के कला और संस्कृति मंत्री कपिल मिश्रा ने आज दुर्गा पूजा आयोजन के लिए गठित विशेष समिति के सदस्यों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान श्री मिश्रा ने पंडालों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन स्थल पर श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए पर्याप्त इंतजाम सुनिश्चित करने और सभी जिलाधिकारी को इसकी नियमित निगरानी करने के निर्देश दिये। उन्होंने सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से सभी आयोजकों को आवश्यक एनओसी और अनुमतियों की प्रक्रिया समयबद्ध तरीके से पूरा करने को भी कहा। दिल्ली नगर निगम द्वारा गहन प्रवर्तन अभियान के अंतर्गत शहर के सभी 12 जोनों में 31 स्थानों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू की गई। इसके साथ ही 5 संपत्तियों को सील किया गया और लागू भवन मानदंडों और नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर 7 ध्वस्तीकरण आदेश पारित किए गए। आज के प्रवर्तन अभियान के दौरान जनकपुरी, टैगोर गार्डन एक्सटेंशन, सरस्वती विहार, शालीमार बाग, शक्तिनगर, शकरपुर, घरौली एक्सटेंशन, सीलमपुर और संत नगर सहित दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में प्रमुख ध्वस्तीकरण कार्रवाई की गई। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सिख धर्म के संस्थापक और प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी की के ज्योति ज्योत दिवस पर उन्हें नमन किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि गुरु नानक देव जी की वाणी में मानवता का कल्याण, उनकी शिक्षाओं में सेवा का संस्कार और उनके जीवन में सभी की भलाई का शाश्वत संदेश है। राजधानी दिल्ली में आज का दिन के समय तेज धूप रही। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 36 डिग्री से अधिक दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 23.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने बताया कि कल आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और कुछ स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना है। कल का अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 से 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लोक नायक जयप्रकाश अस्पताल में सखी वन स्टॉप सेंटर के कामकाज की समीक्षा की, हर महीने विस्तृत रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने पीजी संचालन से जुड़े मुद्दों पर संचालकों और प्रबंधकों से चर्चा की। सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत दिल्ली जल बोर्ड के 50,000 से अधिक पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों के लिए आज से कैशलेस मेडिकल सुविधा शुरू। डीटीसी बसों में महिलाओं के मुफ्त सफर के लिए अब तक 19,05,889 पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड जारी और दिल्ली में मतदाताओं के नामांकन के लिए मतदान केंद्रों पर विशेष कैंप जारी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: पापा की जमा पूंजी, उनकी सीख
3: और हमेशा हमारी फिक्र करना।
4: वैसे उनकी एक जमा पूंजी बैंक में भी है,
2: पर क्लेम करना मुश्किल होगा।
3: अब और भी आसान हो गया है। बैंक की वेबसाइट या ब्रांच में जाओ, क्लेम फॉर्म भरो, डॉक्यूमेंट्स जमा करो, 15 दिनों में सेटलमेंट पाओ। नॉमिनेशन से क्लेम सेटलमेंट बने और भी आसान।
5: RBI कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। आयुषोताओं सुनिए कार्यक्रम हमारे अतिथि।
7: नमस्कार, हमारे अतिथि कार्यक्रम में मैं नीलम अलकानिया आप सभी का स्वागत करती हूं। दोस्तों, आप जानते ही हैं इस कार्यक्रम में हमारे साथ जो शख्सियत होती हैं वो असल में एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक पूरी कहानी होते हैं अपने आप में। कैसे किस काम की शुरुआत हुई, क्या संघर्ष थे, क्या उपलब्धियां, और आज किस तरह से दूसरों को प्रेरित कर रहे हैं अपना काम करते करते, हम ये सब जानते हैं इस कार्यक्रम में। और अलग अलग क्षेत्र जो हैं उनके बारे में भी समझते हैं किसी एक व्यक्ति के माध्यम से। आज स्टूडियो में जो शख्सियत हैं, जो आपसे मिलने के लिए आए हैं, ये हैं संजीव श्रीवास्तव जी। आप जाने माने फिल्म समीक्षक हैं, लेखक हैं, पत्रकार हैं, और हाल ही में आपको राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त हुआ है। संजीव जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत।
8: बहुत बहुत धन्यवाद नीलम जी।
7: सबसे पहले आपको आकाशवाणी परिवार की ओर से राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त होने की, ये सम्मान प्राप्त होने की बहुत बहुत बधाई।
8: बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।
7: हम सब जानना चाहेंगे राष्ट्रपति जी के करकमलों द्वारा ये सम्मान पाते हुए कैसी अनुभूति थी, कैसा लगा आपको?
8: राष्ट्रपति जी के हाथों सम्मान पाकर के ऐसा लगा कि जैसे मेरे जीवन में कोई नया चमत्कार हो गया
7: जी।
8: अब तक मैं विज्ञान भवन में दूसरे कलाकारों और लेखकों को देखा करता था, पुरस्कार प्राप्त करते हुए उस वक्त मैं तालियां बजाया करता था, और उस वक्त मेरी आंखों में भी सपने होते थे कि काश कभी मुझे भी यह पुरस्कार मिलेगा क्या। आज जब मुझे यह पुरस्कार मिला तो मैं बहुत ही भावुक हो गया। मैं बताना चाहूंगा नीलम जी कि 18 जुलाई को जैसे ही इस पुरस्कार की घोषणा हुई और मुझे पता चला कि बेस्ट फिल्म क्रिटिक का अवार्ड दिया जा रहा है, तो घर में बहुत ही भावुक माहौल था। और मैं अपने बच्चों के साथ, पत्नी के साथ गले से लिपट करके बिल्कुल बच्चों की तरह रोने लगा
7: जी।
8: और घर में भी सब लोग बिल्कुल ही बहुत ही भावुक हो गए, मुझे यह बेस्ट फिल्म क्रिटिक का अवार्ड दिया जा रहा है इस साल। सपनों के सच होने जैसा था जब 22 सितंबर को केवड़िया में राष्ट्रपति जी के हाथों यह अवार्ड मिला। इस बीच पुरस्कार की घोषणा होने से लेकर के पुरस्कार मिलने तक जो धड़कन थी, जो बेतावी थी, वो तो बिल्कुल ही अनकही है, उसे शब्दों में बिल्कुल ही व्यक्त नहीं किया जा सकता
7: जी।
8: ये बहुत ही महसूस करने वाली बात है
7: जी।
8: और आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो उस पुरस्कार की बड़ी सफलता है।
7: तो हम ये कामना करते हैं कि स्वर्ण कमल की जो चमक है वो आपके जीवन में हमेशा बनी रहे। मैं ये भी जानना चाहूंगी संजीव जी आपसे कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिलने के बाद जीवन में क्या बदला?
8: बहुत कुछ बदला है, नजरिया बदला है। बताऊं मैं आपको कि फिल्में देखना और फिल्मों पर लिखना बहुत गंभीरता से कभी नहीं लिया जाता रहा है, और मुझे अपने घर में ही उस नजरिए का शिकार होना पड़ा कई बार
7: जी।
8: जब मैं सुबह सुबह फिल्म देखने चला जाता था तो घर में मुझे ताने सुनने के मिलते थे कि और कोई काम नहीं है क्या, सुबह उठे और फिल्म देखने चले गए। या फिर हमारे बहुत सीनियर साथी हैं हमारे प्रोफेशनल लाइफ में, उनका भी एक नजरिया होता था कि यार इतना सीनियर व्यक्ति है और फिल्मों पर लिखता रहता है, उन्होंने कभी बहुत गंभीरता से इस चीज को लिया नहीं
7: जी।
8: लेकिन जब पुरस्कार का ऐलान हुआ तो मुझे अपने घर में ही सबसे पहले छूट मिल गई, जाइए अब जितनी फिल्में आपको देखनी है देखिए, और हमारे प्रोफेशनल लाइफ में जो लोग मुझे अभी तक बहुत इग्नोर कर रहे थे, गंभीरता से नहीं ले रहे थे, ये बहुत ही भावुक पक्ष है। उन्होंने

0: मुझे बहुत अप्रिशिएट करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि हाँ बहुत अच्छा काम किए हो, जीवन में एक उपलब्धि हासिल की है, आगे बढ़ो।
1: जी अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि भारत के किस राज्य में आपका जन्म हुआ, बचपन कैसा था?
0: मेरा जन्म बिहार में हुआ है। बिहार का एक बहुत ही प्रसिद्ध जिला है, बहुत ही प्रसिद्ध साहित्यकार हुए हैं फणीश्वरनाथ रेणु, जिन्होंने मैला आंचल जैसा उपन्यास लिखा, उनके शहर में मेरा जन्म हुआ। पिताजी वहां पर सरकारी नौकरी कर रहे थे
1: जी।
0: तो पिताजी वहां पर पोस्टेड थे, पूरी फैमिली वहीं पर रहती थी, मेरा जन्म वहीं हुआ। लेकिन वैसे मेरा जो पैतृक शहर है वह बिहार का सीतामढ़ी जिला है
1: जी।
0: सीतामढ़ी नॉर्थ बिहार के बॉर्डर पे है और बहुत ही मशहूर जानकी स्थान मंदिर के लिए बहुत ही फेमस है
1: जी।
0: जो कि सीता जन्मस्थली के तौर पर वह जगह जानी जाती है। तो वह मेरा पैतृक शहर है। वहां का एक गांव है रिखौली, जहां मेरा बचपन बीता। पूर्णिया से आने के बाद कुछ ऐसे हालात बन गए थे कि शहर छोड़ करके पूरी फैमिली गांव में शिफ्ट हो गई थी कुछ सालों के लिए। तो गांव में कुछ साल हमारे बीते और गांव में जो साल बीते वे साल बहुत ही कठिनाइयों भरे थे। गांव में तब बिजली नहीं थी, सड़कें बहुत ही कच्ची हुआ करती थी और वहीं रह करके हमने 12वीं तक पढ़ाई की। पैदल जाता था स्कूल, वो करीब 2.5-3 किलोमीटर भी होता था। पिताजी फिर चूंकि दूसरी जगह पर रहा करते थे, दूसरे शहर में उनकी पोस्टिंग हो गई थी और फैमिली गांव में रहती थी। तो जब पिताजी शहर से जब गांव आते तो पूछते कि कैसे जाते हो, कैसे आते हो, तो फिर मैं उनको बताता। बहुत लोग मेरी उम्र में साइकिल चलाते थे स्कूल जाने के लिए, मैं साइकिल भी नहीं चलाता था। तो कठिनाई भरे वर्ष रहे वो
1: जी। तो इन संघर्षों के बीच जब आप पढ़ रहे थे तो उस वक्त क्या सपना था कि बड़े होकर हमें क्या बनना है, कौन सा ऐसा क्षेत्र था जिससे आप जुड़ना चाहते थे?
0: बिल्कुल, जो सिनेमा में आज जो सम्मान मिला है इसका बीज उन्हीं दिनों पड़ गया था। सच बताऊं मैं आपको
1: जी,
0: कि उस वक्त रेडियो से गाने बहुत आते थे। रेडियो के कुछ ही चैनल्स होते थे, विविध भारती है या फिर सिलोन है या गुवाहाटी है, ऐसे होते थे। पटना आकाशवाणी केंद्र से गाने बजते थे। फिल्मी गाने खूब सुना करता था मैं, नए पुराने गाने सब खूब सुना करता था और फिल्में देखने का शौक उसी समय से पैदा हो गया था। शहर जाकर के फिल्में देखता था और जब शुक्रवार को नए पोस्टर लगते थे हमारे जो कसवाई इलाके हैं वहां पर कि कौन सी फिल्म रिलीज हो रही है, तो फिल्म तो बाद में देखना है, पोस्टर के सामने खड़ा हो जाता था और पोस्टर पे जो हीरो हीरोइन की तस्वीरें होती थी उनको गौर से देखता था और खासतौर पर देखता था उसमें कौन कौन सितारे हैं, गीतकार है, संगीतकार है, डायरेक्टर प्रोड्यूसर कौन है, सब लिखा रहता था पोस्टर पर, उन सबको देखा करता था। और उसमें से जो सबसे ज्यादा अपील करता था उसको देखने के लिए शनिवार को स्कूल से हाफ टाइम के बाद मैं फरार हो जाता था
1: जी,
0: फिर वो देख कर ही आता था। हमारे शहर में एक बड़ी खास बात थी उस दौर में ये कि स्टूडेंट कंसेशन मिला करता था 50%, शनिवार को भी और रविवार को भी
1: जी।
0: तो शनिवार को मॉर्निंग शो में और रविवार को मैटिनी शो, मैटिनी शो कहने का मतलब 2 बजे का शो और मॉर्निंग शो 11 बजे का शो, उसमें 50% का डिस्काउंट मिलता था। और सबसे दिलचस्प बात मैं आपको बताऊं कि मुझे हफ्ते भर जो पॉकेट खर्च मिला करता था उसमें से मैं कुछ पैसे बचा लेता था फिल्म देखने के लिए। हर हफ्ते फिल्म देखता ही था।
1: आज पता चला कि वो इन्वेस्टमेंट था,
0: इन्वेस्टमेंट था
1: जी। संजीव जी, जीवन में एक समय ऐसा आता है जब हम ये सोचते हैं कि अब आत्मनिर्भर हुआ जाए, यानी अपने पैरों पर खड़ा हुआ जाए, कमाना शुरू किया जाए। तो जब आप उस पड़ाव पर पहुंचे जीवन के, तब किस तरह के संघर्ष थे, क्या विकल्प सामने थे, कैसा था वो दौर?
0: मेरा जो पहला लक्ष्य था वो प्रोफेसर बनने का था
1: जी।
0: चूंकि हिन्दी साहित्य से मैं एमए कर रहा था, शहर में आकर रहने लगे थे हम सब लोग, मेरी इच्छा थी प्रोफेसर बनने की। क्योंकि मैं प्रोफेसरों की दुनिया देखा करता था, वो बड़े आजाद ख्याल से रहा करते थे और बहुत ही बुद्धिजीवी किस्म के होते थे। उनको बहुत सारी जो औपचारिकताएं होती हैं दफ्तर की, उनको शायद मांगने में शायद छूट मिला करती थी। अब हो सकता है बहुत सारे प्रतिबंध लग गए होंगे, लेकिन उस दौर में ऐसा ही कुछ था। तो मुझे वो आजादी बहुत पसंद आई थी। लेकिन क्या है कि पत्रकारिता में सबसे पहली एंट्री मुझे मिल गई तो फिर मैं पत्रकारिता में चला गया। उन दिनों प्रोफेसर बनने में बहुत वक्त लगता था
1: जी, कहीं कोई प्लानिंग नहीं थी पत्रकार बनने की। लेकिन उस समय ऐसा लगा कि यही बेहतर विकल्प है।
0: यही बेहतर विकल्प है और शायद दूसरा सबसे बेहतर विकल्प लगा था क्योंकि लिखना पढ़ना शुरू हो चुका था
1: जी।
0: फिल्मों पर भी हमने छोटी छोटी टिका टिप्पणियां उन्हीं दिनों शुरू कर ली थी। ये बाद में बहुत उल्लेखनीय इसी जगह पर हो जाती है कि

0: पड़ाव लेकर कहा जाता है तो मंदिर। ये जो नायक के भीतर एक जो क्रांतिकारी चेतना है, एक पतिता को पतित पावन के द्वार पर ले जाने का जो विजन था डायरेक्टर का, उसने मुझे बहुत प्रभावित किया था
1: जी। और एकदम से विरोधाभास पैदा होता है,
0: विरोधाभास
1: जी,
0: दोनों नंगे पांव मंदिर के सामने खड़े हैं। इस चीज ने मुझे बहुत प्रभावित किया था, उस पर मैंने छोटी टिप्पणी लिखी थी, वो मेरे जीवन की सबसे पहली टिप्पणी।

0: माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल में, वहां के लिए मैंने प्रवेश परीक्षा दी और वहां मैं पास कर गया। जबलपुर जाके मैंने परीक्षा दी थी, फिर उसके बाद भोपाल में मुझे हॉस्टल मिल गया, पर फिर मैंने वहां रहना शुरू कर दिया और एक साल मैंने वहां कोर्स किया। उसके बाद भोपाल में दैनिक नई दुनिया से जुड़ा उस समय के लिए
1: जी,
0: और फिर उसके बाद दिल्ली आ गया
1: जी। आप पत्रकारिता से जुड़े, तो पत्रकारिता जो है वो अपने आप में एक बहुत ही जटिल दुनिया है और ऐसा लगता है कि सीमाएं भी जो हैं वो अनंत हैं और संभावनाएं भी अनंत हैं। यहां से संघर्षों की एक अलग दुनिया शुरू होती है, तो वो दौर कैसा था? आप दिल्ली आए, परिवार कहीं और था या साथ में था परिवार, और घर गृहस्थी जो है तब शुरू हुई नहीं हुई?
0: दिल्ली जब आया तो मैं बिल्कुल अकेला था, उस वक्त शादी नहीं हुई थी हमारी
1: जी।
0: मदर फादर अपने शहर में रहते थे, भाई बहन भी वहां सब लोग थे, और समझिए कि दिल्ली आकर के उस दौरान नए जीवन की शुरुआत करनी थी। नए जीवन की शुरुआत का मतलब है कि एक रोजगार शुदा जीवन की शुरुआत
1: जी।
0: लेकिन उन दिनों पत्रकारिता की दुनिया में नौकरी मिलना बहुत कठिन था।

0: तो आप कोई बहुत बड़ी सिफारिश लेकर आए हो, या तो आप संपादक जी के बहुत ही करीबी हो, या तो वहां पर कोई बड़ी जगह निकली है, तभी ये सिफारिशें भी काम कर रही थी
1: जी।
0: तो ऐसी स्थिति में जो सबसे पहले मैंने हिंदुस्तान अखबार में काफी समय तक फ्रीलांस किया
1: जी,
0: उन्होंने कई सारे लेख हमारे छापे, ये कुछ साल चला। उसके बाद दिल्ली में कुछ नए नए अखबार शुरू हुए, वहां मैंने अप्लाई किया, तो फिर वहां से फिर नौकरी का एक सिलसिला शुरू हुआ, लेकिन वो छोटा सा अखबार था, फिर वो अखबार बंद हो गया, फिर बेरोजगार हो गया
1: जी।
0: फिर उसके बाद नई टेक्नोलॉजी आई, टेलीविजन की दुनिया शुरू हुई, फिर उसके बाद मैं टीवी में चला गया साल 2000 से, के बाद से लगातार मैं टीवी में ही रहा, तब से ऊपर वाले की कृपा से और आप लोगों के सहयोग से सिलसिला चलता आ रहा है
1: जी। पहले जो है वो शब्दों की दुनिया में थे, उसके बाद आप स्क्रीन की दुनिया से जुड़े, थोड़ा अलग होता है?
0: बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि प्रिंट में जब हम काम कर रहे होते हैं तो जो हम वहां पर लिखते हैं
1: जी,
0: उसके साथ जो विजुअलाइजेशन की जो एक अपेक्षा होती है टेलीविजन में
1: जी,
0: वहां तो वो नहीं होती है
1: जी।
0: तो हम लिख देते हैं, चार पैराग्राफ लिख देते हैं, एक पन्ना लिख देते हैं, अखबार का आधा पेज भर देते हैं दो तीन फोटोग्राफ्स के साथ। लिखने की आजादी वहां ज्यादा होती है
1: जी,
0: लेकिन टेलीविजन में लिखने का कौशल थोड़ा बदल जाता है। हमें कुछ इस प्रकार से लिखना पड़ता है क्योंकि उसको सुनाना है हमें
1: जी, वो विजुअल को सपोर्ट करे,
0: विजुअल को सपोर्ट करे, साथ में जो दर्शक देख रहे हैं
1: जी,
0: वो कोई जरूरी नहीं है कि वो बहुत एजुकेटेड ही हो। अखबार तो एजुकेटेड लोग ही पढ़ते हैं
1: जी,
0: पत्रिकाएं भी एजुकेटेड लोग ही पढ़ते हैं, लेकिन टेलीविजन जरूरी नहीं कि शिक्षित लोग देखे। तो वहां पर ऐसी भाषा लिखनी होती है जो बहुत ही आसान हो, बोलचाल के करीब हो, और उस भाषा को सपोर्ट करने वाले विजुअल भी हो, साथ में बाइट्स भी हो, इसका बहुत अपेक्षित हो जाता है। तो जो एक लेखन कौशल है, लेखन कला है ना, वो अखबार के मुकाबले टेलीविजन की कुछ ज्यादा कठिन है, वो एक अलग क्राफ्ट है, उसको सीखने की जरूरत पड़ती है।
1: तो लगातार इस तरह की चुनौतियां आती गई, तो कैसे आप फिल्म समीक्षा से जुड़े, क्या ध्यान रखते थे आप कि आपकी समीक्षा में क्या क्या तत्व होने चाहिए, कैसे वो दूसरे समीक्षक से अलग लगे, और किस तरह से वो पाठक के या जो फिल्म प्रेमी हैं, सिने प्रेमी हैं, उनके वो नजदीक हो?
0: पुस्तक समीक्षाएं मैं उस वक्त बहुत किया करता था
1: जी,
0: तो पुस्तक समीक्षाओं के साथ साथ मैं फिल्मों पर भी टिका टिप्पणियां किया करता था। उस वक्त बहुत सारे फिल्म समीक्षक, दिग्गज फिल्म समीक्षक हुआ करते थे, ब्रजेश्वर मदान, बच्चन श्रीवास्तव, संपत लाल पुरोहित, ऐसे कई सारे हुआ करते थे जिनसे मैं मिलता था, और सिनेमा के बारे में जो बातचीत सबसे होती थी, मुझसे बहुत प्रोत्साहन मिलता था कि तुम फिल्मों पर भी इसी तरह की समीक्षाएं लिखा करो जैसे पुस्तक समीक्षाएं लिखते हो
1: जी।
0: हमने वहां से सीखा, और शायद मुझे लगता है कि फिल्म समीक्षा में जो हमने थोड़ी गहराई पकड़ने की कोशिश की, उसकी वजह यही थी कि इससे पहले हमने रंगमंच की और पुस्तकों की समीक्षाएं की
1: जी,
0: तो एक डेप्थ और ढालने का एक प्रैक्टिस हमें हो गया था पहले से। फिल्म समीक्षा वास्तव में डायरेक्टर के विजन कैसा है, डायरेक्टर ने कहानी के जरिए क्या कहना चाहा है, ये बताना फिल्म समीक्षा का सबसे बड़ा इम्तिहान हो जाता है
1: जी।
0: उसे समझना हमें पड़ेगा, फिल्म आखिर कहती क्या है, किस लिए यह फिल्म बनाई गई है। ये जब तक हम बताएंगे नहीं, तब तक हम किसी भी फिल्म के साथ न्याय नहीं कर सकते। खूबियां और खामियां दोनों बताना बहुत जरूरी है, तभी कोई एक फिल्म समीक्षा बिल्कुल मुकम्मल हो पाती है। लेकिन डेस्क पर कई बार ऐसा होता है कि जो उस फिल्म के बारे में कुछ दूसरे आयाम, कुछ दूसरे तथ्य, दूसरी कहानी
1: जी
0: डेस्क के साथ ही लिखते हैं, तो उसके लिए क्या होता है कि चार जगहों से पढ़ते हैं, या कुछ क्लिप्स आती हैं, गाने आते हैं, टीजर ट्रेलर आता है, और डायरेक्टर का व्यू आ गया, एक्टर का व्यू आ गया, तो उसको पढ़ करके सुन करके रिपोर्ट बनाते हैं। रिपोर्ट अलग चीज है।
1: संजीव जी, इस समय हो सकता है हमारे ऐसे बहुत सारे युवा साथी आपको सुन रहे हैं जो जर्नलिज्म कर रहे हैं या किसी न किसी डेस्क के साथ वो जुड़ना चाहते हैं, आपके विचार में सीधे किसी एक डेस्क के साथ जुड़ना सही है, या हम हर तरह का काम करें, अनुभव लें, और उसके बाद ये तय करें कि हम कहां ज्यादा अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं?
0: देखिए, इसमें एक चीज ये है कि मैं अक्सर ये शिकायत सामने रखता हूं, अपने दफ्तर में भी रखता हूं, और अपने दफ्तर के अलावा और भी दूसरे दफ्तर में जो बड़े अधिकारी हैं उनके सामने रखता हूं
1: जी,
0: कि उनके पास जब भी कोई नया ट्रेनी आता है, नया स्टाफ आता है, तो उनसे यह पूछते हैं कि क्या आपको बिजनेस में दिलचस्पी है, पूछ करके वो बिजनेस डेस्क पर लगाते हैं। फिर दूसरे से पूछते हैं क्या आपको स्पोर्ट्स दिलचस्पी है, तो उसे पूछ करके फिर वो स्पोर्ट्स डेस्क पर लगाते हैं। लेकिन एंटरटेनमेंट डेस्क के साथ ऐसा नहीं होता है
1: जी,
0: उनसे सीधे अपेक्षा

0: दत्त अजय ब्रह्मातुज मनोहन चढ़ा प्रभा प्रहलाद अग्रवाल जबरी मल पारक विनोद अनुपम ऐसे ऐसे दिग्गज हिंदी के या फिर अंग्रेजी के भी लोगों ने लिखा और पिक्चर प्लस नाम से हमने यूट्यूब भी चलाया और सिनेमा के प्रति जो एक दीवानगी है उसके नजीर है। इसीलिए शास्त्री नाम से सिनेमा लेखकों पर एक सीरीज मैंने शुरू की है और फिल्म की एक वेबसाइट भी चलाई। तो आगे का जो प्लान बता रहे हैं ना ये जो मेरा अधूरा रह गया, ये जो मेरी अधूरी कहानी रह गई फिल्म पत्रकारिता की
1: जी।
0: कि हमारा एक अपना प्लेटफॉर्म हो फिल्म का, फिल्म न्यूज व्यूज इंटरव्यूज और जो फिल्म पत्रकारिता के लिए एक मुकम्मल प्लेटफॉर्म हो, जो मैं आमतौर पर बाजार में बिल्कुल सन्नाटा देखता हूँ, किसी के भी पास नहीं है जो फिल्मों पर एक हिंदी में एक मुकम्मल डिजिटल प्लेटफॉर्म हो
1: जी।
0: तो हमारी ये ख्वाहिश है जो बीच बीच में मैंने रुक रुक कर किया उसको अब इसके आगे मुकम्मल तौर पर करना चाहता हूँ। इसमें हमें कोई खास सहयोगी मिले तो या फिर मेरे पास संसाधन वैसा हो तो मैं उसको प्रोफेशनली एस्टैब्लिश करके दिखा दूंगा
1: जी।
0: ये मेरा प्रण है, ये मेरी ख्वाहिश है
1: जी। बहुत बहुत शुभकामनाएं हम आपको देते हैं कि आपका ये अगला पड़ाव भी आप जल्दी इस तक पहुंचे, इसे अचीव करें और उसके बाद अपने लिए फिर एक नया सपना संजोए और आपकी जो अलग अलग उपलब्धियां होंगी उस पर हम इस तरह से शामिल होंगे संजीव जी कि फिर आपको हम कष्ट देंगे, अपने स्टूडियो में बुलाएंगे और आपकी किसी नई उपलब्धि पर हम फिर से आपसे बात करेंगे। आप हमारे स्टूडियो में आए, आज आपने हमें समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद नीलम जी और तमाम श्रोताओं को भी मैं बहुत ही शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने बहुत ही धैर्य के साथ सुना। बस ये पुरस्कार मुझे एक गेटवे की तरह लाइफ में आया है
1: जी।
0: देखते हैं हाईवे पर कब जाते हैं
1: जी। बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप जल्द हाईवे तक पहुंचे। तो कार्यक्रम संयोजक प्रमोद कुमार वत्स के साथ, कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता विवेक कुमार तोमर के साथ मैं नीलम मलकानिया हमारे अतिथि कार्यक्रम से अब आप सभी से लेती हूं अनुमति। नमस्कार।

आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। 8:35 हो चुके हैं। समय है कार्यक्रम गीत मालिका का। आइए श्रोताओं सुनते हैं कार्यक्रम गीत मालिका, फिल्म संगीत पर आधारित ये कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज मैं हूं आपके साथ पूजा भारती।

और वाकई में जब पहली बार ऐसा दिल को महसूस होता है और ऐसा लगता है कि कुछ अलग सा समझ में आ रहा, कुछ अलग सा एहसास है, तब ये लग जाता है कि हाँ ये पहले प्यार का एहसास है। और जब पहला प्यार होता है तो कहीं भी दिल नहीं लगता। ऐसे में मोहब्बत करने वाले ये गीत जरूर गुनगुनाते होंगे।

जी हाँ, पहला नशा पहला अखबार और मोहब्बत। मोहब्बत तो बहुत कम लोगों को ही नसीब में मिलता है, तो जिसके नसीब में मोहब्बत है वो खुश नसीब है। तो मोहब्बत को संभाल कर रखिए, गीत गुनगुनाते रहिए। फिलहाल आज का ये कार्यक्रम गीत मालिका यहीं पर संपन्न होता है। मुझे पूजा भारती को दीजिए इस कार्यक्रम से अनुमति, लेकिन आखिरी नगमा आपके गुनगुनाने के लिए ये रहा।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम गीत मालिका। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 8:45 होने को है। अब सुनिए समाचार संध्या।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत और स्विट्जरलैंड ने परिवहन प्रौद्योगिकी, बुनियादी ढांचा और आवागमन क्षेत्र में सहयोग मजबूत करने के लिए 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। दोनों देशों ने रक्षा सहयोग के नए अवसर तलाशने और परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति जताई। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत की व्यापक नीति से अमरीका, रूस और चीन सहित विश्व के सभी प्रमुख देशों के साथ संबंध मजबूत करने में मदद मिली। आजादी के बाद पहली बार मालवाहक पोत असम से ब्रह्मपुत्र नदी के रास्ते बांग्लादेश रवाना। 80 वर्ष बाद अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्ग फिर शुरू। केंद्र और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच समझौता। क्षेत्रीय हवाई संपर्क मजबूत करने के लिए राज्य में 2 वर्ष में 4 नए हवाई अड्डे बनाए जाएंगे। और जर्मनी तथा अमरीका के वैज्ञानिकों को मस्तिष्क की गतिविधियों को नियंत्रित करने वाली नई तकनीक विकसित करने के लिए नोबेल चिकित्सा पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पाहमला के बीच आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय बातचीत हुई। इसके बाद दोनों देशों ने 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इन समझौतों में प्रवासन, युवा पेशेवरों के आदान प्रदान, परिवहन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, नवाचार तथा उद्यमिता जैसे क्षेत्र शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत EFTA व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते से दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
2: भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन यानी एप्टा देशों के बीच एक ऐतिहासिक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। ये यूरोप के किसी भी इकोनॉमिक ब्लॉक के साथ भारत का पहला FTA है। यह इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, जॉब्स और साझा समृद्धि का एम्बिशियस ब्लूप्रिंट भी है। इससे हम अगले 15 वर्षों में भारत में 100 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट और 10 लाख डायरेक्ट जॉब के लक्ष्यों को साकार करेंगे।
1: राष्ट्रपति पामला ने कहा कि यह यात्रा दोनों देशों के साझेदारी के महत्व को दर्शाने का अच्छा अवसर है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पाहमला से भेंट की। डॉ जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया कि राष्ट्रपति पामला की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात से दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग और बढ़ेगा। भारत और स्विट्जरलैंड रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हो गए हैं। इसमें रक्षा प्रशिक्षण और रक्षा उद्योग के बीच सहयोग शामिल है। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने आज नई दिल्ली में बताया कि स्विट्जरलैंड की कंपनियां मेक इन इंडिया के अंतर्गत भारत में रक्षा उपकरणों के संयुक्त उत्पादन और विकास कर सकती हैं। श्री जॉर्ज ने बताया कि दोनों देशों के बीच कई समझौते और सहमति पत्र पर हस्ताक्षर भी हुए।
3: MOU on migration and mobility partnership.
4: दोनों पक्षों ने प्रवासन और गतिशीलता साझेदारी, युवा पेशेवरों का आदान प्रदान और गतिशीलता से संबंधित समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। इसके अलावा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग तथा स्विस नेशनल साइंस फाउंडेशन के बीच आशय पत्र और ज्यूरिख यूनिवर्सिटी तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के बीच कार्यान्वयन समझौता हुआ।
3: डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवर TST।
1: भारत और स्विट्जरलैंड के बीच हुए समझौते के बारे में जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
5: प्रधानमंत्री मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति के बीच बातचीत बहुत व्यापक रही। उन्होंने भारत स्विट्जरलैंड संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की और व्यापार तथा निवेश, नवाचार एवं AI, रक्षा उत्पादन और परमाणु ऊर्जा जैसे कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग को बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की। दोनों पक्षों ने शांति, कूटनीति और वैश्विक संस्थाओं में सुधार के प्रति अपनी प्रतिबद्धता भी दोहराई। दोनों नेताओं ने दुनिया में चल रहे संघर्ष की स्थिति पर भी चर्चा की। यूक्रेन की स्थिति को लेकर भारत का रुख बहुत स्पष्ट है कि नई दिल्ली कूटनीतिक समाधान के पक्ष में है। भारत ने इस मामले का कूटनीतिक समाधान तलाशने में स्विट्जरलैंड की भूमिका की भी सराहना की। स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी के संदेश की बहुत सराहना की कि यह युद्ध का युग नहीं है बल्कि शांति का युग है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि विकासशील देशों को उम्मीद है

0: कि भारत विश्व मंच पर उनकी चिंताओं को मजबूती से उठाएगा। डॉक्टर जयशंकर ने आज नई दिल्ली में पांचवें कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन में कहा कि भारत विकासशील देशों की खाद्य, ईंधन, उर्वरक और वित्त से जुड़ी चिंताओं के प्रति सजग है। विदेश मंत्री ने कहा कि विश्व के साथ जुड़ने की भारत की व्यापक नीति अमरीका, रूस और चीन सहित विश्व के सभी प्रमुख देशों के साथ संबंध बनाए रखने में सक्षम बनाता है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि भारत अब सिर्फ तकनीक का इस्तेमाल करने वाला देश नहीं बल्कि नई तकनीक बनाने वाला देश बनना चाहता है। नई दिल्ली में कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन में आज उन्होंने कहा कि एआई ने काम करने, लेन देन और फैसले लेने के तरीकों को बदल दिया है। श्री सिंधिया ने कहा कि टेलीकॉम नेटवर्क आज डिजिटल हाईवे बन चुका है और डेटा एआई अर्थव्यवस्था का ईंधन है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: आपको हर खबर से रखे अपडेट एक्सपर्ट एट एआईआर न्यूज हिंदी और पब्लिक पर एट एआईआर न्यूज अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज असम के डिब्रूगढ़ से बांग्लादेश के लिए मेथनॉल ले जाने वाले पहले मालवाहक पोत को झंडी दिखाकर रवाना किया। इससे लगभग 80 वर्ष बाद ब्रह्मपुत्र नदी को वैश्विक व्यापार मार्ग के रूप में फिर से विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल शुरू हुई है। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस पहल से पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए सीधा, पर्यावरण अनुकूल और किफायती व्यापारिक गलियारा शुरू हो जाएगा।
2: भारत के अंतर्देशीय जलमार्ग क्षेत्र में आज एक नए अध्याय की शुरुआत हुई जब मिथानॉल की एक खेप डिब्रूगढ़ स्थित बोगीबिल टर्मिनल से बांग्लादेश के ढाका स्थित पंगाव बंदरगाह के लिए रवाना हुई। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय कार्गो यात्रा को हरी झंडी दिखाते हुए केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने विश्वास व्यक्त किया कि यह टर्मिनल क्षेत्र के आर्थिक विकास को नई गति देगा। उन्होंने घोषणा की कि केंद्रीय सरकार बोगीबिल टर्मिनल पर 200 करोड़ रुपए की लागत से शिपिंग क्षेत्र के लिए एक नए कौशल विकास केंद्र की स्थापना करेगी। यह केंद्र अगले 10 वर्षों में असम और पूर्वोत्तर क्षेत्र के 50,000 युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करेगा जिससे उन्हें समुद्री और शिपिंग उद्योग में रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्व शर्मा भी वर्चुअल माध्यम से इस ध्वजारोहण समारोह में शामिल हुए। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: पश्चिम बंगाल में अगले 2 वर्ष में 4 नए हवाई अड्डों का विकास किया जाएगा। केंद्र और राज्य सरकार के बीच आज कोलकाता में नागर विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू और मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की उपस्थिति में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। इस अवसर पर श्री नायडू ने कहा कि बागडोगरा में एक नया टर्मिनल भी बनाया जाएगा।
3: आज एमओयू में हमने 4 नए एयरपोर्ट बनाने की लक्ष्य हमने रखा है। उसमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट एक हसीमारा और कलाईकुंडा में जो सिविल एन्क्लेव्स बनाने का, वहां पे 2700 मीटर का ऑलरेडी उपस्थित रनवे है जिससे कि दूर की कनेक्टिविटी भी वहां से हो सकती है। उसके साथ ही बालूरघाट में जहां पे एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का भी लैंड है, वहां पे भी हम जो उपस्थित स्ट्रिप है उसको भी एक्सपैंड कर वहां से भी एयर ऑपरेशंस को शुरू करने का एमओयू में शामिल किया है।
0: मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि केंद्र सरकार से कोलकाता से यूरोपीय शहरों के लिए सीधी उड़ान शुरू करने और आंदल से प्रमुख गंतव्यों तक पहुंच बढ़ाने का आग्रह भी किया गया है। उन्होंने अयोध्या, तिरुपति और अमृतसर के लिए भी सीधी उड़ान शुरू करने की मांग की। निर्वाचन आयोग ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के उन आरोपों का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के फॉर्म 6 में गैर कानूनी रूप से और एकतरफा बदलाव किए। आयोग ने स्पष्ट किया कि SIR के फॉर्म 6 से जुड़ी घोषणा को सर्वोच्च न्यायालय ने बरकरार रखा है। सोशल मीडिया पोस्ट में निर्वाचन आयोग ने कहा कि बिहार में SIR से संबंधित आदेश पिछले वर्ष 24 जून को आयोग की सर्वसम्मति से जारी किया गया था। आयोग ने बताया कि इस आदेश को सर्वोच्च न्यायालय ने इस वर्ष 27 मई के अपने फैसले में भी बरकरार रखा। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि उसने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान निर्वाचन आयोग द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे फॉर्म 6 में किसी भी बदलाव को स्वीकृति नहीं दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 3 उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों को सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि राष्ट्रपति ने गुजरात उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल, दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अपारेश कुमार सिंह को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। न्यायिक अधिकारी गुरविंदर पाल सिंह को दिल्ली उच्च न्यायालय में अपर न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कल नई दिल्ली में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के दूसरे दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर मुरली मनोहर पाठक ने आकाशवाणी को बताया कि समारोह में 1300 से अधिक विद्यार्थियों को शामिल होने की संभावना है।
4: इस दीक्षांत समारोह में वर्ष 2024, 2025 और 2026 इन तीन वर्षों के सर्वश्रेष्ठ तीन विद्यार्थियों को उपराष्ट्रपति के हाथ से गोल्ड मेडल दिलाया जाएगा और प्रत्येक वर्ष में जो नामित मेडल है विभिन्न लोगों के द्वारा स्पॉन्सर्ड है 20-20-20 यानी 60 बच्चों को हम गोल्ड मेडल देंगे, 240 पीएचडी स्कॉलर्स को पीएचडी का सर्टिफिकेट देंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये यात्रा जनसेवा से देश सेवा की मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से प्रेरित है। सेवा और सुशासन की इसी दृष्टि से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन में परिवर्तन भी ला रहा है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में हम आपको बताएंगे कि वंदे भारत रेलगाड़ियों की शुरुआत के जरिए इस परिकल्पना को किस तरह साकार किया गया।
5: 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने में आधुनिक परिवहन व्यवस्था की अहम भूमिका है। भारतीय रेलवे की वंदे भारत एक्सप्रेस इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह ट्रेन देश के अलग अलग शहरों को तेज, सुरक्षित और आरामदायक रेल सेवा प्रदान कर रही है। वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत फरवरी 2019 में नई दिल्ली से वाराणसी के बीच हुई थी। पिछले साल नवम्बर में वाराणसी से 4 नई वंदे भारत ट्रेनों को रवाना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि वंदे भारत जैसी ट्रेनें भारतीय रेलवे को आधुनिक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।
6: वंदे भारत जैसी ट्रेनें भारतीय रेलवे की अगली पीढ़ी की नींव तैयार कर रही है। ये भारतीय रेलवे को ट्रांसफॉर्म करने का एक पूरा अभियान है। वंदे भारत भारतीयों की, भारतीयों द्वारा, भारतीयों के लिए बनाई हुई ट्रेन है जिस पर हर भारतीय को गर्व है।
5: आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए उत्तर प्रदेश के गौरांग शुक्ला ने वंदे भारत ट्रेन की सराहना करते हुए कहा कि यह ट्रेन आत्मनिर्भर भारत के विजन को दर्शाती है।
7: वंदे भारत आत्मनिर्भर भारत का एक प्रतीक है। रेलवे के आधुनिकीकरण, स्वदेशी तकनीक और बुनियादी ढांचे में सरकार के निवेश ने वंदे भारत को भारत की तेज, स्मार्ट और बेहतर कनेक्टिविटी की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बनाया है।
5: भारत की पहली स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस को देश के अलग अलग शहरों के बीच बेहतर रेल सेवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विकसित किया गया है। यह ट्रेन पूरी तरह वातानुकूलित है और इसे अधिकतम 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के लिए डिजाइन किया गया है। इस समय देश भर में 160 से अधिक वंदे भारत ट्रेनें संचालित हो रही हैं और देश के प्रमुख रेल मार्गों पर संपर्क को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। इस वर्ष का नोबेल चिकित्सा पुरस्कार कार्ल डाइसेरोथ, पीटर हिगमैन और जॉर्ज नागेल को दिया जाएगा। स्टॉकहोम में आज इसकी घोषणा की गई। एक रिपोर्ट।
8: तीनों वैज्ञानिकों को लाइट गेटेड आयन चैनल और ऑप्टोजेनेटिक्स से जुड़ी महत्वपूर्ण खोजों के लिए ये सम्मान मिला है। ऑप्टोजेनेटिक्स ऐसी तकनीक है जिसमें प्रकाश की मदद से मस्तिष्क की तंत्रिका कोशिकाओं की गतिविधियों को नियंत्रित किया जा सकता है। इस तकनीक से जीवित मस्तिष्क में किसी खास तंत्रिका कोशिका को सक्रिय या निष्क्रिय करना संभव है। इससे वैज्ञानिकों को मस्तिष्क में याददाश्त, भावनाओं और व्यवहार को समझने में मदद मिलती है। पीटर हिगमैन और जॉर्ज नागेल ने चैन लारोडोप्सिस नाम के प्रोटीन की खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया। कार्ल डाइसेरोथ अमेरिका के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में बायो इंजीनियरिंग, मनोचिकित्सा और व्यवहार विज्ञान के प्रोफेसर हैं, जबकि पीटर हिगमैन जर्मनी के बायो फिजिसिस्ट और जॉर्ज नागेल न्यूरो साइंटिस्ट हैं। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में डिजिटल युग में ई कचरे की चुनौतियां, समाधान और भविष्य की कार्य योजना पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और स्विट्जरलैंड ने परिवहन प्रौद्योगिकी, बुनियादी ढांचा और आवागमन के क्षेत्र में सहयोग मजबूत करने के लिए 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। दोनों देशों ने रक्षा सहयोग के नए अवसर तलाशने और परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति जताई। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत की व्यापक नीति

ऑन एयर और डीडी फ्री डिश पर इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात। पेश खिदमत है गैर फिल्मी गजलों का प्रोग्राम एक फनकार। आज के इस प्रोग्राम में समाज फरमाइए चित्रा सिंह की गाय गजली। आगाज कर रहे हैं सईद राही के इस कलाम के साथ।

आप समाज फरमा रहे थे रुस्तम सहगल वफा का कलाम, आवाज चित्रा सिंह की थी। आज की फिल्म गजलों के प्रोग्राम एक फनकार की आखिरी पेशकश डॉक्टर बशीर बद्र का कलाम, एक मरतब फिर गजल करा है चित्रा सिंह।

0: अब समाप्त फरमा रहे थे चित्रा सिंह की आवाज में डॉक्टर बशीर बद्र का कलाम। इसके साथ ही आज का गैर फिल्मी गजलों का प्रोग्राम एक फनकार अब खत्म होता है। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। शब के 9:45 बजे हैं, खबरें नशर होंगी।
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। जमीर रजवी से खबरें सुनिए।

शामिल हैं। जनरल नायडू ने कहा कि कलई कुंडा में वाक 2700 मीटर का रनवे बोइंग 737 और एयरबस A320 जैसे तैयारों की परवाज के काबिल होगा। इस दौरान वजीर आला शुभेंदु अधिकारी ने कोलकाता और यूरोपीय शहरियों के दरमियान सीधी परवाज और अयोध्या, तिरुपति और अमृतसर जैसे मकामात के लिए बेहतर कनेक्टिविटी का मुतालबा किया। भारत मुत्तहिदा अरब अमारात मुश्तरका फौजी मार्च माउंटेन गार्डन 2026 आज उत्तराखंड में शुरू हो गई। ये फौजी मशक पहाड़ी इलाकों में जंगी सलाहियत पर तवज्जो मरकूज करते हुए बाहमी मफाहमत और तालमेल में इजाफा करने के मकसद से की जा रही है। वजारत दिफा के मुताबिक दोनों मुल्कों की अफवाज की यकसां तादाद में नुमाइंदगी है और इस मशक में कुल 92,000 अहलकार शिरकत कर रहे हैं। मवासिलात के मरकजी वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि भारत ने 4G के मामले में दुनिया की पैरवी की, 5G में शाना बशाना चला और अब 6G के मामले में वो दुनिया की कयादत करेगा। आज नई दिल्ली में इंडियन फाउंडेशन फॉर क्वालिटी मैनेजमेंट सिंपोजियम 2026 से खिताब करते हुए जनाब सिंधिया ने कहा कि भारत टेली मवासिलात के आलात के दरामद करने वाले मुल्क से निकलकर अब बरामदकार बन गया है। जनाब सिंधिया ने मजीद कहा कि शुमाल मशरकी रियासतों की एक कंपनी समेत मुल्क में 8 से 9 सेमी कंडक्टर माइक्रोचिप बनाने वाली कंपनियों की आमद हो रही है। भारतीय इंतखाबी कमीशन ने लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी के इन इल्जामात को मुस्तरद कर दिया कि चीफ इंतखाबी कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने वोटर फहरिस्तों की खसूसी तफसीली नजरसानी SIR के फॉर्म 6 में गैर कानूनी और यकतरफा तौर पर तब्दीली की है। कमीशन ने वजाहत की कि SIR के लिए फॉर्म 6 के साथ मुंसलिक डिक्लेरेशन को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है। सोशल मीडिया पोस्ट में कमीशन ने यह भी कहा कि बिहार में SIR के ताल्लुक से हुक्म पिछले साल 24 जून को कमीशन के जरिए इत्तेफाक राय से मंजूरी के बाद जारी किया गया था। कमीशन ने इस बात को भी उजागर किया कि इस साल 27 मई के अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने इस हुक्म को बरकरार रखा है। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने वाजे किया कि इंतखाबी फहरिस्तों की खसूसी तफसीली नजरसानी के अमल के दौरान इंतखाबी कमीशन के जरिए इस्तेमाल किए जाने वाले फॉर्म 6 में कमीशन की जानिब से किसी तब्दीली की मंजूरी नहीं दी गई है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। साल 2026 का फिजियोलॉजी या अद्वियात के शोबे का नोबेल इनाम अमरीकी शहरी कार्ल डाइस्रोथ और जर्मन शहरियों पीटर हैगमैन और ग्योर्ग नागेल को दिया गया। इन अफराद को दिमाग के अंदरूनी कामकाज के तरीकेकार का पता लगाने की तकनीक तैयार करने में काबिल जिक्र हुसूलियाबियों की बिना पर यह इनाम दिया गया। ये तरीकेकार जिसे ऑप्टोजेनेटिक्स कहा जाता है रोशनी पर मबनी स्विच की तरह काम करता है जिससे साइंसदान ये पता लगा सकते हैं कि दिमाग के कौन से खलियात कौन सा काम करते हैं। स्वीडन में स्टॉकहोम के कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट की नोबेल असेंबली में आज इस बावकार इनाम का ऐलान किया गया। अपने बयान में कमेटी ने कहा कि हैगमैन और नागेल की जर्मन जोड़ी ने चैनल रोडोप्सिन नामी प्रोटीन का पता लगाया जबकि अमरीकी साइंसदान डाइस्रोथ ने प्रोटीन को आसाबी खलियात के लिए रोशनी से चलने वाले स्विच में तब्दील किया। प्रोजेक्ट चीता के तहत भारत में पैदा हुई मादा चीता ने कुनो नेशनल पार्क में आज 5 सेहतमंद बच्चों को जन्म दिया। इस तरह भारत में चीतों की मजमूई तादाद बढ़कर 60 हो गई है जिनमें 41 चीते भारत में पैदा हुए हैं। माहौलियात, जंगलात और आबोहवा की तब्दीली के मरकजी वजीर भूपेंद्र यादव ने कहा कि ये पेशरफ्त भारत में चीतों की आबादी को बढ़ाने में अहम संग मील की हैसियत रखती है। जनाब यादव ने मजीद कहा कि चीते के इन 5 बच्चों की पैदाइश भारत में बोत्सवाना नस्ल का आगाज है क्योंकि उनका बाप बोत्सवाना का नर चीता है। जनाब यादव ने मजीद कहा कि ये भारत में चीतों की बढ़ती आबादी में नई जीनियाती नस्ल का इजाफा है। और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। भारत और स्विट्जरलैंड ने ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी में तआवुन को तकवीत देने, बुनियादी ढांचे और मोबिलिटी, दिफाई इश्तराक के मैदान में नए इम्कान की तलाश और न्यूक्लियाई तवानाई में तआवुन को वसत देने से मुतालिक 5 माहदों पर दस्तखत किए हैं। वजीर खारजा डॉ जयशंकर ने कहा है कि भारत का कसीर जहती वाबस्तगी का नुक्ता नजर उसे अमरीका, रूस और चीन समेत सभी आलमी ताकतों से मसरूफ अमल रहने के काबिल बनाता है। बैन अलावी तजारती रास्ते की बाजियाबी के तहत 80 साल के वक्फे के बाद आसाम से पहला कार्गो बहरी जहाज ब्रह्मपुत्र नदी के जरिए बांग्लादेश पहुंचा और जर्मनी और अमरीकी साइंसदानों ने दिमाग की पुरेसरार पेचीदगियों का इंकशाफ करने वाली तकनीक तैयार करने पर अद्वियात के मैदान का नोबेल इनाम जीता है। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरों का यह बुलेटिन खत्म।

0: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। कुछ बातें आपकी सेहत के हवाले से। आदाब, आज के हमारे प्रोग्राम का मौजू है गॉल स्टोन, किडनी स्टोन, प्रोस्टेट कैंसर की बीमारी, वजूहात बचाव और इलाज। हमारे एक्सपर्ट हैं डॉक्टर आरपी अरोड़ा, आप सीनियर यूरोलॉजिस्ट हैं और चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं सफदरजंग हॉस्पिटल न्यू दिल्ली। डॉक्टर साहब, सबसे पहले सवाल जो है गॉल स्टोन और किडनी स्टोन। किडनी स्टोन में तो आमतौर पर लोग ये समझते हैं कि पानी की वजह से कभी कभी स्टोन बनने लगते हैं, स्टोन फॉर्मेशन हो जाती है, लेकिन पित्त जिसे कहते हैं गॉल ब्लैडर, उसमें कैसे बन जाता है जबकि उसमें कोई चीज जा ही नहीं सकती?
1: गॉल ब्लैडर में बाइल की कंसंट्रेशन से बनते हैं, जिनकी बॉडी में टेंडेंसी रहती है कि बाइल उनका ज्यादा गाढ़ा होता है। लीवर से जो जूसेस जाते हैं वो पहले गॉल ब्लैडर में कलेक्ट होते हैं, वहां से जब हम कोई तली हुई चीज या हैवी खाना खाते हैं उस समय बाइल रिलीज होता है गॉल ब्लैडर की सिकुड़ने से, और गॉल ब्लैडर की वॉल में इन्फेक्शन ब्लड के थ्रू जा सकता है, और इन्फेक्टेड गॉल ब्लैडर में स्टोन्स जल्दी बनते हैं, और जिसका बाइल ज्यादा थिक है, गाढ़ा है, उनमें स्टोन्स ज्यादा बनते हैं, और कुछ डाइट के फैक्टर्स जो कोलेस्ट्रॉल स्टोन, बिलिरुबिन स्टोन्स बनाते हैं वो भी हो सकते हैं।
0: अच्छा डॉक्टर साहब, आमतौर पर पहले हम चूंकि सिर्फ पित्त के बारे में बात कर लें, उसके बाद फिर किडनी और प्रोस्टेट के बारे में बात करेंगे। आमतौर पर ये कहा जाता है कि साहब अगर इसमें पथरी हो जाए तो निकलती नहीं है, इसको सर्जरी करानी पड़ती है, ऑपरेट कराना पड़ता है, क्या इफेक्ट है?
1: गॉल ब्लैडर स्टोन में सर्जरी गॉल ब्लैडर और स्टोन दोनों का रिमूवल एक साथ ही है। कुछ केसेस में गॉल ब्लैडर से स्टोन स्लिप करके अपने आप भी निकल जाते हैं, लेकिन ऐसे स्टोन्स जो स्लिप करके निकलते हैं वो जॉन्डिस, फीवर और प्रॉब्लम्स कर सकते हैं, जिनसे बाद में ज्यादा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। यदि गॉल ब्लैडर में छोटे स्टोन्स हैं, बड़े स्टोन्स हैं, किसी तरह के भी स्टोन्स हैं, तो हमें गॉल ब्लैडर सर्जरी करा लेना ही अच्छा है, और स्पेसिफिकली सो जिन केसेस में सिम्टम्स ज्यादा हैं उनको तो जरूर कराना है। एसिम्टोमेटिक को फॉलो अप पे रहना चाहिए, जिन केसेस में जरूरत पड़ती रहे उनको ऑपरेट होते रहना चाहिए।
0: सिम्टम क्या क्या होते हैं डॉक्टर साहब इसके?
1: अपच सबसे कॉमन सिम्टम है,
0: इनडाइजेशन,
1: जिसको हम अपच कह सकते हैं, जिसको हम आमतौर पे कहते हैं मैदा खराब है, पाचन शक्ति कम है
0: जी।
1: और तला हुआ और हैवी खाना जब भी खाएंगे तो तकलीफ होगी, उल्टी हो सकती है, डकार आ सकते हैं, पेट दर्द हो सकता है, और जब गॉल ब्लैडर में इन्फेक्शन होगा तो फीवर भी हो सकता है, और पेन बहुत सीवियर भी होता है। इसमें स्टोन्स कई बार गॉल ब्लैडर की डक्ट में फंस जाते हैं तो पीलिया भी होता है।
0: अब आते हैं जरा किडनी की जानी, कुदरते हर इंसान के अंदर दो गुर्दे दे रखे हैं और उनका काम ही फिल्टर करना है, लेकिन जब वो खुद फिल्टर कर रहे हैं तो उनकी जाली में ऐसी क्या चीज फंस जाती है कि वो पत्थर बन जाती है और फिर बड़ी तकलीफ होती है? अब
1: बेसिकली स्टोन बनने का जो कारण है वो क्रिस्टल्स हैं, ऑक्सीडेट क्रिस्टल्स, फास्फेट क्रिस्टल्स, कैल्शियम क्रिस्टल्स, तो
0: पानी में होते हैं,
1: सिस्टीन, ये पानी में होते हैं और कंसंट्रेट हो जाते हैं जब यूरिन में, और एक जगह एक पार्टिकल डिपॉजिट होता है, उसको उसके ऊपर लेयर्स बनती चली जाती हैं, तो वो लेयर्स ही बनने के बाद स्टोन का रूप ले लेती हैं। बहुत बार स्टोन सिम्टोमेटिक होते हैं, बहुत बार दर्द भी नहीं होता, कुछ नहीं होता, अंदर बनते चले जाते हैं। तो आमतौर पर इसमें एडवाइस किया जाता है कि पानी खूब पिए, उसका पर्पज यही होता है कि क्रिस्टल्स डिपॉजिट ही ना हो पाए, डिपॉजिट होंगे तभी बड़े होंगे, तभी स्टोन बनेंगे।
0: तो क्या सर ऐसा भी हो सकता है कि किसी के एक किडनी में स्टोन हो तो दूसरे में भी हो जाए, या दोनों में साथ
1: आपस में? इस बात की वजह से कि एक राइट में स्टोन है तो लेफ्ट में हो जाएगा, ऐसा नहीं है कोई।
0: अच्छा, अब आते हैं प्रोस्टेट की जानी, कहते हैं प्रोस्टेट कैंसर के जो केसेज है वो बढ़ते जा रहे हैं, इसकी क्या वजह है?
1: प्रोस्टेट कैंसर के केसेज बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं, इसको हम और तरीके से देखें तो जल्दी समझेंगे
0: जी।
1: पहले से हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ी है, तो प्रोस्टेट कैंसर में साइंटिफिकली एस्टेब्लिश हो चुका है विद द एडवांसिंग एज इसकी इंसिडेंस बढ़ती है, प्रेवलेंस बढ़ती है, जितनी एज हमारी ज्यादा होती जाएगी उतने चांसेस होते जाएंगे प्रोस्टेट कैंसर मिलने के, और प्रोस्टेट कैंसर बहुत केसेस में एसिम्टोमेटिक विदाउट एनी हार्म पूरी लाइफ पड़ा रहता है और खत्म हो जाती है अपने आप बाद। प्रोस्टेट कैंसर के लक्षण बहुत बार प्रोस्टेट के जो बेनाइन डिजीज है वैसे ही होते हैं, वही यूरिनरी प्रॉब्लम्स, रात को उठना, फ्रीक्वेंसी, ऑब्स्ट्रक्शन, रिटेंशन, वो सब चीजें होती है। बहुत केसेस में प्रोस्टेट कैंसर देर से प्रेजेंट करता है, तब तक वो बोन में जा चुका होता है, और कमर में दर्द और नीचे का पैरालिसिस या जोड़ों में कहीं दर्द जहां ज्वाइंट में पहुंच गया तो उससे भी प्रेजेंट करता है।
0: जरूरत इस बात की है कि हम अवेयरनेस लाएं, हेल्थ अवेयरनेस, एक दूसरे को समझाएं, एक दूसरे से समझें। डॉक्टर साहब ने कुछ बहुत अहम बातें बताई हैं, उनको जहन में रखें। पानी बराबर पीते रहें, खाना हेल्दी खाएं, जो भी कुछ खा रहे हैं साफ सुथरा खाएं, ताकि आपका जहन, आपका जिस्म जो है सेहतमंद रहे। आप सुन रहे थे कुछ बातें आपकी सेहत के हवाले से, ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है।
2: अब सुनिए आज शाम 6:30 बजे प्रसारित मार्केट मंत्र कार्यक्रम का पुनः प्रसारण।

0: Good evening and welcome to Market Mantra. Today being Monday, we'll be taking your calls on market-related queries. But do remember that we do not address stock or company-specific queries. You can call us on our telephone numbers 2331-4444, 2331-0481 and 2371-7106. And of course, do not forget to prefix 011 before these numbers if you are calling from out of Delhi. Well, my name is Nishit Kumar and with me is my co-anchor in Hindi, Sona Sood.
1: नमस्कार, मार्केट मंत्रों में आपका स्वागत है. हर सोमवार की तरह आज भी हम आपके प्रश्नों को सीधे कार्यक्रम में शामिल करेंगे. व्यापार, अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार से जुड़ा कोई भी प्रश्न पूछने के लिए आप इन नंबरों पर हमें फोन कर सकते हैं, 2331-4444, 2331-0481 और तीसरा नंबर है 2371-7106. दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले दिल्ली का एसटीडी कोड 011 भी डायल करें. लेकिन याद रखें कि हम किसी खास शेयर या कंपनी से जुड़े सवालों के जवाब इस कार्यक्रम में नहीं दे पाएंगे. चर्चा के लिए और आपके प्रश्नों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में आमंत्रित है वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार शिशिर सिन्हा. शिशिर जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है.
2: जी नमस्कार, धन्यवाद.
1: और अब हेडलाइंस के साथ है निशित कुमार.
0: बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडिसीज राइज, सेंसेक्स एड्स ओवर 450 पॉइंट्स, निफ्टी सेटल्स अबव 22,550. इंडिया एंड स्विट्जरलैंड इंक सेवरल अग्रीमेंट्स टू प्रमोट कोऑपरेशन इन ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजीज, मोबिलिटी सिस्टम्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर. एशियन स्टॉक मार्केट्स एंड इन पॉजिटिव टेरिटरी.
1: प्रमुख घरेलू बाजार सूचकांक तेजी में रहे. सेंसेक्स में आई 450 अंकों से अधिक की बढ़त, निफ्टी 22,500 के स्तर को पार कर गया. भारत और स्विट्जरलैंड ने यातायात तकनीक, मोबिलिटी प्रणाली और मूलभूत ढांचे में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए कई समझौतों पर किए हस्ताक्षर. और एशियाई शेयर बाजार बढ़त के साथ हुए बंद.

0: Before we proceed any further, here is an advisory. The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: और अब रुख करते हैं शेयर बाजार का। चार दिनों से जारी गिरावट का सिलसिला तोड़ते हुए प्रमुख घरेलू बाजार सूचकांक आज लगभग 0.6% की बढ़त पर बंद हुए। सेंसेक्स 473 अंकों की तेजी दर्ज करता हुआ 72,282 पर बंद हुआ। निफ्टी 134 अंक बढ़कर 22,556 पर दर्ज हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के विस्तारित बाजार में मिड कैप 100 सूचकांक 0.7% और स्मॉल कैप 100 सूचकांक 0.5% की तेजी पर बंद हुए।
0: बेंचमार्क डोमेस्टिक इक्विटी इंडिसेस रोज अराउंड 0.6% टुडे, स्नैपिंग अ फोर डे लूजिंग स्ट्रीक। सेंसेक्स गेन्ड 473 पॉइंट्स टू क्लोज एट 72,382। द निफ्टी क्लाइंड 134 पॉइंट्स टू सेटल एट 22,556। In the broader market, at the National Stock Exchange, the mid-cap 100 index jumped 0.7% and the small-cap 100 index advanced 0.5%.
1: और सेंसेक्स में शामिल 30 कंपनियों में से 20 के शेयर आज बढ़त में रहे। सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले शेयरों में ITC 4.5%,

0: सोनम 2.5% और भारतीय एयरटेल 2.4% के उछाल में रहे। वहीं सबसे अधिक गिरने वाले शेयरों पर नजर डालें तो एचसीएल टेक 3.7%, एचडीएफसी बैंक 2% और सन फार्मा और इन्फोसिस प्रत्येक 1.5% की गिरावट में रहे।
1: And in the sectoral indices on the Bombay Stock Exchange, 24 out of 28 sectors edged upwards. Among the top gainers, telecommunication jumped 2.1%, mid-small private bank rose 1.7% and FMCG added 1.5%. In contrast, hospitals shed 2.3%, healthcare fell 1.1% and insurance dropped 0.3%. The overall market breadth at the Bombay Stock Exchange was negative as shares of 2,448 companies declined, 2,052 advanced and 260 remained unchanged.
0: और रुपए पर नजर डालें तो अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले मामूली मजबूती के साथ 96.30 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ। इस बीच हमारे साथ हमारे पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं तो उन्हें शामिल कर लेते हैं। जितेंद्र है जयपुर से, आपका बहुत बहुत स्वागत, सवाल पूछिए।
2: हाँ हाँ सर, आपका भी मैडम धन्यवाद। सर मेरा दो प्रश्न है, छोटा प्रश्न है, मैं नाम तो नहीं लूंगा नियम के मुताबिक। एक प्राइवेट सेक्टर का बैंक है जिसका र्यूमर कुछ दिन पहले आया था तो उसके काफी प्राइस डाउन हुए, अभी 700 पे चल रहा है, तो मैं उसमें पिछले 2-3 महीने से बाइंग कर रहा हूँ, तो क्या स्ट्रेटेजी सही है पहला। और दूसरा, जो रजिस्ट्रार कंपनी होती है आईपीओ का जब आता है रजिस्ट्रार कंपनी, तो भी बहुत पुराना रजिस्ट्रार कंपनी है, उसका आईपीओ आया था तो उसमें मैंने लिया था तो 150-200% प्रॉफिट पे है, तो उसको क्या होल्ड करना चाहिए या सेल करना चाहिए, क्योंकि वो रजिस्ट्रार कंपनी है तो चलेगा ही चलेगा कंपनी जैसे।
3: जितेंद्र जी, आपने शुरू में कहा कार्यक्रम के नियम के मुताबिक हम कंपनी का नाम नहीं ले सकते हैं और आपने दो खास कंपनी के शेयर के बारे में पूछा है, तो हम क्षमा चाहेंगे, हम उससे अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सकते।
0: और आपकी एक छोटी सी टिप्पणी, आज जो हमने बढ़त देखी है बाजार में 4 दिनों के बाद, इसको आप कैसे लेते हैं? अगर थर्सडे को भी हम देखें तो एंड में 700 पॉइंट्स की रिकवरी हुई थी, सो क्या कुछ पॉजिटिव सेंटिमेंट लौट रहा है?
3: देखिए, दो वजह है। एक तरफ आप देखिए कि सऊदी अरब ने जो है वो तेल के दाम घटा दिए, तो वो एक अच्छी बात रही, लेकिन दोपहर होते होते एक खबर आई कि वहां पे पाइपलाइन बंद कर दिया गया क्योंकि उस पर हमला हुआ है, तो एक मिश्रित था। तो अगर वो खबर नहीं आती तो शायद आज शेयर बाजार और ऊपर जाता। तो एक तो आप कह सकती हैं कि इसका एक सकारात्मक रुख हमने देखा है। दूसरी तरफ क्या है कि बाजार बहुत नीचे आ चुका है और अब एक खरीदारी का, जिसे कहते हैं कि एक माहौल बन सकता है, क्योंकि अब निचले स्तर पर आपको बहुत सारे ऐसे शेयर हैं जो बहुत ऊंची कीमत पर थे, उनके भाव बढ़े हैं, तो उसका असर जो है आप देख रहे हैं कि आज बाजार में जो हमने सकारात्मक रुख देखा। और आपने बीते सप्ताह का आखिरी कारोबारी दिन देखे, उस दिन भी तेजी आई। और एक और जो हमने अच्छी चीज देखी है कि जो हमारे विदेशी निवेशक जो थे, जो अभी लगातार पैसा निकाल रहे हैं, बीते कुछ दिनों से उन्होंने नेट बाइंग करी है, तो ये ऐसे कारण है जिसका असर हमने देखा है। मूल रूप से आप कहिए कि अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां जो है वो हमारे अनुकूल है, और आप केवल भारतीय बाजार की बात नहीं करें, एशिया के तमाम शेयर बाजारों की बात करें, क्योंकि दक्षिण कोरिया आज बंद था उनका बाजार, बाकी जितने भी बात करें, चाहे चीन की बात करें, हांगकांग की बात करें, सिंगापुर की बात करें, वहां परिस्थिति सकारात्मक रही, तो अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां जब सकारात्मक होंगी तो बाजार में भी आपको सकारात्मक माहौल दिखेगा।
1: शशि जी, यू टॉक्ट अबाउट द एफआईआईज एंड एफपीआईज काइंड ऑफ ट्राइंग टू मेक अ कमबैक टू द इंडियन मार्केट्स, बट इफ यू लुक एट द यूएस बॉन्ड मार्केट्स, ट्रेजरी यील्ड्स आर स्टिल काइंड ऑफ pretty lucrative as compared to the Indian stock market. And of course, we are not talking about the Asian markets here. So, do we really see, MPC is also, the outcomes of it will come in a couple of days. So, how do you see it panning out? That is one. And of course, FPIs and FIIs, we do understand that they constitute the, quite some pie of the Indian stock market when investing is concerned. So my question is that do we see the resurgence, as you mentioned in your opening comments, that the markets are already at an almost, not watering levels with most of the blue chips kind of, trading at pretty discounted rates. So how do you see this in the coming days?
3: Coming to your first point about the yield, No doubt American bond market yield is very lucrative. Mm. And any investor, any investment house, any institutional investor would love to go there because they are going to have

0: signed between India and Switzerland, it adds to that. So how do you see this going?
1: इससे पहले कि हम आपकी प्रतिक्रिया दें, गुरुग्राम से हमारे श्रोता उमेश हमारे साथ जुड़ गए हैं. उमेश जी, आपका स्वागत है, सवाल पूछे.
2: नमस्कार मार्केट मंत्रा. मेरा सवाल ये है कि अगर आज की डेट में एक लमसम इन्वेस्टमेंट करना हो तो क्या लार्ज कैप्स सही रहेंगे या गोल्ड का इन्वेस्टमेंट सही रहेगा? और अगर आप एक प्रतिक्रिया और दे पाए कि मान लीजिए कोई 20% मतलब 20% पेमेंट देके किसी अच्छे बिल्डर में एक बढ़िया फ्लैट बुक कर लिया जाए, आल्दो वो लिक्विड और अनलिक्विड वाली चीज जरूर है, लेकिन फिर भी अगर आप प्रतिक्रिया देना चाहें.
0: देखिए, जो आपने पहला प्रश्न पूछा कि शेयर और सोना, देखिए मेरे हिसाब से आप दोनों में आप कर सकते हैं. उम्र के हिसाब से अगर आपकी उम्र अगर 50 वर्ष से कम उम्र की है तो आप शेयर में उसका पोर्शन ज्यादा रखिए. अगर आप 60% रख सकते हैं, 40% आप सोने में रख सकते हैं. और अगर आपकी उम्र 50 वर्ष से ज्यादा की है तो आप थोड़ा सा उसको पलटिए. और उसके अलावा यह भी है कि उसका एक हिस्सा आप ऐसे जगह पे लगाए जो आपके लिए सुरक्षित जो है वो निवेश बन सके, जिसे हम डाकघर की बचत योजनाएं कहते हैं या बैंक के फिक्स डिपॉजिट है, वो आपके लिए बेहतर होगा. दूसरा जो आपका प्रश्न है कि क्या हम 20% देकर के एक फ्लैट बुक कर लें, देखिए निश्चित तौर पर घर में निवेश करना, चाहे वो आप उसको इस्तेमाल करने के लिए ले रहे हैं या निवेश करने के लिए ले रहे हैं, एक अच्छा जरूर निवेश होता है. लेकिन ध्यान रहे कि आप जिस भी बिल्डर को चुने वो एक विश्वसनीय बिल्डर हो, जिसकी डिलीवरी का रिकॉर्ड अच्छा हो, जिसने काम अच्छा किया हो. क्योंकि दिक्कत क्या होती कि कई बार आप पैसा लगा देते हैं और उसमें अगर जितनी भी देरी होती तो आपका पैसा एक तरीके से फंस जाता है. तो अगर आप डिलीवरी वाले सिस्टम पे देखें कि यदि वो बेहतर है तो वो आपके लिए अच्छा होगा. मेरे ख्याल से आप ये भी कर सकते हैं कि 100 को आप 3 हिस्सों में बांट दीजिए. एक, जैसा मैंने कहा, आपकी उम्र के हिसाब से शेयर और सोना. दूसरा विकल्प है शेयर, सोना और डाकघर की बचत योजनाएं. और आप पूरा का पूरा पैसा अगर रियल एस्टेट में ही लगाना चाहते हैं तो आप बिल्डर का ट्रैक रिकॉर्ड जरूर देखें
3: और बिल्डर अगर अप्रूव भी हो.
0: बिल्कुल
1: बिल्कुल.
3: नेक्स्ट कॉलर इज मोहक फ्रॉम फरीदाबाद. मोहक, वेलकम.
4: हेलो सर, गुड इवनिंग. माय क्वेश्चन इज कंसिडरिंग दी वोलेटाइल माइक्रो इकोनॉमिक एंड जियोपॉलिटिकल सिचुएशन अराउंड द वर्ल्ड, टू इन्वेस्ट इन समथिंग लाइक बॉन्ड्स एज कंपेयर टू इक्विटी
0: मार्केट्स? Yeah, that's a good option, but I would say that it also, because I mean the prices at which the most of the value stocks are available, they are at a very lucrative, and you can get an opportunity to enter into those stocks. So you can have some kind of hedging through the bond. I mean, bond is, use the bond as a hedging. So suppose that you have say 100 rupees, and if your age is say less than 40 years, then you can go for 60-40, 60 in the equity and the 40 in the bond. But if you are exceeding 50, then I would say that put 60 rupees in the, or 70 rupees in the bond, and then put remaining 30 rupees in the equity, because there you will have less time as compared to when you are less than 40 years. So this kind of equation you can say, and at any given point of time, if the value stock is available at a very low price, it is good to enter. You may have some kind of volatility, but if you are giving some time to the stock market, you are to your capital, then there is a good possibility of getting good return, because stock market is not just about investing money, it is also about investing patience.
1: And briefly, bond market mein risk kam hai?
0: Bahut kam hota hai. Wahan par aapko mool aur byaj ki ek guarantee jo hai सरकार की, अगर आप सरकारी प्रतिभूति में लगा रहे हैं तो आपको वहां मिलता है. अगर कंपनियों के बॉन्ड में आप लगा रहे हैं तो थोड़ा जोखिम होता है, अगर कंपनी डूब गई तो क्या होगा. लेकिन उस सूरत में भी जो कर्ज देने वाले होते हैं उनका पहला हक बनता है, जबकि शेयर में जो पैसा लगाते हैं उनका आखिरी में हक बनता है. तो वो आपके लिए एक बेहतर विकल्प है.
1: अब हमारे अगले कॉलर है नई दिल्ली से अमित झा. अमित जी, आपका स्वागत है, सवाल पूछे.
5: नमस्कार. सर, आपसे प्रश्न ये है कि अभी जो इस हफ्ते से Q2 के कंपनी के नतीजे आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है सर, तो इसी हफ्ते दिग्गज आईटी कंपनी के भी रिजल्ट आने हैं सर, तो आईटी कंपनी का कैसा मतलब प्रदर्शन रह सकता है? और दूसरी चीज सर, कि ऑटो और मेटल अभी पार्टिसिपेट नहीं कर पाए आज की रैली में देखा जाए तो, और ऑटो सेल्स के पिछले दिनों आंकड़े जो आए थे सर, तो कहा था उतना तो वो निराशाजनक थे नहीं, लेकिन उसके बावजूद ऑटो सेक्टर की कंपनियां बहुत बुरी तरह से पीटी थी सर. धन्यवाद सर.
0: देखिए, मेटल मेरे हिसाब से समय एक बहुत ही

0: बेहतर विकल्प है। और मेटल कंपनियों के शेयरों में अगर मैं आज की बात करूं तो दो तीन कंपनियों के जो पहली तिमाही के नतीजे रहे हैं, वित्तीय नतीजों की बात मैं नहीं कर रहा हूं, कामकाज की बात कर रहा हूं, वो काफी अच्छे रहे हैं, तो उसमें उम्मीद एक ज्यादा है। ऑटोमोबाइल कंपनियों के लिए मुझे लगता है कि निवेशक त्योहारी मांग का इंतजार कर रहे हैं। अगर देखिए, अब अगले हमने 10 दिनों के बाद जो है हमारा नवरात्रि शुरू हो रहा है, उस समय में उसकी खरीदारी बढ़ने की उम्मीद है, तो आप देखेंगे कि ऑटो में जो है वो वापसी एक होगी। और आज की रैली में भले उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया, क्योंकि आज की रैली अगर आपने देखी होगी तो उसमें ज्यादा जो योगदान था उसमें जैसे एफएमसीजी का योगदान था या हॉस्पिटैलिटी सेक्टर का योगदान था, वहां पर अगर आप आईटी सेक्टर की बात करेंगे तो आईटी सेक्टर में नुकसान ही हुआ था। लेकिन मेरे हिसाब से जो तिमाही नतीजे आएंगे, जो 10 और 11 से शुरू होने चाहिए, अमूमन 10 और 11 तारीख को पहली बड़ी कंपनी के नतीजे आते हैं, वो नतीजे थोड़े से अच्छे रह सकते हैं, उम्मीद ये की जा रही है। क्योंकि बीच में जब एआई कंपनीज ने कहा कि हमें जरूरत तो पड़ेगी ही, ये जो कन्वेंशनल कंपनीज हैं जिनके लिए हमें जरूरत पड़ेगी, दूसरा एआई कंपनीज ने भी कहा कि हमें अपनी गति को जो है वो धीमी करने की जरूरत है, तो मुझे लगता है कि ऑटो और आईटी दोनों में एक अगर 3 से 5 साल का टाइम होराइजन लेकर के चलें तो एक बेहतर विकल्प है। लेकिन इनमें जो मेरे लिए जो पहला पसंद आएगा वो मेटल सेक्टर होगा।
1: लेते अगली खबर। भारत के इस वर्ष दिसंबर तक कम से कम 3 और देशों के साथ द्विपक्षीय निवेश संरक्षण समझौते संपन्न करने की उम्मीद है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने आज नई दिल्ली में म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में कहा कि निवेशकों के लिए अधिक अनुकूल द्विपक्षीय निवेश संधियों का नया प्रारूप तैयार है और इसे जल्द ही मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि नए प्रारूप में दोनों पक्षों के निवेशकों को अधिक मजबूत सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास किया गया है। उन्होंने बताया कि कनाडा और रूस सहित कई देशों के साथ द्विपक्षीय निवेश संरक्षण समझौतों पर बातचीत चल रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने यह भी बताया कि अमरीका भारत व्यापार समझौते पर बातचीत अभी जारी है और इसे अंतिम रूप दिया जाना बाकी है।
2: It's been a hard and very rigorously negotiated agreement. The agreement's negotiations are still ongoing, although we'd like to believe that both the sides have reached a plateau beyond which giving or taking might be very, very difficult. But maybe if there are rooms to operate from, both sides would do it.
1: So, ब्रीफली आप जैसा भी पूछ रहे थे मेरे को एंकर, उसी से जुड़ी ये स्टोरी है जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट्स है, और जैसा इन्होंने कहा कि इंडिया ईयू डील एक परफेक्ट एग्जांपल है परफेक्ट डील की। आपको लगता है कि जो इसमें इन्वेस्टर प्रोटेक्शन की बात हो रही है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है?
0: दो पहलू है, एक हमारा जब हम मुक्त व्यापार समझौता करते हैं और एक हमारा निवेश संवर्धन समझौता करते हैं। ये जो आज वित्त मंत्री निर्मला जी ने जो बात कही है वो निवेश संवर्धन के ऊपर बातचीत की है, और देखिए उसमें जो हमारा पुराना जो बना हुआ था उसमें काफी बदलाव किया जा रहा है, और कोशिश ये है कि उसमें विवाद कम से कम हो ताकि निवेशकों को एक एक सुरक्षित और एक निश्चित करने वाला माहौल मिले।
3: राइट, द नेक्स्ट कॉलर इज रत्नाकर फ्रॉम मुंबई। रत्नाकर जी,
4: गुड इवनिंग सर। मेरा सवाल है कि यदि शेयर मार्केट में हम हमारे स्ट्रिप सेल करते हैं, तभी जो कुछ उसमें अमाउंट आती है उसमें से इनकम टैक्स जो आता है वो कट होता है क्या? कितना इसके ऊपर टैक्स कट होता है क्या? और वो है, और आने वाले समय में ऑयल के शेयर कैसे रहेंगे?
0: रत्नाकर जी, अगर आपने बेचा है कोई भी शेयर और अगर आपको मुनाफा हुआ है तो आपके एआईएस में वो दिखेगा, फिर आपको जब आप उस पर कैपिटल गेन जो है वो अलग से पे करेंगे। आपके पास जो बिक्री के बाद पैसा आता है आपके खाते में, उसमें एसटीटी जरूर कटा हुआ होता है, एसटीटी सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स जो है, बाकी कैपिटल गेन आपको अलग से उसका भुगतान करना पड़ता है। दूसरा आपने प्रश्न पूछा कि तेल कंपनियों के शेयरों की क्या स्थिति होगी। देखिए, जो भी तेल उत्पादन करने वाली कंपनियां हैं उनके शेयरों में आप थोड़ी तेजी देखेंगे जब कभी भी कच्चा तेल ऊपर जाएगा, और अभी अगर मैं गलत नहीं हूं तो $100 प्रति बैरल के ऊपर भाव जो है वो बने हुए हैं। लेकिन जो तेल मार्केटिंग कंपनियां हैं उनके लिए शायद अच्छी खबर नहीं रहेगी।
1: जैसा हमने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिवसीय बैठक आज मुंबई में शुरू हुई। आरबीआई की नीति समीक्षा की बैठक ऐसे समय में हो रही है जब पश्चिम एशिया में तनाव लगातार बढ़ रहा है, कच्चे तेल की कीमतें उच्च स्तर पर हैं और खाद्य मुद्रास्फीति पर चिंता बनी हुई है। समिति 3 दिवसीय बैठक के

0: में निर्णय की घोषणा से पहले मुद्रास्फीति के आउटलुक और मौजूदा आर्थिक परिस्थितियों का भी आकलन करेगी। रेपो दर में आखिरी बढ़ोतरी फरवरी 2023 में हुई थी, जब आरबीआई ने दर को 25 आधार अंक बढ़ाकर 6.5% कर दिया था। इसके बाद 2023-24 के दौरान दर में कोई बदलाव नहीं किया गया और 2025 में दर में कटौती का चक्र शुरू हुआ। वर्तमान में नीतिगत रेपो दर 5.25% है। जैसा कि आप कह रहे थे अभी थोड़ी देर पहले कि आशा है कि कल कटौती बढ़त होगी 25 आधार अंक।
1: जी, ये इसलिए भी है क्योंकि महंगाई दर में बढ़ने का सिलसिला बना हुआ है, तो शायद हमें उसका असर नीतिगत ब्याज दर पे देखने को मिलेगा।
2: हाउ मच डज द फेड काइंड ऑफ सेट्स द टेम्पलेट फॉर दैट?
1: See, Federal Reserve is always a template for many of the developing economies and also the emerging markets. So when the Federal Reserve is increasing the rate, that is giving a signal that the global inflation is also on the rise. Right. So that could be one of the reasons why RBI is also talking about that.
0: Right. अब चलते हैं एशियाई बाजारों की ओर। एशियाई बाजारों पर नजर डालें तो वहां पर आज बढ़त का रुख था। ताइवान का ताइएक्स 2.5% उछल गया, जापान के निकेई 225 सूचकांक में 2.4%, सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम्स में 0.5% और हांगकांग के हैंगसेंग में 0.3% की वृद्धि हुई। इस बीच चीन और दक्षिण कोरिया के बाजार आज बंद थे।
2: मीनवाइल वी आर जॉइन्ड इन बाय योर कॉलर फ्रॉम असम, शुक्रत लंबो, वेलकम।
3: सर गुड इवनिंग सर।
0: जी जल्दी से अपना प्रश्न पूछिए।
3: सर मेरा प्रश्न ये है कि सर एनपीएस में जो सरकार द्वारा कोई भी स्कीम में एनपीएस में लगाया हुआ है सर, तो वो सरकार द्वारा लगाया हुआ है तो हम उसको स्कीम चेंज करने से हमें फायदा है या उसी सरकार द्वारा लगाया हुआ स्कीम में रहने से फायदा है, मेरा प्रश्न यही है।
1: नहीं बिल्कुल, आप साल में एक बार बदल सकते हैं और आप तय कर लीजिए कि आपको ज्यादा सुरक्षित माध्यम अपनाने हैं या फिर आप शेयर में पैसा रखना चाहते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है।
0: और एक इम्पोर्टेंट खबर, नई परसेंट डिस्काउंट रेट एमडीआर प्रणाली इस महीने की 15 तारीख से लागू हो जाएगी। नए ढांचे के अंतर्गत 2000 रूपये तक के यूपीआई लेन देन पर एमडीआर शून्य होगा। छोटे व्यापारी इस चिंतन में होंगे कि क्या उन्हें अपने मौजूदा क्यूआर कोड को अपग्रेड करने या बदलने की जरूरत है। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई के अनुसार ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, मौजूदा क्यूआर ढांचा सामान्य रूप से कार्य करता रहेगा। व्यापारियों को अपने वर्तमान भौतिक क्यूआर स्टैंड या साउंड बॉक्स को बदलने, फिर से पंजीकृत करने या संशोधित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बिना किसी रुकावट के दुकानों पर वर्तमान में प्रदर्शित सभी यूपीआई क्यूआर कोड पेमेंट को प्रोसेस करते रहेंगे। एनपीसीआई ने स्पष्टीकरण दिया है कि व्यापारी पहले की तरह ही अपनी मौजूदा व्यवस्था के द्वारा ही ग्राहकों से राशि प्राप्त कर पाएंगे। किसी भी बैंक शाखा में जाने की, क्यूआर कोड बदलने की या अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
2: Global crude oil prices declined today as exports from West Asia increased and G7 nations pledged to boost supplies. Brent crude was trading 0.4% down at $101.88 per barrel. West Texas intermediate crude was trading 1.4% lower at $89.78 per barrel at the time of writing this report.
0: उधर भारतीय सराफा बाजार में 24 कैरेट सोना आज मामूली बढ़त से 1,48,198 रूपये प्रति 10 ग्राम पर था। चांदी 1.5% के उछाल से 2,24,157 रूपये प्रति किलो पर थी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप आए शिशिर और हमारे श्रोताओं को आपने बहुमूल्य जानकारी दी।
2: धन्यवाद, थैंक यू शिशिर जी। एंड बिफोर वी क्लोज अ रिमाइंडर ऑफ द हेडलाइंस, द बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडिसेस राइज, सेंसेक्स एड्स ओवर 450 पॉइंट्स, निफ्टी सेटल्स अबव 22,550. India and Switzerland ink several agreements to promote cooperation in transportation technologies, mobility systems and infrastructure, and Asian stock markets end in the positive territory. That's all we have in this edition of Market Mantra from the entire team here. Goodbye.
4: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।

आप सुन रहे थे प्रोग्राम मार्केट मंत्रा, ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। हमें आप सुन रहे हैं मीडियम वेव 1073 किलो हर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर। पेशे खिदमत है फरमाइशी फिल्मी नगमों का प्रोग्राम तामिल इरशाद। तमाम सामाईन की खिदमत में शमीम उस्मानी का पुरखुल।

पटापारा से बचकामल डॉक्टर बसंत भुर्गु और मोतीलाल यादव, शिव मंदिर हकीकतपुर मऊ से मुन्ना भाई सवनकर, पिनकी सवनकर और आर्यन, कुड़ी सेक्टर 5 सूर्यनगरी जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान और कल्पित चौहान, आखली दीवाल मध्य प्रदेश से भाई रामलाल चंद्रवंशी, श्रीमती कृष्ण चंद्रवंशी और काजल, मेरठ कैंट्री दिग्दर्शन और कविता गौड़, चमनपुरा उदयपुर से सबिया खानम, फरीदा बानो और रईसा खातून, रेंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा, मारहाड़ा गेट एटा से नवीद हसन अब्बासी, नवीद हसन अब्बासी और सुहेल हसन अब्बासी, रहट गांव कैंप अमरावती महाराज से दिलीप रामेकर, हर्षा रामेकर और अक्षय रामेकर, मानेवाला रोड नागपुर से देवेंद्र भटकर, सुशीला भटकर और अनिकेत भटकर, गांवनाथारा पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता, जिला बारा राजस्थान से सतीश श्रीवास्तव, प्रेमलता श्रीवास्तव और अभिषेक श्रीवास्तव, टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंदर सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा और स्वीटी छाबड़ा, नूर महल मैसूर सीतामढ़ी बिहार से मुसरत जहानाज, तलत जहानाज और फरहत जहानाज, सब्जी मंडी गुलबर्गा से मोहम्मद रुकनुद्दीन मंठाल, शब्बीर बनट्टी और आसिफ इकबाल। आप सबकी पसंद आपकी नजर है।

और सामने लीजिए सुनिए हेमंत कुमार की आवाज में प्रोग्राम की अगली पेशकश। फिल्म है बात एक रात की। सुनने के ख्वाहिशमंद हैं लक्ष्मणपुर छत्तीसगढ़ की विश्वनाथ साहू, पंकज साहू और तिरुपति साहू, गिरिडीह झारखंड से मोहम्मद यासीन अंजान, साइमन नवाज और हसन नवाज, साईनगर अरबी महाराज से नरेंद्र मिर्गे, प्रियादर्शनी मिर्गे, डॉ प्रियंका काल पांडे, पदमपुर रुजिला श्री गंगानगर राजस्थान से मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा और कीर्ति अरोड़ा, कल्याण मुंबई से किशोर हिवराले, सुजाता हिवराले और प्रतीक हिवराले, पूर्णा जंक्शन मस्तानपुर से अनंता भगत, अरुणा भगत और चेतन भगत, छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से मोहम्मद इसाक, खतीजा बेगम और मोहम्मद अशफाक, गांधीनगर यावतमाल महाराज से लक्ष्मण राव लोखंडे, कल्पनाताई लोखंडे और शैलेश लोखंडे, कनेरा मोहल्ला पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता और निहारिका।

मगर लगता है कुछ ऐसा नहीं मिल गया।

और सामने लीजिए, सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में आसरा फिल्म का नगमा, नगमा निगार आनंद बख्शी, मौसीकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। सुनने के ख्वाहिशमंद हैं गांव हांडीखेड़ा जिला सिरसा हरियाणा से राधेश्याम शर्मा, इंदिरा शर्मा और सार्थक शर्मा, फातिमा कॉलोनी श्यामपुर महाराष्ट्र से नासिर शेख, नाजिर नासिर और साजिद शाहिद, बोरखेड़ा जिला उज्जैन से विनोद मुनत, नेहा जैन और दीपक मुनत, गिरिडीह झारखंड से इम्तियाज इमाम आतिश, ताहिरा परवीन आतिश और डॉक्टर मोहम्मद आसिफ रजा, ताज मंजिल लकड़ बाजार खंडवा से मोहम्मद रफीक पवार, बेनजीर कौसर और मोहम्मद हसनैन पवार, बदलापुर मुंबई से परिणीता सिद्धांत गवाहनकर और टुकटुक गवाहनकर, पोटेकला दुर्ग से संजय साहू, सुजाता साहू और शशांक साहू, किशननगर अमरावती महाराष्ट्र से हीरामन शंडे, श्रीमती शीला देवी शंडे और उनके अहले खाना, कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जोड़ा, सीटी दीवाना और गुरुवंश सिंह जोड़ा, लक्षणपुर छत्तीसगढ़ से रामजी साहू, जीवनलाल रज्जक और उनके सभी दोस्त, श्रीनगर यावतमाल से ले चुका हूं मैं, पश्चिम बिहार दिल्ली से नीरज अग्रवाल, सचिन अग्रवाल और डी के एलवी, बल्लारपुर जिला चंद्रपुर महाराष्ट्र से हेमंत कुमार भारशंकर, प्रिया भारशंकर और मास्टर ओमी भारशंकर, बुल्डाना इस्लामपुर, अच्छा इनका भी मेल हो चुका है शामिल, और ये जनाब नेहरू चौक पैठन से डॉक्टर सुरेश यादव, अनीता यादव और सोनल यादव, गांव जाघो से शंभुदयाल खटक, विमला देवी और योगेश कुमार खटक, हरियाणा जज्जर से बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया और रजत भाटिया, आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और मेराज जहां। आप सबकी पसंद, आपकी नजर है लता मंगेशकर।

0: फरमाइशी फिल्मी नगमों का प्रोग्राम तामिल इरशाद सामिन इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी की उर्दू सर्विस से। शाम के 11 बजे हैं, लीजिए पहले सुनिए खबरें बरे सगीर से, इसके बाद हम आपको सुनवाएंगे तामिल इरशाद प्रोग्राम के कुछ और नगमे।
1: ये आकाशवाणी है, बरे सगीर की खबरों के साथ मैं फैसल हबीब। भारत और स्विट्जरलैंड ने ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी में ताउन को तकवीत देने, बुनियादी ढांचे और मोबाइलिटी, दिफाई इश्तराक के मैदान में नए इम्कानात की तलाश और न्यूक्लियाई तवानाई में ताउन को उसाद देने से मुतालिक 5 मवाहिदों पर दस्तखत किए हैं। वज़ीर ख़ारिजा डॉ जयशंकर ने कहा है कि भारत का कथीर जहती वाबस्तगी का नुक्ता नज़र उसे अमरीका, रूस और चीन समेत सभी अहम आलमी ताकतों से मसरूफ अमल रहने के काबिल बनाता है। बैन अल-अक़वामी तजारती रास्ते की बाजियाबी के तहत

80 साल के वक्फे के बाद आसाम से पहला कार्गो बहरी जहाज ब्रह्मपुत्र नदी के जरिए बांग्लादेश पहुंचा। मरकज और मगरबी बंगाल हुकूमत ने एक मफाहमतनामे पर दस्तखत किए हैं, जिसके तहत अगले 2 साल के दौरान इलाकाई फजाई कनेक्टिविटी को मुस्तहकम करने के मकसद से मगरबी बंगाल को 4 नए हवाई अड्डे मिलेंगे। और जर्मनी और अमरीकी साइंसदानों ने दिमाग की पुरअसरार पेचीदगियों का इंकशाफ करने वाली तकनीक तैयार करने पर अद्वियात के मैदान का नोबेल इनाम जीता है। अब खबरें तफसील से। भारत और स्विट्जरलैंड के दरमियान आज नई दिल्ली में 5 माहदों पर दस्तखत किए गए। यह माहदे वजीर आजम नरेन्द्र मोदी और स्विट्जरलैंड के सदर ग्वाई पारमेलेन के दरमियान दो तरफा मुजाकरात के बाद तय पाए। इन माहदों में माइग्रेशन और मोबेलिटी शराकत दारी, नौजवान पेशावर अफराद का बाहमी तबादला, ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी, मोबेलिटी निजाम और मखसूस शोबों में बुनियादी ढांचे के फरोग और ताउन जैसे उमूर शामिल हैं। बातचीत के बाद एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वजीर आजम नरेन्द्र मोदी ने कहा कि भारत और स्विट्जरलैंड ने स्विट्जरलैंड में भारतीय बरामदात के लिए मार्केट तक बेहतर रसाई का निजाम कायम करने और दोनों ममालिक के दरमियान सरमायाकारी को मजीद आसान बनाने के लिए कई अहम फैसले किए हैं। वजारत खारजा के मगरबी उमूर के सेक्रेटरी सीबी जॉर्ज ने दोनों रहनुमाओं के दरमियान दो तरफा मीटिंग के बारे में आज शाम नई दिल्ली में मीडिया से खिताब किया। उन्होंने कहा कि दोनों मुल्कों ने मुख्तलिफ शोबों में मफाहमतनामे, समझौते और बाहमी ताउन से मुतालिक इकरारनामों का भी तबादला किया। वजीर आजम नरेन्द्र मोदी और स्विट्जरलैंड के सदर के दरमियान वसी उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। दोनों रहनुमाओं ने भारत स्विट्जरलैंड ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा लिया और तिजारत व सरमायाकारी, इख्तरा और एआई, फौजी तबादले और दफाई साजो सामान, न्यूक्लियाई तवानाई समेत मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताउन में मजीद गहराई पैदा करने के तरीकों पर तबादला ख्याल किया। स्विट्जरलैंड के सदर ने वजीर आजम के मौकिफ खुसूसन इस पैगाम को बहुत सराहा कि यह जंग का नहीं बल्कि अमन का दौर है। सदर पारमेलेन भारत के 3 रोजा दौरे पर आज सुबह नई दिल्ली पहुंचे। वजीर आजम नरेन्द्र मोदी की अवामी खिदमत के 25 बरस मुकम्मल हो रहे हैं, जो जनसेवा से देश सेवा के मंत्र पर मबनी है और इस अनथक अज्म का सिलसिला जारी है। सेवा और सुशासन के इस नजरिए के तहत हुकूमत 2047 तक विकसित भारत के मकसद को हासिल करने की खातिर अनथक काम कर रही है। खुसूसी सीरीज के तहत आज इस बात पर रोशनी डाली जा रही है कि किस तरह वंदे भारत ट्रेनों की आमद ने इस विजन को हकीकी शक्ल दी है। ऐसे में जब भारत साल 2047 तक तरक्की याफ्ता मुल्क बनने की जानिब गामजन है, मोबिलिटी कौमी तरक्की के मरकजी सुतून की हैसियत से उभरी है। वंदे भारत ट्रेनें मुल्क भर में भारतीय रेलवेज की तेज, महफूज, ज्यादा काबिल एतबार और मुसाफिर मरकूज रेल खिदमात पहल के तौर पर नुमाया हुई हैं। फरवरी 2019 में शुरू की गई वंदे भारत एक्सप्रेस ने नई दिल्ली वाराणसी रूट से अपने सफर की शुरुआत की। गुज़िश्ता साल नवंबर में वाराणसी से वजीर आजम नरेन्द्र मोदी के जरिए शुरू की गई 4 नई वंदे भारत ट्रेनों के इफ्तिताह के दौरान वजीर आजम ने कहा कि वंदे भारत जैसी ट्रेनें भारतीय रेलवेज की अगली नस्ल की बुनियाद रख रही हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वजीर खारजा डॉ जयशंकर ने आज कहा कि भारत का कसीर जहती वापसदकी का नुक्ता नजर उसे अमरीका, रूस और चीन समेत सभी अहम ममालिक से जुड़ने के काबिल बनाता है। डॉ जयशंकर आज नई दिल्ली में भारत और दुनिया मुताबिकत पजीरी के मौजू पर 5वीं कौटिल्या इक्तसादी कॉन्क्लेव से खिताब कर रहे थे। उन्होंने अमरीका को भारत का इंतहाई अहम स्ट्रेटेजिक साझेदार, सबसे बड़ा इक्तसादी और तजारती साथी और बड़ा दिफाई शराकतदार करार दिया। उन्होंने कहा कि उथल पुथल भरे इस दौर में भारत को हर महाज पर एतमाद के साथ आगे बढ़ना चाहिए। जनाब जयशंकर ने वाजे किया कि दुनिया कसीर कतबियत की जानिब गामजन है, जिसका ढांचा और ज्योमेट्री माजी से बिल्कुल मुख्तलिफ है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने 3 हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस साहिबान का भारतीय सुप्रीम कोर्ट के जजेस के तौर पर तकरर किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में कानून व इंसाफ के वजीर अर्जुन राम मेघवाल ने मुतला किया कि सदर जमहूरिया ने गुजरात हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सुनीता अग्रवाल, दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस

0: देवेंद्र कुमार उपाध्याय और तेलंगाना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस अपरेश कुमार सिंह को सुप्रीम कोर्ट के जजेस के तौर पर मुकर्रर किया। आसाम के लिए एक तारीखी संग मील के तौर पर बंदरगाहों, जहाजरानी और आबी गुजरगाहों के मरकजी वजीर सर्बानंद सोनोवाल ने डिब्रूगढ़ से बांग्लादेश के लिए मैथनॉल ले जाने वाले पहले बैन अल-अक़वामी कार्गो बहरी जहाज को रवाना किया। इस पेशरफ्त के साथ ही तकरीबन 80 साल बाद दरियाए ब्रह्मपुत्र की आलमी तजारती रास्ते के तौर पर बहाली हुई है। इस इकदाम से शुमाली मशरकी खित्ते के लिए एक बराह रास्त माहौल के लिए साजगार और कम लागत वाली तजारती राहदारी फराहम होती है। भारत के अंदरूनी मुल्क आबी गुजरगाहों के शोबे में आज एक नए बाब का आगाज हुआ, जब मैथनॉल की एक खेप डिब्रूगढ़ के बागी बेल टर्मिनल से बांग्लादेश की राजधानी ढाका में पानगांव बंदरगाह के लिए रवाना की गई। इस पहले बैन अल-अक़वामी कार्गो बहरी जहाज को रवाना करते हुए बंदरगाहों, जहाजरानी और आबी गुजरगाहों के मरकजी वजीर सर्बानंद सोनोवाल ने एतमाद जाहिर किया कि यह टर्मिनल खित्ते की माशी तरक्की में नुमाया रोल अदा करेगा। उन्होंने ऐलान किया कि हुकूमत बोगीबेल टर्मिनल में जहाजरानी के शोबे के लिए हुनरमंदी की तरक्की का मरकज कायम करेगी, जिस पर 200 करोड़ रूपये की सरमायाकारी की जाएगी। मगरबी बंगाल में फजाई कनेक्टिविटी को मुस्तहकम करने की खातिर अगले दो साल के दौरान 4 नए हवाई अड्डे तैयार किए जाएंगे। इस बारे में मरकज और मगरबी बंगाल हुकूमत के दरमियान आज नाबान्ना में मफाहमत नामे पर दस्तखत किए गए। इस दौरान शहरी हवाबाजी के मरकजी वजीर राम मोहन नायडू और मगरबी बंगाल के वजीर आला सुवेंदु अधिकारी भी मौजूद थे। इस मंसूबे में हासीमारा और कालिनकुंदा में शहरी इनक्लेव, बालवरघाट हवाई अड्डे की तौसी और परोलिया में नए हवाई अड्डे की तामीर शामिल है। जनाब नायडू ने कहा कि कलाईकुंडा में वाके 2700 मीटर का रनवे बोइंग 737 और एयरबस A320 जैसे तैयारों की परवाज के काबिल होगा। इस दौरान वजीर आला सुवेंदु अधिकारी ने कोलकाता और यूरोपीय शहरों के दरमियान सीधी परवाजों और अयोध्या, तिरुपति और अमृतसर जैसे मकामात के लिए बेहतर कनेक्टिविटी का मुतालबा किया। साल 2026 का फिजियोलॉजी या अद्वियात के शोबे के नोबल इनाम अमरीकी शहरी कार्ल डिसरोथ और जर्मन शहरियों पैटर हेगमैन और जॉर्ज नेगल को दिया गया। इन अफराद को दिमाग के अंदरूनी कामकाज के तरीकेकार का पता लगाने की तकनीक तैयार करने में काबिल जिक्र हसूलियाबियों की बिना पर यह इनाम दिया गया। यह तरीकेकार, जिसे ऑप्टोजेनेटिक्स कहा जाता है, रोशनी पर मबनी सोच की तरह काम करता है, जिससे साइंसदान ये पता लगा सकते हैं कि दिमाग के कौन से खलियात कौन सा काम करते हैं। स्वीडन में स्टॉकहोम के कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट की नोबेल असेंबली में आज इस बावकार इनाम का ऐलान किया गया। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। भारत और स्विट्जरलैंड ने ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी में ताउन को तकवीत देने, बुनियादी ढांचे और मोबिलिटी, दफाई इश्तराक के मैदान में नए इम्कान की तलाश और न्यूक्लियाई ताउन में उसात देने से मुतालिक 5 माहदों पर दस्तखत किए हैं। वज़ीर ख़ारिजा डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि भारत का कसीर जहती वाबस्तगी का नुक्ता नजर उसे अमरीका, रूस और चीन समेत सभी अहम आलमी ताकतों से मसरूफ अमल रहने के काबिल बनाता है। बैन अल-अक़वामी तजारती रास्ते की बाजियाबी के तहत 80 साल के वक्फे के बाद आसाम से पहला कार्गो बहरी जहाज ब्रह्मपुत्र नदी के जरिए बांग्लादेश पहुंचा। मरकज और मगरब बंगाल हुकूमत ने एक मफाहमत नामे पर दस्तखत किए हैं, जिसके तहत अगले 2 साल के दौरान इलाकाई फजाई कनेक्टिविटी को मुस्तहकम करने के मकसद से मगरबी बंगाल को 4 नए हवाई अड्डे मिलेंगे। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत है तामिल इरशाद प्रोग्राम के कुछ और नगमे।

लव शर्मा और रोशनी शर्मा, रानीगंज बंगाल सी रवि और इंदर, गांव कुमार हेड़ा सहारनपुर से सैयद मसरूर, शाइना हसन और नादिया हसन, गांव और ये जनाब अच्छा ले चुका हूं, खांजी पीर उदयपुर सिंह, जब्बार मोहम्मद, नजीब खान और मंजू शरफ, ग्राम बगबुड़वा पथरिया छत्तीसगढ़ से नरेंद्र नेताम और कुसुम नेताम।

और सामान्य आइए अब सुनते हैं मुकेश की आवाज में शकील बदायूनी का लिखा गीत जिसे मौसीकी सजाया है नौशाद ने, फिल्म है अनोखी अदा। सुनना चाहते हैं आदर्श नगर मालोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा और निवान शर्मा। प्रोफेसर कॉलोनी खंडवा से आनंद जोशी, तनुजा जोशी और फाल्गुनी जोशी। जेलो रायगढ़ छत्तीसगढ़ से सौरभ निषाद, प्रकाश कुमार और बल्लू निषाद। कुमारगली श्रीरामपुर से अशोक दले, सविता दले और अनिकेत दले। और जनाब ये कादरगंज रोड गंडुंडवारा से शादाब शमशाद, अंदलीप खानम और सारा फातमा शेख। भिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल दिवांगन, कौशल्या दिवांगन और हेमलता डिम्पल दिवांगन। जयराज पलोट राजकोट से मधुसूदन भट्ट, आरती भट्ट और प्रयागराज भट्ट।

छिपा कॉलोनी खंडवा से मोहम्मद यूनुस खत्री, अयुब खत्री और सादिक खत्री, कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय और अमित कुमार राय, गांव परसोगा तहसील ओसा जिला लातूर से उस्मान शेख, सायरवानु शेख और करिश्मा शेख, और जनाब सांगली जिला दशहर से अल्ताफ हुजरे, सैफुल्ला और सबाहत हुजरे।

रविदास चौक पंडरपुर से कृष्णा घोड़ के प्रशांत शिंदे और ऋषि शिंदे, मौली चंडीगढ़ से गुरप्रीत सिंह तंगोरी, जसबीर कौर और माइक प्रीत कौर, संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव, एमएलबी रोड ग्वालियर से सुरेश खुराना, किरण खुराना और एस के पप्पी, गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पवार, डैनी पवार और मनीष पवार, और खलीफा की बावड़ी से खुदावश खलीफा और रामदेवरा से दिनेश चौहान। आप सबकी पसंद आपकी नजर है। अच्छा, एक मेल और शामिल कर लेते हैं। पुरानी बागों से इलियास मुस्कान कुरैशी, रानी कुरैशी और बाबा जैद कुरैशी। सुनिए आप सब मुकेश को।

बाल्केश्वर कॉलोनी आगरा से श्रीमती सरिता चौरसिया, सुमित चौरसिया और वीर चौरसिया। मुमताज मोहल्ला नवगछिया से इसराइल अंसारी, सीरत अंसारी और आलिया खातून। नाला सुपारा मुंबई से मोहम्मद आसिफ शेख, मोहम्मद नौमान शेख और मोहम्मद सुलेमान शेख। जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नजमा बेगम सिद्दीकी और रियाज रफाकत। वंजनारा नागपुर महाराष्ट्र से अनिल कोल्हे, छाया कोल्हे और प्रियांश कोल्हे। और ये जनाब मुकाम पोस्ट फूल चिंचोली तालुका पंडरपुर से जाकिर मुल्लानी, सुमैया मुल्लानी और सुबान मुल्लानी।

मुझे लग रहा है सबने तीन तीन मील कम से कम डाल रखे हैं। गांव लोडडा जिला बागपत से जगमोहन सिंह प्रजापत, अर्जुन भारती और भुवनेश्वरी देवी, छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा, और जनाब ये हैं सीनियर, अच्छा रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी। आप सबकी पसंद आपकी नजर है।

0: और अमरीकी साइंसदानों ने दिमाग की पुरस्रार पेचीदगियों का इंकशाफ करने वाली तकनीक तैयार करने पर अद्वियात के मैदान का नोबल इनाम जीता है। अब खबरें तफसील से। भारत और स्विट्जरलैंड के दरमियान कल नई दिल्ली में 5 माहदों पर दस्तखत किए गए। ये माहदे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के सदर गाई पारमेलिन के दरमियान दो तरफा मुज़ाकरात के बाद तय पाए। इन माहदों में माइग्रेशन और मोबिलिटी शराकतदारी, नौजवान पेशेवर अफराद का बाहमी तबादला, ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी, मोबिलिटी निजाम और मखसूस शोबों में बुनियादी ढांचे के फरोग और ताउन जैसे उमूर शामिल हैं। बातचीत के बाद एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि भारत और स्विट्जरलैंड ने स्विट्जरलैंड में भारतीय बरामदात के लिए मार्केट तक बेहतर रसाई का निजाम कायम करने और दोनों ममालिक के दरमियान सरमायाकारी को मजीद आसान बनाने के लिए कई अहम फैसले किए हैं। वजारत खारजा ने के मगरबी उमूर के सेक्रेटरी सीबी जॉर्ज ने दोनों रहनुमाओं के दरमियान दो तरफा मीटिंग के बारे में कल शाम नई दिल्ली में मीडिया से खिताब किया। उन्होंने कहा कि दोनों मुल्कों ने मुख्तलिफ शोबों में मुफाहमतनामे, समझौते और बाहमी ताउन के से मुतालिक इकरारनामों का भी तबादले ख्याल किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के सदर के दरमियान वसी उमूर पर तबादले ख्याल हुआ। दोनों रहनुमाओं ने भारत स्विट्जरलैंड ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा लिया और तिजारत व सरमायाकारी, इख्तरा और एआई, फौजी तबादले और दिफाई साजो सामान, न्यूक्लियाई तवानाई समेत मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताउन में मजीद गहराई पैदा करने के तौर तरीकों पर तबादले ख्याल किया। स्विट्जरलैंड के सदर ने वज़ीर-ए-आज़म के मौकिफ खुसूसन इस पैगाम को बहुत सराहा कि यह जंग का नहीं बल्कि अमन का दौर है। सदर पारमेलिन भारत के 3 रोजा दौरे पर कल सुबह नई दिल्ली पहुंचे। वज़ीर ख़ारजा डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत का कसीर जहती वाबस्तगी का नुक्ता नजर उसे अमरीका, रूस और चीन समेत सभी अहम ममालिक से जुड़ने के काबिल बनाता है। डॉ जयशंकर कल नई दिल्ली में भारत और दुनिया मुताबिकत पजीरी के मौजू पर 5वीं कौटिल्या इक्तसादी कॉन्क्लेव से खिताब कर रहे थे। उन्होंने अमरीका को भारत का इंतहाई अहम स्ट्रेटेजिक साझेदार, सबसे बड़ा इक्तसादी और तजारती साथी और बड़ा दिफाई शराकतदार करार दिया। उन्होंने कहा कि उथल पुथल भरे इस दौर में भारत को हर महाज पर एतमाद के साथ आगे बढ़ना चाहिए। जनाब जयशंकर ने वाजह किया कि दुनिया कसीर कतबियत की जानिब गामजन है, जिसका ढांचा और ज्योमेट्री माजी से बिल्कुल मुख्तलिफ है। आसाम के लिए एक तारीखी संग मील के तौर पर बंदरगाहों, जहाजरानी और आबी गुजरगाहों के मरकजी वजीर सर्बानंद सोनोवाल ने डिब्रूगढ़ से बंगलादेश के लिए मैथनॉल ले जाने वाले पहले बैन अवी कार्गो बहरी जहाज को रवाना किया। इस पेशरफ के साथ ही तकरीबन 80 साल बाद दरियाए ब्रह्मपुत्र के आलमी तजारती रास्ते के तौर पर बहाली हुई है। इस इकदाम से शुमाल मशरकी खित्ते के लिए एक बराह रास्त माहौल के लिए साजगार और कम लागत वाली तजारती राहदारी फराहम होती है। भारत की अंदरून मुल्क आबी गुजरगाहों के शोबे में कल एक नए बाब का आगाज हुआ, जब मैथनॉल की एक खेप डिब्रूगढ़ के बोगीबील टर्मिनल से बंगलादेश की राजधानी ढाका में पानगांव बंदरगाह के लिए रवाना की गई। इससे पहले बैन अल-अक़वामी कार्गो बहरी जहाज को रवाना करते हुए बंदरगाहों, जहाजरानी और आबी गुजरगाहों के मरकजी वजीर सर्बानंद सोनोवाल ने एतमाद जाहिर किया कि यह टर्मिनल खित्ते की माशी तरक्की में नुमाया रोल अदा करेगा। उन्होंने ऐलान किया कि हुकूमत बोगीबील टर्मिनल में जहाजरानी के शोबे के लिए हुनरमंदी की तरक्की का मरकज कायम करेगी, जिस पर 200 करोड़ रूपये की सरमायाकारी की जायेगी। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। सदर जमहूरी द्रौपदी मुर्मू ने 3 हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस साहिबान का भारतीय सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर तकर्रुर किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में कानून व इंसाफ के वजीर अर्जुन राम मेघवाल ने मुतल किया कि सदर जमहूरिया ने गुजरात हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस सुनीता अग्रवाल, दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और तेलंगाना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस अपरेश कुमार सिंह को सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर मुकर्रर किया है। तमिलनाडु, पुडुचेरी और मगरबी बंगाल के 5 असेंबली हलकों और आसाम में 1 लोकसभा सीट के जिमनी चुनाव के लिए पूरी तैयारी हो चुकी है। तमाम 6 सीटों के लिए पोलिंग आज होगी, जबकि वोटों की गिनती जुमे के रोज होगी। तमिलनाडु के मधुरांतकम और धारापुरम, पुडुचेरी के थट्टन चावड़े और मगरबी बंगाल के राजी नगर और नंदीग्राम में असेंबली सीटों के लिए पोलिंग होगी, जबकि आसाम में नागांव लोकसभा हलका के लिए वोटिंग होगी। मगरबी बंगाल में फजाई कनेक्टिविटी को मुस्तहकम करने की खातिर अगले 2 साल के दौरान 4 नए हवाई अड्डे तैयार किए जाएंगे। इस बारे में मरकज और मगरबी बंगाल हुकूमत के दरमियान कल नवन्ना में मुफाहमत नामे पर दस्तखत किए गए। इस दौरान शहरी हवाबाजी के मरकजी वजीर राम मोहन नायडू और मगरब बंगाल के वजीर आला सुविंदु अधिकारी भी मौजूद थे। इस मंसूबे में हासीमारा और कलाईकुंडा में शहरी इनक्लेव, बालवरघाट हवाई अड्डे की तौसी और परोलिया में नए हवाई अड्डे की तामीर शामिल है। जनाब नायडू ने कहा कि कलाईकुंडा में वाकई 2700 मीटर का रनवे बोइंग 737 और एयरबस A320 जैसे तैयारों की परवाज के काबिल होगा। इस दौरान वजीर आला सुविंदु अधिकारी ने कोलकाता यूरोपीय शहरों के दरमियान सीधी परवाजों और अयोध्या, तिरुपति और अमृतसर जैसे मकामात के लिए बेहतर कनेक्टिविटी का मुतालबा किया। साल 2026 का फिजियोलॉजी या अद्वियात के शोबे के नोबेल इनाम अमरीकी शहरी कार्ल डिसरोथ और जर्मन शहरियों पैटर हैगमैन और जॉर्ज नेगेल को दिया गया। इन अफराद को दिमाग के अंदरूनी कामकाज के तरीकेकार का पता लगाने की तकनीक तैयार करने में काबिल जिक्र हसूलियाबियों की बिना पर यह इनाम दिया गया। यह तरीकेकार, जिसे ऑप्टोजेनेटिक्स कहा जाता है, रोशनी पर मबनी सूच की तरह काम करता है, जिससे साइंसदान ये पता लगा सकते हैं कि दिमाग के कौन से खलियात कौन सा काम करते हैं। स्वीडन में स्टॉकहोम के कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट की नोबल असेंबली में कल इस बावकार इनाम का ऐलान किया गया। अपने बयान में कमेटी ने कहा कि हेगमैन और नेगल की जर्मन जोड़ी ने चैंडरलोस्पिन नामी प्रोटीन का पता लगाया, जबकि अमरीकी साइंसदान डेसरोथ ने प्रोटीन को आसाबी खलियात के लिए रोशनी से चलने वाले स्विच में तब्दील किया। आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। भारत और स्विट्जरलैंड ने ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी में तआवुन को तकवीत देने, बुनियादी ढांचे और मोबिलिटी, दिफाई इश्तराक के मैदान में नए इम्कानात की तलाश और न्यूक्लियाई तवानाई में तआवुन को वसात देने से मुतालिक 5 माहदों पर दस्तखत किए हैं। वजीर खाजा डॉ जयशंकर ने कहा है कि भारत का कसीर जहती वाबस्तगी का नुक्ता नजर उसे अमरीका, रूस और चीन समेत सभी अहम आलमी ताकतों से मसरूफ अमल रहने के काबिल बनाता है। बैन अल-अक्वामी तजारती रास्ते की बाजियाबी के तहत 80 साल के वक्फे के बाद आसाम से पहला कार्गो बहरी जहाज ब्रह्मपुत्र नदी के जरिए बांग्लादेश पहुंचा। मरकज और मगरबी बंगाल हुकूमत ने एक मुफाहमत नामे पर दस्तखत किए हैं, जिसके तहत अगले 2 साल के दौरान इलाकाई फजाई कनेक्टिविटी को मुस्तहकम करने के मकसद से मगरबी बंगाल को 4 नए हवाई अड्डे मिलेंगे। और जर्मनी और अमरीकी साइंसदानों ने दिमाग की पुरअसरार पेचीदगियों का इंकशाफ करने वाली तकनीक तैयार करने पर अद्वियात के मैदान का नोबल इनाम जीता है। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। क्लासिकी मौसीकी के प्रोग्रामी सामीना समार फरमाइए पीसी राना डे से वायलिन पर बजाया राग जोग।

वहां से की मौसीकी के प्रोग्राम में सामने भी आप सुन रहे थे वीसी राणा डे से वायलिन पर बजाया राग जोग। इसके साथ ही आज का क्लासिकी मौसीकी का प्रोग्राम अब खत्म होता है। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है, हमें आप सुन रहे हैं मीडियम वेव 171 किलो हर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर। पेश खिदमत है सदाबहार फिल्मी नगमों का प्रोग्राम आखिरी शब। प्रोग्राम की पहली पेशकश कानन देवी की आवाज में लगन फिल्म का नगमा, जिसे मौसीकी सजाया है आरसी बुराल ने।

देखो ये बातें छोड़ो, मेरा तुम्हारा नाता इतना ही है कि तुम गुरु हो, मैं चेली हूँ।

शमशाद बेगम के बाद में आप सुन रहे थे दर्द फिल्म का नगमा। नगमा निगार थे शकील बदायनी, मौसिकार थे नौशाद। आखिरी शब प्रोग्राम की अगली पेशकश पंकज मलिक की मौसीकी सजाय नगमा, फिल्म है माई सिस्टर, आवाज केएल सहगल की है।

0: अब आप फैसल हबीब से खबरें सुनिए। भारत और स्विट्जरलैंड ने ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी में तआवुन को तकवीयत देने, बुनियादी ढांचे और मोबिलिटी, दिफाई इश्तराक के मैदान में नए इम्कानात की तलाश और न्यूक्लियाई तवानाई में तआवुन को वसअत देने से मुतालिक 5 माहदों पर दस्तखत किए हैं। वज़ीर ख़ारजा डॉ जयशंकर ने कहा है कि भारत का कथीर जहती वाबस्तगी का नुक्ता नजर उसे अमरीका, रूस और चीन समेत सभी अहम आलमी ताकतों से मसरूफ अमल रहने के काबिल बनाता है। बैन अवी तजारती रास्ते की बाजियाबी के तहत 80 साल के वक्फे के बाद आसाम से पहला कार्गो बहरी जहाज ब्रह्मपुत्र नदी के जरिए बांग्लादेश पहुंचा। मरकज और मगरबी बंगाल हुकूमत ने एक मफाहमतनामे पर दस्तखत किए हैं जिसके तहत अगले 2 साल के दौरान अलाकाई फजाई कनेक्टिविटी को मुस्तहकम करने के मकसद से मगरबी बंगाल को 4 नए हवाई अड्डे मिलेंगे और जर्मनी और अमरीकी साइंसदानों ने दिमाग की पुरसरार पेचीदगियों का इंकशाफ करने वाली तकनीक तैयार करने पर अद्वियात के मैदान का नोबेल इनाम जीता है। अब खबरें तफसील से। भारत और स्विट्जरलैंड के दरमियान कल नई दिल्ली में 5 माहदों पर दस्तखत किए गए। ये माहदे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के सदर गाई पारमेलेन के दरमियान दो तरफा मुज़ाकरात के बाद तय पाए। इन माहदों में माइग्रेशन और मोबिलिटी, शराकतदारी, नौजवान पेशेवर अफराद का बाहमी तबादला, ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी, मोबिलिटी निजाम और मखसूस शोबों में बुनियादी ढांचे के फरोग और तआवुन जैसे उमूर शामिल हैं। बातचीत के बाद एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और स्विट्जरलैंड ने स्विट्जरलैंड में भारतीय बरामदात के लिए मार्केट तक बेहतर रसाई का निजाम कायम करने और दोनों ममालिक के दरमियान सरमायाकारी को मजीद आसान बनाने के लिए कई अहम फैसले किए हैं। वज़ारत खारजा के मगरबी उमूर के सेक्रेटरी सीबी जॉर्ज ने दोनों रहनुमाओं के दरमियान दो तरफा मीटिंग के बारे में कल शाम नई दिल्ली में मीडिया से खिताब किया। उन्होंने कहा कि दोनों मुल्कों ने मुख्तलिफ शोबों में मफाहमतनामे, समझौते और बाहमी तआवुन से मुतालिक इकरारनामों का भी तबादला किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के सदर के दरमियान वसीय उमूर पर तबादले ख्याल हुआ। दोनों रहनुमाओं ने भारत स्विट्जरलैंड ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा लिया और तजारत व सरमायाकारी, इख्तरा और एआई, फौजी तबादले और दिफाई साजो सामान, न्यूक्लियाई तवानाई समेत मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा तआवुन में मजीद गहराई पैदा करने के तरीकों पर तबादले ख्याल किया। स्विट्जरलैंड के सदर ने वज़ीर-ए-आज़म के मौकिफ, खुसूसन इस पैगाम को बहुत सराहा कि ये जंग का नहीं बल्कि अमन का दौर है। सदर पारमेलेन भारत के 3 रोजा दौरे पर कल सुबह नई दिल्ली पहुंचे। वज़ीरे ख़ारजा डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत का कसीर जहती वाबस्तगी का नुक्ता नजर उसे अमरीका, रूस और चीन समेत सभी अहम ममालिक से जुड़ने के काबिल बनाता है। डॉ जयशंकर कल नई दिल्ली में भारत और दुनिया मुताबकत पजीरी के मौजू पर 5वीं कोटिल्या इक्तसादी कॉन्क्लेव से खिताब कर रहे थे। उन्होंने अमरीका को भारत का इंतहाई अहम स्ट्रेटेजिक साझेदार, सबसे बड़ा इक्तसादी और तजारती साथी और बड़ा दिफाई शराकतदार करार दिया। उन्होंने कहा कि उथल पुथल भरे इस दौर में भारत को हर महाज पर एतमाद के साथ आगे बढ़ना चाहिए। जनाब जयशंकर ने वाजे किया कि दुनिया कसीर कतबियत के जानिब गामजन है जिसका ढांचा और ज्योमेट्री मादे से बिल्कुल मुख्तलिफ है। आसाम के लिए एक तारीखी संगमील के तौर पर बंदरगाहों, जहाजरानी और आबी गुजरगाहों के मरकजी वजीर सर्बानंद सोनोवाल ने डिब्रूगढ़ से बांग्लादेश के लिए मैथनॉल ले जाने वाले पहले बैन अल-अक़वामी कार्गो बहरी जहाज को रवाना किया। इस पेशरफ्त के साथ ही तकरीबन 80 साल बाद दरियाए ब्रह्मपुत्र के आलमी तजारती रास्ते के तौर पर बहाली हुई है। इस इकदाम से शुमाल मशरकी खित्ते के लिए एक बराह रास्त माहौल के लिए साजगार और कम लागत वाली तजारती राहदारी फराहम होती है। भारत के अंदरूनी मुल्क आबी गुजरगाहों के शोबे में कल एक नए बाब का आगाज हुआ जब मैथनॉल की एक खेप डिब्रूगढ़ के बोगी बेल टर्मिनल से बांग्लादेश की राजधानी ढाका में पालगांव बंदरगाह के लिए रवाना की गई। इससे पहले बैन अल-अक़वामी कार्गो बहरी जहाज को रवाना करते हुए बंदरगाहों, जहाजरानी और आबी गुजरगाहों के मरकजी वजीर सर्बानंद सोनोवाल ने एतमाद जाहिर किया कि यह टर्मिनल खित्ते की माशी तरक्की में नुमाया रोल अदा करेगा। उन्होंने ऐलान किया कि हुकूमत बोगी बेल टर्मिनल में जहाजरानी के शोबे के लिए हुनरमंदी की तरक्की का मरकज कायम करेगी जिस पर 200 करोड़ रुपए की सरमायाकारी की जाएगी। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने 3 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबान का भारतीय सुप्रीम कोर्ट के जजेस के तौर पर तकरर किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में कानून व इंसाफ के वजीर अर्जुन राम मेघवाल ने मुतला किया कि सदर जमहूरिया ने गुजरात हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस सुनीता अग्रवाल, दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और तेलंगाना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस अपरेश कुमार सिंह को सुप्रीम कोर्ट के जजेस के तौर पर मुकर्रर किया है। मगरब बंगाल में फजाई कनेक्टिविटी को मुस्तहकम करने के खातिर अगले 2 साल के दौरान 4 नए हवाई अड्डे तैयार किए जाएंगे। इस बारे में मरकज और मगरबी बंगाल हुकूमत के दरमियान कल नाबन्ना में मुफाहमत नामे पर दस्तखत किए गए। इस दौरान शहरी हवाबाजी के मरकजी वजीर राम मोहन नायडू और मगरब बंगाल के वजीर अला सुविंदु अधिकारी भी मौजूद थे। इस सूबे में हासीमारा और कलाईकुंडा में शहरी इनकलेव बालवरघाट हवाई अड्डे की तौसी और परोलिया में नए हवाई अड्डे की तामीर शामिल हैं। जनाब नायडू ने कहा कि कलाईकुंडा में वाकई 2700 मीटर का रनवे बोइंग 737 और एयरबस A320 जैसे तैयारों की परवाज के काबिल होगा। इस दौरान वजीर आला सुविंदु अधिकारी ने कोलकाता और यूरोपीय शहरों के दरमियान सीधी परवाजों और अयोध्या तिरुपति और अमृतसर जैसे मकामात के लिए बेहतर कनेक्टिविटी का मुतालबा किया। साल 2026 का फिजियोलॉजी या अद्वियात के शोबे के नोबेल इनाम अमरीकी शहरी कार्ल डिसरोथ और जर्मन शहरियों पेटर हैगमैन और जॉर्ज नेगल को दिया गया। इन अफराद को दिमाग के अंदरूनी कामकाज के तरीकेकार का पता लगाने की तकनीक तैयार करने में काबिल जिक्र हसूलियाबियों की बिना पर यह इनाम दिया गया। यह तरीकेकार जिसे ऑप्टोजेनेटिस्ट कहा जाता है रोशनी पर मबनी स्विच की तरह काम करता है जिससे साइंसदान ये पता लगा सकते हैं कि दिमाग के कौन से खलियात कौन सा काम करते हैं। स्वीडन में स्टॉकहोम के कारोलोंसिका इंस्टीट्यूट की नोबेल असेंबली में कल इस बावकार इनाम का ऐलान किया गया। अपने बयान में कमेटी ने कहा है कि हैगमैन और नेगल की जर्मन जोड़ी ने चैनलोपिंसपिन नामी प्रोटीन का पता लगाया जबकि अमरीकी साइंसदान डेसरोथ ने प्रोटीन को आसाबी खिलियात के लिए रोशनी से चलने वाले स्विच में तब्दील किया। केमिकल और फर्टिलाइजर्स की वजीर मुमलकत मोहतरमा अनुप्रिया पटेल ने आज कहा कि हुकूमत भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मईशत बनाने की वसी तर कौमी मकसद को पूरा करने के लिए केमिकल और पेट्रोलियम मसनूआत के शोबे को तरजीह दे रही है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। भारत और स्विट्जरलैंड ने ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी में तआवुन को तकवीयत देने बुनियादी ढांचे और मोबिलिटी दिफाई इश्तराक के मैदान में नए इम्कानात की तलाश और न्यूक्लियाई तवानाई में तआवुन को उसात देने से मुतालिक 5 मुआहिदों पर दस्तखत किए हैं। वज़ीर ख़ारिजा डॉ जयशंकर ने कहा है कि भारत का कथीर जहती वाबस्तगी का नुक्ता नजर उसे अमरीका रूस और चीन समेत सभी अहम आलमी ताकतों से मसरूफ अमल रहने के काबिल बनाता है। बैन अल-अक़वामी तजारती रास्ते की बाजियाबी के तहत 80 साल के वक्फे के बाद आसाम से पहला कार्गो बहरी जहाज ब्रह्मपुत्र नदी के जरिए बांग्लादेश पहुंचा। मरकज और मगरबी बंगाल हुकूमत ने एक मफाहमतनामे पर दस्तखत किए हैं जिसके तहत अगले 2 साल के दौरान इलाकाई फजाई कनेक्टिविटी को मुस्तहकम करने के मकसद से मगरबी बंगाल को 4 नए हवाई अड्डे मिलेंगे। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव 1071 किलो हर्ट्स, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। सामिन शब का एक बजट चाहता है। यहां हमारी आज की तीसरी और आखिरी मजलिस की नशरियात अब इख्तिताम पजीर होती हैं। सुबह 9:30 पर अपनी पहली मजलिस की नशरियात के साथ हम फिर हाजिर खिदमत होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। خدا حافظ، شب بخیر، جے ہند.
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पहलमा के बीच नई दिल्ली में द्विपक्षीय बातचीत हुई. इसके बाद दोनों देशों ने 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए. इन समझौतों में प्रवासन, युवा पेशेवरों के आदान प्रदान, परिवहन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, नवाचार और उद्यमिता जैसे क्षेत्र शामिल हैं. प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत EFTA व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते से दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिलेगा.
3: भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन यानी EFTA देशों के बीच एक ऐतिहासिक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया. ये यूरोप के किसी भी इकोनॉमिक ब्लॉक के साथ भारत का पहला FTA है. यह इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, जॉब्स और साझा समृद्धि का एम्बिशियस ब्लूप्रिंट भी है. इससे हम अगले 15 वर्षों में भारत में $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट और 10 लाख डायरेक्ट जॉब के लक्ष्यों को साकार करेंगे.
2: राष्ट्रपति पहलमान ने कहा कि यात्रा दोनों देशों की साझेदारी के महत्व को दर्शाने का अच्छा अवसर है. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पहलमान से मुलाकात की और उनके सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन किया. भारत में राष्ट्रपति पहलमान का स्वागत करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और स्विट्जरलैंड के बीच लोकतंत्र और कानून के शासन जैसे साझा मूल्यों पर आधारित गर्मजोशी भरे और सौहार्दपूर्ण संबंध है. उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन भी रात्रि भोज में शामिल हुए. विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज से घाना की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगे. घाना के विदेश मंत्री सैमुअल ओकोजेटे अबलाकवा के निमंत्रण पर होने वाली इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करना है. घाना के विदेश मंत्रालय के अनुसार भारत और घाना के राष्ट्रपति जॉन ड्रामानी महामा के अकरा रीसेट दृष्टिकोण के अंतर्गत चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग मजबूत करने पर चर्चा होगी. रोमानिया में भारतीय दूतावास ने बताया है कि काला सागर में व्यापारिक जहाज MV रोयाद ममादोव पर हुए हमले में 2 विदेशी नागरिकों की मौत हो गई है और कई क्रू मेंबर घायल हुए हैं. दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि क्रू मेंबर में शामिल 3 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं. दूतावास ने बताया कि एक भारतीय घायल है और उसका इलाज चल रहा है. निर्वाचन आयोग ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के उन आरोपों का खंडन किया है जिनमें दावा किया गया है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के फॉर्म 6 में गैर कानूनी रूप से और एक तरफा बदलाव किए हैं. आयोग ने स्पष्ट किया कि SIR के फॉर्म 6 से जुड़ी घोषणा को सर्वोच्च न्यायालय ने बरकरार रखा है. सोशल मीडिया पोस्ट में निर्वाचन आयोग ने कहा कि बिहार में SIR से संबंधित आदेश पिछले वर्ष 24 जून को आयोग की सर्वसम्मति से जारी किया गया था. सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि उसने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान निर्वाचन आयोग द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे फॉर्म 6 में किसी भी बदलाव को मंजूरी नहीं दी है. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 3 उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों को सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया है. सोशल मीडिया पोस्ट में कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि राष्ट्रपति ने गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल, दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अपारेश कुमार सिंह को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है. चिकित्सा क्षेत्र में इस वर्ष का नोबेल पुरस्कार कार्ल डाइसरोथ, पीटर हेगमैन और जॉर्ज नागेल को दिया जाएगा. स्टॉकहोम में नोबेल असेंबली ने इसकी घोषणा की. तीनों वैज्ञानिकों को लाइट गेटेड आयन चैनल और ऑप्टोजेनेटिक्स से जुड़ी महत्वपूर्ण खोजों के लिए ये सम्मान मिला है. पीटर हेगमैन और जॉर्ज नागेल ने चैनल रोडोप्सिन नाम के प्रोटीन की खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया. भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 T20 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच आज लखनऊ में खेला जाएगा. मुकाबला अटल बिहारी वाजपेयी कान्हा क्रिकेट स्टेडियम में शाम 7 बजे से शुरू होगा. इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ.

जी हाँ श्रोताओं, वाकई बहुत ही सुंदर खूबसूरत गीत अभी आप सुन रहे थे, काहे को गुमान करे गोरी। जी हाँ, केएल सहगल की आवाज में शानदार रचना। एक और बेहतरीन रचना आ रही है, ये रचना है जी हाँ बहुत ही प्यारी फिल्म किस्मत से, जो 1943 प्रदर्शित फिल्म रही है किस्मत। धीरे धीरे आ रे बादल धीरे धीरे आ, जी हाँ अरुण कुमार और अमीर बाई की आवाज में शानदार रचना, संगीत से सजाया है अनिल विश्वास ने। आइए सुनते हैं एक और बेहतरीन रचना।

0: कुमार जी, महाराज युधिष्ठिर जी घोड़े पर सवार अकेले पश्चिम की तरफ जा रहे हैं।
1: शुभ अवसर जी, राजा बापू महाशंकर के मंदिर जाया करते हैं, ये हमारा पुराना रिवाज है।

0: हालों पे हंसते
1: पति गीप हमलान के बीच नई दिल्ली में द्विपक्षीय बातचीत हुई। इसके बाद दोनों देशों ने 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इन समझौतों में प्रवासन, युवा पेशेवरों के आदान प्रदान, परिवहन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, नवाचार और उद्यमिता जैसे क्षेत्र शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत EFTA व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते से दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
2: भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन यानी EFTA देशों के बीच एक ऐतिहासिक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। ये यूरोप के किसी भी इकोनॉमिक ब्लॉक के साथ भारत का पहला FTA है। यह इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, जॉब्स और साझा समृद्धि का एम्बिशियस ब्लूप्रिंट भी है। इसे हम अगले 15 वर्षों में भारत में $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट और 10 लाख डायरेक्ट जॉब के लक्ष्यों को साकार करेंगे।
1: राष्ट्रपति पहामलान ने कहा कि यह यात्रा दोनों देशों की साझेदारी के महत्व को दर्शाने का अच्छा अवसर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पहामलान से मुलाकात की और उनके सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन किया। भारत में राष्ट्रपति पहामलान का स्वागत करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और स्विट्जरलैंड के बीच लोकतंत्र और कानून के शासन जैसे साझा मूल्यों पर आधारित गर्मजोशी भरे और सौहार्दपूर्ण संबंध है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन भी रात्रि भोज में शामिल हुए। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज से घाना की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगे। घाना के विदेश मंत्री सैमुअल ओकोजेटे अब्लाकुआ के निमंत्रण पर होने वाली इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करना है। घाना के विदेश मंत्रालय के अनुसार भारत और घाना के राष्ट्रपति जॉन ड्रमानी महामा के अकरा रीसेट दृष्टिकोण के अंतर्गत चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग मजबूत करने पर चर्चा होगी। रोमानिया में भारतीय दूतावास ने बताया है कि काला सागर में व्यापारिक जहाज MV रोयाद ममादोव पर हुए हमले में 2 विदेशी नागरिकों की मौत हो गई है और कई क्रू मेंबर घायल हुए हैं। दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि क्रू मेंबर में शामिल 3 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं। दूतावास ने बताया कि 1 भारतीय घायल है और उसका इलाज चल रहा है। निर्वाचन आयोग ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के उन आरोपों का खंडन किया है जिनमें दावा किया गया है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के फॉर्म 6 में गैर कानूनी रूप से और एक तरफा बदलाव किए हैं। आयोग ने स्पष्ट किया कि SIR के फॉर्म 6 से जुड़ी घोषणा को सर्वोच्च न्यायालय ने बरकरार रखा है। सोशल मीडिया पोस्ट में निर्वाचन आयोग ने कहा कि बिहार में SIR से संबंधित आदेश पिछले वर्ष 24 जून को आयोग की सर्वसम्मति से जारी किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि उसने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान निर्वाचन आयोग द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे फॉर्म 6 में किसी भी बदलाव को मंजूरी नहीं दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 3 उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों को सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि राष्ट्रपति ने गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल, दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। चिकित्सा क्षेत्र में इस वर्ष का नोबेल पुरस्कार कार्ल डाइसरिथ, पीटर हेगेमैन और जॉर्ज नागेल को दिया जाएगा। स्टॉकहोम में नोबेल असेंबली ने इसकी घोषणा की। 3 वैज्ञानिकों को लाइट गेटेड आयन चैनल और ऑप्टोजेनेटिक्स से जुड़ी महत्वपूर्ण खोजों के लिए यह सम्मान मिला है। पीटर हेगेमैन और जॉर्ज नागेल ने चैनल रोडोप्सिन नाम की प्रोटीन की खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया। चाइना ओपन टेनिस में सेमीफाइनल मुकाबले के दौरान डेनिल मेदवेदेव के अयोग्य घोषित होने के बाद नोवाक जोकोविच फाइनल में पहुंच गए हैं। फाइनल में उनका मुकाबला 5वीं वरीयता प्राप्त ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी एलेक्स डी मिनोर से होगा। महिला टेनिस में अमेरिकी खिलाड़ी कोको गॉफ ने चीन के खिलाड़ी सुन शिन रान को 7-5, 6-1 से हराकर अंतिम 16।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आशीष इब्राहिम। India and Switzerland yesterday signed 5 agreements in New Delhi following bilateral talks between PM Modi and Swiss President Guy Parmelin. The agreements cover a wide range of areas, including migration and mobility partnership, exchange of young professionals, promotion and collaboration on transportation technologies, mobility systems and infrastructure in identified areas. In a joint press meet after the talks, PM Modi said, during their meeting, the two sides identified new avenues for defense cooperation and deepened collaboration in nuclear energy.
2: आज हमने मिलिट्री एक्सचेंज और डिफेंस प्रोडक्शन में सहयोग की नई संभावनाओं की पहचान की. न्यूक्लियर एनर्जी में सहयोग को और प्रगाढ़ करने पर भी सहमति बनी. वाराणसी का रोपवे, नोएडा का जेवर एयरपोर्ट और पहाड़ी क्षेत्रों में रेलवे तथा टनलिंग प्रोजेक्ट हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर सहयोग के उज्जवल उदाहरण है. इस सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए आज हमने ट्रांसपोर्ट, मोबिलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर एग्रीमेंट किया है.
3: President Draupadi Murmu met the President of the Swiss Confederation at Rashtrapati Bhavan yesterday and hosted a banquet in his honor. Welcoming President Parmelin to India, President Murmu said that India and Switzerland enjoy warm and cordial relations based on the shared values of democracy and the rule of law. The two leaders agreed that close cooperation between India and Switzerland can bring immense benefits to the people of both countries. They expressed confidence that this visit will contribute to further strengthening relations between the two countries. Vice President C.P. Radhakrishnan also attended the banquet. The stage is set for by-elections to 5 assembly constituencies in Tamil Nadu, Puducherry and West Bengal, along with 1 Lok Sabha constituency in Assam. Polling for all 6 seats will be held today, while counting of votes will take place on Friday. The assembly seats going to polls are Madurantakam and Dharapuram in Tamil Nadu, Tattanchavadi in Puducherry and Rajinagar and Nandigram in West Bengal. In Assam, voting will be held for the Nagaon Lok Sabha constituency. The Election Commission of India has rejected the allegations of leader of the opposition in the Lok Sabha, Rahul Gandhi, that the Chief Election Commissioner, Gyanesh Kumar, has changed Form 6 of Special Intensive Revision illegally and unilaterally. The Commission clarified that the declaration attached to Form 6 for SIR has been upheld by the Supreme Court. In a social media post, the Commission also said that the order related to SIR in Bihar was issued with the unanimous approval of the Commission on the 24th of June last year. Earlier, the Apex Court clarified that it has not approved any changes to Form 6 being used by the Election Commission during the SIR of electoral rolls. Union Minister for Communications Jyotiraditya Sindhya yesterday visited the India Mobile Congress 2026 venue at Yashobhoomi in New Delhi. Mr. Sindhya reviewed the final preparations ahead of its inauguration by the Prime Minister Narendra Modi on 8th of this month. During the visit, the Union Minister took a detailed tour of the exhibition area, interacted with participating startups and exhibitors, and chaired review meetings with senior officials. President Draupadi Murmu has appointed Chief Justices of 3 High Courts as judges of the Supreme Court of India. In a social media post, Law and Justice Minister Arjun Ram Meghwal informed that the President appointed Chief Justice of Gujarat High Court, Justice Sunita Agarwal, Chief Justice of Delhi High Court, Justice Devendra Kumar Upadhyay, and Chief Justice of Telangana High Court, Justice Aparesh Kumar Singh, as judges of the Supreme Court. The Food Safety and Standards Authority of India has asked states and union territories to conduct special drive against adulterated and unsafe food during the upcoming festive season. The FSSAI has written to commissioners of all the states and UTs and its regional directors regarding special festive drive to ensure food safety, quality and prevention of adulteration. American scientist Carl Deisseroth and German scientists Peter Hegman and George Nagel won the 2026 Nobel Prize in Physiology or Medicine for developing a breakthrough technique to decode the inner workings of the brain. This method, known as optogenetics, acts as a light-sensitive switch, allowing scientists to potentially map which cells are responsible for which function in the brain. And that is the end of this news bulletin.
4: ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है. साथियों, समय हुआ है 2:10 और यह समय होता है कार्यक्रम गीत बहार का. तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम गीत बहार। आज सबसे पहले एक बहुत ही शानदार गीत से शुरुआत कर रहे हैं। आज मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त ललित कुमार। तो आइए सुनते हैं ये शानदार रचना, आज के कार्यक्रम गीत बहार की पहली सुंदर बेहतरीन रचना।

तुम्हारी इज्जत कोई मांगे क्या दे दोगे क्या दे दोगे। आओ आओ इन पैसे वालों को

बदलाना अजी बदलाना, जाओ जाओ उस दीवानी लड़की को बदलाना।

के अंदर हलचल हर अरमान के अंदर इतनी फुर्ती जान के अंदर जैसे तीर कमान के अंदर। अरे अरे आगे आगे मैं आऊं तो पीछे पीछे खिसकी जाए, आगे आगे मैं आऊं तो पीछे पीछे खिसकी जाए।

नैन मिलाए मेरे दिल में उसकी जाए जोड़ी जब जब नैन मिलाए मेरे दिल में उतरी जाए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पहामलान के बीच नई दिल्ली में द्विपक्षीय बातचीत हुई। इसके बाद दोनों देशों ने 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इन समझौतों में प्रवासन, युवा पेशेवरों के आदान प्रदान, परिवहन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, नवाचार और उद्यमिता जैसे क्षेत्र शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत EFTA व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते से दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
1: भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन यानी EFTA देशों के बीच एक ऐतिहासिक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। ये यूरोप के किसी भी इकोनॉमिक ब्लॉक के साथ भारत का पहला FTA है। यह इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, जॉब्स और साझा समृद्धि का एम्बिशियस ब्लूप्रिंट भी है। इसे हम अगले 15 वर्षों में भारत में $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट और 10 लाख डायरेक्ट जॉब्स के लक्ष्यों को साकार करेंगे।
0: राष्ट्रपति पहामलान ने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों की साझेदारी के महत्व को दर्शाने का अच्छा अवसर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पहामलान से मुलाकात की और उनके सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन किया। भारत में राष्ट्रपति पहामलान का स्वागत करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और स्विट्जरलैंड के बीच लोकतंत्र और कानून के शासन जैसे साझा मूल्यों पर आधारित गर्मजोशी भरे और सौहार्दपूर्ण संबंध है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन भी रात्रि भोज में शामिल हुए। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज से घाना की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगे। घाना के विदेश मंत्री सैमुअल ओकुजेटे अब्लाक्वा के निमंत्रण पर होने वाली इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करना है। घाना के विदेश मंत्रालय के अनुसार भारत और घाना के राष्ट्रपति जॉन ड्रामानी महामा के अक्रा रीसेट दृष्टिकोण के अंतर्गत चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग मजबूत करने पर चर्चा होगी। रोमानिया में भारतीय दूतावास ने बताया है कि काला सागर में व्यापारिक जहाज MV रोयात ममादोव पर हुए हमले में 2 विदेशी नागरिकों की मौत हो गई है और कई क्रू मेंबर घायल हुए हैं। दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि क्रू मेंबर में शामिल 3 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं। दूतावास ने बताया कि 1 भारतीय घायल है और उसका इलाज चल रहा है। निर्वाचन आयोग ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के उन आरोपों का खंडन किया है जिनमें दावा किया गया है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के फॉर्म 6 में गैर कानूनी रूप से

0: और एक तरफा बदलाव की हैं। आयोग ने स्पष्ट किया कि एसआईआर के फॉर्म 6 से जुड़ी घोषणा को सर्वोच्च न्यायालय ने बरकरार रखा है। सोशल मीडिया पोस्ट में निर्वाचन आयोग ने कहा कि बिहार में एसआईआर से संबंधित आदेश पिछले वर्ष 24 जून को आयोग की सर्वसम्मति से जारी किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि उसने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान निर्वाचन आयोग द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे फॉर्म 6 में किसी भी बदलाव को मंजूरी नहीं दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 3 उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों को सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि राष्ट्रपति ने गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल, दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति देवेन्द्र कुमार उपाध्याय और तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। चिकित्सा क्षेत्र में इस वर्ष का नोबेल पुरस्कार कार्ल डाइसरोथ, पीटर हेगमन और जॉर्ज नागेल को दिया जाएगा। स्टॉकहोम में नोबेल असेंबली ने इसकी घोषणा की। तीनों वैज्ञानिकों को लाइट गेटेड आयन चैनल और ऑप्टोजेनेटिक से जुड़ी महत्वपूर्ण खोजों के लिए यह सम्मान मिला है। पीटर हेगमन और जॉर्ज नागेल ने चैनल रोडोप्सिन नाम की प्रोटीन की खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 टी20 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच आज लखनऊ में खेला जाएगा। मुकाबला अटल बिहारी वाजपेयी काना क्रिकेट स्टेडियम में शाम 7 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आशीष पी इब्राहिम। India and Switzerland yesterday signed 5 agreements in New Delhi following bilateral talks between PM Modi and Swiss President Guy Parmelin. The agreements cover a wide range of areas including migration and mobility partnership, exchange of young professionals, promotion and collaboration on transportation technologies, mobility systems and infrastructure in identified areas. In a joint press meet after the talks, PM Modi said during their meeting, the two sides identified new avenues for defense cooperation and deepened collaboration in nuclear energy.
2: आज हमने मिलिट्री एक्सचेंज और डिफेंस प्रोडक्शन में सहयोग की नई संभावनाओं की पहचान की। न्यूक्लियर एनर्जी में सहयोग को और प्रगाढ़ करने पर भी सहमति बनी। वाराणसी का रोपवे, नोएडा का जेवर एयरपोर्ट और पहाड़ी क्षेत्रों में रेलवे तथा टनलिंग प्रोजेक्ट हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर सहयोग के उज्जवल उदाहरण है। इस सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए आज हमने ट्रांसपोर्ट, मोबिलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर एग्रीमेंट किया है।
1: President Draupadi Murmu met the President of the Swiss Confederation at Rashtrapati Bhavan yesterday and hosted a banquet in his honor. Welcoming President Parmelin to India, President Murmu said that India and Switzerland enjoy warm and cordial relations based on the shared values of democracy and the rule of law. Vice President C.P. Radhakrishnan also attended the banquet. The stage is set for by-elections to 5 assembly constituencies in Tamil Nadu, Puducherry and West Bengal, along with 1 Lok Sabha constituency in Assam. Polling for all 6 seats will be held today, while counting of votes will take place on Friday. The assembly seats going to polls are Madurantakam and Dharapuram in Tamil Nadu, Tattanchavadi in Puducherry and Rejinagar and Nandigram in West Bengal. In Assam, voting will be held for the Nagaon Lok Sabha constituency. Defence Minister Rajnath Singh will launch Fleet Support Ship 1, FSS-1, and lay the keel of Fleet Support Ship 5, FSS-5, at Hindustan Shipyard Limited, Visakhapatnam today. He will also inaugurate the upgraded Slipway 4 and 300-ton Goliath crane. Ministry of Defence said that the upgraded Slipway 4, with its extended length and enhanced load-bearing capability, supported by the 300-ton Goliath crane, will enable the shipyard to build and launch vessels of up to 45,000 deadweight tonnage, significantly expanding its capacity to undertake large and complex platforms. President Draupadi Murmu will be on a 3-day visit to Himachal Pradesh from today. During the visit, President Murmu will attend the convocation ceremony at AIIMS Bilaspur as the chief guest and confer degrees to trainee doctors. After the convocation ceremony, the president will travel to Manali, where arrangements for her overnight stay have been made. Indian Embassy in Romania yesterday said that two foreign nationals have been killed and several crew injured in an attack on commercial vessel MV Royad Mamadov in the Black Sea. In a social media post, the embassy said the three Indian nationals among the crew members are safe. It said the mission has spoken to them and one of them has been injured and is receiving medical attention. The embassy further stated that it is in close touch with the hospital authorities. It is extending all possible support for the welfare and well-being of the Indian crew members. In cricket, after the winning of the three-match ODI series with a scoreline of 2-1, the India men's cricket team will now face the West Indies in a five-match T20 international series. The first 20-over match between the two teams is scheduled to take place at Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Cricket Stadium in Lucknow today, and the next four matches will be played in Ranchi, Indore, Hyderabad and Bengaluru on October 9, 11, 14 and 17 respectively. The Food Safety and Standards Authority of India, FSSAI, has asked states and union territories to conduct special drive against adulterated and unsafe food during the upcoming festive season. The FSSAI has written to commissioners of all the states and UTs and its regional directors regarding special festive drive to ensure food safety, quality and prevention of adulteration. And that is the end of this news bulletin.
3: आप सुन रहे हैं AIR लाइव न्यूज 24x7 आकाशवाणी के इस चैनल पर. आइए सुनते हैं अगला कार्यक्रम गजल. गजल के इस कार्यक्रम में आज मैं हूं आपके साथ पूजा भारती. सबसे पहले आइए सुनते हैं चंदन दास की आवाज में ये गजल. कहते हैं ना कि जब व्यक्ति कभी किसी बात को लेकर खफा होता है, नाराज होता है, तो हम उसे उसके करीब जाकर थोड़ा सुलझा दें, थोड़ा मना लें, तो शायद चीजें सुलझ जाएं. लेकिन अगर चीजें उलझ जाती हैं तो एक गजल बनता है जिसमें वो शब्द होते हैं जो हमारी दिल की आवाज होती है. और गजलों के इस सिलसिले में जब दिल की आवाज को कलमों से कागज पर उकेर दिया जाता है तो जो तैयार होता है वो गजल के बोल होते हैं. उन्हीं बोलों को लेकर कई ऐसे खूबसूरत लिरिसिस्ट ने सुंदर सुंदर मोतियों जैसे शब्दों को कागज पर पिरो दिया. उन्हीं गजलों को लेकर मैं पूजा भारती आज आपको सबसे पहले चंदन दास की आवाज में सुनाती हूँ ये गजल.

जब कहीं भी दिल ना लगे और ज़बां शांत हो, किसी को दिल लगातार याद कर रहा हो, इसे ही तो बेकरारी कहते हैं।

कभी कभार कितनी भी भीड़ में आप क्यों ना रहे, दिल हमेशा अकेला महसूस करता है और ये भीड़ तब किसी काम का नहीं होता जब तन्हाइयों से जज्बात खेलता है।

वाकई में भरी दुनिया में आकर दिल को समझाने कहाँ जाए, क्योंकि कहते हैं ना कि दिल अकेला होता है, महसूस कोई होता है, लगता है कि कोई आने वाला है, लेकिन ये तन्हाई साथ नहीं छोड़ता है। वक्त की यही रीत है, कभी कोई पास, कोई दूर और कोई खास है।

एक ऐसी धुन, एक ऐसी लगन, एक ऐसा कशिश जो दिलों को दिलों से जोड़ता हो, जिंदगी को जिंदगी से जोड़ता हो। और जब दिल में वो लगन हो तो मोहब्बत को कोई दूर नहीं कर सकता। ये तन्हाई कब कहाँ चली जाती है पता ही नहीं चलता।

कभी कभार दिल के जज्बात कहते हैं कि ठहरो, रुको, करो या कहो। दिल के जज्बात हैं, समय के साथ बदलते रहते हैं। वक्त चाहे कितना भी रोक ले, लेकिन जीवन के साथ जज्बात भी चलते रहते हैं। और सीने में कई ऐसे अरमां सुलगने लगते हैं।

जी हाँ, जब दिल की बात आती है तब दिल की आवाज को जिसे हम सुनाना चाहते हैं वो उसे अनसुनी कर देता है और यूं ही गुजरते हुए चला जाता है। तब दिल कहता है, ऐ दिल के दर्द देने वाले, तू मुसाफिर है तो क्या, यहाँ घर तेरा भी है।

कोई दिल के दरवाजे पर दस्तक देकर आया और चला गया, लेकिन वो वक्त वहीं थम गया, बहते गए उस वक्त की रेत में, लेकिन बढ़ते हुए वक्त ने मुझे वहीं रोक दिया और मुझे फिर वही याद आया, तेरा वही चेहरा, तेरी वही बातें, मोहब्बत करने से हुई थी जो मुलाकातें, दिल फिर वही तमन्ना कर रहा है।

0: अगर गजलों का सिलसिला चलता रहे तो लगता है यूं ही चलता रहे, क्योंकि कहते हैं ना, जीवन में मोहब्बत तन्हाई और रुसवाई के साथ साथ एक अलग सा एहसास यूं ही चलता रहता है, और कभी कभी यही भाने लग जाता है। ठीक उसी तरह गजलों का सिलसिला इन्हीं के साथ चलता रहता है, लेकिन वक्त कह रहा है गजल का कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न हो जाए। तो मुझे पूजा भारती को दीजिए अनुमति इस कार्यक्रम से। नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी AIR लाइव न्यूज 24x7। अगले कार्यक्रम भक्ति संगीत आप सुनेंगे ठीक 4 बजे, भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।
1: प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।

0: अभियाप पारुसाया डिपो नमल द्वारा प्रस्तुत श्री गुरुवायूर पुरैशा सुप्रभातम सुन रहे थे। इसके साथ ही भक्ति संगीत के कार्यक्रम अर्चना अब समाप्त होता है।
1: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम अर्चना। आप जुड़े हैं आकाशवाणी AIR लाइव न्यूज 24x7 से। आइए श्रोताओं आगे चलते हैं। 4:20 होने को है। अब सुनिए कार्यक्रम नाद ब्रह्मा, कर्नाटक संगीत का ये कार्यक्रम।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नाद ब्रह्मा। कर्नाटक संगीत के इस कार्यक्रम में आपने सुना ताल वाद्य कचरी येला। वेंकटेश्वर राव के साथ आपने सुना तालम आदि।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के अश्विन मास की 14वीं तिथि, तदनुसार 6 अक्टूबर 2026। सुबह के 4:53 हो चुके हैं। हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए श्रोताओं आपको जानकारी दे दें आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। सुबह के 5:10 का वक्त रहेगा, आओ योग करें। इसके अंतर्गत आप सुनेंगे और सीखेंगे अश्वत्थासन और तितली क्रिया। 5:20 का वक्त रहेगा देशभक्ति पर आधारित कार्यक्रम। 5:30 पर आप सुनेंगे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर रंजनी, जिसके अंतर्गत आप सुनेंगे गायन कलाकार नदीम अहमद खान। सुबह के 6:10 का वक्त रहेगा कार्यक्रम वंदना का। 6:40 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम चिंतन, जिसके अंतर्गत आप सुनेंगे हिंदी भाषा पर महान साहित्यकारों के विचार। 6:45 का वक्त रहेगा कार्यक्रम रामचरितमानस, इसमें आज आप सुनेंगे अयोध्या कांड भाग 70। 7:10 का वक्त रहेगा कार्यक्रम संगीतिका, जिसके अंतर्गत आप सुनेंगे भजन। 7:30 का वक्त रहेगा कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग, फिल्म संगीत पर आधारित ये कार्यक्रम आप सुनेंगे 7:30 पर। सुबह के 8:45 का वक्त रहेगा शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम स्वर गंगा, इसके अंतर्गत आप सुनेंगे उदय कुमार मलिक और धमर का गायन, राग ललित आप सुनेंगे।

सुबह के 9:15 का वक्त रहेगा कार्यक्रम विज्ञान पत्रिका। 9:30 पर आप सुनेंगे पंजाबी कार्यक्रम मिट्टी दी महक। 10:10 का वक्त रहेगा फिल्म संगीत के साथ कार्यक्रम आपकी फरमाइश। 11:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सबरस। 11:30 का समय रहेगा कार्यक्रम सुर मंजरी। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत पर आधारित इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे सितार वादन, कलाकार सलीम अहमद। आप सुनेंगे राग गुर्जरी। ये आज प्रसारित होने वाले दोपहर के कार्यक्रमों की रूपरेखा थी। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर।

पांच बजने को है कुछ बारों में सुनिए हिंदी में समाचार।

लहते नार संसार में अब है पटे रिप मदते सके हाथ ते नार जालप पड़े गोर अमरदास सो परसान जे पढ़या एक मन तरया एक

ਮਨ ਇੱਕ ਪਰ ਤਖ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਮਹਲੀਨੋ ਤੀਸ ਇੱਕ।

राम जंपो नित पाई अमरीक प्रहलाद शरण गोविंद गात पाई तै लोभ क्रोध तृष्णा तरी समत जल जानी जुगत गुण अमरदास निज भगत।

dok sansar kove gur navned dariyao जन्म हम कालख तोवे सो कहो टल गुर सेविया अहनस सहज सुपाए दर्शन परसे गुरु के जन्म मरण दुख जाए।

सुत पान डरयो पान दास सो आस जगत रे गुरु की पारस पेट परस करे।

0: रामदास गुरु हर सत कियो, समरथ गुरु सिर हाथ धरियो।
1: किया खेल बड मेल तमाशा, वाहे गुरु तेरी सब रचना, तू जल थल गगन पयाल पूर रहया, अमृत ते मीठे जाके बचना। माने ब्रह्मादक रुद्रादक काल का काल निरंजन जचना, गुर प्रसाद पाइये परमारथ, सतसंगत से ती मन खचना। किया खेल बड मेल तमाशा, वाह गुरु तेरी सब रचना। अगम अनंत अनाद आद जिस कोई न जाने, सिव बिरंच धर ध्यान नित जस भेद बखाने। निरंकार निरवैर अमर नहीं दूसर कोई, पंजन गण समर्थ तरन तारण प्रभ सोई। नाना प्रकार जन जग कियो, जन मथुरा रस नारस, श्री सत्य नाम करता पुरख, गुर रामदास चित्त है बस।
0: सोई नाम सिवर नवनाथ निरंजन, शिव सन काज समुद्रया, चौरासी सिद्ध बुद्ध जित राते, अमरीक पवजल तरिया। उदो अक्रूर त्रिलोचन नामा, कल कबीर किरविक हरिया। सोई नाम अशल भगते पवतारन, अमरदास गुर को फुरिया। तित नाम राग तीसत आवे, जति तपीसर मन वसिया। सोई नाम सिमर गंगे पिता मैं, चरण चित

0: से संत प्यार जह करता रे संजोग सतगुरु सेव सुख पायो अमर गुर की तो जोग जगत उदारन नाम सतगुर तुठे पायो अब नाहे अवर सार काम बारंतर पूरी पड़ी हमें अव गुण परे एक गुण नाही अमृत छाट बिख खाई माया मोह परम पूले सत धारा से प्रीत एक उत्तम पंथ सुनो गुर संगत है मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गोरे रामदास राखो सरनाई एक अरदास पाठ कीरत की गोरे रामदास राखो सरनाई
1: सब कहो टल गुर सेविया तहनस सहज सुपाए दर्शन पर से गुरु के जन्म मरण दुख तो सिफ तख समीन उर अरस गुरसा लिठे सचे पा

जिस पास बैठे सोहे सबना दावे सजन सच्चा पात साहु सिर साहंदा।

मेरे पाँव निरंकार पाव खंडाना, साव सुख नाव निद्रा दिसे, हर जियो तेरे दाते राजा, मानस बपड़ा क्या सलाहे, क्या तिस का मोहताजा, जिन हार त्याया सब कुछ तिसका, तिसके पाख गवाई, ऐसा तन दिया सुखदात, निखट ना कभी जाए, आनंद भया सुख सहज समारे, सतगुर मेल मिलाए, मन ना

उपदेश सुन साधु संतन का सब चुके कान जमाने धन का कृपाल हुआ प्रभ मेरा से लागे गुरु की बाणी कीमत कौन करे प्रभु तेरी तू सर्व जिया दयाला सब किस